0: तीन भारतीयों की मौत पर क्या सफाई देंगे ट्रंप? इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हाल ही में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस पर विपक्ष मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर रहा है। भारतीय नागरिकों की जान जाने का मामला बेहद गंभीर है, जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो क्या तीन भारतीयों की मौत पर ट्रंप कोई सफाई देंगे? ईरान के साथ डील, भारत के साथ होगी ट्रेड डील। इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने की डील की है और इस डील के साइन होने के बीच में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। तो क्या इस डील के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होगी? वही ट्रेड डील जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया था और पीएम मोदी अपने इरादों से टस से बस नहीं हुए।
1: भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
0: जी हां, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका और उसने अमेरिकी बाजार के ही विकल्पों को ढूंढ निकाला और भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑयल डील साइन कर डाली। अमेरिका यूरोप पर भी भड़क उठा था। अमेरिका ने भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाए, ये तक कह दिया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पैसे की कमी नहीं हो रही है। यानी अमेरिका ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि $30 trillion की उनकी इकॉनमी है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। 50% टैरिफ लगने से पहले तक भारत अमेरिका को 5.4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता था, इसलिए ट्रंप को यकीन था कि भारत को उसकी शर्तों पर झुकना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी शर्तों के आगे यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया को झुकाया। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने से इनकार कर दिया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं।
2: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पुरानी गलतियों से सबक लेकर भारत के साथ रिश्तों की नई गांठ बांधने की पहल कर रहे हैं? ऐसे में पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कितनी ठोस तरीके से अपनी बात रखते हैं? देश और दुनिया को इसी का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
3: पीएम मोदी की 16 महीने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फ्रांस में मुलाकात कल होगी। तो G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद कनाडा, ब्रिटेन और यूएई के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात महत्वपूर्ण है।

0: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने एवियन पहुंचे, लेकिन G7 समिट में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ कई बड़ी डील पर मोहर लगाई। फ्रांस के साथ 13 बड़े समझौते हुए, जबकि स्लोवाकिया के साथ 14 समझौतों पर सहमति बनी। इसी कड़ी में G7 सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी शामिल हैं। सबसे पहले बात मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पर्सनल केमिस्ट्री की। मेजबान मैक्रों ने दोस्त मोदी का शानदार स्वागत किया और दोनों मुल्कों के रिश्तों को नई उड़ान दी। इसी साल फ्रांस भारत ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था, मतलब दोनों मुल्क सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि तकनीक, रक्षा, स्पेस समेत कई सेक्टर में सहयोगी हैं। स्पेशल रिश्तों का सीधा असर भारत फ्रांस के बीच हुए 13 समझौतों में दिखा, क्योंकि मोदी और मैक्रों ने 2030 का रोड मैप सेट कर दिया। समझौता नंबर 1, अगले 5 साल में दोनों मुल्कों का कारोबार $16 बिलियन से $32 बिलियन पहुंचना। समझौता नंबर 2, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप और साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में अटूट सहयोग। समझौता नंबर 3, इनोवेशन रोड मैप 2030, यानी IIT और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अब फ्रांस के टॉप कॉलेजों के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। समझौता नंबर 4, जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप के जरिए तकनीक की दुनिया में साझेदारी। समझौता नंबर 5, भारत के UPI का फ्रांस में विस्तार होगा। समझौता नंबर 6, हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क खड़ा करने में फ्रांस मदद करेगा। समझौता नंबर 7, डेटा सिक्योरिटी के मोर्चे पर दोनों मुल्क साथ काम करेंगे। समझौता नंबर 8, स्पेस मिशन में इसरो की मदद करेगी फ्रांस की CNES। समझौता नंबर 9, UP को एविएशन का हब बनाने में मदद करेगा फ्रांस। समझौता नंबर 10, भारत और फ्रांस मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी में नई खोज करेंगे। समझौता नंबर 11, भारत के स्टार्टअप्स के लिए फ्रांस अपने दरवाजे खोलेगा। समझौता नंबर 12, भारतीय पुरातन ज्ञान और संस्कृति की फ्रांस में पढ़ाई। समझौता नंबर 13, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट में भारत की मदद करेगा फ्रांस। यही नहीं, फ्रांस के साथ 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और एटमी एनर्जी प्लांट में सहयोग पर चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि भारत ने राफेल के साझा विकास और उत्पादन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग की है।
1: कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
2: प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। फ्यू डेज अगो You've become the prime minister with the longest serving time since the independence of India.
0: अब इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा गया। ब्रातिस्लावा में हुए सम्मान समारोह में PM मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें दोनों मुल्कों के रिश्तों में घुली मिठास की गवाह हैं। ये पहली बार है जब स्लोवाकिया के साथ मोदी की अगुवाई में कई ऐतिहासिक समझौते हुए। दोनों देशों ने एंटी टेररिज्म पार्टनरशिप, एजुकेशन, रोजगार और रिसर्च समेत कई सेक्टरों में MOU पर दस्तखत किए हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर सहमति बनी है। बड़ी बात यह है कि स्लोवाकिया ने UN की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं PM मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को आधिकारिक तौर पर भारत आने का निमंत्रण दिया है। पहले अमेरिकी टैरिफ और फिर ईरान अमेरिका युद्ध से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है, लेकिन इसका असर दुनिया पर लंबे वक्त तक रहेगा, क्योंकि युद्ध से टूटी गैस और तेल की सप्लाई चेन का तमाम मुल्कों की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसी असर को बेअसर करने के लिए भारत दुनिया के सामने मुल्कों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। PM मोदी का एजेंडा एकदम साफ है। चाहे G7 के देश हों, सहयोगी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हों, वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, वक्त नई साझेदारी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम रखने का है। यही वजह है कि G7 समिट में प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और UAE के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या दो तिहाई बहुमत यानी कि 540 की लोकसभा में 360 वाले प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ने लगा है, जहां टीएमसी के 20 सांसद आ चुके हैं। आगे पहले 6 और अब उद्धव के 6 सांसदों के टूटने की खबर सूत्रों के हवाले से आई है। कहा यह जा रहा है कि कुछ धीरे धीरे और कुछ छोटे दलों के सांसद भी समर्थन में आ सकते हैं। मानसून सत्र में अगर संशोधन विधेयक या परिसीमन विधेयक आता है तो गैर हाजिर रहकर एनडीए का काम ये सांसद बना सकते हैं।
4: सिर्फ वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
5: वो संख्या बल जिसका एक ट्रेलर पश्चिम बंगाल से नजर आ चुका है, जहां से 20 सांसद टीएमसी के बागी हो चुके हैं, एनडीए को समर्थन कर चुके हैं। वो संख्या बल जिसका दूसरा ट्रेलर महाराष्ट्र में दिखने लगा है, उद्धव ठाकरे के खेमे में बगावत की बू आने लगी है। वो संख्या बल जिसके दम पर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में अब महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल न सिर्फ सरकार पेश कर सकती है बल्कि पास भी करा सकती है।
4: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है।
5: ये बात प्रधानमंत्री को तब कहनी पड़ी जब 3 दिन के विशेष सत्र में अप्रैल के महीने में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल और परिसीमन बिल पास नहीं करा पाई, क्योंकि तब विपक्ष एकजुट था।
6: ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, माइक इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, माइक दिखाओ, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है।
5: 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, विरोध में 230। मोदी सरकार को तब लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाए। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला था। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चलें तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां दो तिहाई बहुमत 360 होता है, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसदों तक पहुंचा, यानी दो तिहाई बहुमत से 62 सांसद कम।
7: दरअसल इस संशोधन को पारित करने के लिए भाजपा को 2/3 संख्या बल की जरूरत थी। जैसे ही ये संशोधन गिरा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि भले ही कल हमारे पास संख्या बल ना हो, लेकिन हमारा आत्मबल मजबूत है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब भाजपा की नजर आने वाले मानसून सत्र पर है और किसी भी तरीके से वो संख्या को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है।
5: वो जोर कलकत्ता से दिल्ली तक दिख रहा है, जब पर्यावरण मंत्री के घर बैठक से लोकसभा स्पीकर के पास तक ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद पहुंच गए, NCPI नाम की पार्टी में विलय दिखाया और एनडीए को समर्थन का ऐलान कर दिया।
8: हमारे जो
9: नहीं हो रहा कोई
8: सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
5: तो फिर 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए के 298 वाले समर्थन में 20 सांसद जुड़ जाने का मतलब है कि ये संख्या 318 हो जाती है। अब चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना UBT के सांसद बागी हो सकते हैं। अभी उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन ना लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। उद्धव ठाकरे की बैठक में दावा है 5 सांसद मौजूद नहीं थे। अगर उद्धव के 6 सांसद बागी हुए तो एनडीए का नंबर 324 तक जा सकता है।
10: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में है? आपकी जो
11: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
12: भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा।
5: उद्धव ठाकरे के सांसद टूटे तो भी दो तिहाई बहुमत से एनडीए लोकसभा में दूर दिखता है, और तब दावा है कि तमिलनाडु में जो राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर टीवीके से हाथ मिलाया, तो डीएमके से हाथ मिले न मिले साथ जरूर एनडीए पाना चाहता है, जो डीएमके संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की जगह मांग चुकी है। जिस डीएमके की नाराजगी का अंदाजा राहुल गांधी भांप चुके हैं, इंडिया ब्लॉक की बैठक में कह चुके हैं कि डीएमके को मनाया जाएगा, लेकिन क्या स्टालिन मानेंगे? जिन्हें बीजेपी ये बताना चाहेगी कि देखो अगर आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो आबादी कंट्रोल करने वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु का नुकसान होगा, लेकिन 50% सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले से तमिलनाडु का शुभ लाभ है। और तब क्या 298 प्लस टीएमसी के बागी 20 प्लस उद्धव के अगर 6 बागी हुए और डीएमके के 22 सांसदों का साथ मिला तो ये नंबर एनडीए के लिए 346 तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी 540 की लोकसभा में दो तिहाई नंबर 360 से ये संख्या 14 कम है। दावा इसके बाद ये भी है कि जेएमएम के 3 समेत कुछ अन्य छोटे दल के सांसद या तो समर्थन दे सकते हैं या वोटिंग में गैर हाजिर रह सकते हैं, तो इस रणनीति से एनडीए दो तिहाई वाले नंबर तक पहुंच सकता है।
13: पिछली बार जो कि ये अधिनियम गिर गया था और 2/3 मेजोरिटी नहीं होने की वजह से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह 2/3 मेजोरिटी बनाई जाए, और उसके लिए वो टीएमसी को भी और उधर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को भी और भी कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी इस तरह की है तो उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
4: हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
7: सत्ता पक्ष की ये कवायद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने प्रयासों में सफल हो जाती है और महिला संशोधन विधेयक वाकई में पारित होता है तो न सिर्फ इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में असर पड़ेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा भी इससे बदल सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
3: क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी टूटने जा रही है? ऐसी चर्चा है कि उद्धव की पार्टी की टूट की पटकथा दिल्ली में लिखी जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना यूबीटी की 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद शिंदे के साथ आएंगे। इस बीच यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि उनके सांसदों को एडवांस के तौर पर 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
14: छह सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं,
15: भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है।
16: साल 2022 में वो जून का ही महीना था जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी, और उसके बाद शिंदे ने बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों को अपने पाले में मिला लिया था। शिंदे के इस कदम से उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी और बागी शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। 4 साल बाद फिर जून के महीने में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की चर्चा है। कहा जा रहा है कि शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव के बचे हुए विधायकों और सांसदों को अपने पास बुलाने के लिए बेकरार है। हालांकि मीडिया के सामने शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर पर चुप्पी ही साधे रखी।
14: टाइगर चल रहा है,
17: शिंदे सर
14: 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
16: लेकिन उद्धव ठाकरे ने 14 जून को मातोश्री में जो बैठक बुलाई थी उसमें सांसदों की गैर मौजूदगी पर उनका दर्द छलक उठा। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं है कल मेरा जरूर होगा। तब तक धैर्य रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब के शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी।
11: देखिए 2024 से लगातार हम सुन रहे हैं कि कभी ऑपरेशन लोटस होने वाला है, कभी ऑपरेशन टाइगर होने वाला है। हमारे जो 9 सांसद चुन के आए उसमें से 6-7 जाने वाले हैं। रही बात जाने की, जाने वाले को कोई रोक सका नहीं है। हमारे नेता से उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे। मैं कितना भी प्यार लुटाऊं, कितना भी उनको अपना तन मन धन दे दूं, चले ही जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी चले गए, लेकिन हाँ समय बदलता है, वक्त आने पर दुनिया हर चीज फिर से घुमा देती है। तो आज आपका वक्त है, कल हमारा भी वक्त हो सकता है, लेकिन आज जो जा रहे हैं कल वो बहुत पछता सकते हैं। तो जाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचिए कि ऐसी पार्टी और ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा।
16: इधर शिवसेना कह रही है कि उद्धव के सांसद और विधायक खुद अपने नेतृत्व से परेशान हैं, इसलिए वो खुद उद्धव से दूर जाना चाहते हैं। तो उद्धव के करीबी संजय राउत बोले, सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखाकर छोटे दलों को तोड़ रही है।
17: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर, उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए।
18: हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब, और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
16: दरअसल उद्धव की पार्टी में टूट की अफवाहों को तब बल मिला था जब 14 जून को उद्धव ने अपने घर पर अपने 9 सांसदों की आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल ही मातोश्री पहुंचे। वहीं परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहब वाकचौरे और उस्मानाबाद सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं शामिल हुए थे, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे। अब शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों को भगवान और बच्चों की कसमें खिला रही है कि मुश्किल वक्त में छोड़कर मत जाना।
18: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
16: गैर हाजिर सांसदों में से एक संजय देशमुख शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी, इसीलिए शिवसेना खुलकर कह रही है कि ऑपरेशन टाइगर 365 दिन 24 घंटे चलता है।
19: देखिए ऑपरेशन टाइगर ये हमारा 365 दिन 24 घंटा चलते रहता है। आदरणीय पक्ष के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के ऊपर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी शिवसैनिक है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे नगराध्यक्ष हो, चाहे महापौर हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उसको अगर शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के ऊपर अगर उसको काम करना है, अगर जनता की सेवा करना है, तो उनके लिए हमारे दरवाजे 365 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे।
16: सवाल है कि क्या टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में भी टूट होनी तय है?
20: जैसे जैसे ऑपरेशन टाइगर अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ऑपरेशन सत्ता का पासा पलटने में कामयाब होता है या फिर सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाता है। अब आखिरकार एक बात तो साफ हो रही है, ये दल बदल और वफादारी का राजनीतिक खेल जनता बहुत करीब से देख रही है और आखिरी फैसला उसी के हाथ में है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: डूब के प्रयोग से रुके हुए काम हल किए जा सकते हैं? क्या दूरवा के प्रयोग से कर्ज मुक्ति हो सकती है? डूब से भगवान गणेश का क्या है संबंध? क्या है दूरवा का महत्व और प्रयोग विधि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
22: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
23: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
24: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
23: Smartless.
25: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
23: Marketplace.
26: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
23: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। ट्रंप को कहा, संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया, विश्वास की नींव पर होगी भविष्य की साझेदारियां। फ्रांस में आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी दुनिया की नजर। ट्रेड डील से लेकर हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों तक कई अहम मुद्दों पर होगी बात। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी। ड्रोन अटैक में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा, कई इलाकों में IDF का कब्जा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की दहशत, UBT के 9 में से 6 सांसद साथ छोड़ने को तैयार। आज दिल्ली में शिंदे से मिल सकते हैं बागी। संजय राउत ने कहा, एडवांस में दिए जा रहे हैं 15 करोड़। और नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन, 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना के विमान से भेजे जा रहे हैं प्रश्न पत्र।

0: हूं आशुतोष मिश्रा, देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन शहर में शिरकत की। शिखर सम्मेलन के दौरान समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ बैठे नजर आए। दोनों नेताओं की यह मुलाकात 16 महीने बाद हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से ट्रंप को भी संदेश दिया। आईना दिखाया आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। दुनिया के दिग्गजों से मुलाकात, एक मंच पर दुनिया के सभी दिग्गज नजर आए। कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, यूके के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक, यूएई के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। और आज जिस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है शाम को होने वाली राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाले प्रधानमंत्री की मुलाकात। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश दिया, यानी मानवता सबसे पहले। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भविष्य में दुनिया भर के जितने देशों के बीच साझेदारियां होंगी, उनके बीच विश्वास की नींव ज्यादा जरूरी होगी। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने जी समिट में कहा कि मित्र देशों को भी इससे नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना के हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मामला भी प्रधानमंत्री ने G7 समिट में उठाया। उन्होंने कहा कि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि हॉर्मुज में संकट के चलते सैकड़ों हजारों जो बड़ी शिप्स हैं, सेलर्स हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, और जब तक हॉर्मुज पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं होता, वो वहां से निकल नहीं सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने G7 समिट में ये कहा कि जितने भी नाविक हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर, हॉर्मुज के भीतर, उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी होती है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो G7 समिट के दौरान उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि दुनिया में दो देशों के बीच अब जो रिश्ते होंगे, उनके परस्पर रिश्ते आपसी संबंध और गहरे विश्वास की नींव पर होंगे, जो कि बेहद जरूरी है। तो 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच सीधे यानी द्विपक्षीय बैठक, जिसमें सिर्फ दो देशों के ही प्रतिनिधि होंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में क्या क्या मुद्दा हो सकता है, वो बड़ी बात है। लेकिन आपको फिर बताते हैं कि आखिर G7 समिट में प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण था फ्रांस का, कौन कौन सी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। और बड़ी बातें वो है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में मित्र देशों को भी नुकसान हुआ है। और मित्र देश कौन से थे? वो मित्र देश थे यूएई, सऊदी, ऐसे तमाम सारे वो देश जो ईरान का हमला झेल रहे थे। लेकिन G7 में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप आमने सामने आए, तो मोदी हक की जगह इस बार हैंडशेक के साथ अभिवादन हुआ। आज जब ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है, इस बैठक में ये ट्रेड डील से लेकर के भारतीय नाविकों की मौत तक अहम कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। तो मोदी मुलाकात, ट्रंप में वह मुद्दे कौन से होंगे? ट्रेड डील, 12,000 से ज्यादा टैरिफ जो लाइनों पर व्यापार है उसको लेकर, आपको बता दें अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, बाद में उसे वापस लिया गया। उसी के साथ ज्यादातर तकनीकी काम ट्रेड डील में, क्योंकि अमेरिका की टीम भारत आई, भारत की टीम भी इस पर नेगोशिएशन के लिए अमेरिका गई, तो ज्यादातर बातें पूरी हो चुकी हैं। ऊर्जा सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, एक साल में एनर्जी ट्रेड में 60% का इजाफा हुआ है, और भारत के साथ अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला भी एक दूसरा सोर्स है एनर्जी के लिए। रूस से तेल का आयात, मौजूदा छूट अवधि अब खत्म हो रही है। हॉर्मुज में जब तेल संकट शुरू हुआ तो अमेरिका ने भारत को अनुमति दी कि वहां जो जहाज फंसे थे आप उनसे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध रूस पर नहीं बल्कि कुछ खास कंपनियों पर है। यानी अगर रूस के साथ हम नहीं ले रहे हैं तो जो कंपनियां हैं, भारतीय भी कंपनियां हैं, उन पर सैंक्शन हट जाए। भारत उन कंपनियों से तेल खरीद सकता है जिन पर प्रतिबंध नहीं है, तो जाहिर है बातचीत में यह एक बहुत बड़ी बात होगी। और अभी भी रूस में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनसे भारत तेल खरीद रहा है, जिन पर अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाया। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। इस क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का भी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो 2/3 जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरी होती हैं। फ्रांस, यूके ने माइन स्वीपिंग और उसी के साथ साथ स्कॉट मिशन का भी सुझाव दिया। तो G7 में सबसे बड़ी बात ये रही कि जो माइन स्वीपिंग है हॉर्मुज में, अगर वो है वहां पर, तो उसे निकाल लिया जाए। उसी के साथ ऐसे मिशन भी तब संभव होंगे जब स्थायी शांति समझौता होगा। आपको पता है कि शुक्रवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच समझौते पर डिजिटल सिग्नेचर होने वाले हैं। लेकिन H1B भारतीयों के नजरिए से हालिया बदलावों से भारतीय प्रभावित हुए हैं। H1 वीजा पे काफी देर तक रोक लगाई गई है बड़ी संख्या में, और उन मुद्दों में भारतीय ही इस प्रोग्राम के सबसे बड़े लाभार्थी, सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा कुशल और दक्ष जो इंजीनियर हैं, और ऐसे में ये सबसे अहम मुद्दा हो जाता है और ये वो मुद्दे होंगे जो मोदी और ट्रंप की अहम मुलाकात में सामने उठाए जा सकते हैं। लेकिन फ्रांस में G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब ये मुलाकात हुई, ये मुलाकात 16 महीने बाद हुई, अब से चंद घंटे बाद दोनों नेताओं के बीच 16 महीनों के बाद की ये द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। देश और दुनिया की निगाहें इस मीटिंग में जमी हुई हैं, क्योंकि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं।
1: मोदी ट्रंप की मुलाकात, देश और दुनिया में चर्चा जोरदार। सोलह महीने बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे, रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे? ट्रेड डील पर ट्रंप का प्लान क्या है? टैरिफ वॉर पर क्या जवाब देंगे? अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर ट्रंप क्या सफाई पेश करेंगे? ईरान के साथ ट्रंप की डील हो गई, क्या भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे? वैसे तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें अक्सर चर्चा में रहती हैं।
2: प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं।
3: One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi.
1: चाहे सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो, जिसमें पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया,
2: अब की बार ट्रंप सरकार,
1: चाहे फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम,
2: नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप।
1: राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ।
2: इंडिया यूएस फ्रेंडशिप,
1: ये अब तक की दोनों नेताओं की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जन मुलाकातों में से एक है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में वॉशिंगटन का दौरा किया था।
4: He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader.
1: इस बैठक में दोनों नेताओं ने इमिग्रेशन और तकनीकी सहयोग जैसे मामलों पर अहम समझौते किए।
5: राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है।
1: लेकिन इसके बाद से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दिन ब दिन जैसे तल्ख होते चले गए, और अब पीएम मोदी की मुलाकात 16 महीने बाद फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के बाद 17 जून की शाम पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। ऐसे में इस मुलाकात से पहले तो तमाम विवाद और मुद्दे सामने हैं, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। 3 भारतीयों की मौत पर क्या सफाई देंगे ट्रंप? इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हाल ही में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस पर विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। भारतीय नागरिकों की जान जाने का मामला बेहद गंभीर है, जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच तीखी बात भी हुई, और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो क्या 3 भारतीयों की मौत पर ट्रंप कोई सफाई देंगे? ईरान के साथ डील, भारत के साथ होगी ट्रेड डील। इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने की डील की है, और इस डील के साइन होने के बीच में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। तो क्या इस डील के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होगी? वही ट्रेड डील जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया था। और पीएम मोदी अपने इरादों से टस से बस नहीं हुए।
2: भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
1: जी हां, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका और उसने अमेरिकी बाजार के ही विकल्पों को ढूंढ निकाला और भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑयल डील साइन कर डाली। अमेरिका यूरोप पर भी भड़क उठा था। अमेरिका ने भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाए, ये तक कह दिया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पैसे की कमी नहीं हो रही है। यानी अमेरिका ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि $30 trillion की उनकी इकॉनमी है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। 50% टैरिफ लगने से पहले तक भारत अमेरिका को 5.4 लाख करोड़ रुपए का
4: relationship.
1: तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पुरानी गलतियों से सबक लेकर भारत के साथ रिश्तों की नई गांठ बांधने की पहल कर रहे हैं? ऐसे में पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कितनी ठोस तरीके से अपनी बात रखते हैं? देश और दुनिया को इसी का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
0: तो प्रधानमंत्री मोदी की 16 महीने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फ्रांस मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद अब नजर उस द्विपक्षीय मुलाकात पर है जो इस G7 समिट में होने वाली है। G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी की कई मुल्कों की राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद कैनेडा, ब्रिटेन और UAE प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात भी बेहद महत्वपूर्ण है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने एवियन पहुंचे, लेकिन G7 समिट में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ कई बड़ी डील पर मोहर लगाई। फ्रांस के साथ 13 बड़े समझौते हुए, जबकि स्लोवाकिया के साथ 14 समझौतों पर सहमति बनी। इसी कड़ी में G7 सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी शामिल हैं। सबसे पहले बात मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पर्सनल केमिस्ट्री की। मेजबान मैक्रों ने दोस्त मोदी का शानदार स्वागत किया और दोनों मुल्कों के रिश्तों को नई उड़ान दी। इसी साल फ्रांस भारत ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था, मतलब दोनों मुल्क सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि तकनीक, रक्षा, स्पेस समेत कई सेक्टर में सहयोगी हैं। स्पेशल रिश्तों का सीधा असर भारत फ्रांस के बीच हुए 13 समझौतों में दिखा, क्योंकि मोदी और मैक्रों ने 2030 का रोड मैप सेट कर दिया। समझौता नंबर 1, अगले 5 साल में दोनों मुल्कों का कारोबार $16 बिलियन से $32 बिलियन पहुंचना। समझौता नंबर 2, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप और साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में अटूट सहयोग। समझौता नंबर 3, इनोवेशन रोड मैप 2030, यानी IIT और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अब फ्रांस के टॉप कॉलेजों के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। समझौता नंबर 4, जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप के जरिए तकनीक की दुनिया में साझेदारी। समझौता नंबर 5, भारत के UPI का फ्रांस में विस्तार होगा। समझौता नंबर 6, हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क खड़ा करने में फ्रांस मदद करेगा। समझौता नंबर 7, डेटा सिक्योरिटी के मोर्चे पर दोनों मुल्क साथ काम करेंगे। समझौता नंबर 8, स्पेस मिशन में इसरो की मदद करेगी फ्रांस की CNES। समझौता नंबर 9, UP को एविएशन का हब बनाने में मदद करेगा फ्रांस। समझौता नंबर 10, भारत और फ्रांस मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी में नई खोज करेंगे। समझौता नंबर 11, भारत के स्टार्टअप्स के लिए फ्रांस अपने दरवाजे खोलेगा।

0: समझौता नंबर 12 भारतीय पुरातन ज्ञान और संस्कृति की फ्रांस में पढ़ाई। समझौता नंबर 13 हेल्थ डेटा मैनेजमेंट में भारत की मदद करेगा फ्रांस। यही नहीं, फ्रांस के साथ 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और एक्मी एनर्जी प्लांट में सहयोग पर चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि भारत ने राफेल के साझा विकास और उत्पादन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग की है।
1: कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
2: प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। फ्यू डेज अगो You've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India.
0: अब इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा गया। ब्रातिस्लावा में हुए सम्मान समारोह में पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें दोनों मुल्कों के रिश्तों में खुली मिठास की गवाह हैं। ये पहली बार है जब स्लोवाकिया के साथ मोदी की अगुवाई में कई ऐतिहासिक समझौते हुए। दोनों देशों ने एंटी टेररिज्म पार्टनरशिप, एजुकेशन, रोजगार और रिसर्च समेत कई सेक्टरों में एमओयू पर दस्तखत किए हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर सहमति बनी है। बड़ी बात यह है कि स्लोवाकिया ने यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को आधिकारिक तौर पर भारत आने का निमंत्रण दिया है। पहले अमेरिकी टैरिफ और फिर ईरान अमेरिका युद्ध से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है, लेकिन इसका असर दुनिया पर लंबे वक्त तक रहेगा, क्योंकि युद्ध से टूटी गैस और तेल की सप्लाई चेन का तमाम मुल्कों की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसी असर को बेअसर करने के लिए भारत दुनिया के सामने मुल्कों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का एजेंडा एकदम साफ है। चाहे G7 के देश हों, सहयोगी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हों, वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, वक्त नई साझेदारी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम रखने का है। यही वजह है कि G7 समिट में प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
4: इफ यू लव पॉडकास्ट्स, यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज, दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.

0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। भगवंत मान पर गुरुद्वारे के दान पात्र को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। दरअसल ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो को लेकर झूठ बोला। उनका कहना है कि 5 सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है।
1: पहला तो इन्होंने पंजाब नाल गद्दारी की, हुण इन्होंने पंथ नाल भी गद्दारी की। मैं तो कहना भी तुरंत प्रधान मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।
2: ये वीडियो असली है, AI के नाल नहीं बनाई है। ये रिपोर्ट ये किथे कहती है कि उस वीडियो दे विच कौन व्यक्ति है?
0: आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर विवाद है उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति भगवंत सिंह मान है या कोई और, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो को लेकर अपनी बात साबित करने के लिए भगवंत मान से सबूत मांगे गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट

0: में संविधान तकबीर की जुबान यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
1: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
0: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
2: हैं। और कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
0: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
2: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
0: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%, फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3.5 लाख यानी 2.5 से 5%, और फिर 2024 में लड़े 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
2: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है,
2: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनवो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
1: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
2: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
1: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
2: हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
1: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। ट्रंप को कहा, संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया, विश्वास की नींव पर होगी भविष्य की साझेदारियां। फ्रांस में आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी दुनिया की नजर। ट्रेड डील से लेकर हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों तक कई अहम मुद्दों पर होगी बात। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी। ड्रोन अटैक में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा, कई इलाकों में IDF का कब्जा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की दहशत। UBT के 9 में से 6 सांसद साथ छोड़ने को तैयार। आज दिल्ली में शिंदे से मिल सकते हैं बागी। संजय राउत ने कहा, एडवांस में दिए जा रहे हैं 15 करोड़। और नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन। 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना के विमान से भेजे जा रहे हैं प्रश्न पत्र। गाजियाबाद के खोड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर 2 बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 20 साल और 18 साल की युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जॉनी और बड़ी बहन के बीच शादी तय हुई थी। 4 महीने पहले यह शादी टूट गई थी और इसी से नाराजगी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जॉनी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने शादी टूटने से नाराजगी होने की बात स्वीकारी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हैं और जॉनी ने नाराजगी के चलते गोली चलाई, 2 बहनें घायल हुई हैं। ये उसी आरोपी जॉनी की तस्वीरें हैं जिसने गाजियाबाद में 2 बहनों को पर हमला किया, गोली मारी। उसने बड़ी बहन के साथ रिश्ता टूटने से नाराज था और उस नाराजगी के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर अंबाला से। अंबाला के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान का लिंटर अचानक गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। अब SDRF और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। इस इलाके को अब सुरक्षित कर दिया गया है। मामले की जांच भी चल रही है कि आखिर लिंटर गिरा कैसे, क्या किसी तरह का अवैध निर्माण था। 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें SDRF और पुलिस ने तुरंत जगह से रेस्क्यू कर लिया। पंजाब के संगरूर में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जिलों में धरने प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। 5,994 शिक्षक भर्ती, 646 PTI भर्ती से जुड़े बेरोजगार युवा और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर टावरों पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनके साथी नीचे स्थायी मोर्चा लगाकर धरने पर बैठे हैं। हरजीत सिंह नाम का शख्स पिछले कई दिनों से टावर पर बैठ गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। अब यूनियन का कहना है कि वो लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इस संगरूर पंजाब की वो तस्वीर है जब उसमें से एक प्रदर्शनकारी टावर पर चढ़ गया और बाकी साथी जो है नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश से। जबलपुर में कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई के दौरान उस वक्त एक हंगामा हो गया जब न्याय की मांग कर रही एक महिला और उसकी बेटी अचानक कलेक्टर के पैरों में गिर पड़े। महिला ने बताया कि पिछले कई महीनों से अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना से कलेक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता का आरोप है कि कुछ युवक उसकी बेटी से लगातार छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। अब प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उधर सरायकेला में गैलेक्सी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट से जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज दूर दराज के इलाकों तक सुनाई दी। आसपास अफरा तफरी फैल गई। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर टाटा मेन हॉस्पिटल भेजा गया। अब इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जब जानकारी मिली तो श्रम विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन आरोप यह है कि उन्हें कंपनी परिसर में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच में जुटे हैं।
1: और भी कोई है जख्मी?
0: अगली खबर हरदोई से। जब इंसाफ नहीं मिला तो कोई पानी की टंकी पर चढ़ गए। एक महिला जो है वो कुछ लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला नाराज होकर के इंसाफ की मांग लेकर टंकी पर चढ़ गई। कई घंटों की मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, जिसके बाद पीड़िता को नीचे उतारा गया, उसे न्याय का भरोसा दिया गया, उसे इंसाफ का भरोसा दिया गया। यह हरदोई की तस्वीर, पानी की टंकी पर वो महिला चढ़ गई। जब गैंगरेप के मामले में शिकायत होने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, न्याय नहीं मिला और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई होगी। अरब खबरें राजनीतिक दंगल की। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी टूट की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं। उद्धव के 9 में से 6 सांसद बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि बगावत के लिए सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो 9 में से 6 सांसद अब अलग हो चुके हैं। जानकारी है कि वो आज दिल्ली में होंगे और दिल्ली में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलेंगे। आपको याद होगा एकनाथ शिंदे वही जिन्होंने सबसे पहले शिवसेना में सेंध लगाई, उन्होंने अलग शिवसेना बनाई सबसे पहले शिवसेना के, और अब ये ऑपरेशन टाइगर 2।
2: छह सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं।
3: भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है।
4: साल 2022 में वो जून का ही महीना था जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी, और उसके बाद शिंदे ने बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों को अपने पाले में मिला लिया था। शिंदे के इस कदम से उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी और बागी शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। 4 साल बाद फिर जून के महीने में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की चर्चा है। कहा जा रहा है कि शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव के बचे हुए विधायकों और सांसदों को अपने पास बुलाने के लिए बेकरार है। हालांकि मीडिया के सामने शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर पर चुप्पी ही साधे रखी।
2: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर, 5-6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
4: लेकिन उद्धव ठाकरे ने 14 जून को मातोश्री में जो बैठक बुलाई थी उसमें सांसदों की गैर मौजूदगी पर उनका दर्द छलक उठा। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं है कल मेरा जरूर होगा, तब तक धैर्य रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब के शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी।
5: देखिए 2024 से लगातार हम सुन रहे हैं कि कभी ऑपरेशन लोटस होने वाला है, कभी ऑपरेशन टाइगर होने वाला है। हमारे जो 9 सांसद चुन के आए उसमें से 6-7 जाने वाले हैं। रही बात जाने की, जाने वाले को कोई रोक सका नहीं है। हमारे नेता से उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे। मैं कितना भी प्यार लुटाऊं, कितना भी उनको अपना तन मन धन दे दूं, चले ही जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी चले गए, लेकिन हाँ समय बदलता है, वक्त आने पर दुनिया हर चीज फिर से घुमा देती है। तो आज आपका वक्त है, कल हमारा भी वक्त हो सकता है, लेकिन आज जो जा रहे हैं कल वो बहुत पछता सकते हैं। तो जाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचिए कि ऐसी पार्टी और ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा।
4: इधर शिवसेना कह रही है कि उद्धव के सांसद और विधायक खुद अपने नेतृत्व से परेशान हैं, इसलिए वो खुद उद्धव से दूर जाना चाहते हैं। तो उद्धव के करीबी संजय राउत बोले, सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखाकर छोटे दलों को तोड़ रही है।
6: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर, उबाठा के जो MLAs हैं, जो MPs हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए।
3: हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब, और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है, एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
4: दरअसल उद्धव की पार्टी में टूट की अफवाहों को तब बल मिला था जब 14 जून को उद्धव ने अपने घर पर अपने 9 सांसदों की आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल ही मातोश्री पहुंचे। वहीं परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहब वागचौरे और उस्मानाबाद सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं शामिल हुए थे, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे। अब शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों को भगवान और बच्चों की कस्में खिला रही है कि मुश्किल वक्त में छोड़कर मत जाना।
3: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
4: गैर हाजिर सांसदों में से एक संजय देशमुख शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी, इसीलिए शिवसेना खुलकर कह रही है कि ऑपरेशन टाइगर 365 दिन 24 घंटे चलता है।
1: देखिए ऑपरेशन टाइगर ये हमारा 365 दिन 24 घंटा चलते रहता है। आदरणीय पक्ष के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के ऊपर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी शिव सैनिक है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे नगराध्यक्ष हो, चाहे महापौर हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उसको अगर शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के ऊपर अगर उसको काम करना है, अगर जनता की सेवा करना है, तो उनके लिए हमारे दरवाजे 365 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे।
4: सवाल है कि क्या टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में भी टूट होनी तय है?
7: जैसे जैसे ऑपरेशन टाइगर अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ऑपरेशन सत्ता का पासा पलटने में कामयाब होता है या फिर सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाता है। अब आखिरकार एक बात तो साफ हो रही है, ये दल बदल और वफादारी का राजनीतिक खेल जनता बहुत करीब से देख रही है और आखिरी फैसला उसी के हाथ में है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: चले रुक रहे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: हल किए जा सकते हैं? क्या दूर्वा के प्रयोग से कर्ज मुक्ति हो सकती है? दूब से भगवान गणेश का क्या है संबंध? क्या है दूर्वा का महत्व और प्रयोग विधि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: जी, आपको भी लग रहा है कहने के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ यूपी के साथ
3: हम पहले जा चुके हैं। वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है, एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

करीब 4 महीने से युद्ध की वजह से वैश्विक संकट से गुजर रही दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है और इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया है और साफ किया है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। ये महान समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही होर्मुज को खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया के बाद क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दोनों दिशाओं में तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी शांति समझौता ज्ञापन यानी MOU के अंतिम मसौदे पर सहमति की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं। समझौते के तहत युद्ध और सैन्य अभियानों को समाप्त करने के साथ साथ परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों को लेकर आगे की वार्ता का रास्ता भी खुल सकता है। शांति समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी उछाल दर्ज की गई। उधर ब्रिटेन, कतर, जापान समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। अगर तय कार्यक्रम के मुताबिक स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये हाल के सालों में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं, जब इस ऐतिहासिक समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: आस्था के राम, श्रद्धा के राम, पौरुष के राम, मर्यादा के राम, 500 बरस की प्रतीक्षा, हजारों लाखों का बलिदान, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों के दान के बाद बना अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर। किसी ने सोचा ना था भगवान राम के अवधपुरी में चोर के नाम का शोर होगा। चोर चोर का शोर ऐसा मचा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। जिन छोटे कर्मचारियों पर आरोप है उनमें से चंपत राय के ड्राइवर रहे मंदिर के सेवादार चिन्नू यादव जरूर इनकार करने लगे। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे। जांच टीम की मदद के लिए जिले की पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर की ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला कि जांच में एसआईटी की जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 45 से अधिक लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेनदेन और प्रॉपर्टी निवेश की वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल दो हफ्ते पहले राम मंदिर के दान पात्र में से चढ़ावे की चोरी का सियासी आरोप शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, फिर विनय कटियार ने सवाल उठाए। तब तक ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया जाता रहा, लेकिन खबर है कि फिर बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी और तब सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू कराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी आरोपों से अलग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे संतोष दुबे नाम के पुराने कार सेवक, जिन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर देकर ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट में एक पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की चिट्ठी जरूर लिखी गई है, क्योंकि नेताओं ही नहीं संतों को भी लग रहा है कि मंदिर के दान खाते की रकम में कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभु राम में असंख्य सनातनियों की आस्था और योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास का सम्मान रखते हुए एसआईटी 7 दिन में अंतरिम और 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। ट्रंप को कहा, संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया, विश्वास की नींव पर होगी भविष्य की साझेदारियां। फ्रांस में आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी दुनिया की नजर। ट्रेड डील से लेकर हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों तक कई अहम मुद्दों पर होगी बात। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी। ड्रोन अटैक में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा, कई इलाकों में IDF का कब्जा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की दहशत, UBT के 9 में से 6 सांसद साथ छोड़ने को तैयार। आज दिल्ली में शिंदे से मिल सकते हैं बागी। संजय राउत ने कहा, एडवांस में दिए जा रहे हैं 15 करोड़। और नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन। 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना के विमान से भेजे जा रहे हैं प्रश्न पत्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दूब घास की, जिसको दूर्वा कहा जाता है। दूब का महत्व क्या है, गणपति का इससे क्या संबंध है और दूर्वा के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंच।

जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 1:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं दूब की, यानी दूर्वा घास की। दूर्वा का या दूब का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, दूब यानी कि दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि दूर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले दूर्वा पर यानी दूब पर रखा गया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि दूब के अंदर, दूर्वा के अंदर भी अमरत्व के गुण पाए जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा जरूरी है, और केवल अगर आप गणपति को दूर्वा अर्पित करें तो भगवान गणेश की अपार कृपा आप आसानी से पा सकते हैं। भगवान गणेश की संपूर्ण पूजा बिना दूर्वा के संभव नहीं होती है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते

होंगे, कर्ज सरलता से चुका सकेंगे, लेकिन आज परिवार में अशांति से बचिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो धार्मिक कार्यों में दूर्वा का बहुत प्रयोग होता है, खास तौर से भगवान गणेश की पूजा में। दूर्वा का औषधीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूब के पत्तों से जो रस निकलता है वो इतना मूल्यवान है कि इस रस को हरा रक्त कहा जाता है। दूब के पत्तों के रस के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती है। दूब के रस का नियमित प्रयोग अगर किया जाए तो एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, स्किन का ग्लो बढ़ जाता है। दूब और हल्दी को मिला करके अगर इसका लेपन किया जाए, शरीर में लगाया जाए, तो शरीर की त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूब की कोपल का प्रयोग करने से नशे की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी भगवान गणेश की पूजा के अलावा दूब का औषधीय प्रयोग भी है, मेडिसिनल प्रयोग भी है, जिसको करने से आपको लाभ हो सकता है। दूब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें, परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

तैयारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रीता जी ने हमें लिखा है और रीता जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 13 मई 1979 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है नांदेड़ गुजरात। मेल लिखती हैं मुंबई महाराष्ट्र से। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे करियर में दिक्कत चली आ रही है, तो क्या मेरी नौकरी छूटेगी? और अगर नौकरी छूट जाती है, चली जाती है, तो क्या मुझे व्यापार में जाना चाहिए? रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में बदलाव का समय जरूर चल रहा है और नौकरी आपकी बदलेगी। आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अभी व्यापार का उचित समय नहीं है। अभी आप नौकरी करिए और नौकरी में आने वाले समय में आप सफल होंगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि दूब के प्रयोग से जीवन की बाधाएं कैसे दूर होंगी। अगर आप रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करें और उनकी पूजा में भगवान गणेश को दूब अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके जीवन की बाधाओं का नाश होगा और साथ ही साथ आपको धन संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। भगवान गणेश को 3 गांठ या 5 गांठ वाली दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है, जीवन में बहुत बड़ी बाधा है और आप भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करें हर बुधवार को, तो कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, वो बाधा दूर होगी और बुध नामक ग्रह की समस्याएं शांत होंगी। अपने घर में, जमीन में या गमले में दूब लगानी चाहिए। अगर आप अपने घर में दूर्वा लगाएं, दूब लगाएं, तो इससे शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। भगवान गणेश को दूर्वा रोज सुबह अर्पित करिए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। जिस काम के लिए आप जाएंगे उस हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ये बड़ा चमत्कारी प्रयोग है और इस प्रयोग से हर काम में सफलता मिल जाती है। दूर्वा के कुछ और प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको

वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, अपयश से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि दूर्वा का यानी दूब का कैसे प्रयोग करें जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिले। हर बुधवार को भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएं और इसके बाद उनको 9 गांठ वाला दूब अर्पित करें।

बार जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम गणेश रिडम छिंदी वरेण्यम हूं नमः फट। ओम गणेश रिडम छिंदी वरेण्यम हूं नमः फट। ये प्रयोग किसी भी बुधवार से शुरू करके लगातार 3 महीने तक करिएगा। अगर आप निरंतर इस मंत्र का जप करें दूर्वा अर्पित करने के साथ, तो आपको कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि परिवार में किसी की बुरी आदत छूट जाए, तो क्या करेंगे? शनिवार को सवेरे 1 लोटा जल ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा दूब यानी दूब घास डालिएगा। इसके बाद इस जल को शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और बुरी आदत के छूट जाने की प्रार्थना करिएगा। अपनी बुरी आदत है तो अपने लिए, और परिवार में किसी की बुरी आदत या नशा छुड़ाना

आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है पूजा में, ऐसा क्यों? देखिए, एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान गणेश ने एक बार अनलासुर से युद्ध किया और युद्ध के दौरान अनलासुर को निगल लिया। अनलासुर को निगलने की वजह से उनके पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने इस जलन को शांत करने के लिए उनको दूर्वा दी। तब से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाई जाती है और दूर्वा चढ़ाने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी, ऐसा माना जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं।

देखें। नंबर दो, करियर में बदलाव होगा। नंबर तीन, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर चार, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर पांच, धन लाभ के योग हैं। नंबर छह, किसी अतिथि का आगमन होगा। नंबर सात, काम में सफलता मिलेगी। नंबर आठ, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर नौ, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संजय जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1973। जन्म का समय शाम के 6:45। जन्म स्थान है भोपाल। संजय जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके मेरा एक मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा कब तक हल होगा? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकूंगा? संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मुकदमे का निपटारा इसी साल के अंत में होगा। आपके पक्ष में मुकदमा डिसाइड होगा, इस बात की संभावना कुंडली में बन रही है। और आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी का लाभ अवश्य होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। इस साल के अंत तक या अगले साल के आरंभ तक प्रॉपर्टी का लाभ आपको हो जाएगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।

आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरा धनिया खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हरी इलायची खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, बुधवार की तृतीया विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज नए काम का आरंभ ना करें। तृतीया आरोग्य देने वाली मानी जाती है, इसलिए आज के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान मिले दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख। इस दौरान सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। फ्रांस के एवियन में जी समिट के दौरान भारत और यूएई में द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने जी समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक हुई। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच भी बैठक हुई। बैठक पर बोले कनाडा के प्रधानमंत्री की ऊर्जा, टैलेंट और एआई के क्षेत्र में नई साझेदारी के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात। ट्रेड डील समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। G7 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। फ्रांस में आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की करीब 16 महीने बाद मुलाकात भी हुई। G7 समिट में हैंडशेक के बाद दोनों साथ बैठे। समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराई डील की बात। कहा, ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख महमूद को ब्रिक्स समिट में आने का न्योता दिया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका ईरान के समझौते का स्वागत किया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज को खोला जाए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, जेलेंस्की के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पुतिन को G7 समिट में शामिल होने का कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। रूस के मॉस्को में स्थित ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षतिग्रस्त। एक निर्माणाधीन इमारत से ड्रोन टकराया। पोलैंड में पुतिन के आलोचक रूसी कलाकार रॉबर्ट कुस्कोव की गोली मारकर हत्या की गई। हमलावर ने 5 गोलियां मारी, 1 गोली सिर में लगी। हत्या मामले में 2 बेलरूसी नागरिक हिरासत में। चीन दौरे पर पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा, राम जन्मभूमि जैसे कार्य में समय लगा, लेकिन इस मामले में जल्दी FIR होगी और कार्यवाही तय होनी है। करण भूषण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का मुद्दा उठाना उनका काम है, लेकिन सत्ता उनसे बहुत दूर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने श्रीराम मंदिर दान विवाद में कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है, पापियों को सजा मिलेगी, विपक्ष चिंता ना करे। राम मंदिर की दान पेटी में मिले नोट गिनने गड्डी बनाने वाले 43 कर्मचारी SIT जांच के दायरे में। सभी से पूछताछ होगी, 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट आएगी। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक से बोले चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, मेरी संपत्ति की जांच करवा सकते हैं। डिंपल यादव का राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों के विस्तार कार्यों की निष्पक्ष जांच हो। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का बदला रुख। पहले चंपत राय पर आरोप लगाया और अब कहा कि मामले की सच्चाई SIT जांच के बाद ही सामने आएगी। विनय कटियार ने कहा कि जितने हैं ये सब चोर हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन। 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। पेपर लीक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि NTA के इस फैसले पर विपक्ष सवाल कर रहा है। नीट CBSE घोटाले पर युवा आक्रोश भड़का हुआ। ग्वालियर में मशाल के साथ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी। नागपुर में मीट पेपर लीक मामले के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके का विरोध प्रदर्शन। दीपके ने टेलीग्राम पर बैनर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। CJP प्रमुख अभिजीत ने वायुसेना से पेपर भेजने को स्टंटबाजी बताया। कहा, टेलीग्राम पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक तो सिस्टम से हो रहा है। देहरादून में नीट परीक्षा में सफलता न मिलने से निराश युवती ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट बरामद किया गया। रामपुर में TMC में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज। बोले, जब तक पावर तब तक प्रेम। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार। पूछताछ जारी है। यूपी का तीसरा पूर्वांचल के पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर लगभग तैयार। शिव, काशी और गंगा की थीम बनी आकर्षण का केंद्र। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पटना जंक्शन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। पंजाब में टावर बने प्रदर्शन का नया अड्डा। बेरोजगार युवा जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आंदोलन। 45 डिग्री की गर्मी में 8 दिन से टावर पर डटे शिक्षक। स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में FIR दर्ज। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार। नगर निगम ने मामले की जांच शुरू। अकोला में पशुपालक का टूटा संकट। विषैले पानी से 15 बकरियां मारी गई। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्यवाही। भारी पुलिस PSC बल की मौजूदगी में निर्माण को ढहाया गया। 20 जून के बाद वाराणसी में एक और मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। रेलवे ने बताया अवैध और मल्टी मॉडल टर्मिनल के आड़े वाला निर्माण, जिस पर बुलडोजर की कार्यवाही हो सकती है। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CM सैनी ने लोगों के साथ योग किया। गोरखपुर में भी योग दिवस से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टरों और छात्रों के साथ योग किया। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। प्रहलाद जोशी ने पौधारोपण किया।
गुजरात के जामनगर में एसटी कंडक्टर भर्ती के लिए फर्स्ट सर्टिफिकेट की उमड़ी भारी भीड़, रेड क्रॉस सोसाइटी में अव्यवस्था देखने को मिली। लद्दाख के जांस्कर घाटी के सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों में स्पेशलिटी हेल्थ कैंप 2026 का आयोजन किया गया। दहन फाउंडेशन के हेल्थ कैंप में हजारों लोगों को मुफ्त सेवाएं दी। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बादल फटा, गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, कई घरों को अपनी चपेट में लिए, इलाके में अफरा तफरी मची। उत्तर कश्मीर में भारी बारिश से हालात भी बिगड़े, कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से उपनते नदी नालों का पानी गांव में घुसा। प्री मॉनसून बारिश ने खोली विभाग और नगर निगम की तैयारियों की पोल, मंडी में सड़कें बनी तालाब, दुकानों के भीतर पानी घुसा। जैसलमेर में भी तूफानी बारिश देखने को मिली, तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अलनीनो के प्रभाव से भारत में कमजोर पड़ सकता है मॉनसून, यूएन मौसम एजेंसी ने सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, ओलावृष्टि, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बदला है मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। राजौरी के मंजाकोट में भूधसाव से घर और छत सड़ के क्षतिग्रस्त, घर ढहने के डर से लोगों ने मकानों को खाली कर दिया, हाईवे निर्माण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं स्थानीय लोग। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान का लिंटर अचानक गिर गया, हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, घायलों का इलाज जारी है। बिहार के मधुबनी में जमीन विवाद में आत्मदाह की कोशिश की गई, गुस्साए ग्रामीणों ने कोर्ट कमिश्नर को जमकर पीटा। जबलपुर में कलेक्ट्रेट से बेटी की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाई मां, बेटी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देते हैं बदमाश। भोजपुर में युवक ने थानेदार और पुलिस बल के सामने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई शुरू। अलवर में 15 मिनट में 4 चोरों ने घर से उड़ाए लाखों रुपए, खिड़की काटकर चोर अंदर घुसे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में 20 सड़क पर युवती ने बाइक पर बरसाए पत्थर, मोबाइल छीना, वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद में प्रेमिका, पिता और बेटी की तिकड़ी ने रची 4 करोड़ चोरी की साजिश, तनिष्क के शोरूम में खुलासा हुआ। गाजियाबाद में 2 बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, आरोपी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में शादी टूटने से नाराज था आरोपी। कर्नाटक के 4 मंदिरों में चोरी करने वाली दाहोद की गैंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 2 शातिर अपराधियों को दबोचा गया, 9 लाख की चोरी का माल जब्त किया गया। जूनागढ़ में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला, बेकाबू सांड के हमले में एक महिला जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर जान दी, मंदिर के पेड़ पर फांसी लगा ली। मेरठ में जेवर चोरी करने वाले दिल्ली के दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया, सराफा बाजार में एक महिला के लाखों जेवर पर हाथ साफ किया था। सरायकेला में गैलेक्सी सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट हुआ, फर्नेस फटने से जोरदार धमाका हुआ, 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। सूरत में 6ठी कक्षा के छात्र पर स्कूल पर छात्र ने हमला किया, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में वन विभाग की एक पहल से कई जिंदगियां बचाई गई, जंगली हाथी के आतंक से परेशान था इलाका, विभाग ने नया तरीका अपनाया। दिल्ली के दयालपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, स्कूटी पर 3 बदमाश हुए फरार। बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, लॉरी ट्रैक्टर और बोलेरो की जमकर टक्कर हुई। संभल में सरेआम बाइक सवार युवक की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या की गई। कोटा में रैंड पर नहीं मिली कार तो शख्स ने पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए, सीसीटीवी वायरल। ग्रेटर नोएडा में अंधेरे गड्ढे में गिरी बाइक, समय पर मदद न मिलने से बाइक सवार की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में रोडवेज से बस टकराई कार, मजदूरी पर जा रहे 4 सगे भाइयों की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, गली से गुजर रहे मासूम पर अचानक जोड़ ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान पर हंगामा, जिला पंचायत सदस्य के पति पर मुफ्त शराब न मिलने पर मारपीट और गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप। पंजाब के मोगा में गुरुद्वारा साहिब में चोरी की कोशिश, लोगों ने सेवादार आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गुजरात के जूनागढ़ में मछली गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।

0: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: Lion O's family, super action family.
5: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
7: In association with
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
9: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Hint, बड़े आराम से। Vimal, बोलो जुबां केसरी।
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
14: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, कुत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, ISO ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां TMC के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़े, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
1: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
2: जी, आपको भी लग रहा है कहने के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई, वैसी शिवसेना के साथ यूपीटी के साथ
3: हम पहले जा चुके हैं, वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे MP मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ED CBI की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ED CBI होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, NCP के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग BJP में गए हैं, भगोड़े।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आस्था के राम, श्रद्धा के राम, पौरुष के राम, मर्यादा के राम, 500 बरस की प्रतीक्षा, हजारों लाखों का बलिदान, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों के दान के बाद बना अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर। किसी ने सोचा ना था भगवान राम के अवधपुरी में चोर के नाम का शोर होगा। चोर चोर का शोर ऐसा मचा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। जिन छोटे कर्मचारियों पर आरोप है उनमें से चंपत राय के ड्राइवर रहे मंदिर के सेवादार चिन्नू यादव जरूर इनकार करने लगे। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे। जांच टीम की मदद के लिए जिले की पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर की ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला कि जांच में एसआईटी की जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 से अधिक लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेनदेन और प्रॉपर्टी निवेश की वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल दो हफ्ते पहले राम मंदिर के दान पात्र में से चढ़ावे की चोरी का सियासी आरोप शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, फिर विनय कटियार ने सवाल उठाए। तब तक ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया जाता रहा, लेकिन खबर है कि फिर बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी और तब सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू कराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी आरोपों से अलग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे संतोष दुबे नाम के पुराने कार सेवक, जिन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर देकर ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट में एक पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की चिट्ठी जरूर लिखी गई है, क्योंकि नेताओं ही नहीं संतों को भी लग रहा है कि मंदिर के दान खाते की रकम में कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभु राम में असंख्य सनातनियों की आस्था और योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास का सम्मान रखते हुए एसआईटी 7 दिन में अंतरिम और 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: कहां तो प्रभु राम के नाम में असंख्य श्रद्धालुओं की अनंत आस्था और कहां राम के धाम में चोरी का महापाप। किसी ने सोचा ना था कि राम की अवधपुरी के वैभव में चोर के नाम का शोर मचेगा।
1: गोपाल जी कुछ बताएंगे, ये कैसे ये चोरी का ये आरोप लग रहा है?
2: गोपाल जी आप पर
1: ये ट्रस्ट के ऊपर आरोप है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की दान में पैसा आया था,
2: पूछताछ हुई है,
1: आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
0: चोर चोर का शोर ऐसा मचा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची, तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे थे। जांच टीम की मदद के लिए जिले के पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जाँच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। इन्हीं गोपाल राव को जब मीडिया ने दो बार मंदिर में आते जाते देखा तो सवाल पूछे और गोपाल राव चुप रहे। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन की जांच में एसआईटी के लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज में महाकुंभ कराने के अनुभवी रहे, श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को परख रहे थे। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सीबीआई का तजुर्बा है, जो चोरी की संभावना और तरीके की जांच कर रहे हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन अकाउंट बुक देख रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई जांच लगातार 8 घंटे चली और इस दौरान जांच टीम ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दिन जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 लोगों से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की भी वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश, ट्रंप को दिखाया आईना, कहा संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया, हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का भी उठाया मुद्दा।

पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार, रूसी तेल और H-1B वीजा भी एजेंडे में। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से मची सियासी खलबली, टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद। दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मुलाकात संभव, राउत का आरोप, एडवांस में दिए गए 15-15 करोड़ रुपए। हजार चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक तेज, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपीएमएलए समेत कई नेता होंगे शामिल। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के मुद्दे पर राहुल गांधी का मेगा प्लान, आज कोटा में छात्रों के साथ करेंगे संवाद, परीक्षा प्रणाली में हो रही समस्याओं पर करेंगे चर्चा।

0: देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे है, वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। बुलेटिन में बात करेंगे उन सभी खबरों की जिस पर पूरे दिन आपकी नजर रहेगी। बात करेंगे मोदी और ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ ही आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप की धमकी के बावजूद लिबनान पर इजरायली हमले अभी भी जारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावे की भी जांच की बात आगे करेंगे। वहीं साथ ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी आपको दिखाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सम्राट सरकार ने शिकंजा कसा है। इसके साथ ही बताएंगे रीनीट को लेकर कितनी और कैसे सख्ती बरती जा रही है। साथ ही आपको एक खबर भी दिखाएंगे कि बांदीपुरा में कैसे तबाही मची है। और खबर खेल जगत की भी दिखाएंगे, सेनेगल पर फ्रांस की शानदार जीत की भी बात करेंगे। और इस बुलेटिन में सबसे पहली और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं फ्रांस के एविन से जो आ रही है, जहां पर G7 समिट शुरू हो चुका है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। और इसी समिट के बीच आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान कल भी आउटरीच सेशन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ बैठे हुए नजर आए। दोनों नेताओं की यह मुलाकात 16 महीने बाद हुई है, लेकिन पीएम मोदी ने इस मंच से ट्रंप को आईना भी दिखाया। आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। G7 समिट में साथ दिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप, ये तस्वीरें आप देखिए। और आज पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें हैं। ट्रेड डील सहित कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज उस बैठक में बात होगी। 3 नाविकों की मौत पर भी क्या जवाब ट्रंप देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 नाविकों की मौत को लेकर भी चर्चा की संभावना आज जताई जा रही है। तो G7 समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस समिट में पीएम मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में समिट के बीच आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश भी दिया और पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है। पीएम ने साफ किया है कि भविष्य की साझेदारियां इसी विश्वास की नींव पर खड़ी होंगी। तो पीएम की जो बड़ी बातें हैं वो आप समझिए, भविष्य की साझेदारियां विश्वास की नींव पर होंगी, ये पीएम ने कहा। साथ ही पश्चिम एशिया की बात भी हुई, जिसके संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों को भी इससे नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी सेना के हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठा, उस मामले में भी पीएम मोदी ने G7 समिट में ही उठाया। उन्होंने कहा कि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वही आपको ये भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से मिलने वाले हैं। इस दौरान दोनों में पश्चिमी वेस्ट एशिया के हालात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यूएस से एनर्जी इंपोर्ट पर बातचीत की पूरी संभावना है। भारत और यूएस लंबे समय से एनर्जी पार्टनरशिप करना चाहता है और ऐसे में ट्रेड डील आखिरी स्टेज में है और अगले कुछ हफ्तों में काम भी पूरा होने की संभावना है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आज शाम 5:20 पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी।
1: पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों का आगे का तानाबाना कैसा होगा, वो आज इस मुलाकात से तय होने वाला है। आज जब बातचीत की टेबल पर दोनों नेता आमने सामने होंगे, तो पश्चिम एशिया में वर्तमान हालात, भारत अमेरिका ट्रेड डील, ऊर्जा सुरक्षा, रूस से तेल खरीद जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही होर्मुज में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा भी उठेगा। वैसे तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें अक्सर चर्चा में रही हैं, लेकिन फरवरी 2025 के बाद से दोनों देशों के रिश्ते दिन ब दिन तल्ख होते चले गए। G7 समिट में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ते भरोसे की कमी पर एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं बल्कि देशों के बीच भरोसे की कमी है। हालांकि हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आए हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ डील को लेकर वो काफी उत्साहित हैं।
2: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
1: आज दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी कितनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो G7 में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप आमने सामने आए तो मोदी की जगह हैंडशेक के साथ उन्होंने अभिवादन किया हग करने की जगह। और आज ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। इस बैठक में ट्रेड डील से लेकर भारतीय नाविकों की मौत तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीदें हैं। ये मुद्दे वो हैं जिन पर आज बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेड डील का मुद्दा उठाया जा सकता है। 12,000 से ज्यादा टैरिफ लाइन पर व्यापार, ज्यादातर तकनीकी काम पूरा हो चुका है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात हो सकती है। एक साल में क्योंकि एनर्जी ट्रेड में 60% का इजाफा हुआ है। वहीं रूस से तेल के आयात पर भी बात होगी कि मौजूदा छूट अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में प्रतिबंध रूस पर नहीं बल्कि कुछ खास कंपनियां हैं उन पर होना चाहिए और भारत उन्हीं कंपनियों से तेल खरीद रहा है जिन पर प्रतिबंध नहीं है, तो यह मुद्दा भी उठाया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी बात हो सकती है। इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी अहम मुद्दा है। फ्रांस, यूके ने माइन स्वीमिंग और नेवल एक्सपर्ट को लेकर भी बात होगी और ऐसे में मिशन तभी संभव है जब स्थायी शांति समझौता हो। इसी के साथ H-1B वीजा का मुद्दा भी उठाया जा सकता है कि हालिया बदलावों में भारतीय प्रभावित हुए हैं। भारतीय ही इस प्रोग्राम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज इस मुलाकात में बात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं G7 समिट के दौरान जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले तो रिश्तों में पिछले 16 महीने के उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोनों की मुलाकात हुई थी और अब फ्रांस में यह मुलाकात हुई।
1: G7 समिट में सबकी नजरें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी थी, लेकिन जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसी उम्मीद लोगों ने की थी। इस मुलाकात से मोदी का सिग्नेचर हग गायब था। दोनों नेताओं के बीच साधारण औपचारिक हैंडशेक हुआ। दोस्ती का कोई दिखावा नहीं हुआ, पर्सनल केमिस्ट्री का प्रदर्शन भी नहीं हुआ। हर हरकत नपी तुली और हर बात सधी हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ G7 नेताओं की आधिकारिक तस्वीर के लिए पहली पंक्ति में खड़े हुए तो तस्वीर खुद सब कुछ बयां कर रही थी। दुनिया के लिए संदेश साफ था कि 7 महाशक्तियों के बीच भारत कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। समिट से पहले पीएम मोदी ने नेताओं का अभिवादन किया, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ बातचीत की, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। कूटनीति की यही सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी नेता जो नहीं करते वो भी उतना ही अहम होता है जो वो सामने करते हैं। इस G7 समिट में गले न मिलने की घटना ने शायद हैंडशेक से कहीं बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: तो अमेरिका और ईरान के बीच डील पर फाइनल हस्ताक्षर की तैयारी है। स्विट्जरलैंड में ये हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के प्रतिनिधि 19 जून को समझौते पर दस्तखत करेंगे और उसके साथ ही डील का पहला चरण पूरा हो जाएगा। समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में पूरी तैयारी है। इसके तहत 14 अहम मुद्दों पर समझौता हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर डील के बाद युद्ध खत्म होगा। दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 दिनों में अंतिम समझौते की कोशिश होगी। अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी भी खत्म हो जाएगी।

0: वर्ल्ड कप की तैयारी स्विट्जरलैंड में हो चुकी है और जल्द ही दोनों देशों के बीच पूरी डील हो जाएगी और हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब कुछ बड़ी बातें आपको हम बता देते हैं कि वो कौन से अहम समझौते हैं जिनको लेकर हस्ताक्षर हो रहे हैं। लेबनान समेत तमाम मुद्दे, देखिए दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात कही गई है। तो दोनों देशों में 60 दिनों में अंतिम समझौते की कोशिश की जा रही है और साथ ही आपको ये बता दें कि एमओयू पर साइन के बाद यूएस नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। 14 अहम समझौते हैं अमेरिका ईरान में जो डील हुई है। ईरान 30 दिनों के भीतर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ ईरान के आर्थिक विकास को लेकर भी बात हुई है, जिसमें 300 अरब डॉलर की फंडिंग की गई है। वहीं ईरान से सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे, ये भी कहा गया है। ये 14 अहम समझौते हैं जिसको लेकर अमेरिका ईरान के बीच डील हुई है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इस पर अंतिम समझौता होगा। वहीं अमेरिका ईरान अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। इसी के साथ ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात की भी छूट दी जाएगी, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो ये 14 बातें आप समझ रहे हैं, ईरान के प्रतिबंधित या फ्रीज फंड को जारी किया जाएगा। साथ ही अंतिम समझौते के लिए दोनों देश एक मैकेनिज्म बनाएंगे अंतिम समझौते के लिए। भाई अमेरिका ईरान अंतिम डील के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। तो देखिए अब स्विट्जरलैंड में इसको लेकर हस्ताक्षर होने हैं। ये 14 बिंदुएं आपने समझी और डील पर खुशी जताने वाले ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं रख सकेगा।
1: I'd like to get a formal setting first before we do that, but I have no problem with that. It's grid document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: तो G7 समिट में पहुंचे ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार को डील हो जाएगी और इसके साथ ही होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब ट्रंप वहां पहुंचे ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार को डील हो जाएगी और इसके साथ ही होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। स्विट्जरलैंड में ये डील होने वाली है, इसको लेकर हस्ताक्षर दोनों देश करने वाले हैं और ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि होर्मुज अब जल्द ही पूरी तरह से खोल दिया जाएगा शुक्रवार को डील के बाद।
1: It's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
0: तो देखिए ईरान और अमेरिका के बीच डील से बंधी उम्मीदों के बीच कच्चे तेल के दाम 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गए हैं। मार्च की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है कि जब तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल पर कम हुई हैं और ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। कच्चे तेल के दाम डॉलर 80 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गए हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 5.4% की कमी आई है। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान शांति समझौते के साथ आगे बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लेबनान पर इजराइल ने ड्रोन से हमले किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमलों में 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अभी घायल बताए जा रहे हैं। सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते की घोषणा के बाद लेबनान में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच लड़ाई कम तो हुई है लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं है। तो लेबनान पर इसराइल के हमले को लेकर ईरान ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अगर इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं रोके तो उसे ईरानी सशस्त्र बलों की ओर से कड़े जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। इसराइल के हमले को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है, इसराइल को कड़े जवाब की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि ईरान इसको लेकर रिटेलिएट करेगा, ऐसा ईरान ने कहा है। इसराइल के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी ईरान। बात कर लेते कुछ सियासी खबरों की। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी टूट की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में यूबीटी के सांसद शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं। उद्धव के 9 में से 6 सांसद बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बगावत के लिए उनके सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब उद्धव कैंप आज सुबह 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत के आवास पर होगी, जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय राउत मौजूद रहेंगे।

0: तो यूबीटी में बगावत को लेकर ऐसे में उद्धव की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। 9 में से 6 सांसद बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से टूट की खबर सामने आ रही है और ऐसे में उद्धव की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सियासी रंग ले चुका है। दरअसल सवालों के बीच जांच के लिए गठित एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन मंदिर परिसर पहुंचकर जांच की। जांच टीम चढ़ावे की चोरी का सच जानने में जुटी हुई है। उधर आरोप लगने के बाद चंपत राय के ड्राइवर ने पहली बार सफाई दी है। चढ़ावा चोरी के मामले में तीसरे दिन भी जांच की संभावना है। 11 घंटे तक एसआईटी ने अभी फिलहाल जांच की है। आरोपी टिनू यादव ने बोला है कि तमाम आरोप उस पर लगे हुए निराधार है।
1: सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
2: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया। कहाँ हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले।
3: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
1: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं, जानकारियां जुटाई है, जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है। जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
4: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
1: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।
0: बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब राज्य में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। उन्होंने ये साफ कहा कि अब अपराधियों के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा या फिर शमशान जाना पड़ेगा।
5: बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों।
0: खबर खेल जगत से जुड़ी। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। इस जीत के हीरो रहे एम्बापे। उन्होंने सेनेगल के खिलाफ 2 गोल मारे और इन 2 गोल के साथ एम्बापे के वर्ल्ड कप में कुल 14 गोल हो चुके हैं और वो फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सेनेगल के खिलाफ जीत के बाद फ्रांस के फैंस झूमते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, फ्रांस के प्रशंसक खुशी से झूमते दिखे, स्टेडियम के बाहर नारे लगाते दिखे। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान का लेंटर अचानक गिरा, हादसे में 3 लोग घायल हो गए। उत्तर कश्मीर में भारी बारिश से हालात बिगड़े। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक से आए बाढ़ उफनते नालों का पानी गांव में घुसा। प्री मानसून की बारिश ने खोली विभाग और निगम की तैयारियों के पोल। मंडी की सड़कें बनी तालाब, दुकानों में घुसा पानी। मधुबनी में जमीन विवाद में बुजुर्ग ने की दिया आत्मदाह की कोशिश। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कोर्ट कमिश्नर को जमकर पीटा। अलवर में 15 मिनट में चार चोरों ने घर से उड़ाए लाखों, खिड़की काटकर घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, गली से गुजर रहे मासूम पर अचानक से झुंड ने किया हमला, इलाके में दहशत। बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, लोरी ट्रैक्टर और बोलेरो की भयंकर टक्कर हुई। कोटा में रेंट पर नहीं मिली थी थार, तो शख्स ने पत्थर मारकर तोड़े शीशे, सीसीटीवी में आया सामने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
12: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
13: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
14: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
13: जी,
14: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है।
1: और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी।
2: माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। माफियाओं की, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी जिन पर बुलडोजर चल रहा है।
3: यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनावी पंडितों के लिए ये अनुमान और आकलन का विषय हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पहेली

को उन्होंने सुलझा लिया है, इस गुत्थी की गांठ उन्होंने खोल दी है। आप जानना चाहेंगे तो ये आप खुद योगी आदित्यनाथ से सुन लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर बता दिया है कि उन्हें माफियाओं का हिसाब किताब करना कितना पसंद है, और अगर ये विषय उन्हें इतना ही प्रिय है तो चुनावी मंचों से ऐसे बयानों की झड़ी लगना भी लाजमी है। लेकिन सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं, उस माफिया गिरी की पूरी कहानी बताते हैं जिसका जिक्र अभी अभी आपने सीएम योगी से सुना। राजधानी लखनऊ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया था। सरोजनी नगर क्षेत्र में स्थित करीब 57 एकड़ जमीन जो पहले ग्राम समाज के नाम से दर्ज थी, उसे कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाकर बेच दिया गया। जांच में सामने आया कि जमीन पहले आधुनिक सहकारी गृह समिति और फिर एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर पहुंच गई। आरोप है कि इस पूरे खेल में भू माफिया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच कराई जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद 2 FIR दर्ज हुई और 17 दिसंबर 2015 को प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। बाद में पुलिस विभाग के प्रस्ताव पर ये जमीन पुलिस अकादमी को हस्तांतरित कर दी गई। अब इसी भूमि पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित किया जा रहा है। तो अब योगी ये बताने में कतई नहीं हिचकते कि 2027 के प्रचार युद्ध में कानून व्यवस्था और माफिया राज से मुक्ति उनका ब्रह्मास्त्र होने जा रहा है। योगी का एक और बयान सुनिए। शायद योगी यही कहना चाह रहे हैं कि जिसकी गोद में आकर बच्चे खुश हो जाते हैं उनके हाथों में यूपी भी महफूज है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: शहर में G7 समिट के दौरान मिले दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख, इस दौरान सभी नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान भारत और UAE में हुई द्विपक्षीय बैठक, पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच भी हुई बैठक, बैठक पर बोले कनाडा के पीएम, ऊर्जा, टैलेंट और AI के क्षेत्र में नई साझेदारी के लिए कर रहे हैं काम। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात, ट्रेड डील समेत कई वैश्विक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। G7 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज द्विपक्षीय मुलाकात। फ्रांस में आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की करीब 16 महीने बाद हुई मुलाकात। G7 समिट में हैंडशेक के बाद दोनों साथ बैठे। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दोहराई डील की बात, कहा ईरान को परमाणु हथियार रखने की नहीं होगी अनुमति। पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को ब्रिक्स समिट में आने का दिया न्योता। यूरोपीय संघ ने अमेरिका ईरान के समझौते का किया स्वागत, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत खुले हुर्मुज स्ट्रेट। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, जेलेंस्की के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पुतिन को G7 समिट में शामिल होने का कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला। रूस के मॉस्को में स्थित ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, सबसे बड़ी रिफाइनरी हुई क्षतिग्रस्त, एक निर्माणाधीन इमारत से टकराया ड्रोन। पोलैंड में पुतिन के आलोचक रूसी कलाकार रॉबर्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हमलावर ने 5 गोलियां मारी, एक गोली सिर में लगी। हत्या मामले में 2 बेलारूसी नागरिक हिरासत में लिए गए। चीन दौरे पर पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से की मुलाकात, राजधानी बीजिंग में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग पर बढ़ाने की चर्चा की। बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा राम जन्मभूमि जैसे बड़े कार्य में समय लगा, लेकिन इस मामले में जल्द ही FIR होगी और कार्रवाई तय है। करण भूषण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का मुद्दा उठाना उनका काम है, लेकिन सत्ता उनसे दूर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने श्री राम मंदिर दान विवाद पर कहा कि इस मुद्दे पर बेवजह तूल दिया जा रहा है, पापियों को सजा मिलेगी, विपक्ष चिंता ना करे। राम मंदिर की दान पेटी में मिले नोट गिनने और गड्डी बनाने वाले 43 कर्मचारी, SIT जांच के दायरे में, सभी से होगी पूछताछ, 15 दिनों में आएगी पूरी रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक से बोले जनपत राय के करीबी टिनू यादव, मेरी संपत्ति की करवा सकते हैं जांच। डिंपल यादव का राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला, राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों के विस्तार के कार्यों की निष्पक्ष जांच हो। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का बदला रुख, पहले चंपत राय पर लगाए आरोप और अब कहा कि मामले की सच्चाई SIT जांच के बाद ही सामने आएगी। बीजेपी नेता विनय कटियार बोले ये जितने हैं सब चोर हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन, 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थाई रोक, पेपर लीक में हो रहा था इस्तेमाल। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया, हालांकि NTA के इस फैसले पर भी विपक्ष कर रहा है सवाल। नीट CBSE घोटाले पर भड़का युवा आक्रोश, ग्वालियर में मशाल के साथ हजारों युवा सड़क पर उतरे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नागपुर में नीट पेपर लीक मामले में खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके का विरोध प्रदर्शन, दीपके ने टेलीग्राम बैन और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। CGP प्रमुख अभिजीत दीपके ने वायुसेना से पेपर भेजने को स्टंटबाजी बताया, कहा टेलीग्राम पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक तो सिस्टम से ही हो रहा है। देहरादून में नीट परीक्षा में सफलता न मिलने से निराश युवती ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद। रामपुर में TMC में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज, बोले जब तक पावर तब तक प्रेम। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर लगभग तैयार, शिव, काशी और गंगा की थीम बनी आकर्षण का केंद्र। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पटना जंक्शन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त। पंजाब में टावर बने प्रदर्शन का नया अड्डा, बेरोजगार युवा जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आंदोलन, 45 डिग्री की गर्मी में 8 दिन से टावर पर डटा शिक्षक। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में FIR दर्ज हुई। इंदौर में दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए, नगर निगम ने मामले की जांच शुरू की। अकोला में पशुपालक पर टूटा संकट, विषैले पानी से 32 बकरियों की मौत हुई। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई, भारी पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी में ढहाया गया निर्माण। 20 जून के बाद वाराणसी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने बताया अवैध और मल्टी मॉडल टर्मिनल के आड़े आने वाला निर्माण। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने लोगों के साथ किया योग। गोरखपुर में भी योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टर्स और छात्रों के साथ किया योग। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, प्रहलाद जोशी ने किया पौधारोपण। गुजरात के जामनगर में एसटी कंडक्टर भर्ती के फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट के लिए उमड़ी भारी भीड़, रेडक्रॉस सोसाइटी में दिखी अव्यवस्था। लद्दाख के जांस्कर घाटी में सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों में स्पेशलिटी हेल्थ कैंप 2026 का आयोजन हुआ। द हंस फाउंडेशन के हेल्थ कैंप में हजारों लोगों को दी गई है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बदला मौसम, गांव में बादल फटने के कारण अचानक से आई बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, इलाके मची अफरा तफरी। उत्तर कश्मीर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक से आई बाढ़, उफनते नालों का पानी गांव में घुसा। प्री मानसून की बारिश ने खोली विभाग और निगम की तैयारियों की पोल, मंडी की सड़कें बनी तालाब, दुकानों में घुसा पानी। जैसलमेर में तूफानी बारिश, तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अलनीनो के प्रभाव से भारत में कमजोर पड़ सकता है मॉनसून, यूएन मौसम एजेंसी ने सामान्य से कम बारिश का जताया अनुमान। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और तूफान का अलर्ट, ओलावृष्टि, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। राजौरी के मंजाकोट में भू धसाव से घर और सड़कें क्षतिग्रस्त, घर ढहने के कारण डर से लोगों में मकानों को किया खाली, हाईवे निर्माण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं स्थानीय लोग। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान का लेंटर अचानक से गिरा, हादसे में 3 लोग घायल हो गए, घायलों का इलाज जारी। मधुबनी में जमीन विवाद में आत्मदाह की कोशिश, गुस्साए ग्रामीणों ने कोर्ट कमिश्नर को जमकर पीटा। जबलपुर में कलेक्ट्रेट से बेटी की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाई मां, बेटी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देते हैं बदमाश। भोजपुर में युवक ने थानेदार और पुलिस बल के सामने लहराई पिस्टल, वीडियो तेजी से वायरल। अलवर में 15 मिनट में 4 चोरों ने घर से उड़ाए लाखों, खिड़की काटकर घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में बीच सड़क पर युवती ने बाइक पर बरसाए पत्थर, मोबाइल छीना, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में प्रेमिका, पिता और बेटे की तिकड़ी ने रची 4 करोड़ की चोरी की साजिश, तनिष्क शोरूम में खुलासा। गाजियाबाद में 2 बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में शादी टूटने की नाराज थे आरोपी। कर्नाटक के 4 मंदिरों में चोरी करने वाले दाहोद की गैंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 शातिर अपराधियों को दबोचा, करीब 9 लाख की चोरी का माल जब्त। जूनागढ़ में आवारा सांड का आतंक, बेकाबू सांड के हमले में एक महिला जबकि 2 अन्य लोग घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर दी जान, मंदिर के पेड़ पर लगाई फांसी। मेरठ में जेवर चोरी करने वाले दिल्ली के दंपति को गिरफ्तार किया गया, सरफा बाजार में एक महिला के लाखों के जेवर कर किया था हादसा। सरायकेला में गैलेक्सी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट हुआ, फर्नेंस फटने की वजह से जोरदार धमाका, हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। सूरत में 6 कक्षा के छात्र पर स्कूल पर सहपाठी छात्र ने चाकू से हमला किया, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में वन विभाग की एक पहल से कई जिंदगियां बच गई हैं, दरअसल जंगली हाथी के आतंक से लोग परेशान थे, विभाग ने अपनाया नया तरीका। दिल्ली के दयालपुर इलाके के बेखौफ बदमाशों ने शख्स पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, स्कूटी पर 3 बदमाश फरार हुए। बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, लोरी ट्रैक्टर और बुलेरो की हुई भयंकर टक्कर। संभल में सरेआम बाइक सवार युवक की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या, साक्ष्य जुटाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। कोटा में रेंट पर नहीं मिली थी थार, तो शख्स ने पत्थर मारकर तोड़े शीशे, सीसीटीवी आया सामने। ग्रेटर नोएडा में रात के अंधेरे में गड्ढे में गिरी बाइक, समय पर मदद न मिलने से बाइक सवार की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में रोडवेज बस से टकराई कार, मजदूरी पर जा रहे 4 सगे भाइयों की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, गली से गुजर रहे मासूम पर अचानक से झुंड ने किया हमला, इलाके में दहशत। एमपी के सतना में शराब दुकान पर हंगामा, जिला पंचायत सदस्य के पति पर मुफ्त शराब न मिलने पर मारपीट और गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप। पंजाब के मोगा में गुरुद्वारा साहिब में चोरी की कोशिश, लोगों और सेवादारों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गुजरात के जूनागढ़ में मछली गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग। मान्यता है कि इस दिन में कई बार रंग बदलता है ये शिवलिंग, बेहद ही दुर्गम होती है किन्नौर कैलाश की यात्रा। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 345 यात्रियों के ही जाने की अनुमति दी। इसी के साथ तंगलिंग गांव से शुरू होती है ये यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना काफी जरूरी। गंगटोली और गणेश पार्क होता है यात्रा का पहला पड़ाव।

चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 1:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

गलती हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

भ्रांति से बचिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

राशि, धन हानि से बचाव करें, परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, अपयश से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

कम होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

दीजिएगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट पर जोरों की चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव के सांसदों में सेंध लगने का दावा है। खुद उद्धव ठाकरे पार्टी की बैठक में ये कहते सुने गए हैं कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा, तब तक धीरज रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब की शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का ये बयान रविवार को मुंबई में मातोश्री की बैठक में उनके सांसदों के रवैये के बीच आया। 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाव वाजे और संजय दीना पाटिल मातोश्री पहुंचे थे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं आए, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक में जुड़े थे। नागेश पाटिल का उद्धव से फोन पर बात करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सांसदों की गैर मौजूदगी से उद्धव की चिंता उजागर हो रही है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि ऑपरेशन टाइगर का जवाब ऑपरेशन वुल्फ है, और आज कह रहे हैं कि सांसदों ने कहीं नहीं जाने की कसमें खाई है। मातोश्री पर रविवार की बैठक में जो 5 सांसद खुद मौजूद नहीं थे, वही 5 सांसद शनिवार यानी 13 जून को आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में भी मौजूद नहीं थे। इन्हीं सांसदों में से एक संजय देशमुख ने शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। वैसे तो संजय देशमुख की सफाई आई है, लेकिन प्रताप राव जाधव अब उद्धव के सांसदों की तुलना टीएमसी के बागियों से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे इस मसले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
1: टाइगर चल रहा है, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर न सिर्फ महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिराई थी, बल्कि शिवसेना की वो टूट आज महाराष्ट्र की राजनीति को बदल चुकी है। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों पर शुरू हुई चर्चा राजनीति का नया चैप्टर है। आज तक ब्यूरो।
2: अभी 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो संजय राउत दावा ऑपरेशन टाइगर की काउंटर स्ट्रेटेजी का कर रहे थे,
3: और अच्छी बातचीत हो गई, आगे की रणनीति तय हो गई।
2: लेकिन 2 दिन के सियासी घटनाक्रम में ही अब संजय राउत के सुर बदल गए।
3: कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए।
2: यूं तो संजय राउत ने हवाला टीएमसी में हुई बगावत का दिया, लेकिन ये बयान उद्धव की पार्टी को लेकर भी बड़ा संकेत दे रहा है। इससे भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे की वो अपील है जो उन्होंने पार्टी में टूट की अटकलों के बीच की। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहे उन्हें खुशी खुशी जाने दें। उद्धव ने कहा कि आज मेरा समय नहीं है, लेकिन कल जरूर आएगा। साथ ही पार्टी नेताओं से अपील करते हुए उद्धव ने ये भी कहा कि हमें धैर्य रखना होगा और इस दौर को सहना होगा। दरअसल टीएमसी में हुई बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की जोरों पर चर्चा है। इसी बीच रविवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। शिवसेना के कुल 9 सांसदों में 3 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और धारशिव सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक से दूर रहे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाउ वाजे और संजय दीना पाटिल पहुंचे, जबकि संजय देशमुख, नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक से जुड़े। जिसके बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया कि उद्धव की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच बीती शाम उद्धव ने बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों से स्थिति साफ करने की अपील की, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला कि शिवसेना यूबीटी में सब ठीक नहीं चल रहा। उधर इस हलचल के बीच शिवसेना नेताओं का हमला भी शुरू हो गया। दावा है कि उद्धव से सभी सांसद विधायक संतुष्ट नहीं हैं और उनमें से कुछ एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। पूरा घटनाक्रम उद्धव की चिंता बढ़ाने वाला है। पहले भी पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और अब एक बार फिर उद्धव के सामने संकट की घड़ी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच संजय राउत ऑपरेशन वुल्फ का दावा कर रहे थे, लेकिन हर दिन बीतने के साथ बात बिगड़ती जा रही है। उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। मुंबई से विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर आज तक।

0: क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूपी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अष्टीकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूपीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनंद फानंद में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहें तो कैसे करें।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। ट्रंप को दिखाया आईना का, संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। होमोज में भारतीयों की मौत का भी उठाया मुद्दा।

रूसी तेल और H-1B वीजा भी एजेंडे में। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से मचा सियासी खलबली, टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद। दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मुलाकात संभव, राउत का आरोप, एडवांस में दिए गए 15-15 करोड़। दो चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक तेज, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता होंगे शामिल। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के मुद्दे पर राहुल गांधी का मेगा प्लान, आज कोटा में छात्रों के साथ करेंगे संवाद, परीक्षा प्रणाली में हो रही समस्याओं पर करेंगे चर्चा।

घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। 16 महीने बाद होने जा रही है मोदी और ट्रंप की मुलाकात। आज जानेंगे कैसी रही दोनों की केमिस्ट्री, बताएंगे आज की मुलाकात में क्या हो सकती है बात। साथ ही आपको दिखाएंगे शुक्रवार को होने वाली ईरान अमेरिका डील के क्या क्या है 14 पॉइंट्स, होमस में क्या होगा, ईरान को कितना पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही बात होगी उद्धव की पार्टी में विद्रोह पार्ट टू की, बताएंगे कौन कौन से यूबीटी सांसद दिल्ली का रुख कर रहे हैं और उद्धव गुट की क्या तैयारी है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में मची हलचल के साथ।

0: जो होने वाला रहेगा हो जाएगा।
1: हमारे नेता से उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, मैं कितना भी प्यार लुटाऊं।
2: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे पर जून का महीना फिर से भारी पड़ चुका है। उनकी पार्टी पर विद्रोह पार्ट टू का खतरा मंडरा रहा है। 9 में से 6 सांसद के जाने की अटकलें तेज हैं। और आज दिल्ली में उद्धव गुट के बागी सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये मुलाकात उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के घर में हो सकती है। उद्धव गुट ने भी मान लिया है कि ऑपरेशन टाइगर चल गया है। यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागियों का सपना मनी मनी है। उन्हें 15-15 करोड़ एडवांस मिले हैं। 1 घंटे बाद यूबीटी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के साथ साथ उद्धव के करीबी सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत मौजूद रहेंगे। साल 2022 जून का ही महीना जब बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत का झंडा बुलंद किया था और देखते ही देखते बड़ी संख्या में विधायक और सांसद शिंदे गुट में चले गए। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बना ली। 4 साल बाद फिर जून का वही महीना और एक बार फिर शिवसेना में टूट की चर्चा तेज है।

0: जो ममता की पार्टी के साथ हुआ वो उद्धव की पार्टी के साथ दूसरी बार होने जा रहा। एक बार फिर एक्शन का केंद्र राजधानी दिल्ली है। माना जा रहा है कि उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद आज दिल्ली में मिलकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद शिंदे खेमे के संपर्क में हैं। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और यवतमाल के सांसद संजय देशमुख के दिल्ली पहुंचने की खबर आई। इसके अलावा उद्धव गुट के कई और सांसदों के भी संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन टाइगर के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने चुप्पी साधे रखी।
1: ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
0: उद्धव गुट में दोबारा टूट की अटकलों ने तभी जोर पकड़ लिया जो 14 जून को उद्धव की बुलाई बैठक में 4 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल ही पहुंचे। दावा किया गया कि बाकी ऑनलाइन से जुड़े, लेकिन संदेश साफ था। उद्धव ठाकरे को भी कोई शक सुबार नहीं रही। यही वजह है कि उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा। जो बाला साहब की शिवसेना छोड़ कर गए वो पछताएंगे।
2: सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
0: शिंदे गुट का कहना है कि सांसद और विधायक खुद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से परेशान हैं, इसलिए पार्टी छोड़ना चाहते हैं। संजय देशमुख की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात ने भी चर्चाओं को और हवा दे दी। शिंदे खेमा साफ कह रहा है ऑपरेशन टाइगर 24 घंटे 365 दिन चलता है।
3: उबाठा के नेतृत्व पर, उबाठा के जो MLAs हैं, जो MPs हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा, तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं।
0: अब सवाल है क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी में भी वही कहानी दोहराने वाली है जो 4 साल पहले शिंदे ने उद्धव के साथ की थी, या फिर उद्धव इस बार अपनी पार्टी को टूट से बचा पाएंगे?
4: जैसे जैसे ऑपरेशन टाइगर अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ऑपरेशन सत्ता का पासा पलटने में कामयाब होता है या फिर सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाता है। अब आखिरकार एक बात तो साफ हो रही है, ये दल बदल और वफादारी का राजनीतिक खेल जनता बहुत करीब से देख रही है और आखिरी फैसला उसी के हाथ में है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट में टूट की खबरों के बीच संजय राउत ने आज तक से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि उनके पास जरूरी संख्या मौजूद नहीं है। वो हमारे सांसदों को तोड़कर अपनी कोशिशों में नाकाम रहेंगे, उन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। हमने स्पीकर को पत्र लिखकर बीजेपी की बुरी चालों के बारे में जानकारी दी है। हमने सांसदों पर भरोसा है, लेकिन वो दबाव बनाने वाले हथकंडे अपना रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं। वो मोदी या अमित शाह के चेहरे पर नहीं जीते थे, उद्धव ठाकरे ने ही उनके लिए कड़ी मेहनत की और प्रचार किया। हम सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, संजय राउत खास तौर पर जो दावा कर रहे हैं कि पैसे देकर इन सांसदों को तोड़ा गया है, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए दिए गए?
6: बिल्कुल देखिए, लगातार आरोप जो है काफी कड़े संजय राउत लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सभी पैतरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बीजेपी और सत्ता पक्ष द्वारा, जिस तरीके से उनका ये आरोप है। कल उन्होंने देर रात उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला और बोला कि 10 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ तक ऑफर किए जा रहे हैं। 15 करोड़ की बात उन्होंने एक्स पर भी की है कि ये ऑफर किए जा रहे हैं सांसदों को, पर वो इस बात को लेकर नेहा आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो 6 का फिगर चाहिए लोकसभा में 9 सांसदों में जो 6 का फिगर चाहिए उसको इकट्ठा करने में विफल रहेगा सत्ता पक्ष, क्योंकि वो आश्वस्त है कि 3-4 सांसद ऐसे हैं इनमें से, यानी कि कुल 5 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से विश्वास जताया है कि वो उद्धव गुट को नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे में अभी आप देखिए कि संजय पाटिल का भी बयान आ गया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है और उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में संख्या जो सत्ता पक्ष के पास है वो कौन कौन नाम है, उन नामों के साथ बताया जा रहा है कि स्पीकर को एक पूरा लेखा जोखा सौंपा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है एक तरीके से खींचातनी मची हुई है और संजय राउत को लगता है कि जो ये पूरी कोशिश है पैसा दे के लुभाने की, डरा के लुभाने की, इसमें मुंह की खाने वाला है सत्ता पक्ष।
5: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो 2 सांसद एकनाथ शिंदे के घर पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से सांसद हैं और 6 बागी बताए जा रहे थे जिसमें 2 पहुंच रहे हैं, बाकी 4 क्या फोन से संपर्क में है? किस तरीके से इस वक्त एनडीए क्लेम कर रहा है कि उनके पास 6 सांसद हैं उनके?
7: देखिये, जो एनडीए का ब्लॉक है एकनाथ शिंदे शिवसेना, उनका ये क्लेम है कि 9 में से 6 सांसद उनके साथ हैं, 2/3 मेजोरिटी है उनके साथ, और 2 सांसद दिल्ली के अंदर मौजूद थे, 4 सांसद देर रात जो है वो लौट कर आ गए हैं और एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में ठहरे हुए हैं, और अब से कुछ देर बाद जो है वो सीधा एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका जो दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर आवास है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर उनकी जो है एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात होगी जो देर रात पहुंचे हैं और श्रीकांत शिंदे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर ये 6 सांसद हैं तो उसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि आज ही स्पीकर को पत्र दे देंगे और 19 जून को जो है शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, उस दिन जो है अगर स्पीकर का फैसला आता है इस अलग गुट के लिए तो एक बड़ी जीत होगी और अलग गुट की मान्यता बनने के बाद जो है ये 6 के 6 सांसद जो है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसे में उनकी जो संख्या है वो 13 हो जाएगी क्योंकि 7 सांसद जो है वो उनके हैं अभी।
5: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच उद्धव गुट के 7वें सांसद संजय दीना पाटिल को लेकर इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है। मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, विद्या मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, किस तरीके से इस पूरे मामले में क्लैरिटी लाएं, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई उसमें 5 सांसद नहीं पहुंचे, फिर ये कहा गया कि वो वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं, उसके बाद ये बात सामने आई कि 6 बागी हैं, आज से 2 मिलने पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे से, तो ये कुल मिलाकर संख्या कितनी है, इस पर कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टीकरण आया?
8: जी, जो जिस तरीके से जो मैथ दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली मैथ वैसे है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो संडे को मैं भी इस वक्त मातोश्री में हूं और मातोश्री के ठीक बाहर जहां पर संडे को भी ये मीटिंग जब हुई थी तब 4 एमपीज यहां पे थे, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, इसके साथ राजाभाउ वाजे और संजय दीना पाटिल। और संजय दीना पाटिल से अभी कुछ लोगों की बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि वो हैं यहाँ पर, वो गए नहीं हैं, तो ऐसा उनका दावा है। तो अभी फिलहाल एग्जैक्टली किस तरह से मैच चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 9 में से 4 अगर दावा कर रहे हैं कि वो यहीं हैं, तो बाकी वो कहाँ, बाकी जो एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो क्या दावा कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है, वो अभी सवाल। लेकिन देखिए, ये बात तब तक कंफर्म नहीं हो सकती जब तक ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कहनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था 2022 में, अगर आपको याद हो, एक रात को यहाँ पर यूबीटी के जितने कार्यकर्ता थे, जो इलेक्टेड लीडर्स थे, वो रात को रो रहे थे कि नहीं हम ठाकरे बंधुओं के साथ रहेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो एकनाथ शिंदे कैंप में दिखते थे। तो इसलिए ये कहना कि अभी ये पूरा वर्कआउट कर दीजिए मैथ, ये सही संभव नहीं होगा, जब तक प्रॉपर एक लिस्ट और ये सारे के सारे एकनाथ शिंदे कैंप में साथ नजर आएंगे तभी जाके ये कंफर्म हो पाएगा कि क्या ये लोग वाकई वहां पर हैं कि नहीं।
5: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, काफी कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट का भी हाई लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी इधर से उधर नहीं जा रहा है, सब हम कॉन्फिडेंस में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दो उनके सांसद आज मिलने पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे से, और ये मीटिंग कोई मामूली मीटिंग नहीं है, ये जाहिर तौर पर समर्थन जताने की मीटिंग है। और इसको लेकर भी तमाम जगहों से अब यही कहा जा रहा है कि 6 के 6 वो शामिल हो जाएंगे एकनाथ शिंदे के ग्रुप में।
9: जो देखिए, नेहा, सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ देर में एक बड़ी बैठक लोकसभा स्पीकर के घर पर होने वाली है, और इस बैठक में जो सांसद जिनका नाम क्या लिया जा रहा है और जिनके दावे भी किए जा रहे हैं, ये सांसद भी पहुंचने वाले हैं एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे के साथ। ये सभी सांसद पहुंचेंगे लोकसभा स्पीकर के घर पर। और अगर हम नंबर गेम की बात करें तो 9 में से अगर आपको 2/3 बहुमत चाहिए तो आपको 6 सांसदों का समर्थन चाहिए। इन 9 में से 4 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा बाहू वाजे और साथ साथ संजय पाटिल, इन चारों ने साफ मना कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो नंबर आपका वैसे ही 9 में से 4 अगर नहीं जाते तो 5 हो जाता है, जो 2/3 से कम है। अब इस मैथ की बात जो विद्या भी कर रही थी, वो मैथ फिलहाल बैठ नहीं रहा है। 4 सांसदों ने मना कर दिया है कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगले 1 घंटे में एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है दिल्ली में लोकसभा स्पीकर के घर पर, जहां पर ये सांसद पहुंच सकते हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि एक बैठक जो है वो भी कहीं पर चल रही है, और जो सांसद कल रात में दिल्ली पहुंचे हैं, जो उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद हैं, वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ एक गुप्त बैठक किसी जगह पर कर रहे हैं, और इस बैठक के बाद उनकी मुलाकात लोकसभा स्पीकर से हो सकती है। तो कयास काफी लगाए जा रहे हैं, दावे कई सारे किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो है तब साफ होगी जब फोटो आ जाएगी। अगर इन सांसदों की लोकसभा स्पीकर
5: के साथ एकनाथ शिंदे अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं,
9: हमने वो तस्वीर भी देखी थी। जी बिल्कुल, पहले उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात लोकसभा स्पीकर से होगी, और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः जो सांसद पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे के साथ वो भी मौजूद होंगे। लेकिन नंबर फिलहाल पूरे जुट नहीं पा रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कैसे तृणमूल कांग्रेस में बगावत हुई, और अब जरूर खबरें निकल के आ रही है कि कैसे उद्धव ठाकरे गुट में भी बगावत।
5: ठीक है, आप सभी बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस बीच तेज है। उद्धव गुट के 7वें सांसद संजय दीना पाटिल को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। 14 जून को संजय दीना पाटिल देर से उद्धव की बुलाई बैठक में पहुंचे थे।
10: बिल्कुल, तो कोई ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, तो कोई ठीक है सर, ठीक है।
11: उनके कांटेक्ट में शायद 543 पूरे के पूरे एमपीस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये खलबली जैसी जो बात आप कह रहे हैं वो पिछले साल भर से ज़्यादा समय हो गया, जो लगातार कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में हमेशा आते रहती है। ऑपरेशन टाइगर के नाम से अब ये होगा वो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में जब 2 दिन पहले आदरणीय उद्धव जी ने जब शिवसेना गुट के हमारे सांसदों की मीटिंग मातोश्री मुंबई में बुलाई थी, तभी सारे के सारे 9 के 9 सांसद वहाँ पे उस मीटिंग में शरीक हुए। हम 4 लोग जो थे वो 4 लोग हम इन पर्सन थे, और बाकी 5 जो हमारे सांसद थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसमें शरीक हो गए थे।
12: देखिए, 2024 से लगातार हम सुन रहे हैं कि कभी ऑपरेशन लोटस होने वाला है, कभी ऑपरेशन टाइगर होने वाला है, हमारे जो 9 सांसद चुन के आए उसमें से 6-7 जाने वाले हैं। देखिए, ऑपरेशन करना डॉक्टरों का काम है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तब ऑपरेशन करता है जब मरीज होते हैं, सामने पेशेंट होते हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि हमारे कोई भी सांसद पेशेंट या मरीज है या कोई कहीं जाने वाला है। रही बात जाने की, जाने वाले को कोई रोक सका नहीं है। हमारे नेता से उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे। मैं कितना भी प्यार लुटाऊं, कितना भी उनको अपना तन मन धन दे दूं, वो चले ही जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी चले गए, लेकिन हाँ, समय बदलता है, वक्त आने पर दुनिया हर चीज फिर से घुमा देती है। तो आज आपका वक्त है, कल हमारा भी वक्त हो सकता है, लेकिन आज जो जा रहे हैं कल वो बहुत पछता सकते हैं। तो जाने से पहले 1 नहीं 100 बार सोचिए कि ऐसी पार्टी और ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा।
13: हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की विशेषता है कि वो एक मास लीडर है ऑन ग्राउंड, तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि स्पेक्यूलेशन न करते हुए ये समझ लीजिए कि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है ऑपरेशन प्रगति महाराष्ट्र के लिए। उस विकास के दृष्टि से वो काम करते हैं जहां लोगों की निजी जिंदगी में परिवर्तन आए। तो कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए ये समझ लीजिए कि थोड़े पार्टीज के ऑनलाइन ऑफलाइन आउट ऑफ रीच होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन हमारे यहाँ इन गोइंग इतना ज़्यादा है कि सभी देखते हैं काम और तब तय करते हैं उनके नेतृत्व को।
5: और इस बड़ी खबर पर तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, कितनी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस वक्त जो एकनाथ शिंदे के घर बड़ी बैठक चल रही है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही?
14: देखिए नया तकरीबन 10 बजे के आसपास संजय राउत, जो उद्धव सेना आप कह सकते हैं शिवसेना यूबीडी ग्रुप के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पर जहां मेरी मौजूदगी इस वक्त यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक बार फिर से आंकड़ों का खेल समझाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां दावा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास 2/3 का आंकड़ा है संभवतः जिसकी वजह से सारे प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं यूबीडी की तरफ से बात कही जा रही है कि आंकड़े नहीं है। अगर कोई बागी ग्रुप है भी तो उसके पास आंकड़े नहीं है और अगर 2/3 आंकड़े नहीं होंगे तो फिर ये जो ऑपरेशन टाइगर की बात हो रही है वो सफल नहीं हो सकता है। तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन अपने दर्शकों को हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि संजय राउत के साथ जो अनिल देसाई हैं उनकी बैठक भी चल रही है, अरविंद सावंत भी यहां पर मौजूद रहेंगे, तो कुल मिला के यहां भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश होगी। अनिल देसाई अपने आवास को छोड़कर सुबह ही जल्दी जल्दी संजय राउत से मिलने के लिए सफदरजंग लेन वाले आवास पर पहुंच गए थे। अब से थोड़ी देर में संभावनाएं हैं कि प्रेस वार्ता शुरू हो जाएगी। तकरीबन 9:45-10 बजे तक तस्वीर यहां भी साफ हो जाएगी, क्योंकि कल की तारीख में अगर आप भाषा देखेंगे और जो दावा था संजय राउत का ये स्पष्ट रूप से था कि कोई भी फैक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सारी जो बातचीत है, जो दावे हैं, निराधार है, गलत है, कहीं कोई टूट नहीं हो रही है पार्टी के अंदर। लेकिन सूरज दिन बदला, सूरज ढला और नई सूर्योदय के साथ ही नई बातें शुरू हो गई हैं कि किस तरह

0: महीने बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। G7 के मंच पर हाथ मिलाया गया, लेकिन गर्मजोशी गायब रही। आज दो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिग्गज बातचीत करेंगे। G7 समिट में होने वाली इस द्विपक्षीय वार्ता में ट्रेड डील, समुद्री रूट, ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ तीन भारतीयों की मौत का मुद्दा भी चर्चा का विषय हो सकता है। पश्चिमी एशिया के हालात, यूएस एनर्जी इंपोर्ट, ट्रेड डील पर चर्चा की जा सकती है। आज की द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि 16 महीने बाद इस तरह की वार्ता आमने सामने होने वाली है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कल डोनाल्ड ट्रंप एक अनौपचारिक तरीके से मिले, वहां पर हैंडशेक हुआ। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज फॉर्मल तरीके से ये द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच होने वाली है। 14 अहम समझौते जिस पर बातचीत हो सकती है, जिसमें लेबनान समेत तमाम अन्य मुद्दे हैं। संसाधनों की भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया, ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री की। भविष्य को साझेदारियां विश्वास की नींव पर ही होंगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान होगा। इसके अलावा इस संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, अगर 5 पॉइंट्स गिने जाएं प्रायोरिटी वाइज, तो सबसे अहम प्रायोरिटी पर इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, जो पश्चिमी एशिया में जंग जैसे हालात जो अब खत्म हो गए हैं लगभग, उसके बाद क्या नतीजे हो सकते हैं, किस तरीके से वापस पटरी पर अर्थव्यवस्था लौट सकती है पूरे विश्व की, क्या यही प्रमुख एजेंडा लेने वाला है?
1: एजेंडा निश्चित तौर पर यही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, और वो प्रश्न विश्वास का था, भरोसे का था। दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी कमी है दो देशों के परस्पर संबंधों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में, वो भरोसे की कमी है। जिस तरह से विकास कुछ देशों का बहुत ज्यादा हो रहा है और वो ग्लोबल साउथ के जो विकासशील देश है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ देश, जैसे कोविड में भी हमने देखा, कुछ देश दवाइयां एट कर बैठ गए थे और बाकी देशों के साथ नहीं बैठ रहे थे, और वहां भारत ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी कि विकासशील देशों को तेजी से दवाइयां दी। वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उठाई, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह से इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स है, अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने या ड्रोन्स ने जिस तरह से एक मर्चेंट टैंकर को निशाना बनाया जिसमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी, ये प्रश्न भी भारत ने उठाया कि अंतरराष्ट्रीय सी रूट्स पर, समुद्री मार्गों पर जब जहाज जा रहे हो तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। और ये खासतौर पर उन्होंने तब उठाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके बिल्कुल बगल में बैठे थे। तीसरी बात, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, टैलेंट हो, उसका दुनिया में ड्राइवर है, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, और कनाडा और भारत के संबंध इसीलिए और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत की आर्थिक शक्ति को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वही अमेरिका और ईरान के बीच डील पर फाइनल हस्ताक्षर की तैयारियां हैं। स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में दोनों देशों के प्रतिनिधि 19 जून को समझौते पर दस्तखत करेंगे, और उसके साथ डील का पहला चरण पूरा हो जाएगा। समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में पूरी तैयारी है। इसके तहत 14 अहम मुद्दों पर समझौता हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर डील के बाद युद्ध खत्म होगा। दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 60 दिन में अंतिम समझौते की कोशिश होगी। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। G7 समिट में पहुंचे ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार को डील हो जाएगी, और इसके साथ ही हॉर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का यह बड़ा बयान, डील को लेकर मैं बहुत खुश हूं, ट्रंप ये कह रहे हैं।
2: I'm very happy to say, very signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
0: वहीं डील पर खुशी जताने वाले ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं रख सकेगा।
3: I'd like to get a formal setting for

0: Congress before we do that. But I have no problem with that. It's grid document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
1: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा. वक्त हो गया है हेडलाइंस का.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का. हर माँ का भरोसा. प्यार से परो. इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर.

G7 समिट में पीएम मोदी ने दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। ट्रंप को दिखाया आईना, कहा संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। होमो से भारतीयों की मौत का उठाया मुद्दा। फ्रांस में आज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। रूसी तेल और H1B वीजा भी एजेंडे में। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से मचा सियासी खलबली। टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद। दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मुलाकात संभव। राहुल का आरोप, एडवांस में दिए गए 15-15 करोड़ रुपए। 2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक। ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक। वर्तमान और पूर्व MP MLA समेत कई नेता होंगे शामिल। नीट पेपर लीक और CBSE के मामले पर राहुल गांधी का मेगा प्लान। आज कोटा में छात्रों के साथ करेंगे संवाद। परीक्षा प्रणाली में हो रही समस्याओं पर चर्चा।

फ्रांस के इवियान में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात, ट्रेड डील समेत कई वैश्विक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। G7 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज द्विपक्षीय मुलाकात। फ्रांस में आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी करीब 16 महीने बाद मुलाकात। G7 समिट में हैंडशेक के बाद दोनों साथ बैठे। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराई डील की बात, कहा ईरान को परमाणु हथियार रखने की नहीं होगी अनुमति। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख महमूद को ब्रिक्स समिट में जाने का न्योता दिया। फ्रांस के इवियान शहर में G7 समिट के दौरान मिले दुनिया के ताकतवर देश को दिग्गज। फ्रांस के इवियान में G7 समिट के दौरान भारत और यूएई में हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहवान के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच भी हुई बैठक। बैठक पर बोले कनाडा के पीएम, ऊर्जा, टैलेंट और एआई क्षेत्र में नई साझेदारी के लिए कर रहे हैं काम। लोक भवन में रोजगार का बड़ा कार्यक्रम, सीएम योगी आज पुलिस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों से को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मोहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे पर रोक, योगी बोले मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। सीएम योगी का निर्देश, 10-12 फीट से ऊंचे ताजों की अनुमति नहीं, शांति भंग करने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। मोहर्रम से पहले संभल में हाई अलर्ट, डीएमएसपी ने संवेदनशील इलाकों में निकाला पैदल मार्च। जुलूस मार्ग का निरीक्षण, तीर्थ स्थल पर अवैध कब्जे हटाने का निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटा प्रशासन। 2027 की तैयारी में जुटी बीएसपी, मायावती ने ओबीसी नेताओं संग बैठक कर पीडीएस समीकरण को दी चुनौती। दलित ओबीसी गठजोड़ मजबूत करने की कवायद, मायावती ने जमीनी अभियान तेज करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई, भारी पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी में ढाया गया निर्माण। 20 जून के बाद वाराणसी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने बताया अवैध और मल्टी मॉडल टर्मिनल में आड़े आने वाला निर्माण। रामपुर में टीएमसी में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले जब तक पावर तब तक प्रेम। राम मंदिर जलावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज, 19 घंटे की पूछताछ में कर्मचारियों से कई अहम सवाल। दान पात्र से लेकर बैंक तक खंगाली गई प्रक्रिया, एसआईटी ने सीसीटीवी और डेटा के आधार पर बढ़ाई जांच की रफ्तार। डिंपल यादव का राम मंदिर चुनाव विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला, राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों के विस्तार के कार्य कर निष्पक्ष जांच हो। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का बदला रुख, पहले चंपत राय पर लगाया आरोप, अब कहा कि मामले की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद सामने आएगी। विनय कटियार बोले ये जितने हैं सब चोर हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा राम जन्मभूमि जैसे बड़े कार्य में समय लगा, इस मामले में जल्द एफआईआर होगी और कार्रवाई तय होगी। करण भूषण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा अखिलेश यादव का मुद्दा उठाना उनका काम है, लेकिन सत्ता उनसे दूर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने श्री राम मंदिर दान विवाद पर कहा इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है, पापियों को सजा मिलेगी, विपक्ष चिंता ना करे। चढ़ावा चोरी मामले में आज तक से बोले चंपत राय, करीबी टिन्नू यादव मेरी संपत्ति की करवा सकते हैं जांच। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली कार्गो फ्लाइट, चेन्नई से पहुंचा मालवाहक विमान। यूपी वाराणसी, पूर्वांचल क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ। गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। प्रयागराज में प्रेमिका से शादी से इनकार और मिलने पर रोक बनी कत्ल की वजह, प्रेमी ने दादा दादी और बुआ की कर दी हत्या। नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन, 21 जून तक देश में टेलीग्राम पर स्थायी रोक। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का दिया निर्देश, हालांकि एनटीए ने इस फैसले पर भी विपक्ष का राय सवाल। नीट सीबीएसई घोटाले पर भड़का युवा आक्रोश, गोले मशाल के साथ हजारों युवा सड़क पर उतरे। देहरादून में नीट परीक्षा में सफलता न मिलने से निराश युवती ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने वायुसेना से पेपर भेजने को सनबाजी बताया, कहा टेलीग्राम पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक तो सिस्टम से ही हो रहा है। मुंबई में पानी संकट गहरा, बीएमसी ने निर्माण साइट और स्विमिंग पूल की जल आपूर्ति रोकी। लेवल घटकर 10% के करीब पहुंचा जल भंडार, मुंबई में औद्योगिक और व्यावसायिक पानी की आपूर्ति पर 20% कटौती। अकोला में पशुपालक पर टूटा संकट, विषैले पानी से 35 बकरियों की मौत। इंदौर में दूषित पानी से कई लोग बीमार, नगर निगम ने मामले की जांच शुरू की। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में एफआईआर। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने लोगों के साथ किया योग। गोरखपुर में योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टर्स और छात्रों के साथ किया योग। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, प्रहलाद जोशी ने किया पौधारोपण। गुजरात में जामनगर में एसटी कंडक्टर भर्ती के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए उमड़ी भारी भीड़। लद्दाख के जांस्कर घाटी में सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों में स्पेशलिटी हेल्थ कैंप 2026 का आयोजन। द हंस फाउंडेशन के हेल्थ कैंप में हजारों लोगों को दी गई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं।
कश्मीर गुरेज में बादल फटा, गांव बादल फटने से अचानक आई बाढ़, कई घरों को अपनी चपेट में लिया। उत्तर कश्मीर से बारिश से बिगड़े हालात, कुपवाड़ा जिले में ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ से उफनते हुए नालों की तस्वीर आई सामने। प्री मानसून की बारिश ने खोली विभाग और निगम की तैयारी की पोल, मंडी की सड़कें बनी ताला। जैसलमेर में तूफानी बारिश, तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अलनीनो के प्रभाव से भारत में कमजोर पड़ सकता है मानसून, यूएन मौसम एजेंसी के सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल के 5 जिलों में 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान। जम्मू कश्मीर के इलाके में बारिश और तूफान का अलर्ट, ओलावृष्टि और फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बदला मौसम, कई इलाकों में जोरदार बारिश। रजौरी के मंजा कोट में भू धसा से घर और सड़कें क्षतिग्रस्त, घर ढहने के डर से लोगों ने मकानों को किया खाली, हाईवे निर्माण को जिम्मेदार ठहरा रहे लोग। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में दुकान के लेंटर में अचानक आग, हादसे में 3 घायल। मधुबनी में जमीन विवाद में आत्मदाह की कोशिश, गुस्साए ग्रामीणों ने कोर्ट कमिश्नर को जमकर पीटा। जबलपुर में कलेक्ट्रेट से बेटी की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाई मां, बेटी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देते हैं बदमाश। भोजपुर में युवक ने थानेदार और पुलिस बल के सामने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल। अलवर में 15 मिनट में 4 चोरों ने घर से उड़ाए लाखों, खिड़की काटकर घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर 20 सड़क पर युवती ने बाइक पर बरसाए पत्थर, मोबाइल छीना, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में प्रेमिका, पिता और बेटे की टिकड़ी ने रची 4 करोड़ की चोरी की साजिश, तनिक शोरूम में हुआ खुलासा। गाजियाबाद में 2 बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में शादी टूटने से नाराज था आरोपी। कर्नाटक के 4 मंदिरों में चोरी करने वाले दाहौद गैंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 शातिर अपराधियों ने दबोचा, करीब 9 लाख की चोरी का माल जब्त। जूनागढ़ में अवरा सांड का आतंक, बेकाबू सांड के हमले में 1 महिला, 2 अन्य लोग घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर दी जान, मंदिर के पेड़ पर लगाई फांसी। मेरठ में जेवर चोरी करने वाले दिल्ली के दंपति को किया गया गिरफ्तार, सराफा बाजार में 1 महिला के लाखों के जेवर पर किया हाथ साफ। सरायकेला में गैलेक्सी सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट, फर्नेस फटकर जोरदार धमाका, हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। सूरत में छठी क्लास के छात्र पर स्कूल की सहपाठी छात्रा ने चाकू से किया हमला, छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुट गई है पुलिस। झारखंड के गढ़वा में वन विभाग की पहले से कई जिंदगियां बच गई हैं, जंगली हाथी के आतंक से परेशान इलाका, विभाग ने अपनाया नया तरीका। वडोदरा में ट्रक से टकराई लग्जरी बस, 6 यात्रियों की मौत, 26 से ज्यादा घायल। बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण सड़क हादसा, लॉरी ट्रैक्टर और बोलेरो की हुई भयंकर टक्कर। संभल में सरेआम बाइक सवार युवक की लोहे रॉड स्पीड कर हत्या, साख जुटाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। कोटा में रेन पर नहीं मिला थार, तो शख्स ने पत्थर मारकर तोड़े शीशे, सीसीटीवी आया सामने। ग्रेटर नोएडा में रात के अंधेरे में गड्ढे में गिरी बाइक, समय पर मदद न मिलने से बाइक सवार की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में रोडवेज बस से टकराई कार, मजदूरी पर जा रहे 4 सगे भाइयों की मौत। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, गली से गुजर रहे मासूम पर अचानक झुंड से ने किया हमला, इलाके में दहशत। एमपी के सतना में शराब दुकान पर हंगामा, जिला पंचायत सदस्य के पति पर मुफ्त शराब न मिलने पर मारपीट और गाड़ी से कुचलने की कोशिश। पंजाब के मोगा में गुरुद्वारा साहब में चोरी की कोशिश, लोगों और सेवादारों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। गुजरात के जूनागढ़ में मछली गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। तेजी से बढ़ रहा आलिया भट्ट का करियर ग्राफ, प्रभास की फिल्म कल की 2 में कास्ट किए जाने की चर्चा। फिल्म कल की 2 में दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी को कास्ट किए जाने की चर्चा, फिल्म में सुमति के किरदार में दिख सकती हैं साई पल्लवी। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मेमो की फिल्म वांटेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट का अच्छा प्रदर्शन, पहले 4 दिन में कमाए 11 करोड़ से ज्यादा। फिल्म राणा बली से भारतीय सिनेमा में डेब्यू करेंगे हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड वॉसलू। निर्माताओं ने एक्टर के जन्मदिन पर फिल्म पे उनके किरदार का पोस्टर लॉन्च किया। स्पाइडरमैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड ने जेंडाया के साथ सीक्रेट शादी की खबरों को किया कंफर्म। एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने बताया कि शादी में पूरा परिवार शामिल हुआ था। पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग। बेहद दुर्गम होती है किन्नौर कैलाश की यात्रा, सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है। रिकांग पीओ के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है यात्रा, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, कंगटौली और गणेश पार्क होता है यात्रा का पहला पड़ाव। 14,900 फीट की चाय पर स्थित है पार्वती कुंड में स्नान के बाद शुरू होती है अंतिम चढ़ाई, दुर्गम खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के होते हैं दर्शन।
इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपुरा में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने के बाद गुरेज के तुलेल घाटी के कई गांव को पूरे सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया है। अचानक आए मूसाधार पानी और मलबे के तेज बहाव ने गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऐसे दर्जनों आवासीय मकान प्रभावित हुए, क्षतिग्रस्त हुए और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने भारी दहशत फैल गई है और वो अपने बच्चों और जानवरों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर शिफ्ट हो गए। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। जीत के हीरो रहे एम्बाप्पे, उन्होंने सेनेगल के खिलाफ 2 गोल दागे। इन 2 गोल्स के साथ एम्बाप्पे के वर्ल्ड कप में कुल 14 गोल हो गए और फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। सेनेगल के खिलाफ जीत के बाद फ्रांस के फैंस झूमते नजर आए। फ्रांस के प्रशंसक खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए और स्टेडियम के बाहर नारे लगाते हुए दिखे। वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
0: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at शारदा यूनिवर्सिटी, where are you?
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्पिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, ISO ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है, गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां TMC के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
1: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
2: संजय जी, आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई, वैसी शिवसेना के साथ यूपीए के साथ
3: हम पहले जा चुके हैं, वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे MP मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ED CBI की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ED CBI होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, NCP के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग BJP में गए हैं भगोड़े।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

आस्था के राम, श्रद्धा के राम, पौरुष के राम, मर्यादा के राम, 500 बरस की प्रतीक्षा, हजारों लाखों का बलिदान, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों के दान के बाद बना अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर। किसी ने सोचा ना था भगवान राम के अवधपुरी में चोर के नाम का शोर होगा। चोर चोर का शोर ऐसा मचा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। जिन छोटे कर्मचारियों पर आरोप है उनमें से चंपत राय के ड्राइवर रहे मंदिर के सेवादार टिन्नू यादव जरूर इनकार करने लगे। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे। जांच टीम की मदद के लिए जिले की पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर की ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला कि जांच में एसआईटी की जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 45 से अधिक लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की वित्तीय जाँच शुरू हो चुकी है। दरअसल दो हफ्ते पहले राम मंदिर के दान पात्र में से चढ़ावे की चोरी का सियासी आरोप शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, फिर विनय कटियार ने सवाल उठाए। तब तक ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया जाता रहा, लेकिन खबर है कि फिर बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी और तब सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू कराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी आरोपों से अलग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे संतोष दुबे नाम के पुराने कार सेवक जिन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर देकर ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट में एक पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की चिट्ठी जरूर लिखी गई है, क्योंकि नेताओं ही नहीं संतों को भी लग रहा है कि मंदिर के दान खाते की रकम में कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभु राम में असंख्य सनातनियों की आस्था और योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास का सम्मान रखते हुए एसआईटी 7 दिन में अंतरिम और 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: कहां तो प्रभु राम के नाम में असंख्य श्रद्धालुओं की अनंत आस्था और कहां राम के धाम में चोरी का महापाप। किसी ने सोचा ना था कि राम की अवधपुरी के वैभव में चोर के नाम का शोर मचेगा।
1: गोपाल जी कुछ बताएंगे, ये कैसे ये चोरी का ये आरोप लग रहा है?
2: गोपाल जी आप पर
1: ये ट्रस्ट के ऊपर आरोप है, करोड़ों हिंदुओं की दान में जो पैसा
2: पूछताछ हुई है,
1: आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
0: चोर चोर का शोर ऐसा मचा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची, तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे थे। जांच टीम की मदद के लिए जिले के पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जाँच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। इन्हीं गोपाल राव को जब मीडिया ने दो बार मंदिर में आते जाते देखा तो सवाल पूछे और गोपाल राव चुप रहे। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन की जांच में एसआईटी के लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज में महाकुंभ कराने के अनुभवी रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को परख रहे थे। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सीबीआई का तजुर्बा है, जो चोरी की संभावना और तरीके की जांच कर रहे हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन अकाउंट बुक देख रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई जांच लगातार 8 घंटे चली और इस दौरान जांच टीम ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दिन जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची। फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 लोगों से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेनदेन और प्रॉपर्टी निवेश की भी वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

आज प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर। पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक। कहा, संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। हॉर्मूज में भारतीयों की मौत का भी मुद्दा उठाया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से सियासी बवंडर। टूट सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद। दिल्ली में एकनाथ शिंदे से मुलाकात मुमकिन। राउत का आरोप, एडवांस में दिए गए 15 करोड़ रुपए।

सियासी उठापटक तेज, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता होंगे शामिल। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी, 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ।

0: स्वागत है। पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और अब शिवसेना यूबीटी में बगावत। उद्धव ठाकरे पर जून का महीना फिर से भारी पड़ गया है। उनकी पार्टी पर विद्रोह 2 का खतरा है। सांसदों की भी बड़ी टूट का खतरा है। उद्धव गुट ने भी मान लिया है कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, जिसकी बातें कही जा रही थी। यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगा दिया है कि बागियों का सपना है मनी मनी, उन्हें 15-15 करोड़ का एडवांस मिल रहा है, ये दावा कर रहे हैं संजय राउत। इसी सबके बीच सबसे अहम खबर यह आ रही है कि कल शिवसेना यूबीटी ने संसदीय दल की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। बगावत की अटकलों के बीच ये बैठक बुलाई गई है और कुछ सांसदों ने ये भी कहा है कि वो इस बैठक के लिए दिल्ली आने वाले हैं। तो क्या हुआ है इस ऑपरेशन टाइगर का, ये कुछ अब असमंजस की स्थिति है। क्या वाकई में वो सांसद जिन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहती थी कि वो यूबीटी का हाथ छोड़ रहे हैं, क्या वाकई में वो जा रहे हैं? क्योंकि नंबर गेम अभी साफ नहीं हो पा रहा है। क्या 6 सांसद हाथ छोड़ने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे का? क्योंकि अभी तक 4 सांसद तो ये कहते आ रहे हैं कि वो हैं उद्धव ठाकरे के साथ ही। सबके बीच बैठकों का दौर भी जारी है। श्रीकांत शिंदे जिनके घर पे एक बैठक होनी थी, वहां कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक हमारे सहयोगी कह रहे थे, कि हो सकता है कि कोई बैठक गुप्त जगह पर हो रही हो। लेकिन क्या चल रहा है खेल, इस पर सभी की नजरें हैं और यही जानने के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, बैठक होनी थी श्रीकांत शिंदे के घर पर जो नहीं हुई, और कहा यह भी जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे तो खुद महाबलेश्वर में बैठे हैं, तो हो क्या रहा है अभी वहां?
1: जी देखिए अंजलि, आपने अभी 3 पार्टियों के नाम लिए, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी। हमने तृणमूल कांग्रेस के पूरे एपिसोड में यह देखा कि कैसे पहले 14 सांसद इकट्ठे हुए, फिर 19 हुए, फिर 21 की बात आई, फिर आखिरकार 20 सांसदों की लिस्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई। तो असमंजस जो है इसमें रहा और ऐसे ही असमंजस अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, जिसमें महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चलने की अटकलें निकल के सामने आ रही, इसमें भी नजर आ रहा है। अगर हम पूरे सांसदों की बात करें उद्धव ठाकरे के, तो 9 सांसद हैं और 2/3 का आंकड़ा तब पार होगा जब आपके पास 6 सांसद होंगे। अभी 9 सांसदों में से 4 सांसद तो ये साफ कर चुके हैं, फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है, जिसमें अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत, राजाभाऊ वागे और संजय पाटिल हैं। इसके अलावा 5 सांसदों की तरफ से अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है। कल सूत्रों ने यह दावा किया था कि आज एक बड़ी बैठक श्रीकांत शिंदे के घर पर होगी, जिसमें सभी बागी सांसद उद्धव ठाकरे के वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। अभी ये कहीं ना कहीं इससे जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि लोकसभा स्पीकर से ये बागी सांसद मिलने जाने वाले हैं, वहां पहुंचने वाले हैं, और अगर ये पहुंचते हैं अंजलि, तो फिर तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। हालांकि संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उनका ये दावा है कि सभी सांसद एक साथ है और किसी के बीच में कोई टूट नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि
0: बिल्कुल
1: की तरफ से जो है पैसे
0: बांटे गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार रहेगा, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात नहीं करने वाले हैं शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे। पहले उद्धव गुट के बागी सांसद स्पीकर को अपना पत्र सौंपेंगे, और ये खबर उस वक्त आ रही थी और कहा जा रहा था कि मुलाकात हो सकती है। वहीं श्रीकांत शिंदे के आवास पर भी कोई बैठक नहीं हुई है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे, क्योंकि श्रीकांत शिंदे अभी महाबलेश्वर में हैं और शायद आज रात या फिर कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो कोई मुलाकात लोकसभा स्पीकर के साथ फिलहाल तय नहीं है, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं पीयूष का। पीयूष, अगर श्रीकांत शिंदे के घर की बैठक नहीं हुई, तो ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर को कोई पत्र नहीं दिया जाएगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, इस सब के क्या मायने निकाले जाए?
1: जी देखिए, एक चीज तो जरूर साफ है कि कुछ सांसदों के बीच में नाराजगी है, और ये दावा प्रताप राव यादव की तरफ से कल किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में नाराजगी थी और वो ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग होना चाहती थी, वैसे ही कहीं ना कहीं हाल इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि कुछ सांसद उनसे भी नाराज हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर होने जरूरी है। 9 की बात करें, 9 सांसद उद्धव ठाकरे के, 6 आपके पास पर्याप्त नंबर की जरूरत है, 2/3 चाहिए, बहुमत आपके पास होना चाहिए, तभी आप बगावत भी कर सकते हैं। और अगर आप बगावत करते हैं उसके बावजूद भी, तो आपकी जो सदस्यता है उस पर कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है। लेकिन इन सभी अटकलों के बीच में एक चीज जरूर साफ हो गई है कि कुछ दिनों पहले जो उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बैठक बुलाई थी, उसके बाद अब कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और उसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है अरविंद सावंत के द्वारा, जो शिवसेना यूपीटी के नेता हैं संसद में, उनके द्वारा पत्र जो जारी किया गया है उसमें ये साफ कहा गया है कि जितने भी सांसद हैं शिवसेना के, वो कल 11 बजे पार्लियामेंट पहुंचे और वहां पर उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कल जब 11 बजे बैठक होती है संसद के अंदर, तो उसमें कितने सांसद पहुंचते हैं और कितने सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं। अभी जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई हो पाई है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
0: बिल्कुल, और इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इस वक्त शिंदे गुट की शाइना एनसी की तरफ से खबर आ रही है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन प्रगति है। महाराष्ट्र की जनता उनसे प्यार करती है, सबको पता है कि असली टाइगर कौन है। उन्होंने लिखा है कि इसमें ज्यादा स्पेक्युलेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस के नाना पटोले भी इसे ऑपरेशन गीदड़ कह रहे हैं। तो क्या है अभी स्थिति, ये पल पल पलटती नजर आ रही है, कभी कुछ आ रहा है सामने, कभी कोई नंबर सामने आ रहा है, लेकिन इसके बारे में क्या कह रहे हैं नेता, सुन लीजिए।
2: हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की विशेषता है कि वो एक मास लीडर है ऑन ग्राउंड। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि स्पेक्युलेशन न करते हुए ये समझ लीजिए कि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है ऑपरेशन प्रगति महाराष्ट्र के लिए। उस विकास के दृष्टि से वो काम करते हैं जहां लोगों की निजी जिंदगी में परिवर्तन आए। तो कोई स्पेक्युलेशन में न जाते हुए ये समझ लीजिए कि थोड़े पार्टीज के ऑनलाइन ऑफलाइन आउट ऑफ रीच होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन हमारे यहाँ इन गोइंग इतना ज़्यादा है कि सभी देखते हैं काम और तब तय करते हैं उनके नेतृत्व को।
3: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए, इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी विद्या का, जो इस वक्त मातोश्री के बाहर मौजूद है। विद्या, अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन सी बैठक हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन किसके साथ है, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन बयानबाजी खूब हो रही है।
4: जी बिल्कुल, खास तौर से अगर आप देखें तो मैथ्स जो है वो मैथिंग नहीं हो रहा है, लेकिन मातोश्री के बाहर जब हम संडे को यहीं पे थे, तो संडे को जब सारे एमपीज आए हुए थे तो संजय राउत ने सीना ठोक के कहा था कि कोई नहीं जा रहा है, सबके सब यहीं हैं। चार के चार जो यहां पर मौजूद थे वो हमारे साथ रहेंगे, और साथ ही जो बाकी हैं वो उन्होंने फोन पे, खासतौर से संजय यादव और उन लोगों की जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने फोन पर बात कर ली है उद्धव ठाकरे से, तो यानी कि पूरा कुनबा जो है हमारा एक साथ है। लेकिन अगर आप अभी की बात देखें तो एकनाथ शिंदे गुट जो है वो तो सीना ठोक के कह रहा है कि नहीं, हमारे पास है काफी जो आंकड़ा है उनका 6 बताया जा रहा है, लेकिन जो 6 आंकड़ा जो वो दावा कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। सबसे साफ बात अगर आप देखें तो खासतौर से संजय दीना पाटिल, और खासतौर से अगर आप देखें यहां पर अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि राजा भाऊ वाजे अभी दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो किस मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन उसका इस गुट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोग बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं उन एकनाथ शिंदे गुट में मिलने के लिए। और साथ में ही हिंगोली के जो एमपी हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी फर्जी सिग्नेचर लेके वहां पे पेश किया जाए। तो तमाम अटकलों का सिलसिला अभी चल रहा है, जब तक कोई एक्चुअली पुख्ता सबूत नहीं देता कि वाकई में जो स्पीकर है उनको सिग्नेचर्स के साथ कोई दावा ठोका जाता है। है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई में ये पार्टी फिर से टूट रही है।
0: जी और विद्या, वो पुख्ता सबूत क्या होता है? वो पुख्ता सबूत होता है कि आप पत्र लेके जाते हैं हस्ताक्षरों का या सांसदों को लेकर के मुलाकात करते हैं लोकसभा के स्पीकर के साथ। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मुलाकात होनी थी लोकसभा स्पीकर के साथ वो अब नहीं हो रही है। तो श्रीकांत शिंदे के बारे में कहा जा रहा था कि वो मुलाकात करेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये मुलाकात नहीं होगी। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा इस वक्त लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर ही मौजूद है। तो सुशांत, ये बताइए कि जहां पर गहमा गहमी होनी चाहिए थी वहां क्या अभी सन्नाटा पसरा है?
5: देखिए अंजलि, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये ओम बिरला के घर की, जो कि लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर की तस्वीर है, तमाम मीडिया का जमावड़ा इस वक्त आपको यहां पर नजर आएगा। लेकिन ये उम्मीद थी कि यहां पर तकरीबन 10-10:30 बजे के आसपास जो शिंदे ग्रुप जो है वो अपने उद्धव ठाकरे के तमाम जो सांसद हैं जो उनके संपर्क में, उनको लेकर के यहां पर जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है। दरवाजे फिलहाल जो है वो आपको बंद नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद ये थी कि लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है वो सांसदों को लेकर के यहाँ पर जो है वो पहुंच सकते हैं। उनकी एक मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो ओम बिरला से मुलाकात जो है वो करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अटकलों का दौर जो है वो लगातार जारी है।
0: जी सुशांत, आप वहां नजर बनाए रहें और लगातार इस मुद्दे पर खबरें हम देते रहेंगे। तो साल 2022 था, जून का महीना था, जब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत का झंडा उठाया था और देखते ही देखते बड़ी संख्या में विधायक और सांसद शिंदे गुट में चले गए थे। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बना ली। 4 साल बाद फिर जून का महीना है और एक बार फिर शिवसेना में टूट की चर्चा तेज है।

0: जो ममता की पार्टी के साथ हुआ वो उद्धव की पार्टी के साथ दूसरी बार होने जा रहा। एक बार फिर एक्शन का केंद्र राजधानी दिल्ली है। माना जा रहा है कि उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद आज दिल्ली में मिलकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद शिंदे खेमे के संपर्क में हैं। शिरडी के सांसद भाव साहेब वागचौरे और यवतमाल के सांसद संजय देशमुख के दिल्ली पहुंचने की खबर आई। इसके अलावा उधर गुट के कई और सांसदों के भी संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन टाइगर के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने चुप्पी साधे रखी।
1: ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
0: उद्धव गुट में दोबारा टूट की अटकलों ने तभी जोर पकड़ लिया जो 14 जून को उद्धव की बुलाई बैठक में 4 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाव वाजे और संजय दीना पाटिल ही पहुंचे। दावा किया गया कि बाकी ऑनलाइन से जुड़े, लेकिन संदेश साफ था। उद्धव ठाकरे को भी कोई शक सुबार नहीं रही। यही वजह है कि उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा। जो बाला साहब की शिवसेना छोड़कर गए वो पछताएंगे।
2: सरकार है केंद्र में, 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
0: शिंदे गुट का कहना है कि सांसद और विधायक खुद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से परेशान हैं, इसलिए पार्टी छोड़ना चाहते हैं। संजय देशमुख की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात ने भी चर्चाओं को और हवा दे दी। शिंदे खेमा साफ कह रहा है ऑपरेशन टाइगर 24 घंटे 365 दिन चलता है।
3: उबाटा के नेतृत्व पर, उबाटा के जो MLAs हैं, जो MPs हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा, तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाटा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं।
0: अब सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी में भी वही कहानी दोहराने वाली है जो 4 साल पहले शिंदे ने उद्धव के साथ की थी, या फिर उद्धव इस बार अपनी पार्टी को टूट से बचा पाएंगे?
4: जैसे जैसे ऑपरेशन टाइगर अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ऑपरेशन सत्ता का पासा पलटने में कामयाब होता है या फिर सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाता है। अब आखिरकार एक बात तो साफ हो रही है, ये दल बदल और वफादारी का राजनीतिक खेल जनता बहुत करीब से देख रही है और आखिरी फैसला उसी के हाथ में है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। SIT की टीम ने जांच तेज कर दी है। पिछले 2 दिनों में 19 घंटे तक पड़ताल की गई है। SIT ने चढ़ावा गिनने वाले कमरे का CCTV डेटा निकलवाया है जिसकी जांच भी की जाएगी। साथ ही पूर्व कर्मचारियों का डेटा लेकर SIT उनसे भी करेगी पूछताछ। अब तक की पूछताछ में करीब 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे फोन और गाड़ियां ली हैं। SIT ने SBI के बैंक कर्मियों से भी उनके कामकाज पर डिटेल में पूछताछ की है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ था, इस पर राजनीति भी खूब हुई है जब अखिलेश यादव ने ये मामला उठाया और उसके बाद ये SIT की जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसके लिए वहां टीम पहुंची थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, जांच जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब ये CCTV फुटेज और डेटा किस तरह से मदद करेगा तफ्तीश में?
6: बिल्कुल अंजलि, चूंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ही यहाँ पर जो एसआईटी की टीम है वो हर पुख्ता तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज है उनको निकाल रही है, उनको इकट्ठा कर रही है। इसके साथ साथ दान पेटी का यानी कि किसका किसका उसमें कंट्रोल है उससे पूछताछ की गई।
5: जी, आशीष शुक्रिया आपका। तो वाकई में ये सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है और 2027 के चुनाव के लिए यूपी में पेशबंदी भी शुरू हो गई है। चुनाव करीब आता देख बड़ी खबर ये आ रही कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं और अब जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी हो रही है ताकि सियासी संदेश जाए। आज की बैठक में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी नया रोड मैप तैयार करेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
9: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
10: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
9: more top sports.
11: And he's gonna go! There's the tying goal!
9: And everything in between.
11: This game is over!
9: Upgrade now for the premium listening experience.
12: सवारी इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
2: यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है।
3: और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी।
4: माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। माफियाओं की, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी जिन पर बुलडोजर चल रहा है।
5: यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनावी पंडितों के लिए ये अनुमान और आकलन का विषय हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पहेली को उन्होंने सुलझा लिया है, इस गुत्थी की गांठ उन्होंने खोल दी है। आप जानना चाहेंगे तो ये आप खुद योगी आदित्यनाथ से सुन लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर बता दिया है कि उन्हें माफियाओं का हिसाब किताब करना कितना पसंद है, और अगर ये विषय उन्हें इतना ही प्रिय है तो चुनावी मंचों से ऐसे बयानों की झड़ी लगना भी लाजमी है। लेकिन सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं, उस माफिया गिरी की पूरी कहानी बताते हैं जिसका जिक्र अभी अभी आपने सीएम योगी से सुना। राजधानी लखनऊ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया था। सरोजनी नगर क्षेत्र में स्थित करीब 57 एकड़ जमीन, जो पहले ग्राम समाज के नाम से दर्ज थी, उसे कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाकर बेच दिया गया। जांच में सामने आया कि जमीन पहले आधुनिक सहकारी गृह समिति और फिर एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर पहुंच गई। आरोप है कि इस पूरे खेल में भू माफिया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद 2 FIR दर्ज हुई और 17 दिसंबर 2015 को प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। बाद में पुलिस विभाग के प्रस्ताव पर ये जमीन पुलिस अकादमी को हस्तांतरित कर दी गई। अब इसी भूमि पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित किया जा रहा है। तो अब योगी ये बताने में कतई नहीं हिचकते कि 2027 के प्रचार युद्ध में कानून व्यवस्था और माफिया राज से मुक्ति उनका ब्रह्मास्त्र होने जा रहा है। योगी का एक और बयान सुनिए। शायद योगी यही कहना चाह रहे हैं कि जिसकी गोद में आकर बच्चे खुश हो जाते हैं, उनके हाथों में यूपी भी महफूज है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

फ्रांस में आज प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर। पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी की दो टूक, कहा संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। हॉर्मूज में भारतीयों की मौत का भी उठाया मुद्दा, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से सियासी बवंडर, टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद, स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं क्या बागी, राउत का आरोप, एडवांस में मिले 15-15 करोड़ रुपए।

ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता होंगे शाम। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी। 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ।

0: रुक करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही बड़ी खबर का। थोड़ी देर में यूबीटी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। संजय राउत के घर पहुंचे हैं इस वक्त जो खबर आ रही है अनिल देसाई और अरविंद सावंत। तो शिवसेना यूबीटी के नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के साथ उद्धव के करीबी सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत मौजूद रहेंगे।
1: सर सर ऑपरेशन टाइगर को लेके जो दावे हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे सर? अरविंद सावंत पहुंचे हैं इस वक्त संजय राउत के घर। इस वक्त जब चारों तरफ से दावे हो रहे हैं कि अलग अलग आंकड़े हैं, एकनाथ शिंदे गुट का अपना दावा है और दूसरी तरफ यूबीटी गुट का अपना दावा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है संजय राउत के आवास पर दिल्ली में और अरविंद सावंत पहुंचे, अनिल देसाई भी यहीं पे मौजूद है ऐसा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यूबीटी फैक्शन की तरफ से यह दावा है कि लगभग 5 सांसद उनके पास हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर जिस ऑपरेशन टाइगर का दावा किया जा रहा है वो आज कम अज कम सफल नहीं होगा, लेकिन आंकड़े वहां भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट द्वारा भी इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में दोफाड़ हो और शिवसेना की पार्टी कमजोर हो। देखिए तस्वीरों में एक बार फिर से अनिल देसाई संभवतः हो सकते हैं इस वक्त अनिल देसाई पहुंचे हैं अरविंद संजय राउत के घर पर। अनिल देसाई सुबह से अलग जगह पे एक अलग लोकेशन पे मीटिंग चल रही थी, अनिल देसाई पहुंचे हैं संजय राउत के घर पे और अब यहाँ पे
2: संसदीय दलाची बैठक उद्या बोल रहे
0: तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप सकते हैं उद्धव गुट के बागी सांसद संजय जाधव के साथ पत्र सौंप सकते हैं। तो संजय जाधव के नेतृत्व में ये पत्र सौंपा जा सकता है ऐसी खबरें आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे बागी सांसदों की मुलाकात हो सकती है। तो पल पल में अलग अलग खबर आ रही है, पल पल में स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हो सकती है। और अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास पेशकश, 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता।
3: सोलह महीने बाद ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। 16 महीने में बदल गए दो देशों के रिश्ते। 16 महीने में बदल गए दुनिया के हालात। 16 महीने में दुनिया का भीषण युद्ध से सामना। 16 महीने में लड़खड़ा गई विश्व की अर्थव्यवस्था। 16 महीने बाद मुलाकात से निकलेगा समाधान। 16 महीने बाद सुधरेगा भारत अमेरिका रिश्ता। 16 महीने बाद क्या बात होगी जब मुलाकात होगी।
0: तो सबकी निगाह आज शाम होने वाली प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत आपसी रिश्ते पर असर डालने वाले तमाम मुद्दों पर सीधी बात करेगा, खासकर ट्रेड डील और हॉर्मूज में नागरिकों की मौत पर।
4: गर्मजोशी से भरी वो मुलाकात, आत्मीयता से गले मिलना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, बातचीत का वो खुला अंदाज, वो ठहाके, ये सब तब की बात थी जब भारत अमेरिका के रिश्ते सहज और विश्वास से भरे थे। इधर मोदी उधर ट्रंप, दोनों ने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र को कूटनीति का भरोसेमंद साथी बना दिया था, लेकिन बीते 16 महीनों में भारत अमेरिका के रिश्ते की मिठास खत्म हो गई। ट्रंप ने ट्रेड डील भारत पर थोप दिया और रिश्तों में तलखी आती चली गई। तो सवाल अब यही है कि उसका अब कितना असर शेष है, ये जानने के लिए ये तस्वीर विशेष है। पीएम मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। उनका पहला सामना ट्रंप से होता है। ट्रंप मोदी को देखकर अभिवादन के लिए खड़े होते हैं। दोनों की इस मुलाकात से मोदी का सिग्नेचर हग गायब दिखता है। दोनों नेताओं के बीच साधारण औपचारिक हैंडशेक होता है, जिसमें इस बार पुरानी वाली गर्माहट नदारद नजर आती है। हर कदम नपा तुला और हर बात सधी हुई। अब G7 के राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक सेशन होता है, तब भी मोदी और ट्रंप के बीच कोई विशेष अभिवादन जैसी बात नहीं दिखती। तो सवाल यही है कि क्या मोदी ने बातचीत से पहले ट्रंप को जता दिया है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो आपसी रिश्तों के लिए ठीक नहीं रहा। हाई लेवल वर्किंग सेशन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा, पार्टनरशिप तभी सफल हो सकती है जब वो भरोसे पर टिकी हो। आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। ये संदेश निश्चित तौर पर ट्रंप तक भी पहुंचा होगा। तो क्या आज की बैठक में कुछ ऐसा होगा जो दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघला सके? फ्रांस के एवियन से प्रणय उपाध्याय। आज तक
0: तो ये मुलाकात बेहद अहम है और 14 मुद्दों पर रहेगी सबकी नजर। क्या बातचीत होती है, सबसे अहम मुद्दा क्या है? ट्रेड डील, जिस पर एक साल से जद्दोजहद चल रही है, तो उस पर क्या बात होती है? 12,000 से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर व्यापार होता है दोनों देशों के बीच, तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा जिस पर दोनों देश बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रेड डील में ज्यादातर तकनीकी काम पूरे हो चुके हैं, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर भी हमें बता चुके हैं। और लेकिन ट्रेड डील से भी ज्यादा अहम मुद्दा रहेगा ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद अहम है और एक साल में एनर्जी ट्रेड में 60% का इजाफा हुआ है। भारत अब अमेरिका से ऊर्जा लेता है। मौजूदा छूट अवधि, जो रूस का हम खरीदते हैं तेल, वो खत्म होने वाली है, बल्कि कल ही खत्म होने वाली है। ऐसे में क्या रूस से तेल लिया जा सकता है आगे भी, ये बड़ा सवाल रहेगा। प्रतिबंध रूस पर नहीं है बल्कि कुछ खास कंपनियों पर है और भारत उन्हीं कंपनियों से तेल लेता है, फिर भी इस पर क्लैरिटी जरूरी है। अब रूस से तेल लिया जा सकता है कि नहीं और इन कंपनियों से ही लिया जा सकता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, भारत ही नहीं सबके लिए है, मैं ये जानना कि यहां से तेल आ पाएगा कि नहीं, गैस आ पाएगी कि नहीं, इस क्षेत्र में किस तरह की हिस्सेदारी भारत निभा सकता है, ये अहम मुद्दा रहेगा। क्या माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकता है भारत, इस पर भी चर्चा हो सकती है। फ्रांस यूके चाहते हैं कि ये माइन स्वीपिंग की जाए, नेवल एस्कॉर्ट मिशन का एक सुझाव भी बनाया गया है, पर भारत जो है ऐसे मिशन में जुड़ता है या नहीं, ये सवाल है। ये तभी संभव है जब स्थायी शांति समझौता हो जाए। अगर ये एरिया सेंसिटिव रहता है, संवेदनशील रहता है, तो भारत के लिए इसमें शामिल होना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि इस वक्त एवियन से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, आपके लिए शुभ प्रातः, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि आज की शाम कितनी शुभ रहेगी दोनों देशों के लिए और दोनों नेताओं के लिए।
5: सुप्रभात अंजलि, निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, समय कम है, लगभग करीब 40 से 45 मिनट का वक्त रखा गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के लिए, जो करीब 16 महीने बाद हो रही है। लेकिन कल की छोटी ही सही मुलाकात ने काफी हद तक बहुत सारी चिंताओं या आशंकाओं को दूर किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है, चाहे वो ऊर्जा कारोबार का जुड़ा हुआ मामला हो, ट्रेड डील जो कि बहुप्रतीक्षित है, बहुत लंबित है, बहुत समय से उसका इंतजार चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि उसका जो बेसिक जो मैकेनिकल काम है, यानी जो उसके ड्राफ्ट हैं, वो सारे तैयार कर दिए गए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही उस पर दस्तखत हो जाए और उम्मीद की जा रही है कि अगले माह के अंत तक वो ट्रेड डील साइन हो जानी है। इसलिए ट्रेड डील का मुद्दा होगा और ट्रेड इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन, यानी कारोबारी से राष्ट्रपति बने हैं, बिजनेस पर सबसे ज्यादा उनका जोर होता है, तो दोनों देशों के नेताओं की तरफ से जब पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी फरवरी 2025 में, तभी यह संकल्प जताया गया था, ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय कारोबार को $500 अरब तक ले जाना है। हालांकि इन बीते 16 महीनों में जो उतार चढ़ाव आए उसने बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया है अंजलि, और ऐसे में उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है उस पर जोर होगा, क्योंकि 2030 तक वो लक्ष्य रखा गया है, यानी अगले 4 सालों के अंदर $500 अरब का ट्रेड ले जाना है, जो कि अभी करीब करीब $150 अरब के आसपास है। तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बहुत से जो है क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, चाहे वो पश्चिम एशिया का संकट हो या जो इंडो पैसिफिक के इलाके के जो विषय हैं वो भी होंगे। हालांकि इस मुलाकात से ठीक पहले एक बड़ा अटपटा सा फैसला अमेरिका की या ट्रंप सरकार की तरफ से आया है। 2018 में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उस समय उन्होंने अमेरिका की सेना की जो पैसिफिक कमांड है पैकॉम, उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उसे माना गया था कि ये भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई साझेदारी और हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर चीन के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनने की जो कवायद है उसके लिहाज से
0: जी।
5: लेकिन फिर से बदलाव किया गया और उसे पैकॉम कर दिया गया है, यानी उसका नाम रिस्टोर कर दिया गया
0: जी प्रणय। और इसको अब यहाँ विपक्षी पार्टियों ने उछालना भी शुरू कर दिया है, लेकिन नजर इस मुलाकात पर सबकी रहेगी, विदेशी जो जितने भी देश हैं साथ में विपक्षी पार्टियों की भी। अब से चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में मुलाकात होने वाली है। देश और दुनिया की निगाहें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस मीटिंग पर जमी हुई है, क्योंकि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से लेकर ट्रेड डील पर घमासान तक, टैरिफ वॉर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने तक, और ईरान युद्ध से लेकर अब ओमान की खाड़ी में जहाजों पर अमेरिका हमला, जो अमेरिकी हमला हुआ है उसमें मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत तक, भारत और अमेरिका के रिश्तों की खाई चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 16 महीने बाद हो रही मोदी और ट्रंप की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी।
6: मोदी ट्रंप की मुलाकात, देश और दुनिया में चर्चा जोरदार। सोलह महीने बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे, रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे? ट्रेड डील पर ट्रंप का प्लान क्या है? टैरिफ वॉर पर क्या जवाब देंगे? अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर ट्रंप क्या सफाई पेश करेंगे? ईरान के साथ ट्रंप की डील हो गई, क्या भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे? वैसे तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें अक्सर चर्चा में रहती हैं।
7: प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं।
8: One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi.
6: चाहे सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो, जिसमें पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया,
7: अब की बार ट्रंप सरकार,
6: चाहे फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम,
7: नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप,
6: राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ।
7: इंडिया यूएस फ्रेंडशिप,
6: ये अब तक की दोनों नेताओं की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जन मुलाकातों में से एक है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में वॉशिंगटन का दौरा किया था।
9: He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader.
6: इस बैठक में दोनों नेताओं ने इमिग्रेशन और तकनीकी सहयोग जैसे मामलों पर अहम समझौते किए।
10: राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है।
6: लेकिन इसके बाद से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दिन ब दिन जैसे तल्ख होते चले गए और अब पीएम मोदी की मुलाकात 16 महीने बाद फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के बाद 17 जून की शाम पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। ऐसे में इस मुलाकात से पहले तो तमाम विवाद और मुद्दे सामने हैं, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। 3 भारतीयों की मौत पर क्या सफाई देंगे ट्रंप? इस मुलाकात की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हाल ही में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस पर विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। भारतीय नागरिकों की जान जाने का मामला बेहद गंभीर है।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
14: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
15: After multiple assassination attempts, they can't even get...
16: They're reliable.
17: Always when I need them.
14: ...to live sports action.
18: One-hand jam by LeBron on the break.
19: That's another play, Steph Curry.
14: And your favorite music.
20: Well, the dawn begins to crack.
14: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
22: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
23: मिस्ड आउट ऑन योर लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड्स? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: अभी दो दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो संजय राउत दावा ऑपरेशन टाइगर की काउंटर स्ट्रेटेजी का कर रहे थे
1: और अच्छी बातचीत हो गई, आगे की रणनीति तय हो गई।
0: लेकिन दो दिन के सियासी घटनाक्रम में ही अब संजय राउत के सुर बदल गए।
1: कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं।
0: यूं तो संजय राउत ने हवाला टीएमसी में हुई बगावत का दिया, लेकिन ये बयान उद्धव की पार्टी को लेकर भी बड़ा संकेत दे रहा है। इससे भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे की वो अपील है जो उन्होंने पार्टी में टूट की अटकलों के बीच की। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहे उन्हें खुशी खुशी जाने दें। उद्धव ने कहा कि आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल जरूर आएगा। साथ ही पार्टी नेताओं से अपील करते हुए उद्धव ने ये भी कहा कि हमें धैर्य रखना होगा और इस दौर को सहना होगा। दरअसल टीएमसी में हुई बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की जोरों पर चर्चा है। इसी बीच रविवार को उद्धव ठाकरे ने मातुश्री में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। शिवसेना के कुल 9 सांसदों में 3 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे। बरबड़ी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचोरे और धारशिव सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक से दूर रहे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल पहुंचे, जबकि संजय देशमुख, नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक से जुड़े। जिसके बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया कि उद्धव की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच बीती शाम उद्धव ने बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों से स्थिति साफ करने की अपील की, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला कि शिवसेना यूबीटी में सब ठीक नहीं चल रहा। उधर इस हलचल के बीच शिवसेना नेताओं का हमला भी शुरू हो गया। दावा है कि उद्धव से सभी सांसद विधायक संतुष्ट नहीं हैं और उनमें से कुछ एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। पूरा घटनाक्रम उद्धव की चिंता बढ़ाने वाला है। पहले भी पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और अब एक बार फिर उद्धव के सामने संकट की घड़ी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच संजय राउत ऑपरेशन वुल्फ का दावा कर रहे थे, लेकिन हर दिन बीतने के साथ बात बिगड़ती जा रही है। उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। मुंबई से विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, आज तक।

क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूबीटी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की थी। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय यादव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अष्टिकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूबीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनन फानन में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहें तो कैसे करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: फ्रांस में आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर। पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार।
1: G7 समिट में ट्रंप के सामने पीएम मोदी की दोटो, कहा संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का भी मुद्दा उठाया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश।
0: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से सियासी बवंडर, टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद। स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं बागी। राव का आरोप, एडवांस मिले 15-15 करोड़।
1: दो 2027 चुनावों से पहले यूपी में सियासी उठापटक तेज। ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठे हुए वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता शामिल होंगे।
0: राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी। 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन। एसबीआई कर्मचारियों से भी पूछताछ।

0: का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ी चर्चाएं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। यूबीटी में टूट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई।
2: बनाया कोई, कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया, किसको किया किसी का पता नहीं उसको। तो हमने एक अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है, हमारा व्यू जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्यू जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम आप दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए।
3: पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने
4: जो कल की बैठक हुई है, आपको ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ कहा था आपको?
2: देखिए अभी तक तो मैं मानता हूं कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है आपके माध्यम से हम लोग हमको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहां थे, वहां हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष, अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जीना पाटिल थे और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि मैं हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से एक दो सांसद है उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा माता भवानी माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसी अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो करने कर लीजिए। हाँ दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं।
5: हाँ
2: उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और बाळासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े।
6: आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं कि किसने कैसा दिया
7: और कितने लोगों को दिया
2: गया? आ जाएगा।
8: संजय जी
2: तो अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, हमने सबको व्हिप दिया है,
7: जारी किया है
2: अरविंद जी ने और अनिल जी ने, और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है अरविंद जी ने, गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए।
9: एकनाथ शिंदे दिल्लीत आहे आणि हे सहाही खासदार दिल्लीत असल्याची माहिती मिळते।
2: नाही खरं नाही, आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणताय किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिला दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे। आता ते ट्रेन मधनं उतरले राजधानी एक्सप्रेस,
10: मीडिया त्यांच्या राजाभाऊ वाजे ने जो किया है उनका सत्कार करना चाहिए।
2: आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो,
10: निष्ठा कहते
2: हैं
10: उनकी भी सुन लीजिए।
2: उद्या नसू पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरे
10: उनका कहना है कि सांसदों ने यही कहा है कि जो भी मिला है वो हमें पद की वजह से मिला है।
2: भावासारखं प्रेम केलं
10: और उद्धव ठाकरे ने बड़े भाई की तरह से हमको प्यार किया है।
2: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा।
9: नहीं राहुल साहब, राहुल साहब एकनाथ शिंदे दिल्ली मध्ये आहेत आणि हे सहा खासदार ही दिल्लीत आहेत असं कळतंय। ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता अमित शहा यांची भेट घेतली।
2: बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहित आहे। अनिल जी
3: या संदर्भात एक
10: महत्त्वाचं बॉडीज आहेत जसे की रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडीज आहेत जसे की ईसीआय, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर, ये लोग क्या हैं ये सब लोग जानते हैं।
3: अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे। हमारे अनिल देसाई उसने ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है, किसी ने भी नहीं कहा। जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे ये खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे, बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैलावी, जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहां 4-6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है, क्योंकि पिछली बार हमने कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है, किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है संविधान के तहत जो जो आर्टिकल 10 है उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां पर है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारे लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है, लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है, कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही इतना संविधान से खिलवाड़। जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, अहिरा गहरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। बिस्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलप रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो उस चिट्ठी में लिखा है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा, पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं, पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है। हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। इसने कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया।
9: संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला अनुपस्थित राहतात, पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात।
3: हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आता, म्हणून मी आलो नाही, पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबाची, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले की आमच्या मागे नाही बोलले, आम्ही सगळे साक्ष होतो, ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती
2: नाही। आता उसमें जो
9: लीगल येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना
2: सांगतो ना सांगतो। आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे
10: सोपं नाही आहे, सांगतो
2: कोणाला वाटत असेल की आम्ही चार पाच लोक एकत्र जमलो,
10: चार पाच
2: पैसे घेतले असतील, कोणी काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलाय, कोणी अमुक काय घेतलाय,
10: मेडिकल कॉलेज
2: खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकतो.
10: ये इजी है
2: अभी नहीं अनिल देसाई की बात कर रहे
5: हैं.
2: मैं बोल रहा हूँ
5: सांसदों के साथ में भी बात हुई. सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं. जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं. सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है. वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम. और उसी के तरह शिवसेना संसदीय शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसद भवन में, संसदीय भवन में जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है. और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है. भरोसा जरूर है क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन सुनिए सुनिए तो सही. ये तो जो संजय राव जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया के तरफ से ही आ रहा है, मीडिया के तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया के तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है. तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट के तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथी में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहां बैठे सभी का है.
2: देखो हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है. ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है.
0: तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि भगवान की शपथ लेने वालों ने धोखा दिया. जाहिर तौर पर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है यूबीटी में. कल उन्होंने संसदीय दल की बैठक बुलाई है संसदीय भवन में. ये बैठक सुबह 11 बजे होनी है और साफ तौर पर संजय राउत ने कहा है जिसको जाना है वो जाए, बागी सांसदों को हम नहीं छोड़ेंगे.
1: हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ है. विद्या, बड़ा विरोधाभास प्रेस कॉन्फ्रेंस में. एक तरफ कहते हैं 15 करोड़ भी लिए, खून में बेईमानी भी है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें विश्वास है कि हमारे साथी हैं. क्या संपर्क नहीं साधा, मतलब उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रहा है तो हमें पता है, हमारे साथ अभी है सांसद वो ये भी कह रहे हैं, तो विरोधाभासी लग रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस.
10: ये साथ दर्शाता है क्योंकि वो जहां एक तरफ कह रहे हैं कि सब लोग ने शपथ ली थी, कुछ बात कह रहे हैं कि 15 करोड़ पहुंचाए गए हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे ये भी डाला था कि एक चार्टर्ड एरोप्लेन आया था और चार्टर्ड एरोप्लेन लेके गया दिल्ली. तो वही राजा भाऊ वाजे जो अभी ट्रेन से पहुंचे तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो, मैं तो इनके साथ ही हूँ, अगर मुझे भी आना होता तो मैं तो फ्लाइट से आता. तो ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं वो इसी बात को दर्शाता है कि पार्टी टूटी है. कितनों का आंकड़ा है, कितने कैसे टूट रही है ये अभी तक किसी को नहीं पता. और यही वजह है कि ये व्हिप जारी किया गया है. व्हिप जारी करने के बाद जितने सांसद आते हैं इनके पाले में उसके बाद वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर कोई व्हिप का फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो आगे की कार्रवाई दिल्ली में होगी. लेकिन ये बात जरूर है कि जितना उन्होंने कहा उसका अगर आप देखिए, संडे को बहुत सीना ठोक के उन्होंने कहा था कि नहीं सबके सब में ये ऑपरेशन टाइगर, क्या हम तो ऑपरेशन बुल्स चलाएंगे, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी. लेकिन आज जरा मिजाज कुछ अलग था, उनको समझ में आ गया है कि कुछ तो है, मामला गड़बड़ है, कुछ लोग टूट गए हैं. कितने टूटे हैं ये आंकड़ा अभी उन्हें समझ में नहीं आया.
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, समाप्त जानकारी के लिए आपका। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की करेंगे। बड़ी खबर आ रही है 2027 के चुनाव के लिए यूपी में पेशबंदी शुरू हो गई। चुनाव करीब आता देख समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ब्राह्मण समाज नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं और अब जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि सियासी संदेश जाए। आज की बैठक में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी नया रोड मैप तैयार करेगी। तो विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सब इसमें शामिल हो रहे हैं। 2027 के चुनाव का रोड मैप बनाया जा रहा है। बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए।
8: अभी तक तो पीडीए का नारा लगा रही थी और अभी तक वे पीडीए को डिफाइन भी नहीं कर पाए। कभी कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अगड़ा। वास्तव में समाजवादी पार्टी किसी भी समाज के प्रति, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित हो, उसके प्रति समर्पित नहीं है और कोई उनका एजेंडा नहीं है। आप देखिए, ये दलितों की बात कर रहे थे और दलित इनसे खिसक गया।
1: हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, यूजीसी की बात से ये कहा जा रहा था कि हाँ ब्राह्मण नाराज है, तो क्या उस नाराजगी को भुनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रहे हैं?
11: बड़ी बैठक शहर कहा जा सकता है और अगले 10 से 15 मिनट में ये बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में शुरू होने वाली है, जिसमें आप समझे कि जो माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष है, सनातन पांडे सपा सांसद है, अन्य बड़े नेता एकत्रित हुए हैं। सभी जीते हुए कैंडिडेट, चाहे वो सांसद हो चाहे वो एमएलए हो ब्राह्मण, चाहे वो एकत्रित हुए हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती हर साल समाजवादी पार्टी मनाती है, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में ये पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि वो ब्राह्मण वोट को रिझाने का प्रयास करता है, वो भी तब जब विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मण नाराजगी है। अब वो है या नहीं है वो समय बताएगा, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये सबसे बेहतर मौका है कि ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्ण वोटों में भी पैड बनाई जा सके, साथ में पीडीए की साइकिल भी चलती रहे। अब देखना ये है कि बैठक से क्या कुछ कितने निर्णय निकलते हैं और पार्टी के लिए क्या कुछ फेवर में इसमें जाता है। जी
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकना होगा से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
14: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
15: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
14: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
16: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
17: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: इन एसोसिएशन विद
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
7: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Patrakarta ke gur yahan nahi sikhe to kya sikhe? Naam hi kaafi hai. India Today Media Institute register karne ke liye visit kare www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। भगवंत मान पर गुरुद्वारे के दान पात्र को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। दरअसल ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो को लेकर झूठ बोला। उनका कहना है कि पांच सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है।
1: पहला तो इन्होंने पंजाब नाल गद्दारी की, हुण इन्होंने पंथ नाल भी गद्दारी की। मैं तो कहना भी तुरंत प्रधान मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।
2: ये वीडियो असली है, एआई दे नाल नहीं बनाई है। ये रिपोर्ट ये किथे कहती है कि उस वीडियो दे विच कौन व्यक्ति है?
0: आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर विवाद है उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति भगवंत सिंह मान है या कोई और, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो को लेकर अपनी बात साबित करने के लिए भगवंत मान से सबूत मांगे गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
6: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
5: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
7: हैं। काशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
5: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
7: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
5: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2,00,000 यानी 2-4%, फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5-5%, और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70,000-80,000 यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
7: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत के स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: फ्रांस में आज प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर। पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार।
1: G7 समिट में ट्रंप के सामने पीएम मोदी की दो डू, कहा संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश।
0: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से सियासी बवंडर टूट सकते हैं उद्धव गुट पे, 9 में से कुछ सांसद। राउत बोले अगर किसी ने दगा दिया तो छोड़ेंगे नहीं, स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं बागी।
1: दो हजार 2027 से पहले यूपी में सियासी उठा पटक तेज, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता शामिल होंगे।
0: राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी। 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई कर्मचारियों से भी पूछताछ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।

0: और अब बात करेंगे लोकसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत की, क्योंकि चर्चा लगातार चल रही है कि क्या दो तिहाई बहुमत यानी 540 की लोकसभा सीटों में 360 वाले प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ने लगा है। जहां टीएमसी के 20 सांसद आ चुके हैं, वहीं अगर उद्धव गुट के सांसद टूटकर एनडीए के साथ आ जाते हैं तो मानसून सत्र में संशोधन विधेयक या परिसीमन विधेयक आता है तो गैर हाजिर रहकर एनडीए का काम बन सकता है।
1: तो मोदी सरकार के पास दो तिहाई बहुमत आ गया तो सबसे बड़ी परीक्षा परिसीमन बिल को पास करवाने की हो सकती है, जिससे 2029 के चुनाव पर सीधा असर होगा और इसी को लेकर विपक्ष में घबराहट है।
0: लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों को लेकर संजय राउत ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बागी सांसदों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांसदों ने साई बाबा, मां भवानी और अपनी मां की शपथ ली है, इसके बावजूद अगर कोई दगा देता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें जिताने के लिए दिन रात एक किया, हमने जितना हो सका संसाधन दिए, हमारे सांसद शिवसेना के चुनाव चिन्ह मशाल पर चुने गए जिसके नेता उद्धव ठाकरे हैं, अगर कोई पाला बदलता है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। राउत ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिन्हें जाना है वो इस्तीफा देकर जा सकते हैं, हमने व्हिप जारी किया है, हमने ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है।
2: हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया, और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठे, अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने, इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो।
1: और अब बात करते हैं लोकसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत की, क्योंकि चर्चा लगातार चल पड़ी है कि क्या दो तिहाई बहुमत यानी कि 540 की लोकसभा में 360 वाले प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ने लगा है। जहां पर टीएमसी के 20 सांसद आ चुके हैं, उद्धव गुट के भी सांसदों के टूटने की खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कुछ और छोटे छोटे दलों के सांसद या तो समर्थन में आ सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं।
3: वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
4: वो संख्या बल जिसका एक ट्रेलर पश्चिम बंगाल से नजर आ चुका है, जहां से 20 सांसद टीएमसी के बागी हो चुके हैं, एनडीए को समर्थन कर चुके हैं। वो संख्या बल जिसका दूसरा ट्रेलर महाराष्ट्र में दिखने लगा है, उद्धव ठाकरे के खेमे में बगावत की बू आने लगी है। वो संख्या बल जिसके दम पर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में अब महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल न सिर्फ सरकार पेश कर सकती है बल्कि पास भी करा सकती है।
3: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है।
4: ये बात प्रधानमंत्री को तब कहनी पड़ी जब 3 दिन के विशेष सत्र में अप्रैल के महीने में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल और परिसीमन बिल पास नहीं करा पाई, क्योंकि तब विपक्ष एकजुट था।
5: ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, माइक इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, माइक दिखाओ, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है।
4: 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, विरोध में 230। मोदी सरकार को तब लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला था। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चलें तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां दो तिहाई बहुमत 360 होता है, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसदों तक पहुंचा, यानी दो तिहाई बहुमत से 62 सांसद कम।
6: दरअसल इस संशोधन को पारित करने के लिए भाजपा को दो तिहाई संख्या बल की जरूरत थी। जैसे ही ये संशोधन गिरा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि भले ही कल हमारे पास संख्या बल ना हो लेकिन हमारा आत्मबल मजबूत है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब भाजपा की नजर आने वाले मानसून सत्र पर है और किसी भी तरीके से वो संख्या को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है।
4: वो जोर कलकत्ता से दिल्ली तक दिख रहा है, जब पर्यावरण मंत्री के घर बैठक से लोकसभा स्पीकर के पास तक ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद पहुंच गए, एनसीपीआई नाम की पार्टी में विलय दिखाया और एनडीए को समर्थन का ऐलान कर दिया।
7: हमारे जो
8: नहीं हो रहा कोई
7: सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
4: तो फिर 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए के 298 वाले समर्थन में 20 सांसद जुड़ जाने का मतलब है कि ये संख्या 318 हो जाती है। अब चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो सकते हैं। अभी उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन ना लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। उद्धव ठाकरे की बैठक में दावा है 5 सांसद मौजूद नहीं थे। अगर उद्धव के 6 सांसद बागी हुए तो एनडीए का नंबर 324 तक जा सकता है।
9: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में है? आपकी जो
10: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
11: भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा।
4: उद्धव ठाकरे के सांसद टूटे तो भी 2/3 बहुमत से एनडीए लोकसभा में दूर दिखता है और तब दावा है कि तमिलनाडु में जो राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर टीवीके से हाथ मिलाया तो डीएमके से हाथ मिले न मिले साथ जरूर एनडीए पाना चाहता है, जो डीएमके संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की जगह मांग चुकी है, जिस डीएमके की नाराजगी का अंदाजा राहुल गांधी भांप चुके हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक में कह चुके हैं कि डीएमके को मनाया जाएगा, लेकिन क्या स्टालिन मानेंगे? जिन्हें बीजेपी ये बताना चाहेगी कि देखो अगर आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो आबादी कंट्रोल करने वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु का नुकसान होगा, लेकिन 50% सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले से तमिलनाडु का शुभ लाभ है। और तब क्या 298 प्लस टीएमसी के बागी 20 प्लस उद्धव के अगर 6 बागी हुए और डीएमके के 22 सांसदों का साथ मिला तो ये नंबर एनडीए के लिए 346 तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी 540 की लोकसभा में 2/3 नंबर 360 से ये संख्या 14 कम है। दावा इसके बाद ये भी है कि जेएमएम के 3 समेत कुछ अन्य छोटे दल के सांसद या तो समर्थन दे सकते हैं या वोटिंग में गैर हाजिर रह सकते हैं, तो इस रणनीति से एनडीए 2/3 वाले नंबर तक पहुंच सकता है।
12: पिछली बार जो कि ये अधिनियम गिर गया था और 2/3 मेजोरिटी नहीं होने की वजह से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह 2/3 मेजोरिटी बनाई जाए और उसके लिए वो टीएमसी को भी और उधर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को भी और भी कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी इस तरह की है तो उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
3: हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
6: सत्ता पक्ष की ये कवायद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने प्रयासों में सफल हो जाती है और महिला संशोधन विधेयक वाकई में पारित होता है तो न सिर्फ इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में असर पड़ेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा भी इससे बदल सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत आ गया तो सबसे बड़ी परीक्षा परिसीमन बिल को पास करवाने की हो सकती है, जिससे 2029 के चुनाव पर सीधा असर देखा जाएगा और इसी को लेकर विपक्ष में घबराहट है।
13: यू आर टेलिंग द साउथ इंडियन स्टेट्स You are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing.
4: जिस परिसीमन बिल को देश विरोधी बताते हुए विपक्ष ने पास नहीं होने दिया कि सरकार ने उसे पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत जुटा लिए।
13: So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state.
4: बड़ी बात है कि असम में बीजेपी की प्रचंड जीत में परिसीमन एक अप्रत्याशित फैक्टर साबित हुआ, जिसने असम में बीजेपी के दोनों विरोधियों कांग्रेस और AIUDF के सामने अस्तित्व का संकट लाकर खड़ा कर दिया। सवाल है कि संसद में परिसीमन बिल पास होने से क्या विपक्ष के सामने ऐसा ही संकट पैदा हो सकता है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इसे पास नहीं होने देना चाहते।
13: व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग इज टेकिंग अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड स्नैचिंग दैट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू। यू विल सी वी विल डिफीट दिस बिल राइट हियर।
4: अप्रैल में विपक्ष ने परिसीमन बिल को पास नहीं होने दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। मौजूदा माहौल में परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाकर पास करवाए जाने की चर्चा हो रही है।
3: कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ, वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।
4: इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सुझाव भी आया, जिसने भविष्य में लोकसभा सीटों के विस्तार का एक खाका खींच दिया है। इसमें लोकसभा की सीटें 824 करने के लिए सिर्फ 170 बड़े लोकसभा क्षेत्र में से 59 को दो भागों में और बाकी 111 को तीन तीन लोकसभा क्षेत्रों में बांटने का सुझाव शामिल है। बीजेपी को नए सिरे से परिसीमन विधेयक लाने का हौसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मिला। यहाँ के सत्ताधारी रहे दोनों दलों ने अप्रैल में लोकसभा में विधेयक पास नहीं होने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन टीएमसी टूट गई है। वहीं डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। इसी बात से बीजेपी के हौसले बुलंद है, क्योंकि वो पहले से ही परिसीमन को लेकर डीएमके जैसे दलों की मांग को स्वीकार करने को तैयार रही है।
3: ये झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा।
4: अब सवाल है कि परिसीमन को लेकर बीजेपी इतनी उतावली क्यों है? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है? इसे समझने के लिए ताजा उदाहरण असम का है। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या घटकर 35 से 22 हो गई। हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या 126 ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मगर परिसीमन ने प्रतिनिधित्व के समीकरण को बदल दिया, जिसलिए मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम रही, जबकि असम के मूल निवासी 90 सीटों के मुकाबले 103 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगे। 2023 के परिसीमन से न केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व कम हुआ जहां बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं का लंबे समय से दबदबा रहा था, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो जाती है, अनुसूचित जाति की सीटें 1 से बढ़कर 9 हो गई
14: की बात की गई है। जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू एंड कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए।
4: इस तरह असम की नई चुनावी भौगोलिक परिस्थिति ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के संतुलन को बिगाड़ दिया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की।
15: तो अभिषेक जी को, अमित शाह जी को साइलेंस देने का दरकार नहीं है। चार तारीख रिजल्ट होगा, 6 तारीख अभिषेक जी दुबई चला जाएगा।
4: परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को प्रभावी ढंग से लोकसभा और विधानसभाओं में लागू किया जाना है। परिसीमन को वन नेशन वन इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि 2029 में देश भर में एक साथ चुनाव कराया जा सके। इस तरह परिसीमन बिल नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े एजेंडे की पहली सीढ़ी है, जिसे लेकर मोदी पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। बड़ी बात यह कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तय की गई सीमाओं और सीटों को संसद या राज्य विधानसभा बदल नहीं सकती, वो केवल इन्हें स्वीकार करती है। साउथ इंडियन स्टेट जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, जिसके परिणाम प्रकाशित होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में 3 साल तक का समय लग सकता है, यानी सरकार की तैयारी 2029 को लेकर साफ मानी जाती है।
1: एक बड़ी खबर आपको देते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है और जो सवाल उठ रहे हैं, जांच भी चल रही है और जो SIT अपनी इन्वेस्टिगेशन करे लगातार, दूसरे दिन भी वो मंदिर परिसर में पहुंची जांच की है। जांच टीम चढ़ावे की चोरी का सच जानने में जुटी हुई है। आरोप लगने के बाद से चंपत राय के ड्राइवर ने पहली बार सफाई भी दी है।
0: तो कल राम मंदिर परिसर में 11 घंटे तक SIT ने जांच पर रखी। इसमें CCTV फुटेज शामिल था, इसमें वो कर्मचारी शामिल थे जिनकी अनियमित संपत्ति मिली। कहा जा रहा है कि कईयों ने महंगे मोबाइल फोन और घर खरीद लिए हैं। अब ऐसे कर्मचारियों पर SIT की निगाह है।
1: 9 कर्मचारी हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां मिली हैं। 9 कर्मचारियों के पास महंगी गाड़ियां, मोबाइल फोन, तमाम चीजें मिली हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ साथ SBI के कर्मचारी भी, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मतलब पूरे के पूरा जो लोग इससे जुड़े हुए थे, नोट गिनने से लेकर गड्डियां बनाने से लेकर बैंक तक जाना, तमाम प्रक्रिया जो लोग देख रहे थे उसमें जो इन्वॉल्व रहते थे, सबसे पूछताछ हो रही है।
0: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
19: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
20: Sokudo.

आस्था के राम, श्रद्धा के राम, पौरुष के राम, मर्यादा के राम, 500 बरस की प्रतीक्षा, हजारों लाखों का बलिदान, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों के दान के बाद बना अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर। किसी ने सोचा ना था भगवान राम के अवधपुरी में चोर के नाम का शोर होगा। चोर चोर का शोर ऐसा मचा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। जिन छोटे कर्मचारियों पर आरोप है उनमें से चंपत राय के ड्राइवर रहे मंदिर के सेवादार चिन्नू यादव जरूर इनकार करने लगे। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे। जांच टीम की मदद के लिए जिले की पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर की ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला कि जांच में एसआईटी की जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 45 से अधिक लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेनदेन और प्रॉपर्टी निवेश की वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल दो हफ्ते पहले राम मंदिर के दान पात्र में से चढ़ावे की चोरी का सियासी आरोप शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, फिर विनय कटियार ने सवाल उठाए। तब तक ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया जाता रहा, लेकिन खबर है कि फिर बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी और तब सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू कराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी आरोपों से अलग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे संतोष दुबे नाम के पुराने कार सेवक जिन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर देकर ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की चिट्ठी जरूर लिखी गई है, क्योंकि नेताओं ही नहीं संतों को भी लग रहा है कि मंदिर के दान खाते की रकम में कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभु राम में असंख्य सनातनियों की आस्था और योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास का सम्मान रखते हुए एसआईटी 7 दिन में अंतरिम और 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: चोर चोर का शोर ऐसा मचा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची, तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे थे। जांच टीम की मदद के लिए जिले के पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। इन्हीं गोपाल राव को जब मीडिया ने दो बार मंदिर में आते जाते देखा तो सवाल पूछे और गोपाल राव चुप रहे। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन की जांच में एसआईटी के लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज में महाकुंभ कराने के अनुभवी रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को परख रहे थे। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सीबीआई का तजुर्बा है, जो चोरी की संभावना और तरीके की जाँच कर रहे हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन अकाउंट बुक देख रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई जांच लगातार 8 घंटे चली और इस दौरान जांच टीम ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दिन जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची। फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 लोगों से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की भी वित्तीय जाँच शुरू हो चुकी है।
6: करीब 4 महीने से युद्ध की वजह से वैश्विक संकट से गुजर रही दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है और इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरूमध को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया है और साफ किया है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। ये महान समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया के बाद क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दोनों दिशाओं में तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी शांति समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के अंतिम मसौदे पर सहमति की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं। समझौते के तहत युद्ध और सैन्य अभियानों को समाप्त करने के साथ साथ परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों को लेकर आगे की वार्ता का रास्ता भी खुल सकता है। शांति समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी उछाल दर्ज की गई। उधर ब्रिटेन, कतर, जापान समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। अगर तय कार्यक्रम के मुताबिक स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये हाल के सालों में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं, जब इस ऐतिहासिक समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रिपोर्टों पर चर्चा के आसार। G7 समिट में ट्रंप के सामने पीएम मोदी के दो टू, कहा संसाधन नहीं भरोसे की कमी से जूझ रही है दुनिया। होर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश भी। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से सियासी बवंडर, टूट सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से कुछ सांसद। राउत बोले अगर किसी ने दगा दिया तो छोड़ेंगे नहीं, स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं बागी। 2027 से पहले यूपी में सियासी उठापटक, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, वर्तमान और पूर्व एमपी एमएलए समेत कई नेता शामिल। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रहे हैं एसआईटी, नौ कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां, कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ।

0: ढौंडियाल दोपहर के 12 बज के आप देख रहे हैं 12 बजे 12 रिपोर्टर और इस बुलेटिन की शुरुआत आज हम बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरें अब तेज हो गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के बाकी सांसद अब लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यूबीटी के 6 सांसद बागी हैं, 6। हालांकि संजय राउत ने कहा कि सिर्फ 2 सांसदों ने बगावत की है। ऐसी खबरों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में मौजूद हैं। खबर है कि उद्धव गुट के बागी सांसद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितने बजे चिट्ठी लेकर पहुंच सकते हैं बागी सांसद?
1: देखिए, अभी स्पीकर जो है वो लोकसभा के अंदर गए हैं, उनका एक कार्यक्रम है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज जो है बागी सांसद जो है वो एक चिट्ठी देंगे और चिट्ठी के बिहाव पर वो मांग करेंगे कि उनके एक अलग गुट को जो है वो मान्यता मिल जाए। और इसी बिहाव पर जब उनको मान्यता मिल जाएगी तो वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो जाएंगे। ये एक हमारे को अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 6 सांसद जो है वो बागी हो सकते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से।
0: जी मानसु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बगावत की ऐसी खबरों के बीच में शिवसेना उद्धव गुट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बागी सांसदों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन सांसदों के लिए उद्धव ने जो हो सकता था सब किया, लेकिन अब किसी ने दगा दे दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। संजय राउत ने कहा कि हमने व्हिप जारी कर दिया है, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है।
2: ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं। ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और बाळासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है।
3: आखिरी चरण में पहुंच चुका है, वैसे वैसे महाराष्ट्र में सियासत हलचल तेज होते नजर आ रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के बागी सांसद दिल्ली का रुख कर चुके हैं और वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक अलग गुट स्थापन करने के लिए पत्र देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सेना के सांसद और नेता संजय राउत इन बागी सांसदों को गद्दार करार देते हुए उन्हें सजा देने का अब इशारा दे रहे हैं। आखिरकार जनता सब देख रही है और आने वाले दिनों में ये राजनीतिक हलचल किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
0: शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच में अब सियासत तेज हो गई है।
4: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
5: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर। बंगाल की सियासत की टीएमसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के मामले में स्पीकर की भूमिका पर सुनवाई होने वाली है। वहां पर स्पीकर ने रविप्रसाद बैनर्जी को अपना उन्होंने जो है नेता विपक्ष चुना है, जिसे लेकर टीएमसी हाईकोर्ट भी पहुंची है। दोपहर लगभग 2 बजे इस मामले में सुनवाई होने वाली है।
6: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसकी लड़ाई का अखाड़ा अब कोलकाता हाईकोर्ट भी बन चुका है। जहां स्पीकर ने ऋतुप्रतो को नेता प्रतिपक्ष चुना है, वहीं शोभनदेव चट्टोपाध्याय जिन्हें टीएमसी ने नेता प्रतिपक्ष पहले चुना था, उन्होंने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है और सुनवाई भी हो चुकी है। पहले दिन की सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है और हाईकोर्ट में आज भी ये सुनवाई चलेगी। तो आखिरकार ये जो मामला है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे मिलेगा, हाईकोर्ट के फैसले पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है।
0: 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली और परीक्षा से पहले केंद्र सरकार के सख्ती के बीच में सियासत भी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है, इसीलिए टेलीग्राम बैन करने जैसे बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। उधर यूपी के सीएम योगी ने ऐलान किया है कि नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार ने भी सरकारी बसों में अभ्यर्थियों की यात्रा फ्री करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी दूसरी तरफ आज कोटा में छात्रों के बीच कार्यक्रम करने वाले हैं, वहां तैयारियां भी हो चुकी हैं।
7: 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा है, एक तरफ सरकार सख्ती दिखा रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार पेपर लीक तो रोक नहीं सकती तो टेलीग्राम को बंद करके ऐसे बेतुके कदम उठा के पर्दा ढक रही है। वहीं राहुल गांधी कोटा में होंगे, छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम में वो छात्रों से संवाद करेंगे और ये नीट की परीक्षा के कुछ ही दिन पहले है, यानी कि राहुल गांधी लगातार पेपर लीक को लेकर जिस तरह मोदी सरकार पर तीखे तेवर इख्तियार किए हुए हैं, हमलावर है, तो यहाँ कोटा जो कि कहा जाता है कि एक गढ़ है छात्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए, यहाँ से वो एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब अयोध्या से जो गंभीर खबर है उसका रुख करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की एसआईटी जांच कर रहे हैं और जांच का तीसरा दिन हो गया है, तीसरा दिन चल रहा है। अब तक अधिकारी दो दिनों में 19 घंटों की तफ्तीश कर चुके हैं। राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले हर कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने लगभग दर्जन भर पेन ड्राइव में सीसीटीवी का डेटा लिया है, इसकी जांच होगी। अपूर्व कर्मचारियों से भी पूछताछ की तैयारी है। एसआईटी ने एसबीआई के बैंक कर्मचारियों से भी उनके कामकाज पर डिटेल में पूछताछ की है, लेकिन इस मामले में एक आरोपी रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू तमाम आरोपों को नकार दिया है।
8: अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर एसआईटी ने अपने 19 घंटों की पिछले तीन दिनों से अपनी तफ्तीश पूरी की है। इस 19 घंटों में कई पेन ड्राइव्स हैं, उनको जब्त किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा जो पूर्व में कर्मचारी कार्य करते थे अब उनके ऊपर भी पूछताछ की रडार है। साथ ही साथ जो दान की गिनती करते थे एसबीआई के कर्मचारी, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की है। इस पूरे मामले पर अब एसआईटी ने इस 19 घंटों में कई अहम दस्तावेज के साथ पेन ड्राइव्स को जब्त किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर रमाशंकर उर्फ टिल्लू यादव ने सारे अपने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सियासी रंग भी ले चुका है और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
9: आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले?
10: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
11: जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे।
0: फ्रांस के एवियां में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा मुलाकात होने जा रही है। इस दौरान दोनों में वेस्ट एशिया के हालात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, यूएस एनर्जी इंपोर्ट पर बातचीत की पूरी संभावना है। भारत और यूएस लंबे समय की एनर्जी पार्टनरशिप करना चाहते हैं।
12: फ्रांस के एवियां में G7 शिखर बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की औपचारिक मुलाकात होगी। ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 16 महीनों के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आए उसके बाद ये मुलाकात तय करेगी कि रिश्तों की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। दोनों नेताओं के पास यूं तो उठाने को बहुत से मुद्दे हैं, चर्चा के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट, दोनों देशों के बीच में ऊर्जा कारोबार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के जुड़े हुए मुद्दे, और साथ ही दोनों देशों के बीच जो बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील यानी जो ट्रेड समझौता है, वो विषय ऐसे होंगे जो कि चर्चा की टेबल के ऊपर सबसे प्रमुखता से उठाए जाएंगे।
0: G7 समिट से प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर पीएम ने कहा कि मित्र देशों को भी इससे नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना के हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया गया। पीएम ने G7 समिट में इस विषय को उठाते हुए कहा कि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा है। भारतीय नागरिकों की जो जान गई है वो संघर्ष में जान गई है, ये साझा जिम्मेदारी है सभी देशों की कि वो सुरक्षित रहें। ये विषय जी सेवन में उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भी सुरक्षित खुले रहे। अब द्विपक्षीय बैठक पर सबकी निगाह है, क्या चूंकि अमेरिका पर एक गंभीर आरोप है नाविकों को एक तरह मारने के, तो क्या अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री स्ट्रांगली इस बात को रखेंगे? तो एक तरफ अमेरिका और ईरान शांति समझौते के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के ड्रोन हमले नहीं रुक रहे हैं, फिर से हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमलों में 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। हमले को लेकर ईरान ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे हमलों का करारा जवाब मिलेगा।
13: एक तरफ शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांति समझौते पर आखिरी मुहर लगने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान में इजराइल ने ड्रोन से हमले किए, 3 गाड़ियों को निशाना बनाया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि शांति समझौते की पहली शर्त ये थी कि युद्ध कहीं नहीं होगा, यानी कि लेबनान के मोर्चे पर भी कोई हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा देखेगा और वो तय करेगा उसके नियम क्या हैं, जिसको लेकर के ईरान ने कहा है कि वो इन हमलों का जवाब देगा, पलटवार करेगा, कार्रवाई करेगा, और ऐसे में पूरी की पूरी शांति समझौते की प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच में डील पर दस्तखत में अब महज 2 दिन बचे हैं, दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। ट्रंप ने ताजा बयान दिया है जिसमें फिर दोहराया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस मुद्दे पर फाइनल डील में फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। स्विट्जरलैंड के शहर में 19 जून को समझौते पर दस्तखत होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर उसके साथ ही डील का पूरा पहला जो चरण है वो पूरा हो जाएगा। समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में तैयारियां भी पूरी हैं।
14: अमेरिका और ईरान के बीच शांति संधि होने जा रही है। इस शांति संधि पर हस्ताक्षर होने में महज 2 दिन बचे हैं। इसी बीच दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी जारी है। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताजा बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी बात दोहराई है कि भविष्य में ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ईरान अब ऐसा नहीं करेगा। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार तमाम पहलुओं पर यह शांति संधि होगी और लेबनान समेत तमाम मुद्दों पर शांति संधि होगी और लेबनान में भी ये युद्ध समाप्त होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक बार जब तमाम पहलुओं पर शांति संधि जो है पूरी हो जाएगी तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। इसमें तकरीबन 60 दिन का समय लग सकता है।
0: समझौते का असर दिखने लगा है सुरक्षा चिंताओं के बीच में। स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूस से जहाजों की आवाजाही को लेकर सकारात्मक माहौल है, इसे लेकर आज फिर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च के बाद आज क्रूड ऑयल का भाव $80 प्रति बैरल के भी नीचे पहुंच गया है।
15: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील के बाद धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना शुरू हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि अब शुक्रवार को जब अमेरिका और ईरान के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे उसके बाद पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर के जहाजों के लिए और आवाजाही के लिए बिना किसी रोक टोक के खुल जाएगी। जाहिर है उसका बड़ा लाभ भारत को भी मिलेगा। फिलहाल जो अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार लुढ़क रही हैं। $80 से भी नीचे अब क्रूड के दाम आए हैं और आने वाले दिनों में ये दाम और भी नीचे गिर सकते हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टों में अब बात करेंगे बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। साफ साफ कहा कि अब अपराधियों के पास केवल 2 विकल्प है, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा या शमशान जाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है।
16: बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी।
17: बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब बिहार में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वो बिहार छोड़ दें या नहीं तो उन्हें शमशान जाना पड़ेगा। हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार में एनकाउंटर्स की घटना बढ़ी है उसको लेकर साफ है कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से कटिबद्ध है। सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है।
0: अब खबर रांची की, जहां पर आरएसएस के दफ्तर पर बम से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और जांच इस समय चल रही है। तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। आरएसएस का दफ्तर है और बाहर ये बम से हमला होता, हालांकि देखिए उसके बाद वो भाग जाते हैं लेकिन विस्फोट नहीं होता।
18: आरएसएस का ये दफ्तर है, देर रात 12:30 बजे के आसपास दो जो है बम यहाँ पे फेंकने की कोशिश की गई, हालांकि इससे आरएसएस दफ्तर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और दफ्तर से पहले ही बम विस्फोट हो गया था। यहाँ देख सकते हैं गहमा गहमी का माहौल है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है और यहाँ ये जो है दफ्तर के अंदर ये अब तमाम लोगों का विजिट हो रहा है संगठन का और ये यहाँ देख सकते हैं इस पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहीं पे जो है आप देख सकते हैं कि बॉम्ब हल किया गया था, ये यहाँ पे आपको देखिए उसके आपको जो है डेब्रिज जो है वो आपको दिख सकता है।
0: वर्ल्ड कप के मुकाबले में फ्रांस ने जो है सेनेगल को 3-1 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया और इस जीत के हीरो रहे एम्बाप्पे। उन्होंने सेनेगल के खिलाफ दो गोल मारे और इन दो गोल के साथ एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप में कुल 14 गोल अब तक दाग लिए हैं और वो फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए।
19: फीफा वर्ल्ड कप में शानदार मुकाबला देखने को मिला जहां पर फ्रांस और सेनेगल आमने सामने थे। कल्याण एम्बापे की टीम ने सेनेगल को 3-1 से हराया, लेकिन इस मुकाबले में कल्याण एम्बापे ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल यानी कि करीब 58 गोल उन्होंने किए हैं और वो इस वक्त लीडिंग स्कोरर है फ्रांस के लिए। इस मुकाबले में जहां एक तरफ सेनेगल पीछे ही रही, वहीं दूसरी तरफ कांटे की टक्कर फ्रांस से सेनेगल को मिलती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब से ऐसा लग रहा था कि क्या सेनेगल गोल ओपन भी करेगी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार जो अटैक हो रहे थे कल्याण एम्बापे की तरफ से, फ्रांस की टीम की तरफ से, उससे सेनेगल इस पूरे मैच में उभर नहीं पाई और नतीजा ये हुआ कि फ्रांस इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुआ। न सिर्फ इतना ही बल्कि कल्याण एम्बापे कप्तान, उन्होंने 58 गोल टोटल फ्रांस के लिए किए जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक टीम के लिए है।
0: 12:12 रिपोर्टर में रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
21: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
22: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
24: पहली पसंद

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।

0: Take It Easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है।
7: और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी।
8: माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी जिन पर बुलडोजर चल रहा है।
9: यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनावी पंडितों के लिए ये अनुमान और आकलन का विषय हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पहेली को उन्होंने सुलझा लिया है, इस गुत्थी की गांठ उन्होंने खोल दी है। आप जानना चाहेंगे तो ये आप खुद योगी आदित्यनाथ से सुन लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर बता दिया है कि उन्हें माफियाओं का हिसाब किताब करना कितना पसंद है, और अगर ये विषय उन्हें इतना ही प्रिय है तो चुनावी मंचों से ऐसे बयानों की झड़ी लगना भी लाजमी है। लेकिन सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं, उस माफियागिरी की पूरी कहानी बताते हैं जिसका जिक्र अभी अभी आपने सीएम योगी से सुना। राजधानी लखनऊ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया था। सरोजनी नगर क्षेत्र में स्थित करीब 57 एकड़ जमीन, जो पहले ग्राम समाज के नाम से दर्ज थी, उसे कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाकर बेच दिया गया। जांच में सामने आया कि जमीन पहले आधुनिक सहकारी गृह समिति और फिर एक निजी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर पहुंच गई। आरोप है कि इस पूरे खेल में भू माफिया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच कराई जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद 2 FIR दर्ज हुई और 17 दिसंबर 2015 को प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। बाद में पुलिस विभाग के प्रस्ताव पर ये जमीन पुलिस अकादमी को हस्तांतरित कर दी गई। अब इसी भूमि पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित किया जा रहा है। तो अब योगी ये बताने में कतई नहीं हिचकते कि 2027 के प्रचार युद्ध में कानून व्यवस्था और माफिया राज से मुक्ति उनका ब्रह्मास्त्र होने जा रहा है। योगी का एक और बयान सुनिए। शायद योगी यही कहना चाह रहे हैं कि जिसकी गोद में आकर बच्चे खुश हो जाते हैं उनके हाथों में यूपी भी महफूज है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार।
1: लोक भवन में रोजगार का बड़ा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन, तेज आवाज वाले डीजे पर रोक, योगी बोले कि मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। सीएम योगी का निर्देश, 10-12 फीट से ऊंचे ताजियों की अनुमति नहीं है, शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। मुहर्रम से पहले संभल में हाई अलर्ट, डीएमएसपी ने संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च निकाला। जुलूस मार्ग का निरीक्षण हुआ, तीर्थस्थल पर अवैध कब्जे हटाने का निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में प्रशासन जुटा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच, 19 घंटों की पूछताछ में कई कर्मचारियों से हुए सवाल। दान पात्र से लेकर बैंक तक प्रक्रिया खंगाली गई, एसआईटी ने सीसीटीवी और डेटा के आधार पर जांच बढ़ाई। डिंपल यादव का राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला, के राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों के विस्तार के कार्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी नेता विनय कटियार ने अपना रुख बदला, पहले चंपत राय पर गंभीर आरोप थे, अब कहा कि मामले की सच्चाई एसआईटी उजागर कर देगी। बीजेपी नेता विनय कटियार बोले कि ये जितने हैं सब चोर हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि जैसे बड़े कार्य में समय लगा, लेकिन इस मामले में जल्दी एफआईआर होगी और कार्रवाई तय भी होगी। करण भूषण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव का मुद्दा उठाना उनका काम है लेकिन सत्ता उनसे दूर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने राम मंदिर दान विवाद पर कहा कि मुझे बेवजह इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है, पापियों को तो सजा मिलेगी, विपक्ष चिंता ना करे। बागे बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं और रख रखाव पर मंथन। बागे बिहारी मंदिर समिति की बैठक में व्यवस्थाओं पर चर्चा, 200 किलो के झूले के जीर्णोद्धार का निर्णय। 2027 की तैयारी में बीएसपी मायावती ने ओबीसी नेताओं के साथ की बैठक, पीडीएस समीकरण को चुनौती दी। दलित ओबीसी गठजोड़ मजबूत करने की कवायद, मायावती ने जमीनी अभियान तेज करने के निर्देश दिए, मायावती बोले कि 2007 जैसा समर्थन फिर मिलेगा। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, भारी पुलिस बल तैनात, पीएसी बल की मौजूदगी में निर्माण ढहाएगा। 20 जून के बाद वाराणसी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने बताया, अवैध और मल्टी मॉडल टर्मिनल के आड़े आने वाला यह निर्माण था। रामपुर में टीएमसी में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज बोला कि जब तक पावर तब तक प्रेम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली कार्गो फ्लाइट, चेन्नई से पहुंचा मालवाहक विमान। तो यूपी वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, वाराणसी को जल्दी मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, निर्माण का 90% काम पूरा। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ, गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा, दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। प्रयागराज में प्रेमिका से शादी से इनकार और मिलने पर रोक बनी, प्रेम की जो है कत्ल की वजह, प्रेमी ने दादा दादी और बुआ की हत्या कर दी।

0: और उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। जी हां, सपा में टूट का दावा कर रहे हैं। एनडीए के मंत्री राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि महाराष्ट्र बंगाल की बात छोड़िए, यूपी में पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। ओपी राजभर ने एक साल पहले मार्च के एक वीडियो का हवाला भी दिया और कहा कि राम गोपाल वर्मा ने एक पर्ची केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी दी थी। रामगोपाल यादव ने पर्ची दी थी और राजभर का कहना है कि खनन घोटाले से लेकर गोमती रिवर फ्रंट तक के घोटाले में कौन फंसा है ये सब जानते हैं। राजभर ने क्या कहा है सबसे पहले सुनाते हैं आपको।
1: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब चार महीना रह गया है चुनाव को,
2: है ना? अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
1: क्या लिखा?
2: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
1: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या?
2: क्या लिखे बतावे रामगोपाल, राम गोपाल जी बताओ कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम है। आई जो तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो योगी जी के, इनकी जान बचौले रहा मंचवा पर।
1: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
2: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे ही इधर से टूट के अब जाएंगे। आ रहा है बिल ना, महिला बिल पास होना है ना, समझ में आ रहा है बात ना?
0: ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ा दावा किया और रामगोपाल यादव के संदर्भ में उन्होंने उस चिट्ठी के संदर्भ में बहुत सारी बातें भी की और सपा के टूटने का दावा भी वो कर रहे हैं कि अब इनका भी पेट भर गया है। लेकिन इस दावे का खंडन किया है समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने कटाक्ष भी किया कि वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता।
3: जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की, तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं, आपके दल में एक भी एमएलए जीत करके नहीं आने वाला है।
0: तो भी राजभर चुनावों से ठीक पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के अंदर टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, भले इस अफवाह को खुद बीजेपी वाले नकार दें। लेकिन उधर यूपी से एक दूसरी बड़ी खबर भी है। यूपी में बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण वोट तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा लगा है। यूपी में बीजेपी को मिल रहे लगभग 90% ब्राह्मण वोट को कैसे एसपी अपने पाले में लाए, इसके लिए आज अखिलेश यादव मंथन करने वाले हैं। अब इन दिनों अखिलेश यादव ने इस चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ब्राह्मण वोट तक की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। एक तरफ अखिलेश यादव बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली के दर्शन करते हैं, भंडारे में प्रसाद पाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर बताते भी हैं। दूसरी ओर पार्टी के संस्थापक और ब्राह्मण चेहरे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने की सियासत भी करते हैं। तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में एसपी के ब्राह्मण सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं और मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांसद सनातन पांडे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, पूजा शुक्ला आदि ब्राह्मण चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। अब इस बैठक में क्या रणनीति बन सकती है और कैसे अखिलेश दूसरे दलों से जुड़े ब्राह्मण नेताओं से लेकर वोटर तक को अपने पाले में लाने की तैयारियां कर रहे हैं, इसके बारे में अखिलेश यादव जो है अखिलेश यादव के जो सांसद हैं ब्लूप्रिंट्स पर से पर्दा उठाते हैं
4: कि जो हमारे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या उनकी विचारधाराएं समाजवादी हैं उनको बुला करके हम एक छोटी सी बैठक कर रहे हैं और उसके बाद से जो है हम उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दें कि आप लोग जो है कमिश्नरी स्तर पर एक बैठक कराइए और बैठक करा कर करके हम अपने लोगों को समेटने के लिए कि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और आप देखते होंगे भाषाएं किस तरह की बातचीत में बोली जा रही है कि बटोगे तो कटोगे।
2: बात सनातन पांडे से मिल जाए तो पूछिएगा कि अखिलेश यादव जी कन्नौज में ब्राह्मण के बेटे की मुड़ी काट दिया खाली बूथ पर विरोध किया था, क्या उसकी मुड़ी अखिलेश से दिलवाएंगे? पूछिएगा मिल जाए कभी तो कि राजभर जी बोले हैं, पूछे हैं आपसे।
0: तो अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण वोट को जोड़ने की रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए थे, इनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में भी यूपी में 58 विधायक ब्राह्मण चुनकर आए थे, जिसमें 48 विधायक तो बीजेपी के थे और बाकी 10 विधायकों में से एसपी और बीएसपी अन्य दलों के थे। और वोट प्रतिशत की अगर बात कर दी जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 6-7% ही ब्राह्मण वोट मिले थे। और तब 2017 में लगभग 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा हुआ करता था और एसपी गठबंधन को लगभग 11% ब्राह्मण वोट मिले थे।

0: आप खुद एक बहुत बड़ा चेहरा है पार्टी का, ब्राह्मण चेहरा आपको कहा जाता है, क्या कुछ बैठक की रूपरेखा रहने वाली है, क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश आप लोगों को मिले हैं, बैठक में क्या कुछ होने वाला है?
1: हर साल के बाद जो है पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम होता रहा है। जब वो तब से दिल्ली थे तो दिल्ली कार्यक्रम होता था उनका आवास, 8 राज्य, 4 बार जो है देश के जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे उनके पास पूरे ही।
2: अब बात चुनावी यूपी में चढ़ावा घोटाले की, राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में अब SIT ने पूछताछ तेज कर दी है। बड़ी खबर यह है कि जांच टीम मुख्य आरोपियों से सघन पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि आज रामशंकर यादव और टिन्नू यादव से पूछताछ की गई है। अब ये टिन्नू यादव ये वही शख्स है जिन्हें चंपत राय के करीबी बताया जाता है। SIT की टीम इस वक्त मंदिर परिसर के भीतर है। अब ये तीसरा दिन है जब लगातार मंदिर में जांच चल रही है और लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है, लेकिन टिन्नू यादव से भी पूछताछ लगातार तीसरे दिन जांच SIT की टीम करे, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर देनी है और 15 दिनों के भीतर पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है तब से ही सबसे पहला नाम रामशंकर यादव का ही लिया जा रहा है, और उसकी वजह एक तो यह है कि रामशंकर शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और परमहंस से लेकर चंपत राय तक के वो ड्राइवर रहने का काम उन्होंने किया, ड्राइवर रहे। लेकिन अब जिस तरह से टिन्नू की चर्चा हो रही है उसे लेकर उनके परिवार के आरोपों पर PDA को प्रताड़ित करने वाली सियासत भी आगे बढ़ सकती है। टिन्नू यादव की पत्नी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। इस बीच में 2 घंटे से मंदिर परिसर के भीतर SIT है, टिन्नू यादव से भी पूछताछ और इस मामले से जुड़े हुए जो एक एक कड़ियां हैं अब उन सब से सघन पूछताछ चल रही है।

0: 10 लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की कितनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है?
1: एक ड्राइवर 2200 रुपए मेरे सामने नौकरी की शुरुआत हुई थी, कार सेवकपुरम से, महेश नारायण
2: किसका ड्राइवर थे?
1: ये परमहंस जी का ड्राइवर, फिर महेश नारायण सिंह का, फिर विनय कटियार का, इस तरह क्रमशः ये चलते चलते और 22,000 की नौकरी जब 2020 में मिली तो ये अरबपतियों करोड़पति कहाँ से हो गया भैया? आप बता दीजिए शर्मा जी, हमको बताइए कि अगर
2: 22,000 रुपए पर महीने की नौकरी पर
1: अभी ये अभी 6 साल पहले हुआ था, अभी 6 साल पहले
2: ड्राइवर हुआ था?
1: ये परमहंस जी का ड्राइवर था, अभी तो ये चंपत राय, चंपत चालाक का ड्राइवर था, चंपत राय बंसल का, और ड्राइवर के बाद अभी उनका महामैनेजर हो गया।
2: सबसे संपत्ति इसका हॉस्टल हॉस्टल तो सुन रहे हैं, गए भी थे हम लोग, और क्या ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली?
1: सब छिपा के है ना, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, बचेगा। इसके बाद लखनऊ में है, अयोध्या जनपद में कई जगह है, बस्ती जनपद में है, अब हम लोग भी खंगलवा रहे हैं अभी तक।
0: आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं।
3: पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था, ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे, संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था, ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा, 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया, 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया।
0: सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रोहांसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों?
4: अपने परिसर में बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं का नाम भाई जांच इनकी करनी करिए, जहां कहिए हम चलेंगे, जो भी जांच करना कराइए, लेकिन और सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग को फंसाया जाके बड़े लोग को दबाओ, सबकी जाँच होनी चाहिए, किसके पास कितनी संपत्ति है वो तो ज्ञान होना चाहिए। हम
0: टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है।
4: इन्होंने रात दिन घर भी नहीं आए, रात दिन एक करके मजदूरों वहां रहते थे, भोजन स्वयं बनवा के खिलवाते थे, ठंडी गर्मी बरसात हमेशा इन्होंने संघर्ष ही किया है। भाई हम आपको नहीं पसंद है तो आप कह दीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं आपके साथ ऐसा तो हम अपना सेवा देंगे या निकल जाएंगे, ऐसे किसी को संघर्ष का, किसी को छवि को नहीं बर्बाद करना चाहिए।
0: मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है।
5: और जिस उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी, बताइए।
0: लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं।
5: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा।
4: ये जो काउंटिंग में बच्चे पकड़े गए हैं उनके लिए जो सजा, जो नियम कानून सरकार करे, टेस्ट वाले करे, दीजिए, उससे मुझे कोई लेना, जो गलत है उसको सजा मिलनी ही चाहिए।
0: इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
9: Order for Jennifer C.
10: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
9: Yeah. Can you handle that much caffeine?
10: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
9: Oh, really? That's great.
10: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
9: Yeah, you just said that.
10: Did you say I just said that?
9: Yeah, I'm cutting you off.
10: I can't have any more? Why not?
11: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
12: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
14: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
13: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
15: Sokudo.

0: एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट पर जोरों की चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव के सांसदों में सेंध लगने का दावा है। खुद उद्धव ठाकरे पार्टी की बैठक में ये कहते सुने गए हैं कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा, तब तक धीरज रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब की शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का ये बयान रविवार को मुंबई में मातोश्री की बैठक में उनके सांसदों के रवैये के बीच आया। 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल मातोश्री पहुंचे थे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब बागचौरे और सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं आए, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक में जुड़े थे। नागेश पाटिल का उद्धव से फोन पर बात करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सांसदों की गैर मौजूदगी से उद्धव की चिंता उजागर हो रही है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि ऑपरेशन टाइगर का जवाब ऑपरेशन वुल्फ है, और आज कह रहे हैं कि सांसदों ने कहीं नहीं जाने की कसमें खाई है। मातोश्री पर रविवार की बैठक में जो 5 सांसद खुद मौजूद नहीं थे, वही 5 सांसद शनिवार यानी 13 जून को आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में भी मौजूद नहीं थे। इन्हीं सांसदों में से एक संजय देशमुख ने शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। वैसे तो संजय देशमुख की सफाई आई है, लेकिन प्रताप राव जाधव अब उद्धव के सांसदों की तुलना टीएमसी के बागियों से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे इस मसले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
1: टाइगर चल रहा है, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर न सिर्फ महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिराई थी, बल्कि शिवसेना की वो टूट आज महाराष्ट्र की राजनीति को बदल चुकी है। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों पर शुरू हुई चर्चा राजनीति का नया चैप्टर है। आज तक ब्यूरो।

क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूबीटी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की थी। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय यादव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अष्टीकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूपीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनंद फानंद में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहें तो कैसे करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

तय मुलाकात सौंप सकते हैं स्पीकर को खत। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले समाजवादी पार्टी में टूट तय, अमित शाह से मिल चुके हैं रामगोपाल, हाईकमान ने तय कर रखी है पूरी तैयारी। दो हजार 2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक तेज, ब्राह्मणों को साथ निमजड़ी समाजवादी पार्टी, लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, ब्रजेश पाठक का मौलाना की पार्टी बताकर हमला। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी, 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ।

प्रयाग में ऑपरेशन टाइगर से मची सियासी खलबली, टूट सकते हैं उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद। शिवसेना यूबीटी ने कल दिल्ली में बुलाई संसदीय दल की बैठक, अहम राजनीतिक रणनीति पर मंथन की संभावना। एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे, सूत्रों के मुताबिक बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप सकते हैं पत्र। दिल्ली में सियासी हलचल तेज, बागी गुट के नेता संजय यादव के नेतृत्व में स्पीकर को पत्र देने की संभावना। शिवसेना उद्धव के 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत संसद भवन पहुंचे स्पीकर से मिलने। ऑपरेशन टाइगर पर शाइना एनसी का बयान, बोली ये ऑपरेशन प्रगति है, महाराष्ट्र जनता सब जानती है का असली टाइगर कौन है सबको पता है। फर्जी सिग्नेचर और गलत खबरों को लेकर संजय राउत का आरोप, शिवसैनिकों की नाराजगी की चेतावनी। संजय राउत का मीडिया पर तंज, बोले सांसदों के बयान और लोकेशन को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। संजय राउत का तंज, बोले ऑपरेशन टाइगर के नाम पर चार्टर्ड विमान से सांसद को ले जाया गया। मुंबई में सियासी घमासान, संजय राउत के बयान पर संजय शिरसाट बोले इस तरह की भाषा उचित नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय पाटिल का स्पष्टीकरण, बोले शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें गलत। संजय पाटिल का बयान, मैं मुंबई में हूं, मेरे शिंदे गुट से कोई संबंध नहीं। संजय राउत के दावों पर बीजेपी नेता बावन को लेकर पलटवार, पैसे लेने लेकर पाला बदलने के आरोप गलत। चंद्रशेखर बावन को लेकर बयान, बोले उद्धव ठाकरे के सांसदों के जाने से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। शिवसेना यूबीटी सांसद राजा भाऊ वाजे का बयान, बोले मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं, पार्टी छोड़ने की अटकलें गलत है। संजय राउत का बड़ा आरोप, बोले ऑपरेशन टाइगर के नाम पर यूबीटी सांसदों को तोड़ने की साजिश। शिवसेना यूबीटी में सियासी घमासान, राउत ने सांसदों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, कहा दगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर हमला, रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र कर दी बड़ी टूट का इशारा किया। सोशल मीडिया पोस्ट से सियासत गरमाई, पोस्ट ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में बिखराव के संकेत दिए। लोकभवन में रोजगार का बड़ा कार्यक्रम, सीएम योगी ने पुलिस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी पुलिस जवानों को नसीहत, बोले ड्यूटी के दौरान ड्रिल बनाना अनुशासनहीनता, सतर्कता जरूरी है। मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे पर रोक, योगी बोले मातम का असर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं है। सीएम योगी का निर्देश, 10-12 फीट से ऊंचे ताजियों की अनुमति नहीं है, शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। मुहर्रम से पहले संभल में हाई अलर्ट, डीएमएसपी को संवेदनशील इलाकों में निकाला पैदल मार्च। जुलूस मार्ग का निरीक्षण, तीर्थ स्थल पर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटा प्रशासन। 2027 तैयारी में जुटी बीएसपी, मायावती ने ओबीसी नेताओं संग बैठक कर पीडीए समीकरण को दी चुनौती। दलित ओबीसी गठजोड़ मजबूत करने की कवायद, मायावती ने जमीनी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई, भारी पुलिस पीएसी बल की तैनाती, मौजूदगी में ढाया गया निर्माण। 20 जून के बाद वाराणसी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने बताया अवैध और मल्टी मॉडल टर्मिनल के आड़े आने वाला है निर्माण। रामपुर में टीएमसी में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज, बोले जब तक पावर तब तक ट्रेन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज, 19 घंटे की पूछताछ में कर्मचारियों से कई अहम सवाल। दानपत्र को लेकर बैंक तक खंगाली प्रक्रिया, एसआईटी ने सीसीटीवी और डेटा के आधार पर बढ़ाई जांच की रफ्तार। डिंपल यादव का राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला, बोले राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों के विस्तार के कार्य की निष्पक्ष जांच हो। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का बदला रुख, पहले चंपत राय पर लगाया आरोप और अब कहा कि मामले की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद सामने आएगी। बीजेपी नेता विनय कटियार बोले जितने सब चोर हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आगरा में एनजीटी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, तालाब की जमीन से मंदिर मस्जिद और मजार हटाए जाएं। अंगूठी गांव में प्रशासन का बुलडोजर अभियान, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराई गई। बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं और रखरखाव पर हुआ मंथन। बांके बिहारी मंदिर समिति की बैठक में व्यवस्थाओं पर चर्चा, 200 किलो के झूले और जीर्णोद्धार का निर्णय। मथुरा में जनस्थान पर आने वाले चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप, सीएम ने जांच की अपील की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली कार्गो फ्लाइट, चेन्नई से पहुंचा मालवाहक विमान। यूपी, वाराणसी और पूर्वांचल क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 90% काम पूरा। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ, गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। प्रयागराज, प्रेमिका से शादी से इनकार और मिलने पर रोक बनी, कत्ल की वजह प्रेमी ने दादा दादी और बुआ की कर दी हत्या। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने का प्रयास, नहीं हुआ विस्फोट।

नीट यूजी परीक्षा तक सर्विस पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा टेलीग्राम। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद करने का निर्देश दिया। हालांकि एनटीए ने इस फैसले पर विपक्ष कर रहा है सवाल। नीट सीबीएसई घोटाले पर भड़का युवा आक्रोश, ग्वालियर मशाल के साथ हजारों युवा सड़क पर उतरे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। देहरादून में नीट परीक्षा में सफलता न मिलने से नाराज युवती ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट बरामद। नीट री एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए बिहार मुफ्त बस सेवा, बीएसआरटीसी ने विशेष सुविधा मुहैया कराई। मुंबई में पानी संकट गहराया, बीएमसी निर्माण साइट और स्विमिंग पूल की जल आपूर्ति रोकी। लेवल घटकर 10% के करीब पहुंचा जल भंडार। मुंबई में औद्योगिक और व्यावसायिक पानी की आपूर्ति पर 20% कटौती। अकोला में पशुपालक पर टूटा संकट, विषैले पानी से 35 बकरियों की मौत। इंदौर में दूषित पानी से कई लोग बीमार, नगर निगम ने मामले की जांच शुरू की। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में दुकान कलेक्टर अचानक गिरा, हादसे में 3 लोग घायल हो गए, घायलों का इलाज जारी। मधुबनी में जमीन विवाद में आत्मदाह की कोशिश, गुस्साए ग्रामीणों ने कोर्ट कमिश्नर को जमकर पीटा। जबलपुर में कलेक्ट्रेट से बेटी की सुरक्षा की गिड़गिड़ाई मां, बेटी के साथ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देते हैं बदमाश। भोजपुर में युवक ने थानेदार और पुलिस बल के सामने लहराया पिस्टल, वीडियो हुआ वायरल। अलवर में 15 मिनट में 4 चोरों ने घर के उड़ाए लाखों खिड़की, काटकर घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में 20 सड़क पर युवती ने बाइक पर बरसाए पत्थर, मोबाइल छीना, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में प्रेमिका पिता और बेटी की तिकड़ी ने रची 4 करोड़ की चोरी की साजिश, तनिष्क शोरूम में हुआ खुलासा। गाजियाबाद में 2 बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में शादी टूटने के नाराज था आरोपी। कर्नाटक में 4 मंदिरों में चोरी करने वाला दाहौद का गैंग सीसीटीवी फुटेज में आया सामने, 2 शातिर अपराधियों को दबोचा, करीब 9 लाख की चोरी का माल जब्त। जूनागढ़ में औरा सांड का आतंक, बेकाबू सांड के हमले में 1 महिला जबकि 2 अन्य लोग घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर दी जान, मंदिर के पेड़ पर लगाई फांसी। मेरठ में जेवर चोरी करने वाले दिल्ली के दंपति को गिरफ्तार किया गया। सराफा बाजार में 1 महिला के लाखों के जेवर पर हाथ साफ किया था। सरायकेला में गैलेक्सी सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट, फर्नेस फटने से जोरदार धमाका। सूरत में छड़ी क्लास के छात्र स्कूल पर सहपाठी ने चाकू से किया हमला, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, जांच में जुट गई है पुलिस। झारखंड गढ़वा में वन विभाग की पहल से कई जिंदगियां बची, जंगली हाथी के आतंक से परेशान था इलाका, विभाग ने अपनाया नया तरीका। वडोदरा में ट्रक से टकराई लग्जरी कार, 6 यात्रियों की मौत, 26 से ज्यादा घायल। प्रतापगढ़ में रील के लिए काफल का खतरनाक स्टंट, बेलहा देवी घाट पर बाइक उठाकर शूट किया वीडियो, पुलिस जांच में जुटी। सूरत में बेकाबू भीड़ ने मचाया आतंक, बच्चे समेत 3 से अधिक लोगों पर हमला, वीडियो वायरल। नोएडा के हाईराइज सोसाइटी बेसमेंट पार्क में तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को मारी टक्कर, सीसीटीवी आया सामने। चंबा में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीख का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा। किन्नौर में समुद्र से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग, बेहद दुर्गम होती है किन्नौर कैलाश यात्रा। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है। रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है यात्रा, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, गंगटोली और गणेश पार्क होता है यात्रा का पहला पड़ाव। 14,900 फीट की चाय पर स्थित पार्वती कुंड में स्नान के बाद शुरू होती है अंतिम चढ़ाई, दुर्गम खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के होते हैं दर्शन। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारी को परखा, इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षा निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का किया गया अभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी, आपसी तालमेल को परखा गया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। तेजी से बढ़ रहा है आलिया भट्ट का करियर ग्राफ, प्रभास की फिल्म कल्कि 2 में कास्ट किए जाने की चर्चा। फिल्म कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी को कास्ट किए जाने की चर्चा, फिल्म में सुमति के किरदार में दिख सकती है साई पल्लवी। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मेमो की हॉन्टेड फिल्म हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट का अच्छा प्रदर्शन। फिल्म राणावाली से भारतीय सिनेमा में डेब्यू करेंगे हॉलीवुड एक्टर अर्नल्ड वॉसलू, निर्माताओं ने एक्टर के जन्मदिन पर फिल्म में उनके किरदार का पोस्टर लॉन्च किया। स्पाइडरमैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड ने जेंडाया के साथ सीक्रेट शादी की खबरों को किया कंफर्म, एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने बताया शादी में पूरा शामिल हुआ था। हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी ईशा देओल, फिल्म घूंघट का ऐलान। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर जारी, 26 जून को फिल्म सिनेमाघरों में होगी लॉन्च।
मलयालम सिनेमा में करण जौहर का पहला कदम, पृथ्वीराज सुकुमारन की उड़ियन का ऐलान। फिल्म पेद्दी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, 13 दिन में 220 करोड़ की कमाई। अंबानी परिवार ने रियाना को गिफ्ट किया डायमंड ब्रेसलेट, कीमत करीब 2 करोड़ रुपए।

0: इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरें तेज हो गई है और सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंप सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपीडी के 6 सांसद बागी हैं। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि 2 सांसदों ने बगावत की है। ऐसी ही खबरों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में मौजूद है। उद्धव गुट के बागी सांसद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये सुबह से ही खबरें आ रही है। तो संख्या 6 है या 2 है, ये संशय अभी भी बना हुआ है। कितने बागी हुए हैं उद्धव गुट से, इस पर संजय राउत कुछ और कह रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे से कितने सांसद मिलेंगे उस पर ये निर्भर करेगा कि कितने बागी हुए हैं। अब उद्धव गुट के नेता लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं। संजय राउत भी इस गुट में शामिल थे। और जो स्पीकर से मिलने पहुंचा था ये गुट, उद्धव गुट के नेताओं से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए।
1: बातचीत करने के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत। संजय जी, आप लोग आज मुलाकात किए हैं स्पीकर से, किस विषय के ऊपर मुलाकात की आपने?
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए। और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
1: आपने ट्वीट किया कि पैसे का खेल हो रहा है, 15-15 करोड़ पे एडवांस दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं?
2: इस देश में ऐसे मामले में क्या फूलों का खेल होता है, क्या फलों का खेल होता है, पैसों का ही खेल होगा ना?
1: तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको एडवांस भेज दिया गया, आपका कहना है?
2: मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है ट्वीट में, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के सांसद हूँ ऐसा कहा।
1: लेकिन आप यहाँ आए, आपने कहा ट्वीट की वजह से, इसलिए
2: देख लेंगे।
1: क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे खेल को कर रहे हैं और इसके खेल के पीछे कौन होगा?
2: आप जिनका नाम ले रहे हो वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि ये सब कर सके।
1: तो उन्होंने पहले किया, इसलिए
2: वो क्या करेंगे, पावर है ना, सत्ता है, और क्या है, हमारे पास होगी तो हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी का पालन करेंगे।
0: इस बीच अरविंद सावंत से भी हिमांशु मिश्रा ने बातचीत की है, सुनिए।
1: अरविंद जी हमारे साथ है, अरविंद सावंत बात करने के लिए। अरविंद जी, आज आपने जो है स्पीकर से मुलाकात की है और क्या अपना पक्ष रखा?
3: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून मजबूत सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में, हमने आपने देखा कि हमारी वहां भी सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता नहीं दी।
1: अरविंद जी, उनको आपको लगता है कि उनको मर्जर करना पड़ेगा?
3: कैसे कर सकते?
1: कल क्या आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई अपनी?
3: हमने कल कितने बजे सभी को बुलाया?
1: अरविंद जी, आज आपने स्पीकर से मुलाकात की है, किस विषय को रखा है?
4: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया, अगर कोई पहुंचता है तो हमसे पहले
1: आपसे बात करें। लेकिन ये आपको शक हो रहा है कि क्या जो है आपकी पार्टी के 6 एमपी जो हैं वो टूटकर एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जा सकते हैं?
4: नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है हमारे एमपी हमारे साथ में, लेकिन अगर कोई बात ऐसे बनती है और मजबूरन उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है तो हमने उसी लिए इनके पास लेकर।
1: एक अंतिम सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है वो शिवसेना के स्थापना दिवस के 7 साल हो रहे हैं, ऐसे में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है एकनाथ शिंदे की तरफ से? पहले भी एक आपको झटका लगा था, आपको मालूम है,
4: इसीलिए हमने सावधानी बरतने के लिए इनके पास में पहले से ये दिया हुआ है।
0: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आपने खुद अनिल देसाई से बातचीत की है, वो कभी तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, 6 सांसद बागी नहीं हुए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तभी हमने स्पीकर से मुलाकात की है। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या कल 11 बजे जब संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है उससे पहले सब कुछ ठीक करने की कवायद चल रही है, अभी भी उन्हें उम्मीद है?
1: देखिए बिल्कुल उनको उम्मीद है कि उनके सांसद जो हैं वो उनका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की सुगबुगाहट है, अगर देखा जाए जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनके 6 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ जा सकते हैं, एक अलग गुट बनाने की मांग जो है वो स्पीकर से कर सकते हैं, और उसी को लेकर जो है आज अरविंद सावंत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संसदीय दल के नेता है उनके साथ उनके जो पार्टी के चीफ व्हिप है अनिल देसाई और संजय राउत इन्होंने मुलाकात की, और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा आपकी तरफ आपके पास ऐसा कोई पत्र आता है, कोई सांसदों का एक गुट आकर आपसे कहता है अलग गुट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमसे मुलाकात करनी होगी, और किसी भी गुट को आप मान्यता नहीं दे सकते या किसी भी पार्टी में मर्जर के लिए नहीं दे सकते, उसके लिए कानूनी रास्ते हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी ये बात है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट है, उस जजमेंट की अवहेलना जो है वो नहीं की जा सकती है। तो इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने स्पीकर से मुलाकात भी की और अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए पत्र भी सौंपा कि अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो पहले उनसे मुलाकात किया जाए, उनसे बातचीत हो, उनका पक्ष जानने के बाद ही जो है कोई भी फैसला जो है वो स्पीकर ले।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
6: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
7: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
6: We'll give you top dollar for your trade and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
12: घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। भगवंत मान पर गुरुद्वारे के दान पात्र को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। दरअसल ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो को लेकर झूठ बोला। उनका कहना है कि पांच सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है।
1: पहला तो इन्होंने पंजाब नाल गद्दारी की, हुण इन्होंने पंथ नाल भी गद्दारी की। मैं तो कहना भी तुरंत प्रधान मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।
2: ये वीडियो असली है, एआई दे नाल नहीं बनाई है। ये रिपोर्ट ये किथे कहंदी है कि उस वीडियो दे विच कौन व्यक्ति है।
0: आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर विवाद है उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति भगवंत सिंह मान है या कोई और, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो को लेकर अपनी बात साबित करने के लिए भगवंत मान से सबूत मांगे गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
5: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
4: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
6: हैं। अनवर काशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
4: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
6: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
4: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%। फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5 से 5%। और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
6: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में इनकाउंटर लिखी हुई है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

दुनिया की नजर, पश्चिम एशिया का संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। उधर की पार्टी में गहराया टूट का खतरा, सूत्रों के हवाले से खबर। 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, चिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक, व्हिप जारी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले समाजवादी पार्टी में टूट तय, अमित शाह से मिल चुके हैं रामगोपाल, हाईकमान ने कर रखी है पूरी तैयारी। 2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक तेज, ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, इलेक्शन में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, ब्रजेश पाठक का मौलाना की पार्टी बताकर हमला। ग्राम पंचायत चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही एसआईटी, 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन।

0: एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। इनमें 6 सांसद शामिल हैं, जैसा कि पहले बताया जा रहा था। ओम राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अष्टिकर और अन्य शामिल हैं। और पत्र की डिटेल में उसमें क्या लिखा है इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन संभावना यही कि वो एक अलग गुट बनाएंगे जो बाद में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी ने कल की बैठक के लिए विप जारी किया। अगर ये सांसद बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसीलिए उससे पहले ही बागी सांसदों ने कथित तौर पर पत्र सौंप दिया है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, कल की मीटिंग में जाहिर तौर पर अगर ये 6 सांसद अपना पत्र पहले ही सौंप चुके हैं तो ये नहीं पहुंचते, और उस अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने आज जल्दबाजी में पत्र सौंप दिया है।
1: बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि तेजी से घटनाक्रम बदलता गया। जिस तरीके से कल शाम को ही संजय राउत और अरविंद सावंत और ये सारे लोग दिल्ली पहुंचे, वो इसीलिए पहुंचे थे ताकि अगर ये बैठक बुलानी पड़े और जिसके वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की जा सके। ये इस सूरत में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अरविंद सावंत जाकर स्पीकर से मिले और स्पीकर के पास उन्होंने चिट्ठी लिखी। बिल्कुल वही मायना था जो तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बैनर्जी की तरफ से चिट्ठी दी गई थी कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है और ये जो सांसद अगर बाहर निकलकर आते हैं तो उन्हें मंजूरी अलग गुट बनाने की ना दी जाए एंटी डिफेक्शन कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत। और इसी बीच विप भी जारी कर दिया गया सभी सांसदों के लिए कि कल मीटिंग बुलाइए और वहां पर सारे सांसदों का होना जरूरी है। इससे पहले कल रात को एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भागदौड़ शुरू हो चुकी थी और चार्टर्ड फ्लाइट से कुछ सांसदों को पुणे से और नांदेड़ से दिल्ली भेजा गया, जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। वहां भेजने के बाद खुद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, श्रीकांत शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं, और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर पहले ही इस तरीके की चिट्ठी उनके हस्ताक्षर के साथ, सांसदों के हस्ताक्षर के साथ भेज दी गई है। तो इसका मतलब अब यह हो गया है कि ओम बिरला के पास दो चिट्ठियां हैं। हालांकि रिबेल सांसदों की चिट्ठी में क्या लिखा है उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि अलग गुट बनाने की मांग उसमें की गई हो, क्योंकि आज की स्थिति में यह कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है और इसीलिए चिट्ठी में क्या लिखा है वो पता नहीं। लेकिन विप जारी होने से पहले स्पीकर के सामने अलग गुट का दावा करने की एक कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से थी और वही कोशिश में फिर ये जो रेबल सांसद है, 6 रेबल सांसद, उनके नाम से चिट्ठी सौंप दी गई है। सभी के हस्ताक्षर उस पर किए गए हैं और जो 6 नाम हम चला रहे हैं उन्हीं की चिट्ठी वहां पर दी गई है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करेंगे हमारी खास पेशकश, रामदांग की लूट है।

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोप की जांच तेज हो चुकी है। आज तीसरे दिन एसआईटी टीम राम मंदिर के अंदर जांच कर रही है। कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है और आरोपों के घेरे में आए चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने राम मंदिर में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाली ली है। चढ़ावे की प्रक्रिया की जांच हो रही है। कल 43 कर्मचारियों से पूछताछ हुई, इनमें से 9 लोग जांच के घेरे में हैं। इन लोगों ने महंगे मोबाइल फोन खरीदे, महंगी गाड़ियां ली। तीन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अब जांच तेज है। तीसरा दिन आज जांच का है, जिसमें 45 लोगों से पूछताछ हुई, 9 चिन्हित किए गए जिनकी अनियमित आय दर्ज की गई, महंगे मोबाइल फोन, गाड़ियां, मकान इत्यादि इन्होंने खरीदे। अब टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर है उससे भी पूछताछ जारी है। तो राम मंदिर ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि यूपी के सियासत का केंद्र है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सवाल उठते ही एसआईटी जांच के आदेश दिए। एसआईटी को 15 दिन का समय दिया गया है। ये चोरी का सच तलाशेगी और अगर लूट हुई है तो लुटेरे को पकड़ेगी।

0: राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई, अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है, बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी।
0: आखिर कहां से पैसा आ गया? एक ड्राइवर 2200 रुपए, मेरे सामने नौकरी की शुरुआत हुई थी।
2: कहां से शुरुआत थी?
0: कार सेवकपुरम से, महेश नारायण।
2: किसका ड्राइवर?
0: ये परमहंस जी का ड्राइवर, फिर महेश नारायण सिंह का, फिर विनय कटियार का। इस तरह क्रमशः ये चलते चलते और 22,000 की नौकरी जब 2020 में मिली तो ये अरबपति और करोड़पति कहां से हो गया भैया? आप बता दीजिए शर्मा जी, हमको बताइए कि अगर
2: 22,000 रुपए पर महीने की नौकरी पर
0: अभी ये अभी 6 साल पहले हुआ था, अभी 6 साल पहले
2: ड्राइवर हुआ था?
0: ये परमहंस जी का ड्राइवर था। अभी तो ये चंपत राय, चंपत चालाक का ड्राइवर था, चंपत राय बंसल का, और ड्राइवर के बाद अभी उनका महामैनेजर हो गया।
2: सबसे संपत्ति इसका हॉस्टल, हॉस्टल तो सुन रहे हैं, गए भी थे हम लोग, और क्या ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली?
0: तो सब छिपा के है ना, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, बचेगा। इसके बाद लखनऊ में है, अयोध्या जनपद में कई जगह है, बस्ती जनपद में है। अब हम लोग भी खंगलवार हैं, अभी तक निगाह इसलिए नहीं थी कि अभी तो निगाह बड़े चोर पर थी, ये तो साइड विलेन है ना।
1: टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है।
3: बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं का नाम भाई जांच इनकी करनी करिए, जहां कहिए हम चलेंगे, जो भी जांच करना कराइए। लेकिन और सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग को फंसाया जाके बड़े लोग को दबाओ, सबकी जांच होनी चाहिए, किसके पास कितनी संपत्ति है, वो तो ज्ञान होना चाहिए।
1: SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण एस और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे।
4: जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो दफ्तर है, जहां पर ये रकम इकट्ठा होती थी, जहां पर ये रकम इकट्ठा होने के बाद जमा की जाती थी, उन तमाम चीजों को देखा गया। आज दूसरे दिन SIT की टीम अंदर पहुंची हुई है, पड़ताल करेगी और तब साफ होगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी होने के आरोप में कितनी सच्चाई है।
0: हमने तो राम मंदिर के लिए सौगंध।
1: इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की।
0: नहीं लग रहा है ये सही भी है, ये चोरी किया। जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया, मैं बाय नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया। और इस सारी चोरी में चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और वो टिन्नू यादव, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ये चार चोर। इसमें किसी SIT की जरूरत नहीं है, कोई SIT गठित करने की जरूरत नहीं, चारों को पकड़ लीजिए, पूरा देश प्रसन्न हो जाएगा, एक चोर पकड़ लिए गए। अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो SIT, ID, ED, CBI, CBCID कुछ भी करे, लोगों को विश्वास उठ जाएगा।
1: एसआईटी तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: तो सवाल राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी किए गए।
6: जी, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
7: सब झूठ है, निराधार है।
8: श्री राम जन्मभूमि के निवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन लोगों के एसआईटी का टीम गठित किया है, इसलिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं और न्यास की ओर से उनको सभी रीति का सहयोग प्राप्त होगा, तो हमें विश्वास है कि न्याय बाहर आएगा, शायद कल आ जाएंगे, ऐसे हमको लग रहा है।
5: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, पूरी जांच चल रही है, तीसरा दिन है ये जांच का। एसआईटी के पास उन नौ लोगों से पूछताछ में क्या ऐसे सबूत आए हैं सामने जिससे ये साबित होता है कि हेराफेरी हुई है, लूट हुई है?
9: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि जब एसआईटी ने तकरीबन 19 घंटों की पूछताछ की है और 19 घंटों में यहाँ पर अलग अलग कर्मचारियों से, तकरीबन 50 ऐसे कर्मचारी हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो सेवा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो उनसे कनेक्शन में सबसे पूछताछ की है, और सबसे कई अहम जो सबूत के तौर पर अगर बात करें तो कई ऐसी पेन ड्राइव्स हैं जो यूज की गई थी जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उस दस्तावेज को भी एसआईटी ने अपने पास लिया हुआ है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो सीसीटीवी फुटेज की आ रही है कि आखिर वो सीसीटीवी फुटेज क्या वहां से गायब किए गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग के लिए भी एसआईटी ने पूछताछ की है, तो जिसके लिए रेडियोलॉजी विभाग यानी कि जो विभाग है जो ये देखता है पुलिस का, उससे भी संपर्क किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कनेक्शंस को देखने के लिए एसआईटी अपने पर्याप्त सबूतों के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें टिन्नू यादव से भी पूछताछ की गई है, जबकि सभी को मंदिर में आने की अभी भी आवाजाही है, क्योंकि मंदिर में ही पूछताछ हो रही है। दान प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, कैसे दान कहां पर ले जाया जाता है, उसके बाद कितने लोग इसको गिनते हैं, जैसे कि तकरीबन बताया गया कि एक शिफ्ट में 12 लोग गिनते हैं, फिर अलग अलग शिफ्ट होती हैं, उसके बाद उस दान पेटिका को कहां ले जाया जाता है, ये एसआईटी ने क्रम वाइज जानने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इस दान को ले जाया जाता है आगे, और आखिरकार आखिर वो किसके जिम्मे सौंपा जाता है, ये पूरी प्रक्रिया समझी है। इसके साथ साथ अगर आभूषण है यहाँ पर आए हुए तो उन आभूषणों की कौन काउंटिंग करता है और वो किसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, इसकी भी एसआईटी ने जानकारी ली है। तो जो राम मंदिर में चढ़ावा आता है उसको लेकर पूरा जानकारी एसआईटी ने अपने पास रखी है, उन संबंधित जो कर्मचारी पूरे परिसर में जो तैनात हैं अलग अलग जगह पर, फिर चाहे परिसर में, उनसे भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है, लगातार ये पूछताछ जारी एसआईटी के तीसरे दिन, और कई सबूतों दस्तावेजों को आगे रखा है।
5: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एसआईटी टीम ने आज चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से पूछताछ की। आज तक से बातचीत में टिन्नू यादव ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया।
10: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर।
5: टिन्नू यादव की पत्नी पूनम से भी आज तक की खास बातचीत की और अपने पति को उन्होंने बेगुनाह बताया।
6: जी, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
7: सब झूठ है, निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पास ठोस सबूत ही नहीं है, केवल बदनाम किया गया है, उनके गरिमा के उनकी छवि को ठेस पहुंचाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
6: जो बात कही जा रही है, इतने करोड़ों की जमीन, इतना मकान इस तरीके का लिया गया, अर्ज किया गया, उसके बारे में
7: ऐसा कुछ नहीं मेरे पास,
6: कुछ भी नहीं।
7: जी नहीं।
6: अच्छा, क्या यादव जिस तरीके से नाम लगा है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भी,
7: क्योंकि भैया कौन क्या कर रहा है ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है,
6: बहुत से लोग इसमें शामिल हैं।
7: अब वो तो हम कुछ किसको क्या कहें।
6: ट्रस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं।
7: सारे लोग हैं लेकिन हमारा किसी से न दुश्मनी है न किसी से बैर है, मैं किसको कहूँ। आप प्रेम से हमसे बात कर रहे हैं, अब आपके मन में मेरे प्रति क्या है तो आप ही जान पाएंगे ना, तो मैं किसको कहूँ।
6: तो टिल्लू यादव ही क्यों आखिर,
7: तो यही तो नहीं समझ में आ रहा हमको। आज से 32 साल उन्होंने सेवा किया है। अब
5: वही राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोप में सियासत गर्मा गई है, बयानों के वार शुरू हुए।
11: जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी, विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे।
12: आस्था रखने वाले जो प्रभु श्री राम से आस्था रखते हैं, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में है, जो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के रहने वाले हैं, तो ये बड़ा मामला है। तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय के देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा।
5: वक्त इस से ब्रेक का हौसला देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
13: आज तक .com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: कहां तो प्रभु राम के नाम में असंख्य श्रद्धालुओं की अनंत आस्था और कहां राम के धाम में चोरी का महापाप। किसी ने सोचा न था कि राम की अवधपुरी के वैभव में चोर के नाम का शोर मचेगा।
8: गोपाल जी कुछ बताएंगे, ये कैसे, ये चोरी का ये आरोप लग रहा है
9: गोपाल जी आप पर?
8: ये ट्रस्ट के ऊपर आरोप है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की दान में जो पैसा
9: आया पूछताछ हुई है,
8: आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
7: चोर चोर का शोर ऐसा मचा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची, तो उसमें लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे थे। जांच टीम की मदद के लिए जिले के पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। इन्हीं गोपाल राव को जब मीडिया ने दो बार मंदिर में आते जाते देखा तो सवाल पूछे और गोपाल राव चुप रहे। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन की जांच में एसआईटी के लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज में महाकुंभ कराने के अनुभवी रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को परख रहे थे। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सीबीआई का तजुर्बा है, जो चोरी की संभावना और तरीके की जांच कर रहे हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन अकाउंट बुक देख रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई जांच लगातार 8 घंटे चली और इस दौरान जांच टीम ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दिन जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची। फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 लोगों से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की भी वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है।

0: अयोध्या के जिस राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
1: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
0: अयोध्या के जिस राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई है, क्या उसी राम मंदिर को लेकर विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया है जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकती है?
2: ये जो पाप किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो भगवान देख रहे हैं ऊपर।
0: 500 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना है, वो राम मंदिर जहां कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। ऐसे गंभीर आरोप के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर SIT गठित हुई और टीम जांच के लिए अयोध्या भी पहुंच गई। सोमवार को 3 अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे अफसर राम मंदिर के VVIP गेट से अंदर गए। SIT अधिकारी करीब 8 घंटे तक राम मंदिर में मौजूद रहे। पहले दिन 8 घंटे की जांच में SIT को क्या मिला, आपको बताते हैं। SIT ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, फिर मंदिर प्रांगण में दान पेटियों का मुआयना किया, चेक किया कि क्या सीधे दान पेटियों में से नकदी निकाली जा सकती है। SIT ने अपना फोकस मंदिर ट्रस्ट के उस बड़े हॉल पर ज्यादा रखा जहां दान पेटियों को खोला जाता है और नोटों की गड्डी बनाई जाती है। जांच अधिकारियों ने इस काम में लगे तमाम पुराने और नए कर्मचारियों की जानकारी जुटाई। लगभग 8 घंटे में SIT की टीम ने बारीकी से चढ़ावा के दस्तावेजों को देखा, साथ ही CCTV के पूरे सिस्टम को समझा। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव भी मौजूद रहे। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है कि चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। दावा ये भी है कि चढ़ावा गिनने में जुटे कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट लिया है। आरोप चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव और टिन्नू यादव पर भी है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक वो टेम्पो चलाता था। कहते हैं कि चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद से अचानक उसके दिन पलटने लगे और आज वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अब SIT तमाम आरोपों की सच्चाई तलाशने में जुट गई है। जांच रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कौन गुनहगार है। अयोध्या से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

फ्रांस में आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर, पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा की आसार। उद्धव की पार्टी में गहराया टूट का खतरा, सूत्रों से खबर, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक, व्हिप जारी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले समाजवादी पार्टी में भी टूट तय, अमित शाह से मिल चुके हैं राम गोपाल, हाईकमान ने कर रखी है पूरी तैयारी। दो हजार 2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक के ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक, ब्रजेश पाठक का मौलाना की पार्टी बताकर हमला। और राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी, 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ।

0: नमस्कार, आप देखिए आज तक मैं हूँ आपके साथ वांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर हम सभी आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे आमतौर पर न्यूज रूम लाइव में होता है कि किन खबरों के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। दो बजे में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर किस तरह की सियासत है, क्या हो रहा है, कितने सांसदों ने किसको चिट्ठी सौंपी है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर हमारी होगी और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री यानी राजभर ने किस तरह से एक दावा किया और उस दावे से उत्तर प्रदेश में 27 से पहले जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जो तीसरी हमारी बड़ी खबर होगी वो होगी राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी आज कोटा में छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, नीट का मुद्दा उठाएंगे और छात्रों से वो बात करेंगे। साथ ही ठीक 2:30 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर SIT की जांच तीसरे दिन, क्या हो रहा है, कितने लोग रडार पर हैं, ये A to Z स्टोरी हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले बात हो जाए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है ऑपरेशन टाइगर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ सांसद जो उद्धव गुट के हैं उन्होंने पहले ही चिट्ठी सौंप दी है स्पीकर को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शिवसेना UBT के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पहले ही पत्र सौंप दिया और उस चिट्ठी की डिटेल्स क्या हैं, क्या लिखा है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि उद्धव के बागी सांसद एक अलग गुट बनाएंगे और बाद में शिवसेना यानी शिंदे गुट में मिल जाएंगे। अब जिन सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। ओमराजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश आष्टीकर के साथ दो अन्य सांसदों के नाम भी शामिल है। बगावत को लेकर बड़ी खबर, उद्धव गुट के बागी सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिख दिया और ये देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओम राजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश अस्टिकर के साथ दो अन्य सांसदों के नाम भी यहाँ सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सभी 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। मुंबई से हमारे संवाददाता अभिजीत करांदे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिजीत, हो क्या रहा है, अभी ताजा खबर क्या मिल पा रही है ये ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी हुई, जो एक नाम दिया गया है?
1: देखिए, हमने ये भी देखा कि कल से जो 6 सांसद है वो बता तो रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में, मुंबई में है, कोई कह रहा है पुणे में है, लेकिन वो पुणे में नहीं है। जो इंडिया टुडे आज तक के हमारे सारे रिपोर्टर ने जो छानबीन की उसके बाद पता चला कि कल रात में पुणे से एक मंत्री है महाराष्ट्र के जो ओमराजे निंबालकर और बाकी नेताओं को लेकर दिल्ली गए। उससे पहले हमें पता है कि नागेश आष्टीकर और संजय देशमुख नांदेड़ से रवाना हुए थे और मुंबई से 2 सांसद जो है वो दिल्ली रवाना हुए थे। तो कुल मिलाकर 6 सांसद जो है वो कल रात में लेट नाइट दिल्ली पहुंच चुके थे। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके थे और उसके बाद इन 6 सांसदों ने पहले से ही जो लेटर उनके पास तैयार था वो लेटर जो है वो लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। हालांकि उस लेटर में क्या कंटेंट है, क्या कहा गया है, उसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से हमने कुछ शिवसेना के नेताओं से बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि हमने लेटर सौंप चुके हैं। अभी आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संजय राउत और अनिल देसाई की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने संसदीय दल की बैठक बुलाई है और उसमें हमने कल 11 बजे वो बैठक होगी तो उसके लिए व्हिप भी जारी किया है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो व्हिप जो है वो इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये जो लेटर है वो लेटर पहले दिया जा चुका है, ना कि संजय राउत ने जो व्हिप जारी किया है या फिर लोकसभा के संसदीय दल ने जो व्हिप जारी किया है उसके पहले। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो व्हिप जो है वो भी बहुत कारगर साबित नहीं होगा। जिस तरीके से सांसदों को बचाने की कोशिश शिवसेना ठाकरे के गुट से चल रही है उसमें भी कोई उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 सांसद है जिसमें संजय देशमुख इसकी अगुवाई कर रहे थे। यवतमाल से सांसद है वो, 1 साल से ज्यादा समय से एक तरीके से शिंदे गुट के साथ जो है वो संपर्क में थे। उसके बाद हिंगोली के सांसद है नागेश आष्टीकर, वो उनके साथ में थे, और संजय बंडू जाधव जिनको बोला जाता है परभनी में, तो वो भी
0: बात कर रहे हैं। आप जिन सांसदों की बात कर रहे हैं, एक सांसद का और नाम सामने आ रहा है, वो नाम है राजा भाऊ वाजे। अब उनको लेकर भी ये दावा किया जा रहा था कि ये भी बागी हो सकते हैं। अब उनसे बात की हमारे सहयोगी पीयूष ने, वो आपको सुनाते हैं।
2: इस वक्त मरसद बातचीत करने के लिए हैं शिवसेना UBT के सांसद राजा भाऊ वाजे, और जो इस वक्त दिल्ली भी पहुंच चुके हैं क्योंकि कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होने वाली है और सभी सांसदों को कहा गया दिल्ली पहुंचने के लिए। सर, सभी सांसदों को कहा गया दिल्ली पहुंचने के लिए, आप भी आज दिल्ली आ?
3: नहीं, मैं आज इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग है इसलिए मैं वही मीटिंग के लिए आया था। अभी ये सब घटना घट रही है वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मैं आ गया हूँ।
4: आपकी इंडस्ट्री की मीटिंग
3: तीन बजे आज मीटिंग है।
4: आज मीटिंग है 3 बजे। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही है, आप भी देख रहे होंगे आज जगह क्या क्या चल रहा है, आप भी गए थे संजय राव जी से मिलने के लिए, इन चर्चाओं पर आपकी क्या राय है?
3: नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं मेरा जो कहना है, मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हूँ।
0: ये तो राजाभाउ वाजे हैं, लेकिन एक और सांसद आज बहुत आग बबूला नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये देखा गया, संजय राउत, और उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
5: बातचीत करने के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत। संजय जी, आप लोग आज मुलाकात किए हैं स्पीकर से, किस विषय के ऊपर मुलाकात की आपने?
6: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
5: आपने ट्वीट किया कि पैसे का खेल हो रहा है, 15-15 करोड़ पे एडवांस दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं?
6: इस देश में ऐसे मामले में क्या फूलों का खेल होता है, क्या फलों का खेल होता है, पैसों का ही खेल होगा ना?
5: तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको एडवांस भेज दिया गया, आपका कहना है?
6: मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है ट्वीट में, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के सांसदों ऐसा कहा।
5: लेकिन आप यहाँ आए, आपने कहा ट्वीट के वजह से, इसलिए
6: देख लेंगे।
5: क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे खेल को कर रहे हैं, और इसके खेल के पीछे कौन होगा?
6: आप जिनका नाम ले रहे हो वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि ये सब कर सके,
5: तो उन्होंने पहले किया, इसलिए
6: वो क्या करेंगे, पावर है ना, सत्ता है, और क्या है, हमारे पास होगी तो हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी का पालन करेंगे।
5: अरविंद जी, आज आपने जो है स्पीकर से मुलाकात की है, और क्या अपना पक्ष रखा?
7: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून मजबूरी सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में, हमने आपने देखा कि हमारी वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता नहीं दे सकते।
5: जी, आज आपने स्पीकर से मुलाकात की है, किस विषय को रखा है?
8: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुंचता है तो हमसे पहले
5: आपसे बात करें। लेकिन ये आपको शक हो रहा है कि क्या जो है आपकी पार्टी के 6 MP जो हैं वो टूट कर एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जा सकते हैं?
8: नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है हमारे एमपी हमारे साथ में, लेकिन अगर कोई बात ऐसे बनती है और मजबूरन उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है तो हमने उसी लिए इनके पास
5: एक अंतिम सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है वो शिवसेना के स्थापना दिवस के 7 साल हो रहे हैं, ऐसे में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है एकनाथ शिंदे की तरफ से, पहले भी एक आपको झटका लगा था आपको मालूम है,
8: इसीलिए हमने सावधानी बरतने के लिए इनके पास में पहले से ये दिया हुआ है।
0: तो संजय राउत से जिन्होंने अभी बात की, हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरा अपने अनुभव से बताइए, और आपने तो बातचीत करी है, महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या देखने को मिलेगा इस देश की जनता को, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? चलिए दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर संजय राउत वो काफी नाराज दिखे, जो इस वक्त घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, और उन्होंने तो बोल दिया था अपने सांसदों से जिसको जाना है जाए, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जुड़ गए हैं हिमांशु मिश्रा हमारे साथ। हिमांशु, आप अपने अनुभव से बताइए, आपने तो वहां के नेताओं से बात की है कि महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है?
9: देखिए, एक तरीके की शंका जरूर है, और इसी शंका को लेकर जो है संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत पहुंचे थे, लेकिन उनको इतनी जानकारी जरूर है कि उनके कुछ सांसद नाराज हैं और वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के टच में भी हैं, और इसीलिए ऑपरेशन जो है टाइगर वो ऑनगोइंग रखा है, जिस तरीके की खबरें जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप से आ रही है, उनके टच में उनका दावा है एकनाथ शिंदे ग्रुप का कि 6 सांसद हैं, और 6 जो है अगर 9 सांसद यूबीटी ग्रुप के हैं तो 6 सांसद अगर आते हैं तो 2/3 का बहुमत होगा, और ये 6 सांसद जो है वो स्पीकर को पद देना चाहते हैं एक अलग ग्रुप के लिए। ये तमाम इश्यूज जो है वो सामने आए, और इसी डर से जो है वो ये तीनों यूबीटी के जो नेता है, तीनों सांसद हैं, ये पहुंचे थे स्पीकर के पास, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की कोई चीज होगी तो आपको पहले हमारा पक्ष बुलाकर जो है सुनना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लीजिएगा।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जब इतना सब कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में तो बयानबाजी होना तो लाजमी है, तो बयानबाजी हो रही है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
10: प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
11: ऑपरेशन टाइगर ने, ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए, इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
0: तो अभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं, हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं अभी वर्तमान हालात पर, वो सुनवाते हैं।
12: हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट हैं और उनसे पूछते हैं जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आप देखें कि देश की राजधानी में भी लगातार शिवसेना यूबीटी के तमाम सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संजय राउत जाके स्पीकर से मिले और बोला है कि साम दाम दंड भेद हर पैतरा इस्तेमाल कर रही है सरकार उनके सांसदों को तोड़ने के।
13: इससे पहले आपने देखा टीएमसी चुनाव के बाद जिस तरह पार्टी में बिखराव हुआ वो अकल्पनीय था। मजबूत पार्टी 15 साल सत्ता में रहने के बाद सांसद विधायक इस प्रकार छोड़ के जा रहे हैं और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये बिना दबाव के नहीं होती है, मैं मानता हूँ। और जो शिवसेना का प्रकरण चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा, स्पीकर साहब को बिल्कुल ठीक कहा है कि केंद्र की सरकार अगर विपक्ष को तितर बितर करना चाहती है, और शायद मुझे ऐसा आभास है कि जो वो गैर कानूनी तरीके से परिसीमन का बिल लाकर पास कराना चाहते हैं, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, जनगणना के बाद कमीशन बैठता है, कमीशन के बाद परिसीमन होता है, यहाँ पे आप परिसीमन करना चाहते हैं, तो ये संख्या बल जुटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बहुमत ना होने के बाद भी इस प्रकार का जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये बिल पास कराने के लिए पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन देश में विपक्ष मजबूत हो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है, और हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष को ना सिर्फ दबाव में लाया जा रहा है लेकिन पार्टियों को खंडित किया जा रहा है, विधायकों सांसदों को इधर उधर किया जा रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है।
0: तो देखिए, अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत से जुड़ी हुई है, हम आपको बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है और उसके बाद अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र बंगाल की बात तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। एक साल पहले मार्च के एक वीडियो का हवाला भी दिया कि रामगोपाल यादव ने एक पर्ची केंद्रीय गृह मंत्री को दे दी है। राजभर का कहना है कि खनन घोटाले से लेकर गोमती रिवर फ्रंट तक के घोटालों में कौन फंसा है ये सब जानते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने उनसे बात की, सुनिए जरा।
14: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब 4 महीना रह गया चुनाव को,
15: है ना? अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में का लिखल हो पता है?
14: क्या लिखा?
15: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
14: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या?
15: क्या लिखे बतावे रामगोपाल, रामगोपाल जी बतावे कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम है। आई जौन तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो, योगी जी के इनकी जान बचौली रहा मंचवा पर।
14: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
15: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे। आ रहा है बिल न, महिला बिल पास होना है न, समझ में आ रहा है बात न?
0: तो ओम प्रकाश राजभर का तो बयान आ गया, लेकिन ये भी हम आपको बता दें, इसी पर अफजाल अंसारी का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने का ये एक तरह से मुद्दा है जो किया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। आज तक संवाददाता राहुल गौतम से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
16: एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों के टूटने की खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर जो कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में भी टूट होने वाली है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी साहब। अफजाल साहब, ओपी राजभर हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, यूपी से ही आते हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा एक चिट्ठी दी है रामगोपाल यादव ने, जिसमें एक बाकायदा लिस्ट है उन तमाम लोगों की जो कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जाने वाले।
17: चलिए, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है तो उस पर हमको क्या कहना है। अगर वो लिस्ट मिल गई और वो लिस्ट उन तक पहुंच गई और उन्होंने आप तक भी पहुंचा दिया, तो अब इसमें और आगे बचता क्या है।
16: वो तो खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं कि आपके यहाँ असंतोष है।
17: जब खुल्लम खुल्ला वो बता ही रहे हैं और हमारे दल के बारे में हमें नहीं पता है या कम पता है, उसके बारे में उनको ज़्यादा पता है, तो ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। बहरहाल मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान, सियासत को तो हवा मिल गई, क्या हो रहा है अब?
18: देखिए, इस वक्त यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है जब से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है और साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों में फूट होने वाली है। उन्होंने ये तक कहा है कि रामगोपाल यादव एक लिस्ट लेकर अमित शाह के पास गए हैं और उस लिस्ट में तमाम सांसदों के नाम हैं और एक डील की गई है कि आप हमारे घोटालों को छुपाइए और हमारे सांसदों को आप ले जाइए। ये आरोप राजभर ने लगाया, हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका कटाक्ष किया है और समाजवादी पार्टी का साफ इस पूरे मामले पर कहना है कि कुल मिलाकर राजभर एक नॉन सीरियस नेता है और वो बेफजूल की बातें कर रहे हैं, इसके सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर इस बीच में अखिलेश यादव भी तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल लिया गया है तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं राजभर को इस मामले में आड़े हाथों लेती हुई पार्टी दिखाई पड़ती है। लेकिन बड़ा बयान कहा जाएगा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, जहां पर वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो भी तब जब आप भारत के अन्य राज्यों में खासकर टीएमसी और अन्य जगहों पर सांसदों की टूट देख रहे हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी में भी सांसदों की टूट होती है या फिर ये केवल एक चुनावी बात है। जी,
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो अपने चित्त परिचित अंदाज में अखिलेश यादव ने निशाना साधा।
19: हमने अपने साथियों से कहा है कि गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजेस से तस्वीरें निकलवाइए कि 2017 से पहले कितने तालाब थे, पानी भराया जाता था, और आज 2026 के बाद तालाब है ही नहीं कई जगह। सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरकार ने सब तालाब कब्जा कर लिए। सच्चाई तो यह है कि 2017 से पहले इन्हें कोई जानता नहीं था, 2017 से पहले इन्हें कोई जानता ही नहीं था, इनकी ही पहचान नहीं थी कोई।
0: अब अखिलेश यादव का बयान आपने सुन लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, ब्राह्मण को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर इस वक्त लगाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी बैठक की है आज अखिलेश यादव ने और दफ्तर में ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें अखिलेश ब्राह्मण वोट बैंक को साधने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। और इस बैठक में एसपी के ब्राह्मण सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं जो ब्राह्मण पर अपनी पकड़ अच्छी मजबूत रखते हैं। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक
22: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
23: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
24: Learn more at APGE.com.
25: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों का आगे का तानाबाना कैसा होगा, वो आज इस मुलाकात से तय होने वाला है। आज जब बातचीत की टेबल पर दोनों नेता आमने सामने होंगे, तो पश्चिम एशिया में वर्तमान हालात, भारत

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: यू आर टेलिंग द साउथ इंडियन स्टेट्स, you're telling the northeastern states, you're telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing.
9: जिस परिसीमन बिल को देश विरोधी बताते हुए विपक्ष ने पास नहीं होने दिया कि सरकार ने उसे पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत जुटा लिए। बड़ी बात है कि असम में बीजेपी की प्रचंड जीत में परिसीमन एक अप्रत्याशित फैक्टर साबित हुआ, जिसने असम में बीजेपी के दोनों विरोधियों कांग्रेस और AIUDF के सामने अस्तित्व का संकट लाकर खड़ा कर दिया। सवाल है कि संसद में परिसीमन बिल पास होने से क्या विपक्ष के सामने ऐसा ही संकट पैदा हो सकता है? इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इसे पास नहीं होने देना चाहते। अप्रैल में विपक्ष ने परिसीमन बिल को पास नहीं होने दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। मौजूदा माहौल में परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाकर पास करवाए जाने की चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सुझाव भी आया, जिसने भविष्य में लोकसभा सीटों के विस्तार का एक खाका खींच दिया है। इसमें लोकसभा की सीटें 824 करने के लिए सिर्फ 170 बड़े लोकसभा क्षेत्र में से 59 को दो भागों में और बाकी 111 को 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटने का सुझाव शामिल है। बीजेपी को नए सिरे से परिसीमन विधेयक लाने का हौसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मिला। यहाँ के सत्ताधारी रहे दोनों दलों ने अप्रैल में लोकसभा में विधेयक पास नहीं होने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन TMC टूट गई है। वहीं DMK इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। इसी बात से बीजेपी के हौसले बुलंद है, क्योंकि वो पहले से ही परिसीमन को लेकर DMK जैसे दलों की मांग को स्वीकार करने को तैयार रही है। अब सवाल है कि परिसीमन को लेकर बीजेपी इतनी उतावली क्यों है? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है? इसे समझने के लिए ताजा उदाहरण असम का है। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या घटकर 35 से 22 हो गई। हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या 126 ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मगर परिसीमन ने प्रतिनिधित्व के समीकरण को बदल दिया, जिसलिए मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम रही। जबकि असम के मूल निवासी 90 सीटों के मुकाबले 103 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगे। 2023 के परिसीमन से न केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व कम हुआ जहां बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं का लंबे समय से दबदबा रहा था, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो जाती है। अनुसूचित जाति की सीटें 1 से बढ़कर 9 हो गई। इस तरह असम की नई चुनावी भौगोलिक परिस्थिति ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के संतुलन को बिगाड़ दिया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की।
10: तो अभिषेक जी को, अमित शाह जी को साइलेंट देने का दरकार नहीं है। 7 तारीख रिजल्ट होगा, 6 तारीख अभिषेक जी

0: दुबई चला जाएगा।
1: परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को प्रभावी ढंग से लोकसभा और विधानसभाओं में लागू किया जाना है। परिसीमन को वन नेशन वन इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि 2029 में देश भर में एक साथ चुनाव कराया जा सके। इस तरह परिसीमन बिल नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े एजेंडे की पहली सीढ़ी है, जिसे लेकर मोदी पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। बड़ी बात यह कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तय की गई सीमाओं और सीटों को संसद या राज्य विधानसभा बदल नहीं सकती, वो केवल इन्हें स्वीकार करती है। साउथ इंडियन स्टेट जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, जिसके परिणाम प्रकाशित होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में 3 साल तक का समय लग सकता है, यानी सरकार की तैयारी 2029 को लेकर साफ मानी जाती है।

ओम प्रकाश राजभर्ग समाजवादी पार्टी पर हमला, रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करती बड़ी टूट का इशारा। सोशल मीडिया पोस्ट से सियासत गरमाई, पोस्ट पर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में बिखराव के संकेत दिए। लोक भवन में रोजगार का बड़ा कार्यक्रम, सीएम योगी ने पुलिस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी की पुलिस जवानों को नसीहत, बोले ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता, सतर्कता जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल कर रही है एसआईटी। 9 कर्मचारियों के पास आई महंगी गाड़ियां और कीमती फोन, एसबीआई के कर्मचारियों से भी पूछताछ। मथुरा में जन्मस्थान पर आने वाले चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप, सीएम से जांच की अपील। आगरा में एनजीटी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, तालाब की जमीन से मंदिर, मस्जिद और मजार हटाए गए। अंगूठी गांव में प्रशासन का बुलडोजर अभियान, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराई गई। बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं और रखरखाव पर हुआ मंथन। बांके बिहारी मंदिर समिति के बैठक में व्यवस्थाओं पर चर्चा, 200 किलो के झूले के जीर्णोद्धार का निर्णय। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को लगा जमावड़ा, अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे शामिल। मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे पर रोक, योगी बोले मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। सीएम योगी का निर्देश, 10-12 फीट से ऊंचे ताजियों को अनुमति नहीं, शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुहर्रम से पहले संभल में हाई अलर्ट, डीएम एसपी ने संवेदनशील इलाकों में निकाला पैदल मार्च। तो 2027 की तैयारी में जुटी बीएसपी, मायावती ने ओबीसी नेताओं संग बैठक बुलाई, पीडीए समीकरण को दी चुनौती। दलित ओबीसी गठजोड़ मजबूत करने की कवायद, मायावती ने जमीनी अभियान तेज करने के दिए निर्देश, मायावती बोली 2007 जैसे समर्थन फिर मिलेगा। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई, भारी पुलिस पीएसी बल की मौजूदगी में ढहाया गया निर्माण। रामपुर में टीएमसी में टूट पर मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज, बोले जब तक पावर तब तक प्रेम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली कार्गो फ्लाइट, चेन्नई से पहुंचा मालवाहक विमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली कार्गो फ्लाइट, चेन्नई से पहुंचा मालवाहक विमान। यूपी वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम निर्माण का 90% काम पूरा। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे इस स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ, गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। प्रयागराज में प्रेमिका से शादी से इनकार और न मिलने पर रोक वाली कत्ल की वजह, प्रेमी ने दादा दादी हत्या की। मथुरा में इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणी को लेकर दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग भी हुई।

0: तो चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से निशाना साधा है और अखिलेश यादव ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब लगे हैं, लेकिन सब गायब हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें बड़ी खबर, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर बीजेपी को अखिलेश यादव ने आज फिर घेरा और कहा कि सीसीटीवी से चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का राज खुल सकता है, लेकिन चुनावों की तरह यहां भी सीसीटीवी फुटेज खो गए हैं, गायब हैं। अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया और सवाल उठाए गए और कहा कि सीसीटीवी से चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का राज खुलेगा, लेकिन फुटेज गायब।
1: भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।
0: तो अखिलेश यादव अपने चित परिचित अंदाज में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज भी जांच हुई, आज भी एसआईटी अयोध्या में राम मंदिर पहुंचती है, आज तीसरा दिन है और जांच पड़ताल लगातार इस वक्त की जा रही है, कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपों के घेरे में आए चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से भी पूछताछ की गई। साथ ही ये भी आपको बताएं कि एसआईटी ने राम मंदिर में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, चढ़ावे की प्रक्रिया की भी जांच हो रही है, कल ही 43 कर्मचारियों की पूछताछ हुई और इनमें से 9 अब कटघरे में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, राम मंदिर की बात की जाती है, राम मंदिर सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश में सियासत का केंद्र भी है। अब यहां पर आरोप लगे हैं कि जो राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया वो चोरी हो रहा है, तो ऐसे में अब जांच भी है और एसआईटी अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है और इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

0: राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई, अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है, बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी।
0: आखिर कहां से पैसा आ गया? एक ड्राइवर 2200 रुपए, मेरे सामने नौकरी की शुरुआत हुई थी।
2: कहां से शुरुआत थी?
0: कार सेवकपुरम से, महेश नारायण।
2: किसके ड्राइवर थे?
0: ये परमहंस जी का ड्राइवर, फिर महेश नारायण सिंह का, फिर विनय कटियार का। इस तरह क्रमशः ये चलते चलते और 22,000 की नौकरी जब 2020 में मिली तो ये अरबपति और करोड़पति कहां से हो गया भैया? आप बता दीजिए शर्मा जी, हमको बताइए कि अगर
2: 22,000 रुपए पर महीने की नौकरी पर
0: अभी ये अभी 6 साल पहले हुआ था, अभी 6 साल पहले
2: ड्राइवर हुआ था?
0: ये परमहंस जी का ड्राइवर था। अभी तो ये चंपत राय, चंपत चालाक का ड्राइवर था, चंपत राय बंसल का। और ड्राइवर के बाद अभी उनका महा मैनेजर हो गया।
2: सबसे संपत्ति इसका हॉस्टल, हॉस्टल तो सुन रहे हैं, गए भी थे हम लोग, और क्या ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली?
0: तो सब छिपा के है ना, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, बचेगा। इसके बाद लखनऊ में है, अयोध्या जनपद में कई जगह है, बस्ती जनपद में है। अब हम लोग भी खंगलवा रहे हैं। अभी तक निगाह इसलिए नहीं थी कि अभी तो निगाह बड़े चोर पर थी, ये तो साइड विलेन है ना।
1: टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है।
3: बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं का नाम भाई जांच इनकी करनी करिए, जहां कहिए हम चलेंगे, जो भी जांच करना कराइए। लेकिन और सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग को फंसाया जाके बड़े लोग को दबाओ, सबकी जांच होनी चाहिए, किसके पास कितनी संपत्ति है, वो तो ज्ञान होना चाहिए।
1: SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण एस और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे।
4: जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो दफ्तर है, जहां पर ये रकम इकट्ठा होती थी, जहां पर ये रकम इकट्ठा होने के बाद जमा की जाती थी, उन तमाम चीजों को देखा गया। अब आज दूसरे दिन SIT की टीम अंदर पहुंची हुई है, पड़ताल करेगी और तब साफ होगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी होने के आरोप में कितनी सच्चाई है।
0: हमने तो राम मंदिर के लिए सौगंध।
1: इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की।
0: नहीं लग रहा है ये सही भी है, ये चोरी किया। जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया, मैं बाई नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया। और इस सारी चोरी में चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और वो टिन्नू यादव, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ये चार चोर, इसमें किसी SIT की जरूरत नहीं है, कोई SIT गठित करने की जरूरत नहीं। चारों को पकड़ लीजिए, पूरा देश प्रसन्न हो जाएगा, एक चोर पकड़ लिए गए। अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो SIT, ID, ED, CBI, CBCID कुछ भी करे, लोगों को विश्वास उठ जाएगा।
1: एसआईटी तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: तो देखिए, मंदिर में दान का मामला अब अयोध्या से पहुंच चुका है मथुरा, और फलाहारी बाबा हैं। फलाहारी महाराज ने अपने खून से चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और उन्होंने कहा है कि चढ़ावे में चोरी हुई है और गड़बड़ी हुई है और अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला अयोध्या से सीधे पहुंचा मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि दान जांच की मांग की है।
6: हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे के रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपये, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पर आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी बंगला फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं।
5: और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
10: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
11: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
13: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठकर मुलाकात करने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर ये बातचीत हो सकती है। कई अहम समझौते यहां पर हो सकते हैं। वैश्विक राजनीति, व्यापार, पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर आज इन दो बड़े नेताओं के बीच बात संभव है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: Order for Jennifer C.
16: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
15: Yeah. Can you handle that much caffeine?
16: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
15: Oh, really? That's great.
16: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
15: Yeah, you just said that.
16: Did you say I just said that?
15: Yeah, I'm cutting you off. I can't have any more? Why not?
12: You earn, we match. Discover Cashback Match. See terms at discover.com/creditcard.
17: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
18: Oh yeah!
17: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
19: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
21: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
22: Swing and a foul out of play off to the left.
21: Big 12 Radio.
23: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
21: Talk Sport.
24: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
21: And more. Search sports to find the stations covering your teams. Beautiful.
25: अभी दो दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो संजय राउत दावा ऑपरेशन टाइगर की काउंटर स्ट्रेटेजी का कर रहे थे
26: और अच्छी बातचीत हो गई, आगे की रणनीति तय हो गई।
25: लेकिन दो दिन के सियासी घटनाक्रम में ही अब संजय राउत के सुर बदल गए।
26: कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं।
25: यूं तो संजय राउत ने हवाला टीएमसी में हुई बगावत का दिया, लेकिन ये बयान उद्धव की पार्टी को लेकर भी बड़ा संकेत दे रहा है। इससे भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे की वो अपील है जो उन्होंने पार्टी में टूट की अटकलों के बीच की। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहे उन्हें खुशी खुशी जाने दें। उद्धव ने कहा कि आज मेरा समय नहीं है, लेकिन कल जरूर आएगा। साथ ही पार्टी नेताओं से अपील करते हुए उद्धव ने ये भी कहा कि हमें धैर्य रखना होगा और इस दौर को सहना होगा। दरअसल टीएमसी में हुई बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की जोरों पर चर्चा है। इसी बीच रविवार को उद्धव ठाकरे ने मातुश्री में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। शिवसेना के कुल 9 सांसदों में 3 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे। परबड़ी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचोरे और धारशिव सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक से दूर रहे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल पहुंचे, जबकि संजय देशमुख, नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक से जुड़े। जिसके बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया कि उद्धव की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच बीती शाम उद्धव ने बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों से स्थिति साफ करने की अपील की, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला कि शिवसेना यूबीटी में सब ठीक नहीं चल रहा। उधर इस हलचल के बीच शिवसेना नेताओं का हमला भी शुरू हो गया। दावा है कि उद्धव से सभी सांसद विधायक संतुष्ट नहीं है और उनमें से कुछ एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। पूरा घटनाक्रम उद्धव की चिंता बढ़ाने वाला है। पहले भी पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और अब एक बार फिर उद्धव के सामने संकट की घड़ी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच संजय राउत ऑपरेशन वुल्फ का दावा कर रहे थे, लेकिन हर दिन बीतने के साथ बात बिगड़ती जा रही है। उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। मुंबई से विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, आज तक।

समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार, भारतीय नाविकों पर हमले पर भी सीधी बात। उद्धव की पार्टी में बगावत पार्ट टू, सूत्रों से खबर। 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत। शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी। उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक। व्हिप जारी।

बसपा, बोले समाजवादी पार्टी में भी टूट तय, अमित शाह से मिल चुके हैं रामगोपाल। अखिलेश ने सीधे जवाब से काटी कन्नी। २०२७ चुनाव में से पहले ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक में चुनावी प्लान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मौलाना की पार्टी बताकर हमला।

0: एसआईटी की जांच, टिन्नू यादव समेत कई कर्मचारियों से पूछताछ, अखिलेश यादव का आरोप, सीसीटीवी फुटेज गायब, राज कैसे खुलेगा?
1: कुछ देर में मोदी ट्रंप की महामुलाकात। टैरिफ, नाविकों की मौत, हर मुद्दे पर सीधी बात। मोदी की बांह पर ट्रंप की थपकी, बर्फ पिघली। अमेरिका फर्स्ट बनाम इंडिया फर्स्ट, ट्रेड डील अधूरी। ट्रंप के सामने दो टूक, मोदी बोले भरोसे की कमी। आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज, जहां के हम सिकंदर।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक और दिल्ली तक कूटनीति की सबसे बड़ी बिसात बिक चुकी है। और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद, यानी शाम 5:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। 16 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर पश्चिमी एशिया के हालात, हॉर्मूज से व्यापार को सुचारू रूप से शुरू करने, भारत अमेरिका के बीच विवादित मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों पर टिकी हैं। आज जो महामुलाकात होगी, उससे पहले बहुत कुछ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं जिसमें थोड़ी देर के लिए डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आमना सामना हुआ, थोड़ी बातचीत हुई। पूरे 16 महीने के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है और इस दौरान जो चीजें हो चुकी हैं उससे कितना असर पड़ सकता है आगे, बातचीत किस तरीके से होगी, किस माहौल में होगी, किन मुद्दों के साथ होगी, उस पर सबकी निगाहें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के दावे होते रहे, ट्रेड वॉर की कड़वी धमकियां आती रही, H-1B वीजा पर पाबंदी से लेकर हॉर्मूज में 3 भारतीय नाविकों की हत्या और ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रिश्तों में गांठ पैदा कर चुका है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिलने वाले हैं। कल एवियन के G7 मंच पर दोनों नेता पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी जगह से उठे, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, पीएम मोदी का हाथ थामा, उनकी बांह पर थपकी दी। लेकिन कूटनीति के जानकारों ने ध्यान दिया कि इस बार दोनों नेता गले नहीं मिले। आखिर क्या कहती है मोदी और ट्रंप की ये नई बॉडी लैंग्वेज, इसका इस मुलाकात से जुड़े हर पहलू का विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। वहीं आज की महामुलाकात पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं रविंदर सचदेवा, जो कि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स यूएस इंपैक्ट के, मेजर जनरल विशंबर दयाल सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश गोयल जी पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय से, और साथ ही हमारे साथ शिकागो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत बरे, जो कि अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के, और इसके अलावा सीधे एवियन फ्रांस से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में वॉशिंगटन से हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित शर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, क्योंकि आज ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और प्रधानमंत्री मोदी के इंडिया फर्स्ट वाली नीतियों का जो मिलन होने जा रहा है वो भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नया और बेहद दिलचस्प आयाम देने वाला है।

0: तनाव के 16 महीने, कड़वाहट के सिलसिले और फिर एवियन की धरती पर दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर्स का ये आमना सामना। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कल एक दूसरे के करीब आए तो कूटनीति के जानकारों की नजरें बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जम गई। वजह साफ थी, बीते महीनों में भारी टैरिफ, व्यापारिक तनातनी और ओमान के पास भारतीय नाविकों की मौत ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। लेकिन कैमरों के सामने जो दिखा उसने सारे कयासों को एक नया मोड़ दे दिया। जरा ध्यान से देखिए इन विजुअल्स को। जैसे ही पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि मोदी के कंधे और बांह पर 2-3 बार थपकी दी, जैसे वो कह रहे हो, जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप की तरफ से ये रिश्तों को रीसेट करने का एक सीधा और दोस्ताना इशारा था।
1: उन तस्वीरों को अगर देखें गौर से तो समझ में आता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी में शायद कुछ हिचकिचाहट रही हो, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखा प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और उस गर्मजोशी ने आप कह सकते हैं कि वो जो 16 महीनों से जमी हुई बर्फ थी रिश्तों के अंदर उसको काफी हद तक पिघला दिया है।
0: लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शन में छिपा है। इस बार मोदी ने ट्रंप को गले नहीं लगाया। जी हाँ, मोदी की सिग्नेचर हग डिप्लोमेसी इस बार नदारद दिखी। पीएम मोदी बेहद संयमित, नपे तुले और गरिमामयी अंदाज में दिखे। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सीधा संपर्क था, लेकिन कोई अति उत्साह या ओवर एक्साइटमेंट नहीं था। हाथ जोड़कर प्रोफेशनल दूरी बनाए रखना ये साफ संकेत है कि भारत अब ट्रंप की सौदेबाजी वाली कूटनीति से सावधान है। मोदी की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि भारत किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, बात होगी तो सिर्फ बराबरी की शर्तों पर। बॉडी लैंग्वेज में जहां गर्मजोशी और सतर्कता का ही संतुलन था, वहीं पीएम मोदी ने मंच से अपनी बात रखते हुए मौखिक रूप से ट्रंप प्रशासन को एक बेहद सादा और कड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप के ठीक बगल में बैठकर G7 के मंच से पीएम मोदी ने गरजते हुए कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे यानी ट्रस्ट की कमी से जूझ रही है। मोदी ने दो टूक कहा कि आपसी विश्वास ही आज सबसे बड़े राजनीतिक संपत्ति है और साझेदारियां तभी चलती हैं जब उनकी नींव में भरोसा हो। बिना नाम लिए मोदी ने अमेरिका फर्स्ट और मनमाने टैरिफ लगाने की अमेरिकी नीति पर सीधा प्रहार किया। कल की छोटी छोटी मुलाकात सिर्फ रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश थी, असली परीक्षा तो आज होने वाली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत में होनी है। इस महा मुलाकात पर आज पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील जल्द फाइनल होगी, या फिर अमेरिकी नौसेना की हाथों हुई भारतीय की मौत का मुद्दा और ट्रंप की सौदेबाजी रिश्तों को और मुश्किल बनाएगा। कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ ट्रंप की बाह पर थपकी जमाने वाली गर्मजोशी है तो दूसरी तरफ मोदी की नो कॉम्प्रोमाइज वाली गरिमा। देखना होगा कि कुछ देर बाद जब ये दोनों महाशक्तियां एक साथ बैठेंगी तो भारत अमेरिका रिश्ता क्या करवट लेता है। प्रणय उपाध्याय, एवीएन आज तक।
2: तो इस बॉडी लैंग्वेज पर, बदले हुए परिवेश में नए रिश्तों के स्वरूप पर, रिश्तों के नए अध्याय पर, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G7 वर्किंग पार्टनर मीटिंग में हिस्सा लिया। आज G7 समिट का आखिरी दिन है। फ्रांस के एवियन में G7 देश के नेताओं के साथ ही पार्टनर देशों के प्रमुख इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत हुई। कल ग्रुप फोटो के दौरान भी दोनों की बातचीत हुई थी और आमतौर पर जब ये दोनों नेता एक फ्रेम में होते हैं तो वहां से मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम बातें होने ही लगती हैं। साथ ही जिक्र इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर जोड़ी होने का भी हो गया। लेकिन अभी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, और प्रणय आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि अब से वहां के समय के अनुसार कितनी देर में ये दोनों नेता ये द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते हैं, अभी तक प्रतिनिधिमंडलों की तरफ से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि मुद्दे क्या हो सकते हैं दोनों नेताओं के बीच बातचीत में?
1: करीब 2 घंटे का वक्त बचा है श्वेता प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में करीब 16 महीने के बाद होने जा रही जो औपचारिक द्विपक्षीय मुलाकात है उसके बीच में, और इन 2 घंटों के बीच में जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक चर्चा और चिंता बहुत इन तमाम चीजों के बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन वक्त जो है वो करीब 40 से 50 मिनट का रखा गया है दोनों नेताओं की इस बातचीत का। हमने देखा है कि इससे पहले जब भी दोनों नेता मिले हैं टाइम ओवर स्ट्रेच हुआ है, लेकिन ये फ्रांस की जमीन है, ये मौका G7 शिखर बैठक के हाशिए पर है, इसलिए कितना वो टाइम एक्सीड होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि आज का सत्र थोड़ा देर से शुरू हुआ है इसलिए संकेत है कि थोड़ा बहुत ही टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समय अनुकूल है इस लिहाज से क्योंकि अब महसूस किया जा रहा था कि इस रिश्ते के अंदर ये उच्च स्तरीय जो बातचीत है ये जो मुलाकात है ये जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर रिश्तों का रिपेयर करना है रिश्तों का रिसेट करना है तो उसके लिए इन दोनों नेताओं का एक साथ मिलना और बैठना जरूरी है, और जो हमें संकेत मिले उसके मुताबिक इस प्रस्ताव पर दोनों ही पक्षों की तरफ से सहजता से सहमति बनी। जैसे ही ये प्रस्ताव आया कि जून के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही फ्रांस के एवियन में हो गए तो क्या मुलाकात होगी, तो दोनों ही तरफ से एक साथ हाँ कहा गया, ये आधिकारिक स्तर पर दोनों पक्षों ने इस चीज की पुष्टि की है। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं चर्चा के भी और चिंता के भी, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला हो, चूंकि ट्रेड डील अभी भी लंबित है, जाहिर बात है कि इसको लेकर बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अमेरिकी USTR की एक विजिट इंडिया की अभी बाकी है, फाइनली अमेरिका कितना टैरिफ लगाने जा रहा है क्योंकि सेक्शन 301 का एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी हैं, तो उसके बीच भारत को इंतजार है उस टैरिफ के आंकड़े का, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इस टैरिफ के नाम पर। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आए वो बेचैन कर देने वाले बयान, उनकी भी एक छाया, उनका भी एक असर था, और शायद यही वजह है कि गर्मजोशी के अंदर वो जो गले लगने वाली हग डिप्लोमेसी है उसकी बजाय एक सतर्कता और उम्मीद भरी यानी कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाली जो बॉडी लैंग्वेज है वो यहां पर देखने को मिली। लेकिन दोनों ही तरफ से एक चीज जरूर थी कि दोनों ही चाहते हैं कि इस संबंध को आगे भी ले जाया जाए, बातचीत की जाए, और बातचीत से ही हर चीज का समाधान निकलता है। लेकिन जहां तक विषयों का सवाल है मैं एक एक करके गिनवाता हूं, क्योंकि इस समय पश्चिम एशिया का संकट न केवल G7 की शिखर बैठक पर छाया हुआ है चर्चा का सबसे बड़ा विषय है, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के अंदर भी जो मौजूदा पश्चिम एशिया का संकट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान डील को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि खुलेगा तो उसके अंदर अन्य देशों की क्या भूमिका, कैसी चीजें होने वाली हैं, ये सारे विषय होंगे जो चर्चा के अंदर आएंगे। इसके अलावा ट्रेड डील का मुद्दा है जो प्रमुखता से इस चर्चा का भी विषय होगा। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, चूंकि हमने देखा है रूस से तेल भारत के आयात को लेकर जहां प्यूनिटिव टैरिफ भारत पर लगाया गया था, वहां से लेकर अगर हम देखें तो रूस से तेल खरीद को लेकर जो अमेरिका का वेवर दिया गया था वो भी इंसिडेंटली श्वेता आज ही खत्म हो रहा है, तो इसके बाद क्या वो वेवर अमेरिका एक्सटेंड करता है या उसके बाद कोई नया प्रोविजन है, या भारत ये कहता है कि वी डोंट केयर आप क्या लगाते हैं, लेकिन हमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा क्योंकि इस चीज को नजरअंदाज अमेरिका भी नहीं करेगा। जी
2: बहुत सारी चीजों को
1: कंप्लीट कर दूं मैं कि इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकता अमेरिका कि बीते एक साल के दौरान अमेरिका से होने वाले भारत के तेल आयात में 60% की बढ़ोतरी हुई है, तो भारत अमेरिका के लिए एक वैल्यूड पार्टनर भी है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेल को लेकर जो उनके ड्रिल बेबी ड्रिल के इनके नारे हैं उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण और अहम खरीदार भी है।
2: सुरेश गोयल जी, हम एक G7 की साइडलाइंस पर अगर एक बायलैटरल मीटिंग हो रही है दो देशों के नेताओं के बीच, जो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगने की बात है, पर रिश्तों की मरम्मत का जो इंतजार है सबको, उसकी नींव आपको उस बॉडी लैंग्वेज में दिख गई?
3: जी, आपका सवाल काफी लंबे आंसर की उम्मीद रखता है। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, जितना छोटा कर सकता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर ऐसी बायलैटरल मीटिंग G7 के मार्जिन पर होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है ये, क्योंकि 7 देश हैं, ज्यादा देश नहीं है, तो बड़ी सेलेक्टिव मीटिंग्स होती है ये, और खास तौर पर अगर ट्रंप ने और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने की इच्छा जाहिर करी है और तैयार हुए कि मीटिंग की जाए, जानते हुए कि रिश्तों में कितनी खटास है, इसका मतलब कि दोनों तरफ से एक तरह से कि इच्छा है ये और विलिंगनेस है कि टाइज को इम्प्रूव करने का मौका है ये, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि G7 मीटिंग अगर अभी भी देखा जाए संसार के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमीज की एक मीटिंग है, और वहां पर जो डिसीजंस होते हैं या जो भी चर्चा होती है उसका पूरे विश्व के ऊपर असर पड़ता है। और अगर भारत वहां पर है टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ये अपने आप में एक बड़ा बड़ी चीज है। ये आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा यहां पर कि पिछले 18 महीनों में खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई है, आपने जिक्र किया उनका, इन्होंने प्रणय ने जिक्र किया काफी, जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद में सवाल काफी खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका भारत से अपने रिश्तों को पहले की तरह ही बनाने में चाहता है या कुछ फिलिंगने से। खासतौर पर अगर आप देखें कि अभी कल ही उन्होंने जो पहले इंडो पैसिफिक कमान का नाम दोबारा चेंज करके पैसिफिक कमान कर दिया, इसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखिए पैसिफिक पहले भी पैसिफिक था, पहले वो देखते थे ईस्टर्न पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक के लिए पैसिफिक कमान सेंटकॉम था वो देखते थे। जब इंडो पैसिफिक किया तो खास तौर पर उन्होंने बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए एक इम्पोर्टेंस दी कि चाइना की यहाँ पर बढ़त हासिल है और इंडिया का रोल है ये। तो इंडो पैसिफिक खाली नाम के लिए नहीं था ये, तो उन्होंने साउथ एशियन रीजन को अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक स्कीम में शामिल किया था। अब वो बाहर हो गया है ये, तो ये सारी चीजें ध्यान देने के काबिल हैं कि देखिए क्या होता है आगे।
2: और इसमें बहुत बड़ा पहलू हो जाता है जो इतने सालों की कूटनीति के साथ इंडिया और पाकिस्तान को अव्वल डीहाइफनेट किया गया, उसमें पाकिस्तान के साथ ट्रंप के जो रिश्ते रहे हैं, जो आसिम मुनीर वाला एंगल रहा है, जो फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच एक युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं, ये सारी चीजें क्या मायने रखती हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच और आज की मुलाकात के हिसाब से, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: Savari, Sokudo.
11: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: इन एसोसिएशन विद
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
7: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। भगवंत मान पर गुरुद्वारे के दान पात्र को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। दरअसल ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो को लेकर झूठ बोला। उनका कहना है कि पांच सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है।
1: पहला तो इन्होंने पंजाब नाल गद्दारी की, हुण इन्होंने पंथ नाल भी गद्दारी की। मैं तो कहना भी तुरंत प्रधान मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।
2: ये वीडियो असली है, एआई के नाल नहीं बनाई हुई। ये रिपोर्ट ये किथे कहती है कि उस वीडियो दे विच कौन व्यक्ति है?
0: आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर विवाद है उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति भगवंत सिंह मान है या कोई और, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो को लेकर अपनी बात साबित करने के लिए भगवंत मान से सबूत मांगे गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर वैसे

G7 की बैठक में मोदी ट्रंप की महामुलाकात का काउंटडाउन, पश्चिम एशिया संकट, ट्रेड डील, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार, भारतीय नाविकों पर हमले पर भी सीधी बात। उद्धव की पार्टी में बगावत पार्ट टू, सूत्रों से खबर, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक, व्हिप जारी। दो हजार 2027 चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक में चुनावी प्लान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मौलाना की पार्टी बताकर हमला। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आएगा यूसीसी विधेयक, सीएम मोहन यादव बोले इसी सत्र में पारित होगा बिल, दिवाली तक पूरी तरह से लागू करने की तैयारी। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के अस्थाई बैन पर भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए वार, आज कोटा में नेता विपक्ष की छात्रों से संवाद।

0: आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है और उसी पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी और रणनीतिक रूप से संवेदनशील खबर भी आई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमांड यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया, यानी उसने इंडो शब्द को हटा दिया है। यह आधिकारिक घोषणा ठीक उस वक्त की गई है जब G7 शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए इसे क्वाड के ताबूत में एक और कील करार दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव केवल अपनी 1947 की पुरानी सैन्य विरासत और सैनिकों के गर्व को सम्मान देने के लिए किया गया है। इससे अमेरिका के मिशन या जिम्मेदारी के क्षेत्र यानी AOR में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको यह बता देना जरूरी है कि पिछले साल भारत क्वाड का अध्यक्ष था और लीडर्स समिट होस्ट करने वाला था, लेकिन ट्रंप ने भारत आने का प्लान रद्द कर दिया था। तो सुरेश गोयल जी, जो बात आप कह रहे थे वाकई ये चिंता बढ़ा रही है आपकी कि किस माहौल में, किस रुख के साथ, किस विचार के साथ ये बातचीत आज होने वाली है।
1: जी, थोड़े से कंसर्न से।

0: बेसिकली ये है कि हमने पिछले दशक में खास तौर पर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि पुटिंग ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, कि अमेरिका के हम जो है एक जो होगा कि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी बिकेम यूएस सेंट्रिक, और अब जो वो एक पिवट था, जो सहारा था, वो मेरे को कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने उस टाइम पर भी कहा था, कहीं और डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा था कि यूएसए इंडिया को चाइना के काउंटर बैलेंस के तौर पर देखता है, क्वाड में भी उसका इंटरेस्ट चाइना का काउंटर बैलेंस करने के तौर पर भारत को मजबूत किया जा रहा है, तो हमें इस टाइम का फायदा उठा करके अपनी मजबूती बढ़ानी चाहिए। कहीं कोई भरोसा नहीं है कि चीन के और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूत होने शुरू ना हो जाएं, और वो हो रहा है। शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, चाइना ने दिखा दिया कि चाइना अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है, बल्कि ट्रंप को जो है शी जिनपिंग के आगे थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ा। तो मुझे ये पक्की उम्मीद नहीं कहूंगा, लेकिन संशय है कि आगे आने वाले समय में भारत की जो एक महत्व है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, या तो इवन कील रहेगा या थोड़ा सा डामाडोल रहेगा, कम से कम ट्रंप के कार्यकाल के दौरान।
1: क्योंकि ऐसा नहीं है कि रविंदर जी दो देशों के बीच का रिश्ता, बल्कि एक डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट रहते हुए दो देशों का रिश्ता, और उनके इस दूसरे कार्यकाल में दो देशों का रिश्ता, ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग और पुतिन के साथ नजर आते हैं तो डोमेस्टिक ऑडियंस उनकी और उनके अपने एक्सपर्ट्स उनसे सवाल पूछने लगते हैं। पर ये चीजें जो, ये खासकर ये जो नाम का बदलाव, जो क्वाड को लेकर चिंता, ये चीजें जताई जा रही हैं, ये कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है?
2: डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए जियोपॉलिटिक्स में जो भी हो, ऑप्टिक्स भी मैटर करता है, शब्दोलॉजी मैटर करती है, आप किस विचार से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो इंडो पैसिफिक कमांड हुआ था, ट्रंप ने ही इसकी पहली टर्म में इसको नाम दिया गया था, और तब ये था कि अब हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक, यू नो, पैसिफिक ओशन से बे ऑफ बंगाल से लेकर के इंडियन ओशन तक, ये एक ज्वाइंट कमांड है, ऑलरेडी था, बट उसको वो पहनाया गया था, तो अब उसको वापस स्पेसिफिक कमांड कर दिया गया है, तो इट इंडिकेट समथिंग। बट कमिंग टू व्हाट एम्बेसडर गोयल वाज सेइंग, एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन था, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी मिले जब एससीओ में, तो ट्रंप ने मजाक में कहीं कहा था अपने प्लेन में कि इट सीम्स वी हैव लॉस्ट मोदी, वी हैव लॉस्ट इंडिया, राइट? पर वो छोड़िए, जो हुआ ये है, मोर और लेस दिखता है कि ट्रंप की जो सरकार है ये इंडिया को लाइट वेट समझती है एज कंपेयर टू चाइना, वन। सेकेंड, इनको जो ये था ना पहला कि इंडिया एक काउंटर बनेगा चाइना को, उसकी राइज को बैलेंस करने के लिए, अमेरिकन सर्कल्स में शायद ये विचार आ रहा है कि इंडिया इतनी जल्दी काउंटर नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी पाया तो मिलिट्री रूप से तो हमें मदद करेगा नहीं। और तीसरा एलिमेंट था हमारा, हम जो सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, सारी अमेरिकन कंपनीज आना चाहती हैं यहाँ पे, उसमें भी ये हो रहा है, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दिक्कतें हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज ये कह रहे हैं ठीक है पोटेंशियल तो बहुत है, पर हमें फायदा कब होगा, जब होगा तब देखते हैं। तो इन दो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से इंडिया का वजन, वजूद इनकी कैलकुलस में कम होता अभी फिलहाल हमें दिख रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। पर याद रखिए, ये केवल ट्रंप ही नहीं है, कहने को तो ट्रंप है जो कर रहा है, बट इंडिकेट्स कि मोर और लेस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
1: हालांकि ये जब एक ऐसे नेता के साथ हो रहा है जिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि इनके साथ दोस्ती का जो रिश्ता है वो ट्रांसलेट करेगा और ज्यादा प्रगाढ़ संबंधों में, आप पॉजिटिव हैं इन सारे, हम एक तरीके से कहें जो संदेशों के सेटबैक के बावजूद, जो इंडो पैसिफिक से इंडो हटाने को लेकर जो एक कदम हम देख रहे हैं, या फिर पिछले 16 महीनों में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर? जनरल दयाल,
3: देखिए श्वेता, दो डिप्लोमेट बैठे हैं और डिप्लोमेसी पे मैं फौजी कमेंट करूंगा, बट मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि पिछले 16-18 महीने में जो हुआ वो काफी थिएटरिज्म है, वो काफी सिंबॉलिक है, और वो काफी ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी या दुनिया में एक भारत को एक ऐसा टारगेट ले लिया जो उनके वर्बटिज्म, जो वर्बल डायरिया जिसको कहते हैं, उससे जो है वो इम्प्रेसिव कर दें। लेकिन जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस है ना, 2002-2003-04 से जब से रीबिल्ड करने लगे, वो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप के मोहताज हैं या उसके चार साल के उसके मोहताज हैं, वो काफी हद तक बढ़ चुके हमारे. देखिए पिछले तीन चार महीने में भी अगर आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जो कुछ और दर्शाती हैं. मतलब कॉर्ड छोड़ दीजिए, वो कमी से सिंबॉलिक था, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है एक्चुअली. मैं स्ट्रेटेजिकली देखो, कल चाइना का और इंडिया का अगर युद्ध होना है तो ये हिमालयस डिसाइड करेगा. हिंदुस्तान को खुद खड़ा होकर चाइना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिमालयस में लड़ना पड़े, चाहे वो ब्रह्मा के, चाहे वो आई मीन म्यांमार के इधर से लड़ना पड़े, चाहे इंडियन ओशन में, जो है हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला, ना रशिया आने वाला ना अमेरिका आने वाला. जो हमें हथियार दे रहा है वो हथियार दे देगा, ये बात मान के चलो. तो कॉर्ड की उससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं थी. तो ये सेंटेंस सिंबोलिज्म, ये सिर्फ था बेसिकली ताइवान और उस रिलेटेड इश्यूज पे. उस पे आई थिंक अमेरिका इज रियलाइज्ड कि वो थोड़े दिन जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जब तक अपनी इकोनॉमिक उसको रीशेप कर रहे, वो ताइवान के मुद्दे को ज्यादा उठाना नहीं चाहते, मेरा मानना ये. जहां तक इंडिया और रशिया के अमेरिका के रिलेशनशिप है ना, ये अब जो ये थोड़ी सी एक नेसेसिटी वो थी कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मिले, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दें मैसेजिंग की. बाकी पिछले साल भी उतना ही ट्रेड चला. देखिए 2004 से लेके आज तक योर ट्रेड हैज ग्रोन फ्रॉम 20 बिलियन टू 200 ओवर बिलियन डॉलर्स. वो मजाक नहीं है मतलब. तो लोगों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, पीपल टू पीपल, और हमारा इतना 5-6 मिलियन लोग हैं वहां पे, और उनके इंटरेस्ट और हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं जो मैं नहीं समझता आप रिवर्स में जा सकते हैं. बिकॉज जितना मर्जी जोर लगा लो, जो सर्विसेज सेक्टर है उनका हमारे लोग चला रहे ना, तभी वो H1B जो वीजा की तभी तो बात आती है, तभी
1: इसलिए डॉक्टर भरत भरे के पास भी चलेंगे जो यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं. लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा G7 में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुना, वो ये चलिए वो बात तो ट्रस्ट की बात वहां पर थी और उसको लेकर प्रणय, जो ट्रस्ट भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया के नेताओं के बीच नहीं है. ये बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया को इस समय भरोसे की जरूरत है, तो ट्रंप सुनते हैं उस चीज को, और क्या उसी एक तरीके से हम कहें कि उसके साथ ही यहां पर आगे बात होगी उस ट्रस्ट को वापस बहाल करने की.
4: निश्चित रूप से अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ठीक बगल में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि दुनिया के सामने इस समय विश्वास का संकट है, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सुना भी होगा. और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से अपने भाषण के अंदर उन रोनाल्ड रीगन जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके एक बयान का, उनके कोटेशन का जिक्र किया, इसे काफी संकेतिक और कूटनीतिक तौर पर काफी शार्प माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन कहा करते थे ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास करिए लेकिन अपने तई उसे परखिए जरूर, ये इस समय के वक्त की जरूरत है. तब भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न केवल इसलिए सुनेंगे क्योंकि रोनाल्ड रीगन ने कहा है, बल्कि उस रिपब्लिकन पार्टी के काफी रेवर्ड नेता और उस रिपब्लिकन कम्युनिटी के अंदर रोनाल्ड रीगन को काफी माना जाता है. और डोनाल्ड ट्रंप भी अगर अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं और अपने बयानों में कहते हैं तो वो रोनाल्ड रीगन का जिक्र उसके अंदर करते हैं. तो काफी मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के, उन भाषण के. लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सी फेयरर्स की कम्युनिटी को सुरक्षित रखना हम लोगों की साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मैरिटाइम ट्रेड है ये उसकी रीढ़ है. ये केवल तीन भारतीयों की जान का मुद्दा नहीं है, लेकिन बीते कुछ महीनों के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया के संकट में पूरी मैरिटाइम इंडस्ट्री सांसत में रही है. 23,000 जो नाविक हैं वो अलग अलग जहाजों के ऊपर फारस की खाड़ी के अंदर अटके हुए थे और कोई सूरत नहीं निकल रही थी. एक तरफ अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड, दूसरी तरफ ईरान का ब्लॉकेड, और उन तमाम चीजों के बीच फंसी हुई जिंदगियां और दुनिया के सामने उठता हुआ, खड़ा होता हुआ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ ऊर्जा का संकट, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं. लेकिन अभी जैसे जनरल दयाल ने कहा, मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा सर. लड़ाइयां जो हैं वो तो वैसे भी अपने तई ही लड़ी जाती हैं और कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता, ये बात बिल्कुल सही है. और अमेरिका ने जब प्रस्ताव दिया था तब भी भारत ने नो थैंक यू ही कहा था. जब गलवान संकट के समय अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि आप यदि चाहें तो हम कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं. तो लड़ाइयों का तो बिल्कुल दौर बिल्कुल अलग किस्म का है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है. कारोबारी से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर चीज नफे नुकसान के तराजू में तौली जाती है और हर चीज पर एक वजन का टैग देखा जाता है.
1: बात करते हैं और 5 अगस्त 2025 का प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत के हितों से कोई समझौता नहीं होगा. सुनिए.
5: भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के
6: और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
1: डॉक्टर भरत बरे, यूएस इंडिया कम्युनिटी की उम्मीदें अगर मैं समझना चाहूं, आज जो ये मुलाकात होगी इससे जो एक टोन रीसेट की उम्मीद है, आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं?
7: हमारी उम्मीद जरूर है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और बढ़े। देखो, दुनिया के सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक देश हैं हम, रूल ऑफ लॉ। अमेरिका में करीब 5.5 मिलियन भारतीय लोग रह रहे हैं, हम यहाँ के नागरिक भी हैं, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है हम उनके साथ जुले मिले काम करते हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो। काफ़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों, उसके सीईओ भी भारतीय मूल के लोग हैं। आप देखो, सत्या नडेला या सुंदर पिछाई या अरविंद कृष्णा और नरसिम्हन, यहाँ की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी इंडियन लोग हैं। काफ़ी हमारे बच्चे भी यहाँ लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कंपनियाँ चलाते हैं, होटल मोटेल हैं, उसके ज़्यादा मालिक तो भारतीय वंश के लोगों हैं। तो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हो जाए तो अमेरिका के हित में भी है और भारत के हित में भी है। देखो, भारत का भी बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका से चलता है, तो भारतीय लोगों को वहाँ भी जॉब मिलती हैं। तो जो तनाव होता है कभी कभी, हमेशा लोकतांत्रिक देशों में ये तो चलता रहता है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका ख्याल रखना है। जैसा आपने बताया कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि मैं अपने लोगों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ट्रंप साहब भी वही कर रहे हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मागा वो बोल रही है, तो उसको भी वो सेटिस्फाई करने के लिए जा रहा है। देखो, राष्ट्रपति ट्रंप, उसका सबसे बड़ा स्वागत कहाँ हुआ? एक हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2019 में, जब वो भारत की मुलाकात पर आए थे। और अमेरिका में उसका सबसे बड़ा स्वागत कहाँ हुआ था? ह्यूस्टन में, जब नरेंद्र मोदी आए थे तब 50,000 लोग आए थे, नरेंद्र मोदी भी वहां थे, राष्ट्रपति ट्रंप भी आए थे। तो दोनों समझते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में हैं, हम बोलते हैं हम अमेरिका के सरदार जी हैं। वहाँ का पॉपुलेशन 1.6 है भारत में सिखों का, यहाँ भारतीयों का पॉपुलेशन कभी 1.6% है, लेकिन इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होती है भारतीय मूल लोगों की, वो भी ज़्यादा है। तो हमारा सुझाव है, हाँ, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो, दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को भारत के लोगों के लिए जो अच्छा है वो ही करना है, अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के लोगों के जो है करना है, और दोनों के बीच जो डिफरेंस हो मित्र के तरह बैठ जाए। समटाइम्स यू हैव टू एग्री टू डिसएग्री, लेकिन डू इट इन अ फ्रेंडली वे रादर देन फाइटिंग वे।
1: यही उम्मीद अभी पूरी दुनिया भी कर रही होगी। आपको एक बेहद दिलचस्प बात भी हम बता दें कि आज फ्रांस के जिस एवियन में G7 का महामंच सजा है, वहीं साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी G8 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। जी, तब G8 हुआ करता था, रूस भी इसका हिस्सा था। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 जून से 3 जून तक 2003 में एवियन में आयोजित 29वें G8 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भारत को G8 देशों के अलावा आउटरीच यानी विस्तारित संवाद के अंतर्गत आमंत्रित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर गए थे। यह भारत का G8 G7 शिखर सम्मेलन में पहला प्रमुख प्रतिनिधित्व था, जिसे 2005 और 2009 में मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया, और अब 23 साल बाद उसी एवियन में प्रधानमंत्री मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक दुनिया के मंच पर भारत की छवि मजबूत होती चली गई और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन ये दो तस्वीरें जो 23 साल के फासले की हैं, वो दोनों इस बैठक को कुछ और दिलचस्प जरूर बना रही हैं। लेकिन अभी अभी यही चीज है कि केवल वो इतिहास नहीं, बल्कि आज वर्तमान में किस तरीके से वो सारी चीजें बदलेंगी। और जनरल दयाल, जिस पाकिस्तान वाले एंगल का हम जिक्र कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि ट्रेड डील तो एक तरफ, जिसको लेकर भारत ने बहुत परिपक्वता से उसे एड्रेस भी किया, उस हिसाब से दोनों देश मतलब बहुत बुरा होते होते भी आप किसी तरीके से संभाल ले रहे थे, लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों को बार बार रखते रहा, जबकि भारत ने अपना स्पष्टीकरण दिया, भारत ने स्पष्ट किया, तो वो चीज क्या भरेगी, वो जो दर्द है वो भरेगा?
3: देखिए श्वेता, ऐसे है, कुछ चीजें ऐसी हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो लीडर्स के बीच में बातें, वो कभी कोई लिखेगा तब सच सामने आएगा। लेट्स बी फेयर कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जो आम पब्लिक से, जो आम थिंकर से, जो आम उनके बियॉन्ड है।
1: पर क्या ये एक मच्योर तरीका था?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं था। आई फुली एग्री विद यू, ये एक बिल्कुल एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट का ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि भाई इस तरह से डिक्लेयर कर देना। पर वो ट्रंपिज्म है, उसको अगर आप समझ सकते हैं, उसी ट्रंपिज्म को आप समझ कर इग्नोर कर सकते हैं या उसको साइड में रख के कर सकते हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है ना पाकिस्तान के साथ, आप एक बात मानिए, कई बार आपको मोहरे की जरूरत होती है। पाकिस्तान एक मोहरा है, उसको चाइना भी यूज कर लेता है और उस मोहरे को अमेरिका भी यूज करता है। आज से नहीं, अमेरिका हमेशा से यूज कर 1950 से यूज करता है ना। भारत मोहरा नहीं बन सकता किसी का। भारत को मतलब
1: बड़ा
3: इतना
1: अच्छा
3: बड़ा देश
1: इस्तेमाल किया मोहरा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने नेता तो टॉयलेट पेपर कह देते हैं।
3: नहीं,
1: वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं,
3: वो गलत है। देखिए, अगर इस डील में भी, अगर ईरान डील में भी अगर हम उसको अंडरमाइन करना चाहें तो बात बनती नहीं ना, बिकॉज आखिर
1: इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हम जब लौटेंगे, एम्बेसडर गोयल भी इसमें बात अपनी जोड़ना चाहते हैं, इस ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 5:50 पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। नजर हमारी उस पर बनी हुई है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
14: continue to face political pressure to reach a peace deal,
13: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: गर्मजोशी से भरी वो मुलाकात, आत्मीयता से गले मिलना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, बातचीत का वो खुला अंदाज, वो ठहाके, ये सब तब की बात थी जब भारत अमेरिका के रिश्ते सहज और विश्वास से भरे थे। इधर मोदी उधर ट्रंप, दोनों ने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र को कूटनीति का भरोसेमंद साथी बना दिया था। लेकिन बीते 16 महीनों में भारत अमेरिका के रिश्ते की मिठास खत्म हो गई। ट्रंप ने ट्रेड डील भारत पर थोप दिया और रिश्तों में तल्खी आती चली गई। तो सवाल अब यही है कि उसका अब कितना असर शेष है, ये जानने के लिए ये तस्वीर विशेष है। पीएम मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। उनका पहला सामना ट्रंप से होता है। ट्रंप मोदी को देखकर अभिवादन के लिए खड़े होते हैं। दोनों की इस मुलाकात से मोदी का सिग्नेचर हग गायब दिखता है। दोनों नेताओं के बीच साधारण औपचारिक हैंडशेक होता है, जिसमें इस बार पुरानी वाली गर्माहट नदारद नजर आती है। हर कदम नपा तुला और हर बात सधी हुई। अब G7 के राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक सेशन होता है, तब भी मोदी और ट्रंप के बीच कोई विशेष अभिवादन जैसी बात नहीं दिखती। तो सवाल यही है कि क्या मोदी ने बातचीत से पहले ट्रंप को जता दिया है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो आपसी रिश्तों के लिए ठीक नहीं रहा। हाई लेवल वर्किंग सेशन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा, पार्टनरशिप तभी सफल हो सकती है जब वो भरोसे पर टिकी हो। आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। ये संदेश निश्चित तौर पर ट्रंप तक भी पहुंचा होगा। तो क्या आज की बैठक में कुछ ऐसा होगा जो दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघला सके? फ्रांस के एवियन से प्रणय उपाध्याय। आज तक
1: हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की विशेषता है कि वो एक मास लीडर है ऑन ग्राउंड। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि स्पेक्यूलेशन न करते हुए ये समझ लीजिए कि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है ऑपरेशन प्रगति महाराष्ट्र के लिए। उस विकास के दृष्टि से वो काम करते हैं जहां लोगों की निजी जिंदगी में परिवर्तन आए। तो कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए ये समझ लीजिए कि थोड़े पार्टीज के ऑनलाइन ऑफलाइन आउट ऑफ रीच होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन हमारे यहाँ इन गोइंग इतना ज़्यादा है कि सभी देखते हैं काम और तब तय करते हैं उनके नेतृत्व को।
2: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों का आगे का तानाबाना कैसा होगा, वो आज इस मुलाकात से तय होने वाला है। आज जब बातचीत की टेबल पर दोनों नेता आमने सामने होंगे तो पश्चिम एशिया में वर्तमान हालात, भारत अमेरिका ट्रेड डील, ऊर्जा सुरक्षा, रूस से तेल खरीद जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही होर्मुज में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा भी उठेगा। वैसे तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें अक्सर चर्चा में रही हैं, लेकिन फरवरी 2025 के बाद से दोनों देशों के रिश्ते दिन ब दिन तल्ख होते चले गए। G7 समिट में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ते भरोसे की कमी पर एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं बल्कि देशों के बीच भरोसे की कमी है। हालांकि हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आए हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ डील को लेकर वो काफी उत्साहित हैं।
1: But we'll get to a deal because I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: आज दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी कितनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: करीब 4 महीने से युद्ध की वजह से वैश्विक संकट से गुजर रही दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है और इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया है और साफ किया है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। ये महान समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही होर्मुज को खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया के बाद क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दोनों दिशाओं में तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी शांति समझौता ज्ञापन यानी MOU के अंतिम मसौदे पर सहमति की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं। समझौते के तहत युद्ध और सैन्य अभियानों को समाप्त करने के साथ साथ परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों को लेकर आगे की वार्ता का रास्ता भी खुल सकता है। शांति समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी उछाल दर्ज की गई। उधर ब्रिटेन, कतर, जापान समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। अगर तय कार्यक्रम के मुताबिक स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये हाल के सालों में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं, जब इस ऐतिहासिक समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

टैरिफ और मिडिल ईस्ट संकट पर होगी चर्चा, हाल में हुए भारतीय नाविकों पर हमले को लेकर हो सकती है सीधी बात। उद्धव की पार्टी में बगावत पार्ट टू, सूत्रों से खबर, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक, व्हिप जारी। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आएगा यूसीसी विधेयक, सीएम मोहन यादव बोले इसी सत्र में पारित होगा बिल, दिवाली तक पूरी तरह से लागू करने की तैयारी। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के अस्थाई बैन पर भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए वार, आज कोटा में नेता विपक्ष की छात्रों से संवाद। सीएम योगी ने ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने वाले कर्मचारियों को दी सख्त चेतावनी, बताया घोर अनुशासनहीनता, कहा इससे बिना वजह सिस्टम पर उठती है उंगलियां।

0: आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ ही देर बाद होने वाली है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो मुलाकात जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात शाम 6:15 होगी, यानी थोड़ी देर से। यानी कि जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि चूंकि G7 के का जो पूरा अपना कार्यक्रम है वो भी थोड़ी देरी से चल रहा है, इस वजह से मुमकिन है कि मुलाकात थोड़ी आगे बढ़े और इसीलिए 5:50 नहीं बल्कि 6:15 पर ये मुलाकात अब होगी। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होनी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं रविंदर सचदेव जो कि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स US इंपैक्ट, मेजर जनरल विशंभर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से, और अमेरिका में न्यूयॉर्क से हमारे साथ प्रमीत मकोड़े जुड़ेंगे जो कि ग्लोबल सिटीजन्स फोरम USA के प्रेसिडेंट हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के बड़े मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: थोड़ी देर में होगी मोदी ट्रंप महामुलाकात, कम होगी तलखी, तीखे मुद्दों पर होगी बात। टेक्नोलॉजी से ट्रेड तक बदलेंगे हालात। महामुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। करीब 16 महीने बाद होने जा रही ये मुलाकात दो वजहों से अहम मानी जा रही है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों नेता मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है। तमाम देशों की कूटनीति और अर्थनीति की रणनीति तेजी से बदल रही है। इस लिहाज से भी मोदी ट्रंप मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे तो इस मुलाकात के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों ही नेता चर्चा करना चाहेंगे, जैसे ऊर्जा सहयोग। हुर्मुज संकट की वजह से तेल और गैस की मुश्किलों के बाद सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। सैन्य सहयोग की दिशा में हथियारों की खरीद और आतंकवाद पर लगाम कसने पर भी दोनों नेता अहम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड डील और टैरिफ पर अहम ऐलान बेशक न हो, लेकिन अहम चर्चा होने के पूरे आसार हैं।
2: जैसे कि मैंने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात होगी, वॉर को लेके बात होगी, हो सकता है ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेके एक इस तरह की कोई स्टेटमेंट बाहर आए कि हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ट्रेड डील देख सकते हैं। जो सेक्रेटरी है USTR वो भारत जाने वाले हैं जून में, करीब 10 दिन बाद वो जून में होने वाले हैं, वो भारत में होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेड डील पे अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नलिंग मैसेजिंग जरूर होगी। साथ ही साथ जो बाकी एरियाज हैं जिसमें हमने देखा है, पैक्सिलिका को अगर मान लीजिए, सेमीकंडक्टर्स को मान लीजिए आप।
1: हाल ही में ट्रंप ने कहा भी था कि मोदी से दोस्ती को देखते हुए वो जल्द ही ट्रेड डील को अंजाम देंगे।
3: But we'll get to a deal because I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
1: कई और ऐसे मुद्दे भी हैं जो दोनों देशों के कारोबार और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने से जुड़े हैं। इन पर भी बातचीत हो सकती है। इसमें AI और निवेश के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मुद्दे शामिल हैं। वैसे भारतीयों को उम्मीद है कि दो और ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो सीधे सीधे उनसे जुड़े हैं। इनमें से एक है H-1B वीजा और दूसरा हुर्मुज में भारतीय नाविकों की मौत, जिन पर कल G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जता चुके हैं। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा और एवियन से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो मुलाकात अब से कुछ देर बाद होगी, उसको लेकर अलग अलग तरह की उम्मीदें, अलग अलग तरह की अटकलें जरूर हैं। लेकिन जनरल दयाल, चूंकि जिस खबर को हमने अब से कुछ देर पहले जिसका जिक्र किया, वो खबर महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक से इंडो शब्द का हटाना। और वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले G7 के मंच से ट्रस्ट की बात करते हैं, भरोसा होने की बात करते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का एक फैसला आता है, क्या इंडो शब्द हटाने से ये मैसेज जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर भारत को उतनी प्रमुखता नहीं दे रहा है, उतना प्रमुख महत्व नहीं दे रहा है जितना कि अब तक देता आया था?
4: श्वेता, नहीं क्योंकि देखिए हमारी और उनकी अगर आप ल्योमा एग्रीमेंट देखें और तीन चार जो एग्रीमेंट है ना डिफेंस एंड स्ट्रेटजी की रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है वो इतनी डीप मतलब मीनिंग है उनकी इनकी वो बाइंडिंग है बोथ दी कंट्रीज पे राइट. तो ये जरूर है एक मैसेजिंग जरूर मैं कह सकता हूं कहीं डेंट है थोड़ा सा लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जितना रशिया या अमेरिका जितना इंडिया को इस रीजन में सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट वो देगा और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट है लेकिन लेकिन उसके बियॉन्ड चाइना के साथ आज के दिन कोई पंगा नहीं लेना चाहता. लेट्स बी वेरी क्लियर
5: चाइना से
4: और ये पूरा का पूरा मैसेजिंग क्वाड वर्ड कभी किसी ने नहीं कहा ये अगेंस्ट चाइना है लेकिन अल्टीमेटली और क्या मीनिंग है यहां पे दो ही प्लेयर हैं चाइना और अमेरिका के साथ ये बाकी कंट्रीज. तो उस अगर उस संदर्भ में देखें ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है कि आप वन साइडेड डिसीजन जब आप लेते हैं वन साइडेड टैरिफ लगा देते हैं वन साइडेड आप हमारे जब सी फेरर्स जब हम आपकी फायर कर देते और वो आप वन साइडेड रखते और उसके ऊपर अपोलोजेटिक नहीं होते.
5: एक नया सोशल मीडिया पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है वो हम आपको बता देते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है एवियन से सोशल मीडिया एक्स पर ये नया पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें लिखा है कि G7 के मंच से पीएम मोदी का ग्लोबल साउथ के लिए बड़ा ऐलान. उन्होंने अमेरिका और यूरोप को सबका साथ का मंत्र दिया है. फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई है. साथ ही पश्चिम एशिया संकट पर चिंता भी जताई है. पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया के संकट से ईंधन खाद और अनाज की सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट चुकी है जिसका सबसे बुरा असर गरीब देशों पर पड़ रहा है. पीएम मोदी ने दुनिया के अमीर देशों को घेरते हुए कहा कि सिर्फ GDP या व्यापार के आंकड़े मायने नहीं रखते असली सवाल ये है कि विकास किसके लिए हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है. प्रमीत मकोड़े हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं अमेरिका से. प्रमीत जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो बातें ग्लोबल साउथ के लिए की जा रही हैं जो लिखी गई हैं ये बहुत जरूरी है और एक एक शब्द इसका सच है. अमेरिका और भारत के बीच सब कुछ ठीक हो जाए जिस तरह के तल्ख बयान आते रहे हैं जिस तरह की एक खिंचा खिंचा सा रिश्ता हो गया था वो सारी चीजें ठीक हो जाए लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल लग रही हैं आपको.
6: नेताजी फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेरिका. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू मैडम. नहीं देखिए ग्लोबल साउथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ दिस कंट्रीज अमेरिका एंड इंडिया नीड टू कम टुगेदर. हम दोनों साथ में आए ये बहुत जरूरी है और ये साथ में आना बहुत आसान भी है क्योंकि दोनों ही आपने भी कई लाइव कवरेज किए हैं प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रपति जी के दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री चाहे दुनिया कुछ भी कहे इट इज एक्सट्रीमली गुड. बोथ रिस्पेक्ट इच अदर बोथ लाइक इच अदर एंड जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी कुछ हंकी डोरी है सब कुछ अच्छा चल रहा है पर दोनों देशों में बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव अमेरिका फर्स्ट एज इंडिया फर्स्ट जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ डिसएग्रीमेंट्स कुछ छोटे मोटे तनाव हैं बट इन दोनों की जो मुलाकात जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात अभी कुछ एक डेढ़ घंटे में होने वाली है उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर का रोड मैप या कुछ महीनों का रोड मैप क्लियर हो जाएगा. और पर्टिकुलरली जो आपने ग्लोबल साउथ का क्वेश्चन पूछा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू कंट्रीज नीड टू कम टुगेदर बिकॉज अमेरिका कैन प्रोवाइड द इनोवेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल बट इंडिया प्रोवाइड्स affordable, accessible and actionable quality solutions. All the countries, G7 countries में इंडिया का जो एक महत्वपूर्ण आज जो हमारी मीटिंग्स में हमको बुलाया जाता है बिकॉज इंडिया प्रोवाइड दैट ट्रिपल ए सोल्यूशन एक्शनेबल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल सोल्यूशन एंड दैट इज वॉट ग्लोबल साउथ नीड्स मैडम. ग्लोबल साउथ को केवल सोल्यूशन नहीं चाहिए ग्लोबल साउथ को अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए और उसमें इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. इसलिए आप देखेंगे कि ये जो मीटिंग्स है उसका ग्लोबल साउथ पर भी बड़ा अच्छा परिणाम होगा और पर्टिकुलरली जैसे एनर्जी के क्षेत्र में
5: जी अंशु जी एक चीज बहुत अहम रही वो ये कि जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी थी उससे पहले भी भारत का रुख कम से कम नाविकों की मौत के मामले में बहुत कड़ा रहा. आज जब प्रधानमंत्री ने G7 के मंच से भरोसे की बात की वो भी एक ऐसा नहीं था कि मतलब आप किसी दूसरे, मतलब हम बिना देश का नाम लिए ये कह रहे हैं कि आप हाथ जोड़कर नहीं जा रहे थे कि हम आपसे रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं रिश्ते अच्छे करने दोनों देशों की जिम्मेदारी और दोनों देशों के हित में है।
7: बिल्कुल,
5: मतलब भारत जो इक्वल पार्टनर रहा वो आज भी इस मुलाकात से पहले भी दिख रहा है।
7: बिल्कुल श्वेता, आपने ये बिल्कुल सही बिंदु उठाया इस चर्चा में, और हम लगातार देख रहे हैं कि जब ट्रंप ने हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे तब भी भारत के प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आया था कि भारत के नागरिक इसके जो रेपरकशन है वो नहीं झेलेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे इसका व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन या कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो भारत आज एक नया भारत है श्वेता, आप अलग अलग तमाम इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखो, आज G7 जैसा शक्तिशाली मंच जो कि हर बार भारत को बुलाता है, ये हमारे प्रधानमंत्री की मेरे ख्याल से 7वीं कॉन्जिक्यूटिव शिरकत है और भारत का 13वां पार्टिसिपेशन है ये 52वें G7 के समिट में, और इसमें अमेरिका जैसा देश आज ट्रंप बायलेटरल टॉक करने वाले हैं, 16 महीने के बाद बातचीत होने वाली है, बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर भारत बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बार बार वहां से ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे आप सप्लाई चेन्स, बाधित सप्लाई चेन्स की बात करें, आतंकवाद के मुद्दे की बात करें, या टैरिफ्स को लेकर के बात करें, या वो अधूरी पड़ी हुई ट्रेड डील की बात करें जो भारत और अमेरिका के बीच अभी तक हम उसके जो माइन्यूट क्लॉजेज हैं वो देख नहीं पाए हैं, या पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात करें या इनडायरेक्टली आतंकवाद को प्रमोट करने की बात करें, तो प्रधानमंत्री के जो रह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या G7 के मंच से वो बातें कर रहे हैं उससे मुझे एजेंडा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब ट्रंप के साथ उनकी बायलेटरल टॉक होगी तो H-1B वीजा को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, क्योंकि अभी भी टैरिफ्स 50% से घट गए पर 18% पर हैं, निर्यात को लेकर के, इसके अलावा पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका ने पिछले 1 से 2 सालों में प्रमोट किया है और ये इनडायरेक्टली आतंकवाद को प्रमोट करने की बात है, तो इसको लेकर के, और किस तरह से अभी आज हमने देखा कि यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटाते हुए फिर उसे पैसिफिक कमांड कर दिया है, इसके बड़े कूटनीतिक मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिक से जुड़े हुए हैं उनको लेकर के चर्चा होगी और बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर बातचीत होगी।
5: अब रोहिंदर जी, चीन को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि जब इंडो पैसिफिक की भी बात आ रही है और वहां से वो नाम हटने की बात आ रही है, और एक तरीके से ट्रंप ने शुरुआत की थी बहुत आक्रामक होकर चीन पर, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए, क्या हम ये समझे इस समय कि चीन को लेकर अमेरिका नरम पड़ रहा है और वो बहुत ऑब्वियस है?
8: अब बिल्कुल नरम पड़ रहा है, ट्रंप रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, जिस पे दम है ट्रंप उनके साथ फिर बोलता है चलो खुल के खेलो मेरे साथ। वन सेकेंडली, बैक अगेन टू चाइना और इंडिया, देखिए हम समझते हैं कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते बढ़ रहे थे वो ये नहीं था कि, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी शायद कि भारत मिलिट्री रूप से अमेरिका के साथ आएगा चीन के खिलाफ, ना हम ये जानते हैं कि अमेरिका हमारे साथ आएगा मिलिट्री में चीन के खिलाफ। उसमें आइडिया ये था कि अमेरिका भारत के साथ कोऑपरेशन इतनी बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा, पार्टनरशिप बढ़ाएगा, ताकि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी को बैलेंस भी करने लगेगी, ओके, या काउंटर करेगी उसे। तो वो आइडिया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, न्यूक्लियर डील भी जो यूएस इंडिया की हुई, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब लेके कि भारत तेजी से बढ़े, इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, ताकि चाइना को जियोपॉलिटिकली काउंटर किया जा सके, मिलिट्री रूप से नहीं था। आज की तारीख में प्रॉब्लम ये हो गई है हमारी कि अमेरिका भारत को उस नजरिए से नहीं देख रहा कि मैं भारत को इतना इकोनॉमिकली यू नो बूस्टअप कर दूं कि वो चाइना को काउंटर करे, इसीलिए अमेरिका भारत से अब यू नो ट्रांजैक्शनल ज्यादा बनता जा रहा है। 2-3 पॉइंट्स और क्विकली, जो आज होगी थी कि ट्रेड डील पे क्या बात करेंगे, अभी अमेरिका ने खुद डिसाइड नहीं करा उन्हें करना क्या है, उनके यहाँ सेक्शन 232 और 301 की ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है जो 24 जुलाई को खत्म होगी, जब वो खत्म होगी तभी तो कुछ पीसेस होंगे, जिग्स होंगे कि करना क्या है। H-1B वीजा, आई होल्ड अ डिफरेंट व्यू, H-1 वीजा में हम क्या कर लेंगे, वो उनका डोमेस्टिक इमिग्रेशन मामला है, बट यस आई एग्री विद अंशु जी, इमिग्रेशन हम ये बार बार कहते हैं कि इमिग्रेशन के जो भी मामले हैं चाहे इलीगल हो उनको आप एक ह्यूमेन और ह्यूमन ट्रीटमेंट के साथ टैकल करो, राइट, दैट्स व्हाट वी वांट देयर। मैं एक दो चीजें और देखूंगा यहां पर, ये जो हमारे किलिंग्स हुई है, क्या डोनाल्ड ट्रंप बातों बातों में उसकी कुछ कंडोलेंस कन्वे करता है प्राइम मिनिस्टर को, कह सकता है डिप्लोमेटिकली भी, देखो मैं शांति इसलिए करा रहा हूं ताकि सिविलियंस ना मरे, सिविलियंस मर रहे हैं दुनिया भर में, रशिया यूक्रेन में इसलिए कर रहा हूं, ईरान युद्ध इसलिए रुकवा रहा हूं, मरीनर्स भी मर रहे हैं, तो मैं कंडोलेंसेस देता हूं। ट्रंप अगर स्मार्टली डिप्लोमेटिकली करना चाहे और यहां पे सर्जियो गोरजो कन्वे करे कि इंडिया में ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया है, He could do that, we don't know. He could also ask for India's help in demining. ये जो खुलनी है हॉर्मुज स्ट्रेट, इसमें दो तीन नेवीज हैं, तो मे बी दे कैन से, मे बी दे डोंट से, वी डोंट नो, उसमें कुछ बातचीत शायद चल रही. एक और पॉइंट, क्वाड, भारत में जो क्वाड होना है सालों से, दो सालों से फिर से बात रिवाइव हुई है कि क्वाड की मीटिंग होगी तो ट्रम्प भारत आएगा, तो क्या उसको लेकर के कोई यू नो बात होती है कि हाँ भाई ठीक है, क्वाड का यू नो असली काम कितना है बात अलग है, पर जो सिमिलरिज्म है कि ट्रंप क्या इंडिया आएगा इस समय, इस साल लेटर फॉर अ क्वाड मीटिंग, सो दैट कुड बी वन पोटेंशियल थिंग. एंड बाकी वेस्ट एशिया में जो हो रहा है ठीक है हम उसे बात करें, पर हम उन्हें मेरे ख्याल से हमें उसमें ज्यादा टाइम देखिए, इनका 20 मिनट 30 मिनट होंगे दोनों लीडर्स के पास, राइट. वेस्ट एशिया ईरान को लेकर वैसे ही पूरी दुनिया अमेरिका पे लगी पड़ी है कि तुम युद्ध रोको सुलटाओ मामला, हम उसमें अपना 5 मिनट और वेस्ट करके कितना कंट्रीब्यूट कर लेंगे, आई डोंट नो.
5: हालांकि तो, भारत की तरफ से एक अपनी तरफ से ये बात रखी जरूर जाएगी.
8: Definitely yes.
5: नहीं, क्वाड की भी आप बात आप कर रहे हैं, भारत क्वाड का चेयर अभी है, पिछले महीने ही जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वो भारत में हुई थी, उसको होस्ट किया था भारत ने. प्रणय, ठीक 2 घंटे बाद ये मुलाकात अब होनी है, उम्मीदें तो बहुत हैं कि अमेरिका कैसे डील करता है इन सारी चीजों को, क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाविकों की जो हत्या हुई है उस पर उनकी तरफ से कोई कंडोलेंस या ऐसी कोई चीज कही जाती है या नहीं, ट्रेड डील को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं जिसने रिश्तों को बिगाड़ा है उसको क्या टच किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें अब सब देखना चाहते हैं.
9: बिल्कुल श्वेता, बहुत सारी चीजों की उम्मीद होगी, लेकिन हम भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, हम चीजों को बहुत इमोशनली जुड़ते हैं और इसीलिए शायद सेटबैक लगते हैं. लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति देखें तो उस हाईवे के ऊपर यू टर्न बहुत जल्दी से आते हैं और वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, इस बात को लेकर मैं रविंद्र सचदेवा जी से बिल्कुल सहमत हूं इस चीज पे. लेकिन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की 2019 में ओसाका के अंदर मीटिंग होनी थी, ऐसा ही माहौल था, बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें थी कि बड़ी मुलाकात होगी, अच्छी मुलाकात होगी. भारत में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की पहली मुलाकात थी और ओसाका के अंदर उस मीटिंग से ठीक पहले सुबह सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में उस जमाने में वो ट्वीट ज्यादा किया करते थे, तो उन्होंने एक एंटी इंडिया ट्वीट किया, उन्होंने भारत के टैरिफ्स को लेकर, हार्ले डेविडसन को लेकर एक बड़ा तल्ख बयान वाला ट्वीट दिया और शाम को वो मीटिंग होनी थी, उसके बाद पूरा माहौल भारतीय खेमे के अंदर बड़ा हड़बड़ाहट का हो गया कि इसने तो इस ट्वीट ने पूरी बातचीत का एजेंडा सारा माहौल ही खराब कर दिया है. काफी प्रिपरेशन की गई भारतीय खेमे के अंदर कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम ये जवाब देंगे. मैं आपको एक फ्लाई ऑन द वॉल टाइप का एनेक्डोट बताता हूं. जब मैंने पूछा किसी जानकार से जो कि मीटिंग के अंदर थे, मैं नाम नहीं जाहिर कर सकता, लेकिन उनका कहना था कि मीटिंग की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने बैठते ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ की तरफ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहा आप लेंगे, उसके बाद उन्होंने जेब से चिकलेट निकाली और प्रधानमंत्री को ऑफर किया कि आप लीजिएगा, प्रधानमंत्री ने दोनों के लिए इनकार किया और उसके बाद तीसरा वाक्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी से था कि आप मुझे फोन किया करिए, आपके पास मेरा नंबर है. प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं मैं आपको कर लेता हूं फोन और ऐसा कुछ ऐसा अगर जरूरत होगी तो जरूर आपके साथ संपर्क में हम रहते ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप मुझे फोन किया करें. और उस पूरी मीटिंग में जो कि करीब करीब 22-25 मिनट चली थी, उस मीटिंग के अंदर उस विषय का जिक्र ही नहीं आया जिसको लेकर उन्होंने बड़ा तल्ख बयान ट्वीट किया था. तो कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के जो सरप्राइज हैं वो स्विंग करते हैं, इसलिए उनके किसी बयान के अंदर जैसे कि वो यू टर्न लेते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर वो किसी तरीके की कोई बहुत आई एम सॉरी या आई फेल्ट सो बैड दैट यू गॉट हर्ट इस तरीके की भाषा उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं. वो तो आगे बढ़ जाते हैं और जहां तक सेलर्स का मामला है, आप तो उनका खुद सोशल मीडिया देख रही हैं, वो तो कह चुके हैं कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, इसके लिए ईरान जिम्मेदार है और ईरान ने जो किया है उसको हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे. भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर हुआ हमला जो है वो ईरानी ड्रोन से किया
5: गया था कि देखिए अमेरिका की तरफ से कुछ राफ्ट्स डालकर जो भारतीयों को वहां पर कुछ उनकी जान भी बचाई गई थी, ये भी बातें फिर बाद में कही गई. एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
12: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
14: Oh, ouch.
13: However you make money work, we can work with that.
15: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
17: Jack, you're killing me.
16: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
10: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

गर्मजोशी से भरी वो मुलाकात, आत्मीयता से गले मिलना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, बातचीत का वो खुला अंदाज, वो ठहाके, ये सब तब की बात थी जब भारत अमेरिका के रिश्ते सहज और विश्वास से भरे थे। इधर मोदी उधर ट्रंप, दोनों ने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र को कूटनीति का भरोसेमंद साथी बना दिया था। लेकिन बीते 16 महीनों में भारत अमेरिका के रिश्ते की मिठास खत्म हो गई। ट्रंप ने ट्रेड डील भारत पर थोप दिया और रिश्तों में तलखी आती चली गई। तो सवाल अब यही है कि उसका अब कितना असर शेष है, ये जानने के लिए ये तस्वीर विशेष है। पीएम मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। उनका पहला सामना ट्रंप से होता है। ट्रंप मोदी को देखकर अभिवादन के लिए खड़े होते हैं। दोनों की इस मुलाकात से मोदी का सिग्नेचर हग गायब दिखता है। दोनों नेताओं के बीच साधारण औपचारिक हैंडशेक होता है, जिसमें इस बार पुरानी वाली गर्माहट नदारद नजर आती है। हर कदम नपा तुला और हर बात सधी हुई। अब G7 के राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक

सहायता तंत्र जरूरी, ट्रंप से ट्रेड डील और टैरिफ पर सीधी बात की संभावना। शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक।

की तैयारी। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थाई बैन से भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए वार। आज कोटा में नेता विपक्ष का छात्रों से संवाद।

0: मोदी ट्रंप की मुलाकात पर हमारी ये मां कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह और अब से 1 घंटे 45 मिनट बाद ये महामुलाकात होने वाली है। इस वक्त फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इस दौरान ट्रंप ने विस्फोटक बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है ईरान के साथ एमओयू फाइनल नहीं है, अगर यह समझौता मुझे पसंद नहीं आया तो हम फिर से बमबारी पर लौटाएंगे। तो ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान, दरअसल शुक्रवार को पूरी दुनिया सोच रही है कि यह खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने खुद अपनी तरफ से कह दिया, हॉर्मूज को लेकर बयान आ चुके हैं और उस सब के बीच ट्रंप की तरफ से यह बयान जो एक और यू टर्न की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा पसंद नहीं आया तो नहीं करेंगे, फिर से बमबारी वहां पर शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक का रुख क्या था, वो ये था कि सब कुछ हो चुका है, डील हो चुकी है, बस फ्राइडे को दस्तखत हो जाएंगे। यहां तक कि इसराइल लेबनन की तरफ अटैक न करे, इसको लेकर भी ट्रंप की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। लेकिन अब ये बड़ा बयान जो ट्रंप की तरफ से आया है, जिसने एक बार फिर असमंजस में सबको डाल दिया है। इस बीच फ्रांस के एवियन से एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 नेताओं की बैठक के दौरान मजाक में कहा आई एम द बॉस। दरअसल ट्रंप इस मीटिंग के लिए थोड़ी देर से पहुंचे थे, सारे नेता उनकी ओर देखने लगे और तभी ट्रंप अचानक रुके और कहा आई एम द बॉस। इसके बाद सारे नेताओं के साथ खुद ट्रंप भी हंसने लगे।
1: How are you?
2: Good, thank you.
1: Hello.
2: I'm the boss.
1: How are you?
2: Good, thank you.
1: Hello.
2: I'm the boss.
1: How are you?

0: Hello.
1: I'm the boss.
0: How are you?
1: Good, thank you.
2: तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कमजोर देशों की तरफ देखो, जो ग्लोबल साउथ है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, इस युद्ध से कितना सबका नुकसान हो रहा है, और उसके बीच अंशु जी, ये दो जो खबरें हमने जिनके साथ शुरुआत कर दी, अब ट्रंप की बात पर हंसना या उन पर हंसना, ये उनको निर्णय लेना है, लेकिन अगर एक नेता की तरफ से इस तरह की बात वहां पर की जाती है जहां पर बड़े बड़े देशों के प्रमुख बैठे हुए हैं, तो हम क्या उम्मीद कर लें कि एक घंटे 45 मिनट बाद जो बात होगी वो कितना आगे और कितना पॉजिटिव रहेगी?
3: श्वेता, कूटनीति की दुनिया में इस तरह से कई बार पोस्चरिंग की जाती है, असलियत कुछ और होती है, और डोनाल्ड ट्रंप को हम जिस प्रकार के नेता के रूप में जानते हैं उनका स्वभाव है, ये उनकी स्वभावगत विशेषता है कि वह कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह से जेलेंस्की को पूरे विश्व के सामने डांटा था, वो भी आप नजारा याद कर लें, तो इस प्रकार का उनका स्वभाव है, ठीक है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि G7 के जितने राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, इनमें कुछ नेटो के भी सदस्य देश या राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो नेटो ने जिस तरह से पश्चिम एशिया में अमेरिका से पल्ला झाड़ा, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए नेटो की तरफ से, हम पूरे यूरोप को जिस तरह से ड्रिफ्ट होते हुए देख रहे हैं अमेरिका से ट्रंप की हरकतों की वजह से, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स डावोस में ट्रंप ने दिए थे, उसके बाद उर्सुला वॉन ने साफ कहा था कि हम भारत के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील साइन करने जा रहे हैं, और इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने आकर के भारत के साथ एक हिस्टोरिक FTA किया और एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट किया, जो अभी तक एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ EU ने ये साइन किया है। तो हम वो देश हैं श्वेता जो करके दिखाते हैं, एक्शंस में विश्वास रखते हैं, और इस बात को ट्रंप भी कहीं ना कहीं अच्छे से जानते हैं। तमाम हम पर टैरिफ्स लगे, H1B को लेकर के उन्होंने बहुत कठोर निर्णय लिए, ट्रेड डील को लेकर के हम रुकावटें आती देख रहे हैं, लेकिन इस बीच हमने बहुत सारे बायलेटरल और मल्टीलेटरल FTA साइन किए, हमने अपना मार्केट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई किया, एक पूरा हमने अपना जो गेम प्लान था उसको चेंज किया। तो हमारी जो डाइवर्सिफाइड पॉलिसीज है उसमें हम सिर्फ अपना नहीं सोच रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ के उन देशों की भी आवाज बन के खड़े हैं जो विकासशील से लेकर के अंडर डेवलप्ड तक की रेंज में आते हैं, इसमें लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देश हैं। और यही बात फाइनेंसिंग और फंडिंग से जुड़ी हुई है, जिसको प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कहते हैं कि जब आपको साझा विकास की बात करनी है तो आप पहले फंडिंग की, फाइनेंसिंग की बात कीजिए। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात है, क्लाइमेट जस्टिस की बात है, ये भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही अलग अलग कॉप्स में और पेरिस अग्रीमेंट के जो बैठकें हुई हैं उसके दौरान की है। तो जब आज ये मुलाकात होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक डीप डाइव लेकर के तमाम जो ये मुद्दे हैं, चाहे H1B से जुड़ा हुआ हो, ट्रेड डील से जुड़ा हुआ हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो, पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह से दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और एक इन तमाम मुद्दों को टच अपॉन करके, मुझे लगता है भारत अमेरिका संबंधों को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस पर फिर वो बात होती हुई दिखाई पड़ेगी।
2: आम रिश्ते और कूटनीति अलग चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद है तो इंसान।
4: बिल्कुल।
2: अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो बातें कही गई हैं जो चुभी हैं, मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि आपके शीर्ष नेतृत्व को, जब बल्कि आपकी पूरी पूरी पूरी आबादी को, प्रणय हालांकि हमारे साथ अभी शायद नहीं जुड़े हैं, लेकिन भले प्रणय कहें कि भारत एक बहुत इमोशनल देश है, लेकिन आप उस इमोशन को नहीं हटा सकते हैं उस कूटनीति से।
4: हटा तो नहीं सकते श्वेता, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि 16 महीने बाद वो लोग मिल रहे हैं, इतना कुछ बीच में डिस्टर्बिंग मैसेजिंग गई है, लेकिन हमारे जो रिलेशंस है ना वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस बात का भी ध्यान रखो। तो जो हम लोग करें ना, डिटेल में बातें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है इस मीटिंग के दौरान एक मैसेजिंग दी जाएगी कि इंडिया एंड अमेरिका आर वर्किंग टुगेदर, एक बेसिक जो ब्रॉड मैसेजिंग है ना कि भाई वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, हम लोग दोनों डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक इतनी अच्छी बात कह दी है कि भाई जो जो जो ग्लोबल साउथ है वो गरीब है, और उसकी जो कमजोर कंट्रीज हैं उनके बारे में भी सोचना, और सिर्फ GDP के पीछे मत भागते रहिए। तो इस किस्म का जो माहौल है ना, मैं समझता हूं वो ये दिखा रहा है कि आज की मीटिंग में कुछ कंक्रीट चीजें तो डिप्लोमेट्स करते रहेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जारी रहेगी, हमारे टैरिफ्स और ट्रेड पर बातें जारी रहेंगी, उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, H1 वीजा पे बैकडोर में काम होता रहेगा। आज एक माहौल सा बनाया जाएगा जिसमें दोनों बड़ी बातों पे बड़े मतलब डिप्लोमेटिकली एक मैसेजिंग देने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और अमेरिका टुगेदर हैं, बिकॉज आज अमेरिका को भी अगर EU में और अमेरिका के नाटो में संबंध अगर है तो अमेरिका को भी एक तो अच्छा फ्रेंड चाहिए ना जो जो मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री जहां जहां के लोग उनको मतलब अमेरिकन और इंडियन के बीच में तो कोई दरार नहीं है, वहां वो कह रहे थे ना 5.5 मिलियन इंडियंस आर देयर, वो मैं भी रिपीट कर रहा हूं, वो 5.56 मिलियन इंडियंस आर ड्राइविंग देयर इकोनॉमी। तो एक रिलेशनशिप है जिसको मैं समझता हूं पॉजिटिवली आज मैसेज कन्वे किया जाएगा और पूरे ग्लोब में इसकी मैसेजिंग जाएगी, बाकी कंक्रीट चीजें मैं नहीं समझता कुछ होगा। नहीं, इतना भी बहुत है और हाँ, ये भी बहुत है। अगर
2: कूटनीति में वैसे भी हर एक मुलाकात एक प्रोसेस का ही हिस्सा होती है, उसका मतलब वहां से आप कुछ पुरानी चीजों की तुरपाई उसको मेंड करने की कोशिश और एक नए तरीके से शुरुआत उसकी।
0: एब्सोल्युटली ये से प्रोसेसेस होते हैं और खासकर आज की दुनिया में सोशल मीडिया में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब नेक्स्ट अगले मिनट क्या बड़ी चीज, अगले मिनट क्या बड़ी चीज। ये रिश्तों में और यू नो इनमें वक्त लगता है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम जैसे कह रहे हैं तुरपाई लगी हुई, पिछले 25 सालों में ये फैक्ट है कि पिछला साल हमारी सबसे ज्यादा रफ जर्नी रही है भारत अमेरिका रिश्तों की। मार्को रूबियो भी आए तो मैं कहता हूं जैसे गाड़ी आपकी पथरीली सड़क पे चल के आगे सर्विसिंग के लिए आ गई ना, तो मार्को रूबियो और जयशंकर ने मिलकर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करी कि भाई गाड़ी चलो ठीक है। अब मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं तो अब ये लोग उस गाड़ी को फ्रेश हुई हुई है गाड़ी, अच्छी सर्विसिंग, आगे लेके नया चैप्टर बनाए। बट देर इज नो डाउट कि हमारे रिश्तों में कुछ डिफरेंसेस आए हैं। आई ऑल्सो एग्री विद जनरल दयाल कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में ना एक्चुअली दो ट्रैक चल रहे हैं, रंशु जी भी जो कह रही है। एक हमारा डायस्पोरा, हमारी ऑलरेडी ऑन गोइंग यू नो ट्रेड एंड ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर, ये सारा बहुत डायनेमिक रूप से हमारा बढ़ रहा है। प्रॉब्लम्स जो आ रही है, चैलेंजेस जो आ रही है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक मामलों में आ रही है। पर उसमें डेंजर या चिंता ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब किसी देश में निवेश करती है वो ये देखती है कि दोनों देशों की सरकारें बिल्कुल तालमेल में है कि नहीं है, क्योंकि उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर किसी देश में फंस गया तो वो फिर अपनी सरकार पे जाती है, यानी अमेरिकी सरकार की, भाई आप उस देश की सरकार को बोलो मेरे गैस प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को यू नो हेल्प करें। तो बड़े निवेश बिकम्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं और अच्छा खासा हमारा ग्रोथ हो रहा है रिश्तों का अमेरिका के साथ। तो अभी जो निकलेगा यस मोरलेस की फ्रेश न्यू नॉर्मल की तरफ हम जाते दिखेंगे। बड़ी अनाउंसमेंट्स देखिए, हमें तो पता नहीं क्या होगा अंदर कमरे में, हो भी सकता है कोई बड़ा नया यू नो मैजिक निकाल दे ये लोग व्हाट दे डूइंग, बट एज ऑफ नाउ चांसेस सीम लेस। ट्रेड की जहां तक बात है, ट्रेड की वंस अगेन आई फील कोई कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं, बट ट्रेड में ये पॉलिटिकल डायरेक्शन देंगे कि भाई ओके जो भी डिफरेंसेस हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, ये वो बातें हुई हैं। बट ट्रेड में बॉटम लाइन जो मुझे दिखता है जब भी जाके सेटल होगा, हमारा 18-20% पे ही जाके टैरिफ बनेगा। बट उस टैरिफ के बनने से पहले इन्हें अपनी सेक्शन 232 सेक्शन 301 पे ऑलरेडी ये कह चुके हैं इंडिया पे 12.5% टैरिफ लगने जा रहा है।
2: ट्रंप और अमेरिका सॉफ्ट हो जाएं चीन पे, लेकिन चीन उनका ट्रस्टेड एलाय तो नहीं रह सकता है।
0: ओ बिल्कुल,
2: वो इस चीज को इस बात को भी समझते हैं और उसी लिए भारत की जरूरत भी बहुत हो जाती है। प्रमित जी, डायस्पोरा की बात हम कर रहे हैं, आप लोगों का भी बड़ा योगदान न केवल पूरी अमेरिकी इकोनॉमी बल्कि मैं कहूंगी कि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय सबसे शिद्दत से उनको सपोर्ट करने वालों में भारतीय कम्युनिटी के अधिकांश लोग हुआ करते थे।
5: बिल्कुल, देखिए भारतीय समुदाय अभी भी मैं कहूंगा कि दे आर नॉट जस्ट द ब्रिज, जो यहाँ पर डायस्पोरा है, अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस बोथ अंडरस्टैंड दैट वी आर फोर्स मल्टीप्लायर, कि जहां भी भारतीय किसी भी प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वॉल्व रहते हैं, नासा से लेके हेल्थ केयर से लेके आईटी से लेके सब जगह हमारा जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड हमको रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं दे आर जस्ट आई वुड से दे आर वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट, की थोड़ा निगेटिव एटमोसफियर है, अदरवाइज भारतीयों के प्रति अभी भी बड़ी अच्छी भावनाएं हैं एंड पीपल रिस्पेक्ट अस अ लॉट। देयर आर, और जब हमारे प्रणव जी ने कहा पहले कि वी आर अ इमोशनल कल्चर, भारत में जो है हमारे भारतीय साथी जो है वो थोड़े इमोशनल हैं और इमोशनल कल्चर है। निश्चित रूप से तीन जो अभी नाविकों की जो एक तरह से मौत हुई उसको मैं हत्या नहीं कहूंगा, इट वाज एब्सोल्युटली देयर वाज नो डेलिबरेट अटेम्प्ट फ्रॉम अमेरिकन साइड टू अटैक इंडियंस, एब्सोल्युटली इसकी कोई संभावना ही नहीं है मैडम। ये केवल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए उन जहाजों पे न कोई ऐसे झंडे थे जिससे वो क्लियर ये कहता था कि भारतीय झंडे हैं, और ये क्या सामान्य स्थितियां नहीं है, वहां पर 3,000 से ज्यादा या हजारों से संख्या में वहां पर जहाज थे तो उसमें से किस जहाज में कौन भारतीय क्रू है ये किसी को पता नहीं है. देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू हर्ट इंडिया. जैसे आपने भी सही कहा कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट.
2: लेकिन प्रमित जी इसमें दो चीजें हो जाती
4: है. सर सी में भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है.
2: अमेरिकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं हो सकती है कि उन्हें नहीं पता था कि कौन है उस जहाज पे. दूसरा कि किसी की भी आप अगर मतलब आपके लिए वो थ्रेट नहीं है तो आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए.
4: बहुत क्लियर है. और वहां पे आप लोग तो एक तरफ तो पीस एग्रीमेंट इन प्रोसेस है जहां पे कोई लड़ाई नहीं चाह रही और आप नहीं. ये तो बिल्कुल गलत है. देखिए
2: मुझे लगता है इसीलिए सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ट्रंप को इस पर कुछ कहना चाहिए वहां पर. हालांकि गुंजाइश उसकी कम लगती है. एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं. देखते रहिए आज तक.

तनाव के 16 महीने, कड़वाहट के सिलसिले और फिर एवियन की धरती पर दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर्स का ये आमना सामना। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कल एक दूसरे के करीब आए तो कूटनीति के जानकारों की नजरें बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जम गई। वजह साफ थी, बीते महीनों में भारी टैरिफ, व्यापारिक तनातनी और ओमान के पास भारतीय नाविकों की मौत ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। लेकिन कैमरों के सामने जो दिखा उसने सारे कयासों को एक नया मोड़ दे दिया। जरा ध्यान से देखिए इन विजुअल्स को। जैसे ही पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि मोदी के कंधे और बाह पर 2-3 बार थपकी दी, जैसे वो कह रहे हो, जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप की तरफ से ये रिश्तों को रीसेट करने का एक सीधा और दोस्ताना इशारा था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शन में छिपा है। इस बार मोदी ने ट्रंप को गले नहीं लगाया। जी हाँ, मोदी की सिग्नेचर हग डिप्लोमेसी इस बार नदारद दिखी। पीएम मोदी बेहद संयमित, नपे तुले और गरिमामयी अंदाज में दिखे। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सीधा संपर्क था, लेकिन कोई अति उत्साह या ओवर एक्साइटमेंट नहीं था। हाथ जोड़कर प्रोफेशनल दूरी बनाए रखना ये साफ संकेत है कि भारत अब ट्रंप की सौदेबाजी वाली कूटनीति से सावधान है। मोदी की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि भारत किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, बात होगी तो सिर्फ बराबरी की शर्तों पर। बॉडी लैंग्वेज में जहां गर्मजोशी और सतर्कता का ही संतुलन था, वहीं पीएम मोदी ने मंच से अपनी बात रखते हुए मौखिक रूप से ट्रंप प्रशासन को एक बेहद सादा और कड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप के ठीक बगल में बैठकर G7 के मंच से पीएम मोदी ने गरजते हुए कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे यानी ट्रस्ट की कमी से जूझ रही है। मोदी ने दो टूक कहा कि आपसी विश्वास ही आज सबसे बड़े राजनीतिक संपत्ति है और साझेदारियां तभी चलती हैं जब उनकी नींव में भरोसा हो। बिना नाम लिए मोदी ने अमेरिका फर्स्ट और मनमाने टैरिफ लगाने की अमेरिकी नीति पर सीधा प्रहार किया। कल की छोटी छोटी मुलाकात सिर्फ रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश थी, असली परीक्षा तो आज होने वाली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत में होनी है। इस महा मुलाकात पर आज पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील जल्द फाइनल होगी, या फिर अमेरिकी नौसेना की हाथों हुई भारतीय की मौत का मुद्दा और ट्रंप की सौदेबाजी रिश्तों को और मुश्किल बनाएगा। कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ ट्रंप की बाह पर थपकी जमाने वाली गर्मजोशी है तो दूसरी तरफ मोदी की नो कॉम्प्रोमाइज वाली गरिमा। देखना होगा कि कुछ देर बाद जब ये दोनों महाशक्तियां एक साथ बैठेगी तो भारत अमेरिका रिश्ता क्या करवट लेता है। प्रणय उपाध्याय, एवीएन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की इतनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान न तो ट्रस्ट की ओर से आया है और न जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब SIT गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल SIT की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ट्रंप से महामुलाकात से पहले G7 में पीएम मोदी का महामंत्र, कहा विकासशील और कमजोर देशों की मदद के लिए सहायता तंत्र जरूरी। ट्रंप से ट्रेड डील और टैरिफ पर बात की संभावना। डील के बाद ट्रंप ने फिर कर दिया हैरान कराने वाला बयान, कहा ईरान के साथ समझौता अभी पक्का नहीं, अगर मसौदा मुझे नहीं आया पसंद तो हम दोबारा बरसाएंगे बम। शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर से खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा यूसीसी विधेयक, सीएम मोहन यादव बोले इसी सेशन में पारित होगा बिल, दिवाली तक लागू करने की तैयारी। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थाई बैन से भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए वार, आज कोटा में छात्रों से करेंगे संवाद।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सियासत में चल रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर होगा, जिससे दिल्ली तक का तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, पुणे से लेकर नागपुर तक और नागपुर से लेकर नांदेड़ तक ऐसा कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है कि 3-3 विमान को दिल्ली में लैंडिंग करनी पड़ रही है। अब अचानक मौसम बिगड़ने से उद्धव ठाकरे की पार्टी परेशान है। बंगाल की बारिश के बाद देश भर में बूंदाबांदी के आसार बढ़ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में प्री मॉनसून ऐसी बौछार की उम्मीद पहले नहीं थी। अब 19 जून को बालासाहेब की शिवसेना का स्थापना दिवस होता है, उससे पहले आशंका बढ़ गई है कि रही कहीं सही कसर भी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के पोस्टर बैनर लग गए हैं। वेट एंड वॉच कहा जा रहा है, क्योंकि असली ऑपरेशन दिल्ली में चल रहा है। उद्धव की पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद अज्ञातवास में चल रहे हैं, बाकी बचे सांसद स्पीकर के पास गुहार लगा रहे हैं कि बागियों को न सुना जाए, क्योंकि आखिर है तो वो बागी ही। स्पीकर कुछ नहीं बता रहे, उन्हें फैसला लेना है। 2-2 चिट्ठियां उन्हें मिल चुकी है, बागियों की एक चिट्ठी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी की दूसरी चिट्ठी। दोनों खतों पर स्पीकर को फैसला लेना है कि ताजा वाली बगावत दल बदल कानून के दायरे में माना जाए या नहीं, क्योंकि उद्धव की पार्टी ने जो चिट्ठी दी है उसमें तमाम अदालती फैसलों और संविधान संशोधनों से लेकर 10वीं अनुसूची वाले दल बदल कानूनों का हवाला भी दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि जब आंधी चलती है तो कहां किसी की चलती है, तो पूरे देश में इस वक्त 2/3 बहुमत वाली आंधी चल रही है। जब तक 360 पूरे नहीं होंगे कोई भी महफूज नहीं दिखता। तो महाराष्ट्र में आगे क्या होने वाला है, किस किस की कुर्सी की किज्जत पार्टी लोकतंत्र और इंसाफ की कसौटी पर कसी जा रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दल बदल कानून का कोई मतलब रह गया है या नहीं रह गया है, राजनीतिक दलों की राय के बीच ये भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखें।
3: मराठी सियासत के समंदर में पश्चिमी विक्षोभ ऐसा लो प्रेशर बना रहा है कि उद्धव के नेताओं की जुबान और मिजाज का मौसम बिगड़ने लगा।
4: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा आप लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का,
3: उद्धव की पार्टी परेशान है क्योंकि 4 साल पहले इसी जून में पार्टी टूटी और वही जून सांसद तोड़ने की बुरी खबर लेकर आ रहा। खबर है कि उद्धव की पार्टी से 6 सांसद शिंदे कैंप में जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में गली चौक चौराहे पर पोस्टर लग गया कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, क्योंकि 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस आ रहा है।
4: 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है, और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने।
3: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों की मोहभंग की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओमराजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाव साहब वागचौरे का नाम शामिल है। बागी गुट के सांसद दिल्ली में और संजय राउत का आरोप कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर इन सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। सूत्र कहते हैं कि इन नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, हालांकि एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को दे दी गई और चार पन्ने की इस चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान न लेने की अपील की गई।
5: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, अगर कोई आता है शिवसेना यूपीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
3: और खबर ये भी कि पाला बदलने वाले हर सांसद से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने 18 जून का व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा, जिसमें गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है।
6: जो व्हिप रहता है वो संसद के अंतर्गत के कामकाज के बारे में जो व्हिप रहता है, विधेयक पे मतदान, विश्वास दर्शक अविश्वास दर्शक ठराव, अर्थसंकल्प का जो कुछ ठराव रहते हैं, इसके ऊपर जो पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं वो अंतर्गत जो संसद के अंदर विधिमंडल के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए व्हिप लागू होता है। संसद के बाहर जो कामकाज होता है, पार्टी की मीटिंग होते उसके लिए व्हिप लागू नहीं होता।
3: अब उद्धव की पार्टी को कल की बैठक का इंतजार है जिसमें तस्वीर और साफ होगी कि बागियों के खिलाफ उद्धव क्या कदम उठाते हैं। उससे पहले इस बगावत को लेकर कांग्रेस भी बयान युद्ध में उतर गई।
7: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
8: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
3: बस चंद घंटों का इंतजार और तब महाराष्ट्र समेत पूरे देश को पता लगेगा कि बाला साहेब वाली शिवसेना के झंडे पर टंगा टाइगर किस नेता की शागिर्दी अब कबूल करेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
0: दरअसल एक बार फिर डिबेट शुरू हो चुकी है, क्योंकि दल बदल कानून इसीलिए सख्त किया गया था कि इस तरीके से आया राम गया राम की राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन अब आई सेना गई सेना, आई तृणमूल गई तृणमूल, इस टाइप की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तो क्या दल बदल कानून अब खत्म हो चुका है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, सुषमा अंधारे शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगी, एडवोकेट सुशीबेन शाह शिवसेना की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल। पहला सवाल, क्या उद्धव की पार्टी में दो तिहाई सांसदों की टूट गैर कानूनी होगी, क्योंकि अब इसको लेकर व्हिप भी जारी कर दिया गया है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी अटूट है और किसी भी तरीके से गुट को मंजूरी ना दी जाए। दूसरा सवाल, क्या संसद में दो तिहाई बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों में टूट हो रही है, क्योंकि मिशन 67% अगर डिलिमिटेशन करना है तो जरूरी है, क्या इसीलिए क्षेत्रीय दलों को निशाना बनाया जा रहा है। और तीसरा सवाल, क्या संविधान की 10वीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून बेमानी हो रहे हैं। ये कानूनी इसलिए बनाया गया था ताकि आया राम गया राम की राजनीति पर रोक लगाई जा सके, लेकिन अब ऐसे दिखता है कि होलसेल में दरअसल दल बदल कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बारे में आगाह भी किया गया था। सुषमा अंधारे, कल क्या होगा, कल आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, वहां पर जो सांसद नहीं जाएंगे उनके साथ क्या आश्रय होगा, आपकी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भी दी गई है स्पीकर को।
9: पिछले दो महीनों से कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ चर्चाएं हो रही थी, खासकर पिछले 2-3 दिनों में यह चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर थी और इसका प्रिकॉशनरी कुछ एक्शन लेनी चाहिए। इसके तहत हमने कुछ लीगल कार्रवाई की है, जिसका पहला कदम है कि हमने पार्टी की ओर से हमारा व्हिप जारी किया है और कल एक महत्वपूर्ण बैठक, सांसदों की बैठक दिल्ली में हो रही है, तो कल की बैठक होने तक हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चित्र अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा कि कल की बैठक में क्या होता है, कितने लोग रहते हैं, क्योंकि 6 में से अगर एक भी अगर सांसद वहां पर नहीं रहते हैं तो ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि चुनकर आने वाले लोग इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और खासकर अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 6 कौन है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम घर पर हैं, हम साथ में हैं, नहीं हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो अभी भी यह चित्र पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कल 11 बजे तक यह सारी बातें।
0: सुषमा जी, आपकी आवाज थोड़ी चली गई है। हाँ, लौट गई है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। सुषमा जी, रविवार को ही उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी सांसदों की, उनके घर में बैठक बुलाई थी, मातोश्री पर बैठक थी, 4 लोग आए, 5 लोग नहीं आए, उसमें से 4 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें थे, उनका वीडियो भी जारी कर दिया गया, कुछ लोगों ने बयान भी निकाला, उसके बावजूद महज 2 दिन में अलग से ये पार्लियामेंट्री पार्टी की व्हिप के साथ बैठक, और उसके बाद अब संजय राउत दावा कर रहे हैं कि कुछ 15 करोड़ रुपए राशि दी गई है सब लोगों को, क्या कहते हैं उसको, एक एडवांस के तौर पर। तो ऐसे 2 दिन में क्या हो गया? अब परसों की बैठक में भी तो 5 लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दूसरी बैठक बुलानी पड़ रही है, आपको सांसदों पे भरोसा नहीं है?
9: देखिए, जो नहीं जो मुंबई में बैठक बुलाई थी वह बहुत ही एक इनफॉर्मल बैठक थी, बड़ी अनौपचारिकता से वह बैठक बुलाई गई थी, किंतु कल की जो बैठक है, 2 दिन से चल रही चर्चाएं, मैंने पहले ही कहा कि जो चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर है और उन्हीं सारी चर्चाओं को एक तरह से अगर विराम देना है तो एक तरह से व्हिप जारी कर इन सभी सांसदों की बैठक बुलाना जरूरी था, और यह एक लीगल कदम कहिए, एक तरह से एक हमारा कानूनन कदम है। हमें हमारी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी का एक काम चल रहा है, डिलिमिटेशन बिल नामंजूर होने के बाद बौखलाई हुई बीजेपी हर तरह से अपनी राज्यसभा की संख्या में बढ़त पाना चाहती है, तो कभी टीएमसी होगी, कभी आप होगी, आज शायद हम, कल शायद एनसीपी हो सकता है, या पंजाब में आप हो सकता है, यह सबके साथ हो सकता है। तो हर एक पार्टी ने अपने आप को प्रीप्रिकॉटरी एक्टिविटीज के तौर पर खुद को तैयार रखना बड़ा जरूरी है, और इसी बात को लेकर किसी पर विश्वास है कि नहीं, यह बात ही नहीं आती। जहां राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, पर कितना फेयर होना चाहिए और कितने स्तर तक होना चाहिए, तो बीजेपी ने उसका कोई स्तर ही रखा नहीं
0: क्या है। लव तो दिखाई नहीं दे रहा है, वॉर और पॉलिटिक्स ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, और आमतौर पर जब मातोश्री का व्हिप नहीं चलता है तब इस तरीके के लीगल व्हिप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये अभी तक तो हमने राजनीति में देखा हुआ है। एडवोकेट सुशीबेन शाह, आपके हो गए, 6 लोग जमा हो गए, एक बार फिर 50 करोड़ की री एंट्री हो चुकी है, 50 कोके वाली एंट्री हो चुकी है आरोप की।
10: मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को नमस्कार और जय महाराष्ट्र। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए किस प्रकार से उबाटा चल रही है। आप सोचिए, जब बता रहे हैं कि सारे खासदार हमारे साथ थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको गाली देना, ये बताना कि बिलो द बेल्ट कमेंट के 15 करोड़ रुपया लिए हैं और 50 करोड़ लेने वाले हैं। मैं उनको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब वो अगाड़ी बिगाड़ी में गए कांग्रेस के साथ, और शरद पवार को नसीहत दी संजय राउत ने कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कितने खोखे लिए थे। सो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलना अपने खुद के सांसद के लिए, और एक बिभत्स और ओछी भाषा में बात करना, मैं समझती हूँ जो बचे कुचे हैं ना वो भी चले जाएंगे, क्योंकि शिवसेना में जो खासदार हैं वो सारे चुन के आए हुए हैं, जिला परिषद से, कॉरपोरेशन से आए हैं, सिर्फ संजय राउत पीछे के रास्ते से आए हैं। सो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, अपमानस्पद भाषा। मैं बोलती हूँ इस प्रकार की भाषा बोलने से नहीं जाएंगे, नहीं बचेंगे कोई। दूसरी बात, अभी जो दूसरा चौथा वर्धापन दिन, एक मिनट, वन सेकेंड साहिल भाई,
0: पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, 6 पूरे हो गए क्या? 6 पूरे हो गए क्या?
10: वो दिल्ली में चल रहे हैं, जैसे श्रीकांत जी ने कहा, वो महाबलेश्वर में है स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, हम नंदुरबार में है पक्ष को महिला अगाड़ी को मिल रहे हैं, ये हमारा काम है पक्ष संगठन। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगी, उनके चौथे वर्धापन दिन को क्या कारण हो सकता है? चौथे वर्धापन दिन को शायद आदित्य ठाकरे को वो लोग मनाना चाहे जाते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, और वो सब ये सुलझे हुए नेता को नहीं मान्य है। क्यों काम करे जो आमदार 8,000 मत से सिर्फ जीत के आया है, उसको कैसे 3 आमदार होने के बाद भी ये ऐसे नेतृत्व नहीं थोप
0: पाए?
10: कोई नहीं रुकेगा आपके पक्ष में।
0: सुशीबेन पुणे के भीतर
9: पुणे के भीतर ये होल्डिंग लगाया गया की बातें है।
0: जरा एक मिनट, जरा ये विजुअल, ये तस्वीर जरा एक बार फिर दिखाइए। सुषमा जी एक मिनट जरा ये तस्वीर दिखाइए एक बार फिर, जरा ये तस्वीर दिखाइएगा। ये होल्डिंग क्या कहता है? आपके पार्टी के तरफ से ये होल्डिंग लगाया गया है कि ऑपरेशन टाइगर वेट एंड वॉच, मतलब अभी तो आप तोड़ेंगे लेकिन बताकर तोड़ेंगे।
10: हम तो है ही हैं टाइगर, उसमें दो मत हो सकत नहीं, हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे डॉक्टर हैं, सो ऑपरेशन भी हो सकता है, उसमें दो मत हो नहीं सकते। इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप समझ लीजिए साहिल भाई। हम विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का रास्ता जाता है विकसित महाराष्ट्र की ओर से, और जिसको ये विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र पसंद है, फिर वो यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या सीएए हो,
0: तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? जिसको पसंद है वो वैसे ही आ जाएगा या चुनाव में जीत जाएगा, ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ती है इसमें?
10: हम ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, वो अपने आप आ रहे हैं, हमें ऑपरेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
0: तो नांदेड़ से जो चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, पुणे से चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, वो अपने आप जा रही है, कोई उड़ा नहीं रहा है उसको।
10: अरे साहिल भाई, वो सारे साखर सम्राट है, उनके खुद के एकदम सॉलिड है, उनका व्यापार है, उनकी पूरा एंटरप्राइज है, तो फिर हाउ डू यू ब्लेम देम, हम क्यों चार्टर बने? वो आपने
9: मुझे लगता है साहिल भाई, मुझे इन सारी बातों पर जवाब देना चाहिए।
10: सुषमा जी
9: इन सारी बातों पर जवाब अब देना ही चाहिए जवाब। एक तो पहली बात ये कि आदित्य ठाकरे को कार्याध्यक्ष बनाना वो तो सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर सुशील ने जोर दिया कि शायद उसकी वजह से ये सारे लोग नाराज है। अगर आदित्य ठाकरे की वजह से लोग नाराज है तो आदित्य ठाकरे की सभाएं क्यों, उनकी प्रचार सभाएं इन सब लोगों ने डिमांड की थी? एक दूसरा ये कि ये सारे साखर सम्राट है और इनके पास खुद के चार्टर है, अगर ऐसा कहना है तो फिर इन्हीं पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इन सारे लोगों को इलेक्शन में पैसे चाहिए थे और ठाकरे ने पैसे नहीं दिए? ये सारी बेसिर पैर की बातें हैं। असल बात यह है कि हर एक को बीजेपी एक स्क्रिप्ट थमा देती है, कभी कभी शिवसेना को एक स्क्रिप्ट थमा देती है कि आप हिंदुत्व की बात करो, कभी तृणमूल कांग्रेस को स्क्रिप्ट थमा दी जाती है आप अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ नारे लगाओ, कभी एनसीपी को स्क्रिप्ट थमा दी जाती है आप नेतृत्व का मुद्दा उठाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बस और बस एक एक नैरेटिव सेट करने की बात है, लेकिन यह सारी नैरेटिव सेट करने में एक बात तो तय है कि हम टाइगर है वगैरह, टाइगर दिन दहाड़े आते हैं, टाइगर अपनी शिकार पर झेप लेते हैं, टाइगर गुवाहाटी को भाग नहीं जाते हैं, टाइगर छुप छुप के, टाइगर भेष बदल कर रात में इस तरह से लोमड़ियों की तरह घूमते नहीं है।
0: प्रेम शुक्ला
9: जी, टाइगर नहीं आप लोमड़ी
0: है,
9: ध्यान रखिए, आप टाइगर नहीं है बिल्कुल।
10: हमारा मुंह ना खुलवाए सुषमा जी, हम भी बता
11: जी साहिल जी,
9: अरे आप बोल सकती है और आपको और एक बात सुशीबेन, और एक बात आपने जो कहा ना, आपने एक मिनट आपने जो कहा ना कि कांग्रेस के साथ जाकर प्रॉब्लम हो गई, तो उस कांग्रेस के साथ जाकर आपके पार्टी के साथ रहने वाले लोगों ने फिर मिनिस्ट्री क्यों ली थी, क्यों मंत्री पद लिया था, क्यों अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट लिया था? सुशीबेन आपने खुद चाइल्ड डेवलपमेंट का, आपने महिला बाल कल्याण का सदस्य पद क्यों लिया था?
10: घर में बैठे
9: क्यों लिया था आपने? आपने महिला बाल कल्याण का सदस्य पद क्यों लिया था?
10: पार्टी नहीं,
9: क्या बात कर रही है?
10: चलिए, करना पड़ता है,
9: क्या बात कर रही है आप?
0: प्रेम शुक्ला जी घुमा फिरा कर, ठीक है कल फैसला होगा कि आखिरकार ये जो पार्टी का विप है वो कौन मान रहा है, क्योंकि मातोश्री का विप तो वो नहीं मानेंगे, ये बात करीब करीब अभी साफ होती जा रही है। प्रेम शुक्ला जी ठीक है सुषमा जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी घुमा फिरा कर स्क्रिप्ट तो आपकी नजर आती है,
11: भाषा
0: किसी की भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, ये आपका स्क्रिप्ट है कि नहीं है, और ये 6 लोगों का क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है?
11: देखिए साहिल जी, जैसे जो है मुगलों को नव जल थल सब जगह जो है वो मराठों की सेना दिखाई देती थी और मराठों के कारण आक्रांत मुगल जो है हर दोष जो है मराठों को देते थे, वैसे ही कुछ लोग हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ रहे। भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी को अटूट रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है। उद्धव ठाकरे के विधायक उनसे न संभले तो हम लोग ने जिम्मेदारी संभाल के उनके विधायक जोड़ जोड़ कर मातोश्री पहुंचाने चाहिए, उनके सांसद हम मातोश्री पहुंचाएं। अरे भाई कुछ काम उनको भी करना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों में उद्धव ठाकरे से अधिक लोकप्रिय ना होने पाए, ये दायित्व तो किसने करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने। इस दायित्व का निर्वाह हमारे जिम्मे है। अब जो है एबीपी न्यूज या जी न्यूज चले ना चले, इसके लिए साहिल जोशी के आज तक के कर्मचारियों को जो है संघर्ष करना चाहिए। ऐसा है क्या भाई? आज तक अपनी चैनल को बढ़िया से चलाएगा भारतीय जनता पार्टी,
0: लेकिन हम
11: अपने दल को बेहतरीन ढंग से अपने विचारों को फैलाएगी, हम करेंगे।
0: हम
11: इसमें जो है बीच में कौन?
0: प्रेम शुक्ला जी, भाई प्रेम शुक्ला जी,
11: क्या हो गया इनको?
0: प्रेम शुक्ला जी, हमारे चैनल को चमकाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लोगों को लेकर थोड़ी ना हमारा चैनल चमकाएंगे।
11: हाँ नहीं, अगर आपके यहाँ अच्छा कोई एंकर आता रहेगा तो क्या करेंगे? आप नहीं लेंगे?
9: आपकी बात एक
11: अगर कोई अच्छा एंकर अच्छी शर्तों पर आपके यहाँ आता रहे तो आज तक बैन लगा देगा, नहीं लेंगे। आज तक ने किसी अन्य चैनल का कर्मचारी,
0: हमारे लोग इतने दमदार है, हमारे लोग इतने दमदार है,
11: ऐसा हुआ
0: कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
11: नहीं नहीं,
0: हमारे लोग इतने दमदार है कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना दल की जरूरत पड़ेगी, ना बदल की जरूरत पड़ेगी।
11: जानकारी है कि सुप्रियो प्रसाद,
0: जल्दी से जवाब फिर अखिलेश जी को पूछना है मुझे।
11: सुप्रियो प्रसाद किसी समय,
0: चलिए मुझे एक बात बताइएगा प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइएगा प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइएगा, ये 67% का ऑपरेशन चल रहा है क्या? ऑपरेशन 67% चल रहा है क्या ये? क्योंकि देखिए ये क्या अचानक होड़ लग गई है? एक महीने पहले तक इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, जैसे ही टीएमसी में 20 सांसद निकल कर आ गए उसके बाद अचानक
11: आपको कयास लगाने की, सूत्रों से खबर चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये कोई कांग्रेस का राज नहीं कि अहमद मियां पटेल का फोन आ जाएगा और खबर डाउन करा दी जाएगी, ये कांग्रेस का राज नहीं है।
0: सुषमा जी जवाब दीजिए, उसके बाद
9: बात करूं।
11: खबरें जो है पतंग उड़ाने की पूरी आ जाती है।
9: हाँ साहिल भाई, जरा जरा 10 सेकंड,
0: मतलब कोई 67%
9: नहीं। शुक्ला जी जरा रुकिए, जरा 10 सेकंड बात करने दीजिए। ये बात जरूर है कि बीजेपी ने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है कि कौन सी पार्टी चले ना चले, कौन सी पार्टी चलानी चाहिए, ये ठेका बिल्कुल नहीं ले रखा है। तो क्या बीजेपी ने ये ठेका लेकर रखा है कि हर एक प्रादेशिक राजनीतिक दल को तोड़ने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने? कभी आपको तोड़ेंगे, कभी सपा को तोड़ेंगे, कभी डीएमके में उथल पुथल करेंगे, कभी टीएमसी को तोड़ेंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे आप?
11: 12 साल ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारा को पार्टी मिलेंगे तो और क्या होगा?
9: अरे वाह वाह वाह, अरे प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए, प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए, ग्रोन अप
0: अखिलेश प्रताप सर,
11: क्या होगा?
0: सुषमा जी हो गया, सुषमा जी हो गया प्रेम शुक्ला जी हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए जो बाहर तमाशा हो रहा है उतना काफी है, अब यहाँ पर इतना मत करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। सुषमा जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, सुषमा जी प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, दल बदल कानून को इसीलिए सख्त किया गया था कि आयाराम गयाराम की राजनीति बंद हो जाए। क्या आज की स्थिति में अब यह दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? लोग तो अभी कहना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी होलसेल में शुरू हो चुका है यह दल बदल कानून को जिस तरीके से बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, क्या बटन बंद कर देना चाहिए अभी?
12: साहिल जी देखिए, ये जो आज की बीजेपी है ना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। अभी यहां बता रहे थे कि हम ठेकेदार थोड़ी ना हैं किसी दल को बचाने के रखने के लिए। जो सत्ता में बैठा वो संविधान का ठेकेदार है, संविधान को बनाए रखना, संविधान पे चलते रखना, सम्मान उसका बचाए रखना, सत्तारूढ़ दल के पास है काम, और वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? जब कभी कोई भी शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोकलाज मर्यादा को तज देगा ना, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, कहीं हो, तो गिरावट की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। और बीजेपी ने वही किया है, जब से 12 वर्षों से उसने लोकलाज मर्यादा सबको त्याग दिया है, उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। 10 सरकारें लूटी हैं इन्होंने, 10, उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 10 सरकारें चुनी हुई लूटी हैं इन्होंने 12 वर्षों में। और 450 सांसद और विधायक इन्होंने, बीच में मैं नहीं बोलता, आप थोड़ा सा साहिल जी व्यवस्था बनाए रखें,
0: मतलब बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए,
12: 450 प्रेम, देखिए ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए चुप रहें, जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल देंगे। ये फिर वही बात,
0: प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, उनको बात खत्म करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए, अकेले जी आपकी बात खत्म करिएगा। मेरा सवाल ये भी है प्रेम शुक्ला,
12: देखिए प्रेम शुक्ला देख लीजिए, देखिए इन्होंने अपना संस्कार, आप सुनिए भाई,
0: क्या सरकारें टूटी नहीं है, सरकारें टूटी नहीं है, सवाल तो इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या सरकारें टूटी नहीं है, दल बदल कानून का क्या होगा, दल बदल कानून इसीलिए सख्त किया गया था, वो भी वाजपेयी प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे, प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था। जो आज दल बदल कानून हम देख रहे हैं वो दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था, ये कहते हुए कि रीजनल पार्टियां ना टूटे। सबसे ज्यादा खतरा रीजनल पार्टियों को दल बदल कानून से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में रीजनल पार्टियां क्यों टूट रही है, इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है।
12: साहिल जी आपके पास पीसीआर है, उसे बंद कराइए, अगर आपको बहुत ठीक से करानी है तो आपकी मर्जी भाई, आपका चैनल है, आपकी सरकार है, आप जिस तरह।
0: प्रेम शुक्ला जी इतनी हड़बड़ी क्या है, जरा सुन लीजिए ना, उनका जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद में तो यही होता रहेगा।
13: मेरा उत्तर आपने उसे प्रश्न पूछा, जवाब देने दीजिए, आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर ले लीजिए।
0: नहीं नहीं, पहले उनके बीच में आप कूद पड़े,
12: बधाई हो आपको, इसी तरह राजीव गांधी ने, साहिल जी आप इसी तरह बहस कराते हैं,
13: नहीं इसलिए कि आप
0: प्रेम शुक्ला जी क्या है, साहिल जी प्रेम शुक्ला जी इतनी जल्दी क्या है,
13: ये गलत तरीका है, ये बहस का, प्रेम शुक्ला जी इतनी बहस का गलत तरीका,
0: नहीं नहीं आप बीच में कूद पड़े, आपको मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा, प्लीज प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं,
13: क्योंकि ईस्ट इंडिया
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
13: अंग्रेजों के दलाल जो है,
0: अरे तो आप उसका जवाब दीजिए ना,
13: पड़ेगा कांग्रेस जो है,
0: जो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, आपको मैंने कब कहा कि उत्तर नहीं दीजिए, आपको मैंने कब कहा कि उत्तर मत दीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि उनका बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए करके, मैंने कब बोला आपको जवाब मत दीजिए, ठीक है आपको मौका देंगे ना, मैंने कहा आपको मौका देंगे, मैंने कहा आपको मौका देंगे, अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात
13: करिए,
0: बिल्कुल देंगे आपको,
13: प्रतीक्षा करता हूँ
0: प्रेम शुक्ला जी आपकी,
13: ठीक है
0: आपको आपको अवसर मिला मिलेगा, अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए,
13: ठीक है मैं प्रतीक्षा करता हूँ,
12: सारी बात वो कह चुके इतने,
14: संजय राउत एमपी ने शिविर
15: गांधी
14: के
15: नाम से गलत तत्काल अटक कराची मांगी होते हैं, संजय राउत एमपी शिविर गांधी तत्काल अटक कराची मांगी होते हैं,
14: त्याच्यावर मी काही बोलू इच्छित नाही, माणसाला जेव्हा कुठेतरी शिवसेना आमची आई आहे,
0: अरविंद सावंत कुछ कह रहे हैं,
14: ठीक
0: है अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कि कल दरअसल मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग में जो नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, ठीक है अरविंद सावंत वही कह रहे हैं जो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह जो कहा गया था इनके तरफ से, अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए,
12: साहिल जी देखिए अपने संस्कार का और अपने पार्टी के संस्कार का अभी बीजेपी ने यहाँ पे परिचय दिया, क्या 10 सरकारें लूटी नहीं है क्या, क्या अगर सत्ता के शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोकलाज मर्यादा को तज दे तो संविधान,
0: अखिलेश जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आपका ऑडियो जरा ठीक कराइएगा, हाँ अभी अभी अभी आ रहा है, बोलिए आपकी बात खत्म करिए, नहीं आपका ऑडियो नहीं, जरा टेक्निकल डिफिकल्टी है, वो जरा बात खत्म करिएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल यहां पर यह उठता है कि ये पार्टियां एक के बाद इतनी पार्टियां क्यों टूट रही है, ऐसा क्या हुआ है एक महीने के भीतर कि एक के बाद एक पार्टियां टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या ऑपरेशन 67% चल रहा है आज की स्थिति में।
13: 1952 से लेकर 1987 तक पार्टियां क्यों टूटी, उसके लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जिम्मेदार थे कि नहीं? और 1987 में दल बदल कानून जब लाया गया और एक तिहाई संख्या संसदीय या विधायक दल की आवश्यक थी दल बदल के लिए, आपको ध्यान होगा 1991 में इसी शिवसेना को कांग्रेस ने तोड़ा था और शिवसेना के विधायकों की संख्या थी 54 और सिर्फ 12 विधायक छगन भुजबल के नेतृत्व में अलग हुए थे, उनको अलग से मधुकर राव चौधरी ने मान्यता दे दी थी। तब क्या था ये मुझे बताइए, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? लोकलाज

0: विभाजन हुआ, एक विधानमंडल दल में विभाजन हुआ, यहां पर भी विधान संसदीय दल में विभाजन हो रहा है। और हर अपराधी, अपराध करने वाला व्यक्ति, वो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो यही कहता कानून है ना, अदालत है ना, तो तुम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, अगर हर काम कानून अदालत और वही
1: करेगा जी जवाब करे
0: तो तुम किस लिए हो?
1: कुल मिलाकर उनका आरोप ये है,
0: कस्टोडियम होता है सरकार,
1: दल बदल कानून में जब साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टी में टूट अगर होती है तो विधायक दल की टूट को सही नहीं माना जाएगा। अगर जो टूट होती है वो राजनीतिक पार्टी के भीतर होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी का मुद्दा हो, तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा हो या शिवसेना का मुद्दा हो, बार बार सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा
0: है। 10 सेकंड
1: इसी बात को लेकर,
0: उसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं, 10 सेकंड इसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं।
2: 1991
0: कोई बात नहीं, आपके साथ इस तरह से बात करने में क्या
2: उत्तर आया,
0: हर कोई डिस्टर्ब ही करने पर लगा है।
2: मेरे बीचों बोल रहे हैं, लगातार मेरे बीचों बोले जा रहे हैं, ये अभद्रता कर रहे हैं।
1: बोलिए ना प्रेम शुक्ला जी,
0: इसके बीच
1: ये अननेसेसरी इसमें समय चला जा रहा है, आप बात अपनी खत्म करिए, आपको मैंने सवाल पूछा है।
2: देखिए 1991 में 54 विधायक जब शिवसेना के थे, सिर्फ 12 टूटे, एक तिहाई का तब नियम था, उस नियम का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर अखिलेश सिंह देंगे क्या? और जब बसपा के 6 विधायक इनके राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ चले आए, तो क्या बसपा पे टूट हुई थी? मायावती को हटा दिया गया था, ऐसा हुआ था क्या? तब क्या था, इसका उत्तर दीजिए ना, इसका उत्तर आएगा नहीं।
1: ठीक है, आशुतोष, कुल मिलाकर इससे पहले हमने बिहार में देखा एमआईएम के विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, और जिसका जिक्र यहां पर प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, उस वक्त दल बदल कानून में एक तिहाई का यह लगाया गया था, आज के दल बदल कानून में 2/3 का जिक्र किया गया, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी किया गया है। तो आज की स्थिति में भी स्थिति कुछ खास बदली नहीं है, सिर्फ आज उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं, या जो चल रहा है वही आगे चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है? आपने भी राजनीति इतने सालों से देखी हुई है।
3: देखिए देखिए साहिल, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस कानून की को डिफाइन कौन कर रहा है, उस कानून की परिभाषा कौन दे रहा है? स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट? आपने महाराष्ट्र का देखा, कानून तो साफ तौर पे ये कहता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें विघटन होना चाहिए, उसमें जो विधानमंडल है उसके विघटन का कोई मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल पार्टी है वो व्हिप को नियुक्त करती है, ओरिजिनल पार्टी जो है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी को तय करती है। क्या इस सिद्धांत का पालन शिवसेना जब टूटी तब किया गया? क्या इस सिद्धांत का पालन जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तब किया गया? क्या टीएमसी के मामले में सिद्धांत का पालन हुआ? नहीं पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो बात का कानून है जो शिवसेना को लेकर था, वो भी इसी बात को रिटरेट करता है। तो इस पर निर्भर करता है कि कानून का पालन कौन करवा रहा है। अब जैसे भोपाल का उदाहरण आप दे लीजिए, भोपाल के अंदर मीनाक्षी नटराजन का केस जो था, वो केस आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अजीब इत्तफाक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने भी इंटरवीन नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन डालिए। इलेक्शन पिटीशन में 3 से 6 साल लगते हैं, तब तक तो वो आदमी जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा वो उसको एंजॉय करके बाहर निकल जाएगा। तो सब कुछ इस पर
1: मामला सिर्फ इलेक्शन पिटीशन तक सीमित नहीं है, गोवा के भीतर इसी कानून का इस्तेमाल करके कांग्रेस के विधायक टूटे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस बात को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के केस के बाद जो स्पीकर का फैसला हुआ, वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हालांकि उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। आशुतोष
3: साहिल, देखिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में 1/3 का कानून आने के बाद जब डिफेक्शन हुआ, मायावती की पार्टी से डिफेक्शन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी डिफेक्शन की, डिफेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज 2 टूटेंगे, कल 5 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। उसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में कानून लेकर आए कि भाई 2/3 प्लस मर्जर। अब ये 2/3 प्लस मर्जर जो है वो मूल पार्टी को लेकर है, लेकिन अगर उस कानून का पालन स्पीकर महोदय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा, तो फिर कानून का कोई अर्थ ही नहीं बचता। कायदे से शिवसेना
1: कानून का कोई अर्थ नहीं रहता,
3: बिल्कुल बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। शिवसेना जो असल में शिवसेना टूटी है, असली शिवसेना को आपने दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, और जो असली शिवसेना थी वो आज की तारीख में एक दूसरे

0: पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह आपने ले लिया। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के साथ भी, शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। तो सवाल इस बात को लेकर यह, जिनको कानून इंप्लीमेंट कराना है, अगर वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप अदालतों के चक्कर काटते, और ये बहुत आसान काम है कि आप अदालत
1: ठीक है,
0: जाइए ना, अदालत
1: अखिलेश प्रताप
0: जाइए।
1: सिंह, क्या आप आशुतोष के मत से सहमत हैं? और उसके
2: देखिए,
1: बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे।
2: मैंने जो कहा उसी बात को आशुतोष जी ने आगे बढ़ाया। मैं जिसके पास संविधान की, विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका जिस कस्टोडियन जिसको बोलते हैं आप, उसके संरक्षक हैं, वही अगर लुटेरा हो जाए, जैसे गांव में कहा गया ना कि मेढ़वे अगर खेत खाए तो खेत कहाँ बची, तो जिनके पास इसको रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, हमारे सत्ता शीर्ष पे बैठे, अदालतों के शीर्ष पे बैठे, या सदन के अंदर स्पीकर शीर्ष पे जो बैठे हैं, वही लोग अगर इसे तोड़ मड़ोड़ करके इसमें बेईमानियां करेंगे या निष्पक्षता से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो अगला कहाँ जाएगा? फिर तो सब क्योस हो गया ना। तो अब इसमें एक पतली सी लाइन है कि आप बस अपनी लोकराज मर्यादा को त्याग दीजिए, फिर ये सब करते रहिए, यही हो रहा है। जिस दिन लोकलाज
1: प्रेम
2: मर्यादा आ
1: शुक्ला जी,
2: जाएगी ये बीजेपी
1: 90
2: के
1: के दशक
2: पास,
1: में जो
2: तो
1: हुआ
2: ये काम नहीं होगा, लेकिन वो
1: जिसका
2: सत्ता के
1: जिक्र आप
2: मुखिया
1: बार
2: है।
1: बार कर रहे
2: फिर
1: हैं, क्या
2: देखिए,
1: वही
2: फिर
1: चीज
2: एकांगी बात चल रही है।
1: 2026 में भी होती रहनी चाहिए?
2: देखिए,
1: क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? वो हो रहा था, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नया कानून लाया था,
2: एकांगी बात फिर चल
1: संशोधन
2: रही है।
1: इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था।
2: नहीं, बेईमानी भरी बातें, बेईमानी बेईमानी भरी व्याख्याएं ही जो हैं संविधान की, कभी भी लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने मधुकर राव चौधरी के ऑर्डर का आपको जिक्र किया, एक तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, एक तिहाई जो है
1: इसी तो
2: समर्थन की आवश्यकता थी,
1: आप
2: 54 में सिर्फ
1: प्रेम
2: 12
1: शुक्ला
2: थे
1: जी,
2: कांग्रेस ने, और उसको उसको
1: आपने
2: फिर
1: सुना
2: कांग्रेस
1: नहीं,
2: को लुटेरा कहे कि नहीं कहे,
1: केसरीनाथ
2: और
1: त्रिपाठी का भी उदाहरण दिया गया,
2: आप नहीं, मुझे कृपा करके
1: यही
2: बताइए
1: हो
2: ना।
1: रहा था,
2: नहीं,
1: यही
2: वो
1: हो
2: दिया
1: रहा
2: ना
1: था,
2: उसी
1: इसीलिए तो
2: का,
1: 2003 में
2: मैं अभी उसके
1: जब
2: बाद का
1: वाजपेयी की
2: बताइए ना।
1: सरकार थी तब उन्होंने
2: अरे
1: उसमें
2: भाई,
1: संशोधन
2: नहीं,
1: किया,
2: 2003 के
1: उसको
2: बाद की
1: सख्त
2: बात
1: किया।
2: बताइए। अब 2003 के बाद की, 2003 के बाद की सुन लीजिए ना। अभी रेवंत रेड्डी जो है, उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था, तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है? और रेवंत रेड्डी को फिर तो हटा देना चाहिए कांग्रेस ने। आज तो उसे जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे, भाई बहुत तो संविधानवादी लोग हैं,
1: आशुतोष
2: तब
1: जी,
2: नहीं हटाएंगे साहब। अशोक
1: आशुतोष,
2: गहलोत जो है,
1: ये
2: कहां कौन
1: सिलसिला
2: सा
1: ऐसे ही
2: कौन सी
1: चलेगा,
2: स्प्लिट हुई थी भाई बसपा में,
1: ये
2: और
1: सिलसिला ऐसे
2: एमआईएम
1: ही
2: में कौन
1: चलेगा।
2: सी स्प्लिट हुई थी?
1: आशुतोष,
2: क्यों उसको
1: देखिए
2: एमआईएम को
1: साहिल,
2: तोड़ने दिया आपने आरजेडी को?
0: साहिल, पता नहीं क्यों मेरी मेरी मौजूदगी से लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, मुझे बड़ी हैरानी की बात है। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने क्या कहा कि बीजेपी
2: किसी को
0: ऐसा कर
2: तकलीफ नहीं
0: रही
2: है
0: है? मैंने
2: गुप्ता
0: तर,
2: जी,
0: मैंने
2: गुप्ता
0: मैंने
2: जी
0: मैंने
2: किसी को कोई
0: देखिए,
2: तकलीफ नहीं गुप्ता
0: अब
2: जी,
0: देखिए, ये
2: तकलीफ
0: आदमी,
2: नहीं है,
0: ये
2: मैंने
0: आदमी
2: भी किसी
0: दरअसल
2: का नाम नहीं लिया
0: बदतमीज है।
2: गुप्ता जी,
1: इसी बहाने, इसी बहाने ये अनंत बहस है दरअसल, क्योंकि इसी बहाने एक बार फिर जिस कानून का जिक्र बार बार हो रहा है, इस देश में आयाराम गयाराम की राजनीति रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था राजीव गांधी के जमाने में, और उसके बाद वो सख्त होता गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला नहीं थम रहा है, इसीलिए इस पर नजर रखना जरूरी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: मराठी सियासत के समंदर में पश्चिमी विक्षोभ ऐसा लो प्रेशर बना रहा है कि उद्धव के नेताओं की जुबान और मिजाज का मौसम बिगड़ने लगा।
1: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा आप लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का
0: उद्धव की पार्टी परेशान है क्योंकि चार साल पहले इसी जून में पार्टी टूटी और वही जून सांसद तोड़ने की बुरी खबर लेकर आ रहा है। खबर है कि उद्धव की पार्टी से 6 सांसद शिंदे कैंप में जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में गली चौक चौराहे पर पोस्टर लग गया कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, क्योंकि 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस आ रहा है। 15 उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों की मोहभंग की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओमराजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाव साहब वागचौरे का नाम शामिल है। बागी गुट के सांसद दिल्ली में और संजय राउत का आरोप कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर इन सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। सूत्र कहते हैं कि इन नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, हालांकि एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को दे दी गई और चार पन्ने की चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान न लेने की अपील की गई। और खबर ये भी कि पाला बदलने वाले हर सांसद से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने 18 जून का व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा, जिसमें गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है। अब उद्धव की पार्टी को कल की बैठक का इंतजार है, जिसमें तस्वीर और साफ होगी कि बागियों के खिलाफ उद्धव क्या कदम उठाते हैं। उससे पहले इस बगावत को लेकर कांग्रेस भी बयान युद्ध में उतर गई। बस चंद घंटों का इंतजार और तब महाराष्ट्र समेत पूरे देश को पता लगेगा कि बाला साहेब वाली शिवसेना के झंडे पर टंगा टाइगर किस नेता की शागिर्दी अब कबूल करेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
2: जी, आपको भी लग रहा है कहने के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ
1: यूपीटी के साथ हम पहले जा चुके हैं, वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिले, तुमने रोका क्या। जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे। अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे, एक महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

थोड़ी देर में होगी मोदी ट्रंप महामुलाकात। कम होगी तलखी, तीखे मुद्दों पर होगी बात। टेक्नोलॉजी से ट्रेड तक बदलेंगे हालात। महामुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। करीब 16 महीने बाद होने जा रही ये मुलाकात दो वजहों से अहम मानी जा रही है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों नेता मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है। तमाम देशों की कूटनीति और अर्थनीति की रणनीति तेजी से बदल रही है। इस लिहाज से भी मोदी ट्रंप मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे तो इस मुलाकात के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों ही नेता चर्चा करना चाहेंगे, जैसे ऊर्जा सहयोग। हुर्मुज संकट की वजह से तेल और गैस की मुश्किलों के बाद सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। सैन्य सहयोग की दिशा में हथियारों की खरीद और आतंकवाद पर लगाम कसने पर भी दोनों नेता अहम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड डील और टैरिफ पर अहम ऐलान बेशक न हो, लेकिन अहम चर्चा होने के पूरे आसार हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा भी था कि मोदी से दोस्ती को देखते हुए वो जल्द ही ट्रेड डील को अंजाम देंगे। कई और ऐसे मुद्दे भी हैं जो दोनों देशों के कारोबार और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने से जुड़े हैं, इन पर भी बातचीत हो सकती है। इसमें एआई और निवेश के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मुद्दे शामिल हैं। वैसे भारतीयों को उम्मीद है कि दो और ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो सीधे सीधे उनसे जुड़े हैं। इनमें से एक है H-1B वीजा और दूसरा हुर्मुज में भारतीय नाविकों की मौत, जिन पर कल G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जता चुके हैं। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा और एवियन से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

आस्था के राम, श्रद्धा के राम, पौरुष के राम, मर्यादा के राम। 500 बरस की प्रतीक्षा, हजारों लाखों का बलिदान, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों के दान के बाद बना अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर। किसी ने सोचा ना था भगवान राम के अवधपुरी में चोर के नाम का शोर होगा। चोर चोर का शोर ऐसा मचा कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। जिन छोटे कर्मचारियों पर आरोप है उनमें से चंपत राय के ड्राइवर रहे मंदिर के सेवादार चिन्नू यादव जरूर इनकार करने लगे। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे। जांच टीम की मदद के लिए जिले की पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए तीन मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला कि जांच में एसआईटी की जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची, फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 45 से अधिक लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल दो हफ्ते पहले राम मंदिर के दान पात्र में से चढ़ावे की चोरी का सियासी आरोप शुरू हुआ था। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, फिर विनय कटियार ने सवाल उठाए। तब तक ट्रस्ट की ओर से आरोपों का खंडन किया जाता रहा, लेकिन खबर है कि फिर बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी और तब सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर जांच शुरू कराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी आरोपों से अलग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े स्थानीय लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे संतोष दुबे नाम के पुराने कार सेवक जिन्होंने पुलिस में लिखित तहरीर देकर ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की चिट्ठी जरूर लिखी गई है, क्योंकि नेताओं ही नहीं संतों को भी लग रहा है कि मंदिर के दान खाते की रकम में कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभु राम में असंख्य सनातनियों की आस्था और योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास का सम्मान रखते हुए एसआईटी 7 दिन में अंतरिम और 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही है, लेकिन अब G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। उसका कंटिन्यूस कवरेज आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: मुलाकात के पहले G7 में प्रधानमंत्री मोदी का महामंत्र, कहा विकासशील और कमजोर देशों की मदद के लिए सहायता तंत्र जरूरी। ट्रंप से ट्रेड डील और टैरिफ पर बात की संभावना। डील के बाद ट्रंप ने फिर किया हैरान करने वाला बयान, कहा ईरान के साथ समझौता अभी पक्का नहीं, अगर मसौदा मुझे नहीं आया पसंद तो हम दोबारा से बरसाएंगे बम। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंप दिया खत, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक। ओपी राजभर के बाद अब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी में 25 से 26 सांसद टूटने को है तैयार, 2027 में अपने आप ही चले जाएंगे। और नीट री एग्जाम से पहले आज कोटा में छात्रों से मिलेंगे राहुल गांधी, कहा छात्र पर नहीं माफिया पर वार करें प्रधानमंत्री मोदी, टेलीग्राम पर अस्थायी बैन से जताई नाराजगी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ ही मिनटों के बाद बातचीत शुरू होने वाली है। इस द्विपक्षीय बातचीत से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि टैरिफ से लेकर ट्रेड डील को लेकर सब पर चर्चा होगी। हल्ला बोल में हम इस पर बात करेंगे, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल की संभावनाओं पर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब बयान दे दिया है। अब बात ओपी राजभर की नहीं रही है, अब तो खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं, हम लोग उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 2027 में अपने आप ही समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। इससे पहले आज यूपी सरकार के में जो मंत्री हैं और गठबंधन के साथी हैं बीजेपी के, SBSP पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की टूट की बात कहकर सनसनी मचा दी थी। अब केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए।
2: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैकड़ा ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। पूरी उम्मीद रखिए जो हस्त TMC का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब जीत होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे।
0: केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीधा ये कह रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो के हेड जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही है, मतलब ये आज की राजनीति को पूरा समेटती है। पहले कह रहे हैं कि 25-26 टूटने को तैयार हैं, हम ही तोड़ नहीं रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि TMC से भी बड़ा झटका समाजवादी पार्टी की राह में आने वाला है, फिर वो कह रहे हैं कि खुद ही टूट जाएंगे। क्या समझे इसे, पोजिशनिंग हो रही है?
3: बिल्कुल अंजना, देखिए जब ओम प्रकाश राजभर ने सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि 30 सांसद टूटने को तैयार हैं तो बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 25-26 सांसद तैयार बैठे हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके के हालात इस वक्त चाहे TMC को लेकर या शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को लेकर के है, उसके बाद से आज जो हलचल यहाँ मची है उसने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आशंकाओं को जन्म दे दिया है और ये आशंकाएं समाजवादी पार्टी के भीतर हैं। ये जरूर है कि इस वक्त कोई नहीं टूटेगा, ये स्वीकार खुद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लूइड सा सिचुएशन, एक पॉलिटिकल टर्मोइल वाली स्थिति सपा के भीतर बनाने की एक कोशिश जरूर दिखाई दे रही है और आज दिन भर इसी पर चर्चा होती रही। देखिए केशव प्रसाद मौर्य के बोलने का असर है, होता है और माना जाता है, लेकिन सुबह से इस पर किसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। जब ओम प्रकाश राजभर ने वीडियो भी जारी किया, ये ट्वीट भी किया, अखिलेश यादव ने भी आज एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा कि हमें भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत साथियों की जरूरत है और जो कमजोर होगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आ रही हैं अंजना, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके के हालात बनते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल पूरी तरीके से एकजुट है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो जरूर गंभीरता की ओर इशारा करती है।
0: बिल्कुल, और अगर वाकई इस तरह की परेशानी है तो अखिलेश यादव उसको किस तरह से देखते हैं ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहां कल्पना की होगी कि ऐसे ऐसे नेता जो उनकी जगह चेहरा बन गए थे चुनाव के, सायोनी घोष, वो भी उनको छोड़कर चली जाएंगी और फिर उसको जस्टिफाई करके सही भी ठहराएंगे। लेकिन आइए हम आपको सुना देते हैं समाजवादी पार्टी का भी पक्ष, क्योंकि सांसद है राजीव राय और वो इसको कोरी कल्पना बता रहे हैं, सुनिए।
4: 27 के चुनाव में द एंड होने जा रहा है,
5: सुभाषपा का
4: दी एंड होने जा रहा है, कहीं से खाते नहीं खुलेगा।
5: जहूराबाद से तो श्योरिटी भी नहीं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।
4: वो लड़ेंगे भी तो वहां से जीतने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ, वो लड़ेंगे तब भी नहीं जीतेंगे। उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो 2-4-5 दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है, ये बहुत कम्युनिकेबल डिजीज भी है।
6: को देखने आए,
7: जैसे यूपी में मुद्दा है राम मंदिर दान पेटी चोरी वाला, उसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको?
6: देखिए, ये झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, भगवान राम के मंदिर से चोरी हो जाए, इससे ज्यादा अधर्मी कौन हो सकता है।
7: वैसे चर्चा है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाने की साजिश चल रही है,
0: ऐसा लग रहा था कि शिवपाल यादव भी इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। जैसे ही इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है ये सामने आता है, हम फौरन आपको सुनाएंगे। लेकिन कुमार अभिषेक, दिलचस्प बात यह है कि एक बात तो साफ है, अब समाजवादी पार्टी ओपी राजभर को तो राइट ऑफ कर सकती है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बकबकाइटिस और क्या क्या उनको बीमारी है वही समझे उनका, वो रोज उनके खिलाफ लिखते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, तो वो कह रहे हैं कि पासवर्ड किसी और के पास है, उनका अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है और ये चिंता बढ़ानी चाहिए नहीं बनाए बढ़ानी चाहिए समाजवादी पार्टी की?
3: नहीं, निश्चित तौर पर अंजना, देखिए सपा के भीतर ये आशंका तो है, ये चिंता तो है, और मैंने जैसा कहा कि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट अखिलेश यादव के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई है, और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जैसी पार्टी से लड़ने के लिए उनके साथियों को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमजोर है वो अपना दल छोड़कर जा सकते हैं, जा रहे हैं। हालांकि ये कंटेक्स्ट उन्होंने टीएमसी और दूसरे दलों को लेकर कहा है, लेकिन आशंकाएं और संभावनाएं तीनों हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने आंकड़े भी 25-26 के दिए हैं। ये जरूर है कि 2027 चुनाव तक सभी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 में अच्छा परफॉर्म किया, 2027 में किस तरीके से वो परफॉर्म करती है इस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के भीतर, और ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी है कि अगर वो सपा को कमजोर नहीं दिखाएगी, टूटता फूटता नहीं दिखाएगी, उसके अंदर की कला नहीं दिखाएगी, तो शायद 27 में बीजेपी के लिए एक मजबूत अखिलेश सामने होंगे। तो नेचुरल है कि ये चीजें सामने हैं इस वक्त। अंजना,

0: तो आइए आशुतोष वर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, अब तो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि 25 से 26 आपके सांसद टूटने को तैयार हैं, वही तोड़ नहीं रहे हैं। अब आप लोगों को चिंता तो होनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर ममता बनर्जी को भी यकीन नहीं हुआ। ममता बनर्जी क्या, हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे नाम थे उस 19 सांसदों की लिस्ट में जिन्होंने चुनाव हारते ही ममता दी का साथ छोड़ दिया।
1: धन्यवाद अंजना जी, और आपके माध्यम से मैं केशव जी से यही कहूंगा कि आप एक बहुत सीजनड लीडर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको लोग बहुत ही संयमित मानते हैं, लेकिन इस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी आपसे दिलवा के क्या बताना चाहती है। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 2022 के इलेक्शन के समय 2021 में दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक दिन पहले आप लोग मीटिंग करके आए थे और अगले दिन समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी, ओपी राजभर ने ज्वाइन करी थी, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कम से कम 35 ऐसे सिटिंग विधायक थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी तोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो समाजवादी पार्टी में लोग आते हैं, समाजवादी पार्टी से लोग नहीं जाते हैं। आप तोड़ने की बहुत कोशिश कर सकते हैं, हम पिछले 37 सालों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, ये बंगाल और महाराष्ट्र नहीं है जो हमने कभी आपके साथ गलबैया बना के सरकार बनाई है, हम नेताजी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी नीतियों के साथ रहते हैं। तो कृपया इसका सम्मान रखें, और हम लोग भी जानते हैं कि राजनीति कैसे करने आती है, सिर्फ आपको ही नहीं पता है।
0: ठीक है, लेकिन बाद में आशुतोष जी अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो ये तो नहीं बोलिएगा कि उन्होंने खरीद लिया, हमारे वाले पैसे के लालच में चले गए, अगर कोई दुर्घटना घटे तो अभी तो इंतजार करना होगा।
1: अंजना जी, जिस प्रकार की राजनीति देश में चल रही है, गारंटी तो आप किसी की नहीं ले सकते हैं। हर लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट है, एक तरीके से मजबूत है, और हमारे 37 के 37 सांसद और 109 के 109 विधायक एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम विचारधारा के साथ लड़ते हैं। हम मौका परस्त नहीं है कि कभी इधर चले जाए कभी उधर चले जाए, और ना हमको कोई प्रॉब्लम, हमारा एक लीडर है, हम एक लीडर के साथ में खड़े हुए हैं, हम नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ में हैं और अखिलेश यादव के साथ में खड़े हैं, और हमने 47 से लड़ाई शुरू करी है और 47 से होके 109 पे पहुंचे हैं और 5 लोकसभा से लेके हम 37 तक पहुंचे हैं अपने दम पे।
0: अभिषेक जल्दी से एक इनसाइट इस बात पर, क्योंकि सुबह से अब देखिए ओपी राजभर ने जो बोला उसके बाद से बवाल चल ही रहा था, वो गृहमंत्री तक का नाम उसमें खींच लाए, लेकिन सवाल है कि जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई 25-26 ऐसे हैं जो टूटने को तैयार हैं, हम तोड़ नहीं रहे, लेकिन वो खुद ही टूटेंगे। तो एक एक डिसमिसल भी इसमें दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई टूट रहे हैं और आ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं या अलग हो रहे हैं, एक डिसमिसल लगता है पूरे इशू का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खुद ही टूटेंगे।
2: बिल्कुल अंजना, देखिए इसमें दो बात है, एक तो जो वीडियो सुबह चला गृह मंत्री को एक पत्र देते हुए रामगोपाल यादव का, दरअसल वो पुराना वीडियो है, और चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था तो समाजवादी पार्टी ने बहुत हल्के में उसे लिया है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, और उन पर जितना अटैक करना था उतना अटैक हुआ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बोलने का मतलब होता है, हालांकि वो भी अखिलेश यादव को हमेशा घेरते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से संख्या बताई है उन्होंने 25-26 और जिस तरीके से अचानक से टीएमसी टूटी है, आप देखिए कि एक तो डिसमिसल उनका है कि हाँ 27 के पहले नहीं टूटेगी, ये बात भी बिल्कुल साफ है, और 27 में तब जब बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आती है तब कुछ होने की बात उन्होंने कही है। तो समाजवादी पार्टी के पास, ये समाजवादी पार्टी को ये तो जरूर लगता है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, अभी ये तमाम चीजें माहौल बनाने जैसी चीजें हैं, और ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी के भीतर की जो स्थिति है वैसी स्थिति नहीं है जैसी स्थिति शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो गई है। अब स्थिति ये जरूर है कि सपा लड़ती हुई लड़ेगी, अच्छे से लड़ेगी, ये दिख रही है, ऐसी स्थिति में तुरंत टूट जैसी चीज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बात को आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन जब इसी बात की तस्दीक केशव मौर्य कर रहे हैं तो बात में गंभीरता आती है। अंजना,
0: धन्यवाद आप सभी का। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्योंकि अब ये पुराना वीडियो, अपने दर्शकों को भी बता दें, ये गृहमंत्री का पुराना वीडियो है रामगोपाल यादव के साथ, और उसकी वजह से ये अटकलें बड़ी और तेज करने लगी। ओपी राजभर कुछ लिखने लगे, मुमकिन है कि वो किसी काम को लेकर कोई चर्चा दे रहे थे। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि खुद ही पार्टी टूटेगी, तोड़ने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात हम मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय चर्चा की करने वाले हैं क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग, ये द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता 16 महीने बाद आमने सामने बैठे हैं। यह मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात है, मुनीर से ट्रंप की बड़ी नजदीकियों के बाद पहली मुलाकात है, पश्चिम एशिया संकट के बाद यह पहली मुलाकात है, ट्रंप टैरिफ के बाद यह पहली मुलाकात है। आज की इस मुलाकात से पहले कल G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। मोदी ट्रंप मुलाकात, भारत की सीधी बात, यही है हल्ला बोल का आज का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे।

0: Hello, I'm the boss.
1: How are you?
2: भारत अमेरिका द्विपक्षीय बातचीत के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह छोटी सी मुलाकात बीते एक वर्ष में बदले कूटनीतिक माहौल की झलकी है। फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान मोदी और ट्रंप मिले तो जरूर, लेकिन क्या ये तस्वीरें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखा रही हैं? तस्वीरों में दिख रहा है कि ट्रंप ने मोदी की बांह पर हल्की सी थपकी दी, शायद इशारा कर रहे हों कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ तक के उनके बयान और एक्शन अब बीती बात है। लेकिन पीएम मोदी बेहद संयमित, नपे तुले और गरिमामयी अंदाज में दिखे। इसके बाद G7 सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला उसमें संदेश भी था और संकेत भी। प्रधानमंत्री के शब्द थे, आज विश्व के सामने संसाधनों का अभाव नहीं है, वास्तविक अभाव विश्वास का है और हमारी साझेदारियों का भविष्य इसी विश्वास को मजबूत करने पर टिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान अमेरिका के बीच होने जा रही डील के मद्देनजर शांति प्रयासों का समर्थन तो किया, लेकिन भारतीय नाविकों की मौत समेत युद्ध में हुई जानमाल की क्षति पर नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री के शब्द थे, इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों ने जानमाल का नुकसान झेला है, हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरिटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, भारत के कई सिविलियंस ने जान गंवाई, ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में मिलाने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। यहां यह बताना जरूरी है कि हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने 2 बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। अमेरिकी हमले का भारत ने विरोध किया, जबकि अमेरिका ने इसे हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड का उल्लंघन कहा। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच 16 महीनों बाद जब ट्रंप और मोदी द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं तो इसी बीच अमेरिका का एक और कदम रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमांड US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस US पैसिफिक कमांड कर दिया है, साथ ही भारत का गलत नक्शा भी इस्तेमाल किया है। बहरहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोदी ट्रंप के आमने सामने बैठने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। फरवरी में अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, क्या दोनों नेताओं की मुलाकात से फाइनल डील पर मुहर लगेगी? उधर ट्रंप के अलावा G7 सम्मेलन में मौजूद अन्य विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें गर्मजोशी भरी रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री साफ नजर आई है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हमारे साथ हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन जी सीनियर फेलो हैं ORF के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमित मकोड़े हमारे साथ अध्यक्ष ग्लोबल सिटीजन फोरम के अमेरिका से जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि सुधांशु जी आज ये समझना जरूरी है कि इस बैठक से भारत क्या उम्मीदें लगा सकता है। अमेरिका और भारत के रिश्ते आज एक बहुत सेंसिटिव मोड पर पहुंच चुके हैं और ऐसी स्थिति में टैरिफ के बाद हो, ट्रेड डील के फाइनलाइजेशन के मुद्दे पर हो, ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयानों को लेकर हो, इन सब के बाद ये पहली द्विपक्षीय बातचीत हो रही है।
3: देखिए, पिछली फरवरी में जो औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उसके बाद से अब तक इन 15 सालों में इतना कुछ हो चुका है, अगर इसके बाद भी किसी को समझ में ना आ रहा हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था तो उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते थे, मगर इन 15 सालों में मैं पूछना चाहता हूं, भारत और अमेरिका के ही रिश्ते संवेदनशील नहीं है? अमेरिका के किसके साथ रिश्ते संवेदनशील नहीं रह गए? वो नेटो जो अमेरिका का क्रिएशन था आज नेटो और अमेरिका के संबंध टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे अमेरिका ने कहा है 5% अपना जीडीपी खर्च करिए डिफेंस पे, हम नहीं देंगे। और ईरान के मुद्दे पे विश्व के इतिहास में 1949 अप्रैल में जब से नेटो बना उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुद्दे के ऊपर अमेरिका ने कहा, नेटो ने स्टैंड नहीं लिया। अभी दो दिन पहले इसराइल के राष्ट्रपति के बारे में, इसराइल के प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ उन्होंने बोला, वो जो कुछ पुतिन के बारे में बोल चुके हैं, वो जो कुछ शी जिनपिंग के बारे में बोल चुके हैं, मुझे लगता है इसके बाद कम से कम राजनीतिक दृष्टियों से इन चीज को देखकर उन्हें इंडिया स्पेसिफिक यानी भारत के संदर्भ में ही देखने का प्रयास करना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो या तो वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की रत्ती भर भी समझ नहीं रखता है। आज पूरे विश्व में एक नई प्रकार की चर्निंग चल रही है। हाँ, आज की परिस्थिति में जो प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य दिखाया जा रहा था उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये परस्पर विश्वास के ऊपर ही ये रिलेशन बना रह सकता है, और दूसरा उन्होंने भारतीय नाविकों के मारे जाने का भी वो विषय उठाया। मगर यहां एक और बात समझनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आपकी दृढ़ता पर ही रहती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जब टैरिफ लगाया था अमेरिका ने तो दो ही चीजों को टैरिफ से एग्जेम्प्ट करके रखा था, एक था इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हमारे स्मार्टफोन और एक था फार्मास्यूटिकल। वो क्यों रखा था? वो मोदी जी की दूरदृष्टि थी। 2014 में जब हम आए तो हमारी केवल दो फैक्ट्रियां थी मोबाइल हैंडसेट बनाने की, अब 340 हैं और अमेरिका में मेजर हमारे यहां से जाता, सारे आईफोन जो अमेरिकन मार्केट में बिकते हैं भारत के बने बिकते हैं, और अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था उनके ऊपर टैरिफ लगाना। आज 40% जो जेनेरिक मेडिसिन है अमेरिकन मार्केट में वो भारत से बन के जाती है, उस पर टैरिफ लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हमने इन 10 वर्षों में यदि यह दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो हम पता नहीं कौन सी स्थिति में आज आकर खड़े होते, जो पूर्व का समय था, जैसा कि उस जमाने में 2008 की न्यूक्लियर डील के समय ऐसा लगता था, और वो मैं सारी बातों के डिटेल में नहीं जाना चाहता राजनीतिक विषय में। आज के समय में सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूं, पूरा विश्व एक संवेदनशील दौर में गुजर रहा है और सिर्फ भारत के प्रति ही सबके मन में विश्वास है। मैं एक उदाहरण सिर्फ देखकर विषय को समाप्त करता हूं। एनवीडिया जो सबसे बड़ी कंपनी है उस पर पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि वो चाइना के मार्केट में नहीं बेचेगी, फिर चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे उनका हाथ मरोड़ा तो फिर अमेरिका ने छूट दे दी। अब चाइना ये कहता है अपनी कंपनियों से कि एज फार एज पॉसिबल एनवीडिया के चिप्स को मत प्रयोग करो, क्योंकि उसे संदेह होता है कि अमेरिका इसमें कुछ करके नहीं भेज रहा है। दूसरी तरफ फॉक्सकॉन जो सबसे बड़ी चिप बनाने की कंपनी, उसने भारत में अपना चाइना के बाहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है, और अमेरिका यह कहता है कि हमारे मार्केट में सिर्फ वही आईफोन बिकेंगे जो भारत में बने हुए होंगे, चाइना वाले नहीं, क्योंकि अमेरिका के मन में यह विश्वास है कि चीन उन आईफोन्स में कुछ करके ना भेज रहा हो। अतः दोनों में सभी में घनघोर अविश्वास है, और अगर विश्वास है तो सिर्फ भारत में, चूंकि हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो क्वाड के भी सदस्य हैं और ब्रिक्स के भी सदस्य हैं।
2: ठीक है, अब देखिए अजय जी, आज सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉलेटिलिटी है मुद्दों को लेकर, भाई ईरान पर भी उन्होंने कह दिया ना, ईरान पर कह रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं है समझौता, अगर मुझे डील पसंद नहीं आया तो मैं फिर ईरान पर बॉम्ब गिराऊंगा। अब ऐसी स्थिति में भारत जिस तरह से फूक फूक कर कदम उठा रहा है, बातचीत कर रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको?
1: जी, आज G7 के मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री गए हैं, तो सच बात है कि मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, पर ट्रंप को लेकर के जो बात है और जो मुद्दे हैं, भरोसा तो किसी को नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। दुर्भाग्य से भरोसा सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों को हो जाता है, दिक्कत वहीं होती है। वो तो बार बार जो अपना जो ऑफिशियल स्टैंड भी बदल जाते हैं, इस बात को लेकर के पूरे विश्व में वो खुद ही हंसी के पात्र बन गए हैं। पर सच है कि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत की जो व्यवहारिक समस्या है उस पर हमें चिंतन करना है, और जब अमेरिका के साथ हम बैठे बात करें ट्रंप के साथ, तो क्या वो हंसा, कितना पीठ थपथपाया, प्रधानमंत्री जी ने कितना हंसमुख माहौल बनाया, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो हमारे आर्थिक हित हैं, ऊर्जा सुरक्षा की जो आज परिस्थितियां हैं, जिस पर बार बार अमेरिका ने प्रभाव डालने का काम किया है, रोकने का काम किया है, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रश्न लगाने का काम किया है, उसके बारे में हमें जरूर सवाल जवाब और उस पर जरूर चिंतन और मंथन होना चाहिए। दूसरी बात, अभी कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा इस मीटिंग के दौरान कि हमारे नाविक और बहुत सारे लोगों की जान गई नहीं है प्रधानमंत्री जी, जान ली गई है अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, ये जान लेने और देने की बात नहीं है। तो इस पर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है, और ये हमारे आत्मसम्मान के लिए भी हमारे नागरिकों के सही बात है कि उसके कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के लिए भी भविष्य में जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी दिखा रहे हैं।
2: और अजय जी इसी पर चर्चा आगे लिए चलेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज सबके पास जाना है, बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन उससे पहले प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त एवीएन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या अपडेट है, कितनी देर में ये बैठक होने वाली है और क्या उसके बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, क्या एमईए की तरफ से ये ब्रीफिंग की जाएगी, क्या कुछ बता सकते हैं?
4: जरा सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, मेरे पीछे जो आप रूम देख रही हैं यही वो रूम है जहां पर मुलाकात होनी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इंतजार किया जा रहा है। इसी कमरे के अंदर वो मुलाकात होगी जिसका इंतजार 16 महीनों से किया जा रहा था, जो रिश्तों में रीसेट का बटन दबा सकती है। और यहां से बिल्कुल नजदीक के अंदर ही अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ताकतवर अधिकारी माने जाने वाली उनकी चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइज भी यहां पर मौजूद हैं। और जब हमने सवाल पूछा एम्बेसडर गोर से, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही बहुत खुश होते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मीटिंग एंड इन फैक्ट द मूड इज वेरी गुड, द मूड इज वेरी हाई, सो दिस इज व्हाट ही सेड जब हमने उनसे इस बारे में सवाल पूछा। निश्चित रूप से ब्रीफिंग तो उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि एक सवाल जवाब का सत्र जो है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मीडिया से बात भी करना चाहते हैं, वो सवाल जवाब की हम भी उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी यहां पर हैं और भारतीय मीडिया के साथ साथ अमेरिकन मीडिया यहां पर है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल होंगे। देखते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देते हैं, जो न केवल भारत और अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करेगा बल्कि एक वर्ड ऑफ रीअश्योरेंस भी होगा इस दोस्ती के रास्ते में। और यहां से जो आगे का रास्ता है वो किस तरीके से दोनों देश अपने रिश्तों के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे ट्रेड का मुद्दा हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे वेस्ट एशिया क्राइसिस का मुद्दा हो, या जो हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर भारत और अमेरिका की साझेदारी को लेकर जो कमिटमेंट थे उनको लेकर जब कुछ सवाल या निशान उठ रहे हैं, तो उन तमाम मुद्दों का क्या होगा, ये सारे जवाब जो है उसकी उम्मीद की जा रही है कि इस पीछे की कमरे के अंदर जो मीटिंग अब से कुछ देर बाद बस शुरू होनी है, हम लोग यहां सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बस इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही इंडिकेशन होगा हम लोग यहां से अंदर जाएंगे और यहां जो है वो मुलाकात होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की। करीब 45 मिनट का वक्त इसके लिए रखा गया है और माना जा रहा है कि इस 45 मिनट की मुलाकात के अंदर करीब 10 से 15 मिनट जो है वो मीडिया के साथ दोनों नेताओं के संवाद के भी होंगे।
2: बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हम जाएंगे अभी चर्चा। प्रणय, लगातार हम लोग इसी पर कर रहे हैं, आज तक लगातार कवरेज कर रहा है, चूंकि आपके जरिए हम लोगों को भी एक मौका मिल रहा है कि हम इस वक्त देखें कि G7 के जो एक वक्त पर सबसे ताकतवर गुट जिसे माना जाता था, G7 माना जाता है, कई सारे अभी भी बड़े देश इसमें है, हालांकि रशिया इससे बाहर है, लेकिन बावजूद इसके किस तरह का स्टैंड रहा। दो मुद्दों पर मैं एक रिएक्शन चाहती हूं। एक तो वो वीडियो बड़ी चर्चा हो रही है कि चाहे जब डोनाल्ड ट्रंप घुसे तो उन्होंने कहा आई एम द बॉस और बोल के वो भी हंसने लगे, बाकी भी हंसने लगे। नेटो का जो रुख रहा इस युद्ध में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एकदम अपने आप को अलग रखा, उसके बावजूद आई एम द बॉस बोलते हुए जब वो घुसते हैं तो सारे मुस्कुराते हुए ही दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े देश के नेता हो। वो उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा, और एक बार पूरा अगर वहां पर आप दिखा दें वहां का नजारा एवियन का।
4: अंजना, मैं कोशिश करता हूं, चूंकि यहां पर कुछ विजुअल रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन मेरे साथ ही आप अगर इन तस्वीरों के अंदर देख सकें तो ये जो पूरी तस्वीर है, यहां पर नीचे एक प्राइवेट एरिया है जहां पर तमाम अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो सारा मीडिया कंटिंजेंट है वो यहां पर मौजूद है, और यहां जो अधिकारी हैं वो बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं, चूंकि यहां पर बहुत सारी जो साइड मीटिंग्स हैं वो भी चल रही हैं, अंदर डेलीगेशन जो अलग अलग मीटिंग्स हैं वो भी चल रही होती हैं। और ये रॉयल एवियन पैलेस है, ये वो जगह है जहां पर एवियन में जो फ्रांस के आल्प्स में जिनेवा झील के किनारे बेहद खूबसूरत सेटिंग के अंदर ये मीटिंग हो रही है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये फिजा है यहाँ की अंजना, उसके साथ ही उतनी ही कठिन, उतनी ही मुश्किल आर्थिक इस समय दुनिया के हालात हैं। इस उनके जो विषय थे वो G7 की चर्चा की मेज के ऊपर सबसे डोमिनेटिंग इशू थे। वो तस्वीरें जरूर आपने देखी जिसके अंदर कुछ हंसी के कुछ हल्के फलके पल जो थे वो नेताओं के अंदर के बीच देखने को मिले, लेकिन मुद्दे गंभीर थे। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि दुनिया के सामने इस समय संसाधनों का नहीं बल्कि विश्वास का संकट है, इसके साथ ही जो सी फेयरर्स का मुद्दा उन्होंने उठाया, इसी तरीके से दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय कि वो जो दो लड़ाइयां चल रही हैं, पश्चिम एशिया का तनाव और रूस यूक्रेन की जंग, इनके दुष्प्रभावों से दुनिया की व्यापक आबादी को कैसे बचाया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजना, ये G7 दुनिया की 7 ताकतवर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, लेकिन उसके डायलॉग पार्टनर्स को यदि देखेंगे

0: कारण नंबर वन, प्रेसिडेंट ट्रंप जब अभी चाइना में गए थे, इतनी बड़ी बिजनेस डेलीगेशन ले गए थे जिसमें निविदिया का बॉस हुआंग था और अपना ये स्पेसएक्स का अपना एलन मस्क था। आउटकम क्या हुआ इस विजिट का? कुछ नहीं। कहने का मतलब है, ये मैंने एक बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि आज की तारीख में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है, चाहे एआई में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आज जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स आइसोलेटेड होता जा रहा है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, अभी उन्होंने जिस प्रकार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी लतार दिया है और उनका टेम्परेरी फ्रेंड है सिर्फ वासिम मुनीर, वो टेम्परेरी है, टैक्टिकल फ्रेंड, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेंड अगर यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए तो वो एक ही देश है, वो भारत, भारत है। भारत के पास आज एआई में 15-20% वर्कफोर्स तो इंडियंस की है, आपने देख लिया। तो इसलिए मैं भैया बोलना चाहूंगा कि ये मैंने ये चाइना की विजिट का इसलिए वो वर्णन किया था, कारण ये है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनकी जो सिलिकॉन इंडस्ट्री है, आप इसको देखिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या माइक्रोन हो या निविदा हो या गूगल हो, सब आज भारत में एआई के लिए, चाहे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो एक जॉइंट कोलैबोरेशन हो रहा है। दूसरा, डिफेंस में आपने देखिए हमने काफी चीजें खरीदी हैं। अब बायर सेलर रिलेशनशिप से अभी एक हो रहा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जीई F414 इंजन को अभी 80% शेयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो उसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब है,
1: लेकिन हमारा आयात तो बढ़ रहा है, हमारा आयात बढ़ रहा है लेकिन निर्यात नहीं बढ़ रहा ना जनरल दयाल।
2: देखिए नहीं, देखिए श्वेता, जो बड़बोलापन है और जो रिटोरिक्स है ना पिछले साल के, और जो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप को लेके, ये इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है।
1: एक बार ये 8 नंबर का जो ग्राफिक्स हमने बनाया वो दिखा दीजिए, भारत अमेरिका व्यापार का।
2: $132 billion लास्ट ईयर 2025, 10% इंक्रीज और 2024 आपका ट्रेड है लास्ट ईयर का, जब टैरिफ कर रहे थे। और मैं एक बताऊं, 2025 के अंदर आपने और अमेरिका ने अक्टूबर में वो 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन की है, विच इज शॉर्ट ऑफ नाटो। तो एक तरफ रखिए, देखिए ये जो आज की मीटिंग हो रही है, अगर हम सोचें इसमें कोई बड़ी डिक्लेरेशन होंगी तो मैं नहीं सोचता, ये एक थोड़ा सा एक मैं समझता हूं कि एक स्टेट हेड्स ऑफ दिस, हमारी जो कॉपरेशन है ना वो ऑन गोइंग कॉपरेशन है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो मेरा मानना यही आइस ब्रेकिंग है उस कम्युनिकेशन को, दो दोस्त भी अगर थोड़े दिन नहीं बात करें ना, फैमिली मेंबर्स भी नहीं करें, तो एक मीटिंग में आज ये उम्मीद कर लेना कि डिक्लेरेशन हो जाएंगी बड़े बड़ी, ऑनगोइंग फ्रेमवर्क है हमारी रिलेशनशिप का, तो उसमें एक एक माइलस्टोन है,
1: ब्रेकिंग भी इसे माना जा सकता है,
2: एक माइलस्टोन है, उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, ऐसी बातें नहीं होंगी जो हम सोच रहे हैं जिन पे हमारे डिफरेंसेस हैं। एक सिर्फ इसमें पूरी वो है, हमारा जो ये वॉर चल रही थी गल्फ में, इसको छोड़ के जो हमारे अभी जो हमारे नाविक्स के साथ हुआ ना, इसमें अमेरिकन्स को एक रिग्रेटफुल मैसेज, एक कंडोलेंस, एक सीरियस सेटबैक, एक अपोलोजिटिक मैसेज, एक भारत के लोगों को मैसेज की सॉरी हमसे भूल हुई है, एक उसकी आवश्यकता है, वरना मैं नहीं सोचता कि हम इंडिस्पेंसेबल रिलेशनशिप है बिकॉज 2024 में।
1: अशोक से जनार जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर, कितनी उम्मीदें रखें बेसिक?
3: जी जी, मेरे विचार से तो बहुत उम्मीदें रखनी चाहिए क्योंकि पिछले 1.5 साल में हमने देखा है काफी उथल पुथल हुई है हमारे संबंधों में। पिछले 25 सालों में अगर हम देखें अंजना, तो हमारे संबंध एकदम ऊंचाई की तरफ अग्रसर रहे, और राष्ट्रपति ट्रंप की जो पहली टेन्योर था 2017 से 2021 तक, उसमें तो बहुत ही हमने आगे ऊंचाई तक ले गए इसको, परंतु पिछले 1.5 साल में ऐसा नहीं हुआ। और कारण हम बहुत बात कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑफ सिंदूर हो, आसिम मुनीर हो, वगैरह वगैरह, परंतु मैं समझता हूं जो ये संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को भी मिल गया है, जो भारत उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं केवल उसको चाइना के संदर्भ में नहीं देखता हूं, मैं समझता हूं जो अगर भारत का जो मार्केट है, बाजार है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, भारत तो पूरे विश्व की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका मार्केट बहुत ज्यादा है। अभी जो आप बता रहे हैं अंजना,

0: उसमें हमारे वहां से वो कह रहे थे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा, मतलब भारत के एक्सपोर्ट ज्यादा है और भारत जो इम्पोर्ट करता है वो कम है, तो भारत अब उसको इम्पोर्ट ज्यादा करने लगा है, उसको थोड़ा बैलेंस करने लगा है। तो मेरे विचार से मैं देखता हूं आगे चलते हुए, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो ट्रेड हो, देखो $200 बिलियन हो गया है हमारे दोनों देशों के बीच का व्यापार जो है, इसको हमने $500 बिलियन तक ले जाना है, और
1: जी
0: इसीलिए ये ट्रेड डील के ऊपर मेरे विचार से बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, उसको आगे ले जाया जाएगा। अगर ये सामने से हट गया, उसके बाद डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, कितने क्षेत्र हैं जिसमें कि हम दोनों देश काम कर सकते हैं, काम करते रहे हैं, बीच में थोड़ी सी रुकावट आई है, परंतु मैं समझता हूँ इस मुलाकात से ये वाले इसको एक बल मिलेगा, एक बहुत ही इम्पेटस मिलेगा अपने दोनों देशों
1: जी
0: के संबंधों को, रिश्तों को आगे ले जाने के
1: ले
0: लिए।
1: जाए। सुशांत सरीन जी, आपका टेक इस बैठक पर और इस मीटिंग पर, और जरा पाकिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट लाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हालांकि जनरल मेस्टा ने ये मानते हैं कि वो टेम्पररी फ्रेंड है, लेकिन एक कोजीनेस जो बढ़ा मुनीर के साथ ट्रंप का।
2: अंजना, मेरा तो टेक बिल्कुल डिफरेंट है मेरे जितने सहयोगी आपके प्रोग्राम में है। मैं तो ये मानता हूं कि अमेरिका और भारत का रीसेट हो चुका है, और वो रीसेट एक नेगेटिव रीसेट है। हम अपने आप को जितना मर्जी बहलाते रहें, जितना अपने आप को डिल्यूट करते रहें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन ये रीसेट हो चुका है। और हमको ये भी रेकग्नाइज करना चाहिए कि डीहाइफनेट भी कर दिया है भारत और पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं और एक अपने सामरिक सहयोगी की तरह देख रहे हैं, जो भारत को नहीं देख रहे। और उसका एक अंदेशा आपको मिल चुका है, इंडो पैसिफिक कमांड को पैसिफिक कमांड दोबारा से कर दिया गया है। अब अगर हम अपने आप को बरगलाना चाहते हैं या बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम अक्सर कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर हम जरूर उनके साथ जो भी सहयोग कर सकते हैं हमारे को करना चाहिए, उसमें हमारी भी फायदा है, अमेरिका का भी फायदा है, लेकिन सामरिक और रक्षा के सौदों में अगर आप अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी दुनिया भर में, ये हमको वो बता चुके हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि जो कुछ अभी हो रहा है ये सिर्फ ट्रंप का फिनोमिना है, तो मेरे ख्याल ये भी हमारी खामख्याली है, ये ट्रंप का फिनोमिना नहीं है, ये वही चीज हो रही है जो पहले किसी एक अमरीकी ने बोला था कि अमरीका की दोस्ती जो है वो तो खतरनाक है, लेकिन अमरीका की जो दुश्मनी जो है वो खतरनाक है, अमरीका की दोस्ती घातक है, और ये अब हमारे लिए घातक साबित हो रही है। हमारे को ये बात समझ लेनी चाहिए।
1: और ये
2: दूसरी
1: वाला
2: चीज
1: कोर्ट
2: ये,
1: में जब जब बताती हूँ तो प्रमित मकोड़े जी बड़े परेशान हो जाते हैं अमेरिका से हमारे साथ।
2: एक
1: ठीक
2: मिनट
1: जी,
2: एक मिनट
1: कंप्लीट
2: एक
1: कीजिए
2: मिनट
1: कंप्लीट
2: एक
1: कीजिए
2: मिनट
1: जी
2: अंजना, एक
1: जी
2: मिनट अंजना, दो चीजें मैं
1: जल्दी।
2: और कहना चाहता हूँ। जो जनरल मेस्टन कह रहे थे ना कि जी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। जो जी के इंजन की वो 80% की गुहार लगा रहे हैं ना मेस्टन साहब, वो 80% ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो 20% वो नहीं दे रहे, वो एक्चुअली स्ट्रैटेजिक इशू है, वो नहीं देंगे आपको। तीसरी चीज ये कि अगर तो आप अमेरिका के नीचे लगना चाहते हैं, उनके पिट्ठू बनना चाहते हैं, जो यूरोप बन चुका है और उसके बावजूद उनको जूते पड़े हैं, तो आपकी मर्जी है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की हम लोग बातें बड़ी उछालते रहते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो आपके लिए एक वेकअप कॉल आ चुका है। अगर आप उठना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोते रहिए, हम हजारों साल से यही करते आए हैं, दोबारा से कर सकते हैं, हमारी मर्जी है।
1: उन्होंने कहा तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, फिर मैं प्रमित जी के पास जाऊंगी।
0: दो
1: छोटा सा दो
0: पॉइंट्स
1: लाइन
0: हैं,
1: का।
0: दो पॉइंट्स हैं। पहली बात, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। मेरे ख्याल भारत की आज सबसे बड़ी खूबी है कि हमारी डाइवर्सिटी, मतलब पूरे विश्व के साथ हमारे संबंध है, तो स्पेसिफिक अमेरिकन डोमिनेटेड संबंध नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो ओपन है। और दूसरा, जहां तक पैसिफिक कमांड का सवाल है, ये सबसे ओल्डेस्ट कमांड है, ये इसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हुआ है। पूरा इंडिया इसमें शामिल होता है, 36 कंट्रीज हैं, 52% ऑफ दी पूरा जो अर्थ सरफेस है वो इसके अंदर है, और सेंटकॉम शुरू होता है पाकिस्तान से लेफ्ट को। तो कहने का मतलब है उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं चेंज हुआ है, और सिर्फ नाम में जो पैसिफिक कमांड हमेशा रहा है, जब मैं अफगानिस्तान में भी था इसका नाम पैसिफिक कमांड था, ये जो इंडिया उसमें हमेशा रहेगा,
3: वो बस प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडिया इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था उससे
4: कोई देखो ऑन टेक्नोलॉजी आई थिंक ही
1: जल्दी से कमेंट आपसे ने प्लीज वेट प्रमित पकोड़े जी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि हमारा अच्छा चल रहा है लेकिन ये भारत को दिख रहा है कि इस वक्त स्थिति क्या है और भारत में जो लोग हैं उनका चश्मा लगता है कि एकदम साफ है आप लोग का चश्मा धुंधला तो नहीं हो रहा
2: देखिए धुंधला नहीं मैं यही कहूंगा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन सर्टन पॉकेट्स देयर इज सम रिसेंटमेंट बिटवीन इंडियंस एंड अमेरिकन्स एंड पर्टिकुलरली मागा ग्रुप की वजह से एक डिफरेंस थोड़ा बड़ा है बट बाय एंड लार्ज इंडियंस आर considered as force multipliers. We are not just the bridge. जिस जिस क्षेत्र में चाहे वो नासा से लेके हेल्थ केयर से लेके एकेडमिक से लेके आईटी से लेके सभी क्षेत्रों में इंडियंस का मान यहाँ बहुत ज्यादा है एंड दिस इज आज अमेरिका को इंडिया की ज्यादा जरूरत है बट अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी आज की तारीख में अफोर्डेबल सॉल्यूशन की परेशानी हो गई है एंड अमेरिका कैन ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल बट अफोर्डेबल सॉल्यूशन एक्सेसिबल सॉल्यूशन ओनली इंडियंस कैन ब्रिंग और इसकी वजह से
1: हम लौटेंगे इस खबर पर कवरेज हम लगातार कर रहे हैं मैंने कोशिश की कि सबसे एक एक रिएक्शन इस पर ले लिया जाए आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन बड़ी बात यही कि कुछ ही देर में ये बैठक बस शुरू होने वाली है कवरेज हमारी जारी है देखते रहिए आज

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
14: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar, mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabre saath tak, dekhte rahiye. आज तक।

क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूबीटी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की थी। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय यादव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वागचौरे और नागेश पाटिल अष्टीकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए। खबर है कि उद्धव के घर हुई मीटिंग से नदारद रहने वाले 5 सांसदों के बीच दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग हुई। ये वही 5 सांसद हैं जो आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। किरकिरी होने के बाद शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि जो गायब सांसद थे वो मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ठाकरे सिर्फ 1 सांसद से ही ऑनलाइन बात कर पाए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूबीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनंद फानंद में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहें तो कैसे करें। लेकिन शिंदे की शिवसेना का जोश हाई है, वो कह रही है कि उद्धव ठाकरे का सियासी वजूद ही खतरे में है, इसलिए शिवसेना यूबीटी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन शिवसेना यूबीटी बीजेपी से कह रही है कि वो छोटे दलों को तोड़ने वाली राजनीति से बाज आए। अब इंतजार इस बात का है कि उद्धव ठाकरे ने जिन 5 लापता सांसदों को 48 घंटे के भीतर मातोश्री में पेश होने को कहा है, क्या वो नेता उनकी शरण में जाएंगे या इन सभी सांसदों ने पाला बदलने का मूड बना लिया है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट पर जोरों की चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव के सांसदों में सेंध लगने का दावा है। खुद उद्धव ठाकरे पार्टी की बैठक में ये कहते सुने गए हैं कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा, तब तक धीरज रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब की शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का ये बयान रविवार को मुंबई में मातोश्री की बैठक में उनके सांसदों के रवैये के बीच आया। 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाउ वाजे और संजय दीना पाटिल मातोश्री पहुंचे थे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं आए, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक में जुड़े थे। नागेश पाटिल का उद्धव से फोन पर बात करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सांसदों की गैर मौजूदगी से उद्धव की चिंता उजागर हो रही है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि ऑपरेशन टाइगर का जवाब ऑपरेशन वुल्फ है, और आज कह रहे हैं कि सांसदों ने कहीं नहीं जाने की कसमें खाई है। मातोश्री पर रविवार की बैठक में जो 5 सांसद खुद मौजूद नहीं थे, वही 5 सांसद शनिवार यानी 13 जून को आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में भी मौजूद नहीं थे। इन्हीं सांसदों में से एक संजय देशमुख ने शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। वैसे तो संजय देशमुख की सफाई आई है, लेकिन प्रताप राव जाधव अब उद्धव के सांसदों की तुलना टीएमसी के बागियों से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे इस मसले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
1: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर न सिर्फ महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिराई थी, बल्कि शिवसेना की वो टूट आज महाराष्ट्र की राजनीति को बदल चुकी है। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों पर शुरू हुई चर्चा राजनीति का नया चैप्टर है। आज तक ब्यूरो।
2: अभी 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो संजय राउत दावा ऑपरेशन टाइगर की काउंटर स्ट्रेटेजी का कर रहे थे,
3: और अच्छी बातचीत हो गई, आगे की रणनीति तय हो गई।
2: लेकिन 2 दिन के सियासी घटनाक्रम में ही अब संजय राउत के सुर बदल गए।
3: कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए।
2: यूं तो संजय राउत ने हवाला टीएमसी में हुई बगावत का दिया, लेकिन ये बयान उद्धव की पार्टी को लेकर भी बड़ा संकेत दे रहा है। इससे भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे की वो अपील है जो उन्होंने पार्टी में टूट की अटकलों के बीच की। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहे उन्हें खुशी खुशी जाने दें। उद्धव ने कहा कि आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल जरूर आएगा। साथ ही पार्टी नेताओं से अपील करते हुए उद्धव ने ये भी कहा कि हमें धैर्य रखना होगा और इस दौर को सहना होगा। दरअसल टीएमसी में हुई बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की जोरों पर चर्चा है। इसी बीच रविवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। शिवसेना के कुल 9 सांसदों में 3 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और धारशिव सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक से दूर रहे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल पहुंचे, जबकि संजय देशमुख, नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक से जुड़े, जिसके बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया कि उद्धव की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच बीती शाम उद्धव ने बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों से स्थिति साफ करने की अपील की, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला कि शिवसेना यूबीटी में सब ठीक नहीं चल रहा। उधर इस हलचल के बीच शिवसेना नेताओं का हमला भी शुरू हो गया। दावा है कि उद्धव से सभी सांसद विधायक संतुष्ट नहीं हैं और उनमें से कुछ एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। पूरा घटनाक्रम उद्धव की चिंता बढ़ाने वाला है। पहले भी पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और अब एक बार फिर उद्धव के सामने संकट की घड़ी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच संजय राउत ऑपरेशन वुल्फ का दावा कर रहे थे, लेकिन हर दिन बीतने के साथ बात बिगड़ती जा रही है। उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। मुंबई से विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर आज तक।

क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूबीटी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय यादव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अष्टिकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूपीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनन फानन में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहें तो कैसे करें।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फ्रांस में महामुलाकात। मिलने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा वो शांत, कूल और जबरदस्त। ओपी राजभर के बाद अब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी में 25 से 26 सांसद टूटने को है तैयार, शिवपाल का पलटवार, फिर हराएंगे इन्हें। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में खड़गे की बढ़ सकती है मुसीबत, बीजेपी की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के जिम्मे जांच, राज्यसभा सभापति को सौंपेगी रिपोर्ट। नीटी एग्जाम से पहले आज कोटा में छात्रों से मिलेंगे राहुल गांधी, कहा छात्र पर नहीं माफिया पर वार करें प्रधानमंत्री मोदी, टेलीग्राम पर अस्थायी बैन से जताई नाराजगी।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और उसी पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली की तारीफ इसमें की है। उन्होंने कहा है कि वो संयमित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली की तारीफ इसमें की है। उन्होंने कहा है कि वो संयमित हैं, शांत हैं, मैं नहीं। मैं मोदी जैसा शांत नहीं हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा शांत, संयमित और जबरदस्त, और कहा मैं वैसा नहीं हूं, उन्हें देखिए। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भंडारी जुड़ जाएंगे, अन्य मेहमान भी बदल जाएंगे। मेजर जनरल मेसन हमारे साथ हैं, मेजर जनरल विभिशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं, इन दोनों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रणय दिखाई दीजिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल विभिशंबर दयाल, मेजर जनरल संजय मेसन हमारे साथ हैं, इनको भी दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अभियान शहर लिए चलते हैं फ्रांस में, जहां से प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खूबसूरत जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप शुरुआत खूबसूरत बातों से कर रहे हैं, लेकिन भारत की नजर इस बात पर होगी कि हमको इस बैठक से क्या हासिल होगा, जो भारत की चिंताएं हैं वो कितना एड्रेस होती है। प्रणय,
1: देखिए अंजना, आपने एवियों की खूबसूरती का जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरती इस समय थोड़ा भारी पड़ रही है। इंतजार की घड़ियों में ही नहीं, बल्कि तापमान का पारा भी इस समय काफी हाई है यहाँ पर, और इस धूप के बीच हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार वक्त बढ़ता जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिस टिप्पणी का आपने जिक्र किया, वर्किंग लंच था तमाम नेताओं का और उसमें हर नेता को अपना भाषण पढ़ना होता है, उसमें ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की इस अंदाज के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने बैठे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, वो धीर हैं, गंभीर हैं, शैली से काम करने वाले, मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और लगभग उसी अंदाज में उन्होंने आज एक बार फिर इस मुलाकात से पहले एक तरीके से टोन सेट कर दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उस गर्मजोशी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं जैसी गर्मजोशी पहले एक बार उनके रिश्तों में थी। बीच के कुछ तलखियां जो आई, या कहा जाए कि बीच का जो 16 महीने का दौर था उसको सेट असाइड करने की कोशिश है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए जब तक ये मुलाकात खत्म हो नहीं जाती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। हमें बताया गया है कि किसी भी क्षण ये दरवाजा खुल सकता है, हमें अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है, क्योंकि सबसे पहले डेलीगेशन आएंगे, उसके बाद दोनों नेता आएंगे और उसके बाद मीडिया की एंट्री होगी। ये इस तरीके का लाइनअप होगा। करीब 40 से 45 मिनट का वक्त रखा गया है इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले डेढ़ दिनों के अंदर दोनों कई बार मिले हैं, रूबरू हुए हैं, कभी हाथ मिलाए हैं, कभी थोड़ी गपशप हुई है, और जिस अंदाज के अंदर आइस ब्रेकिंग हुई है उससे तो कम से कम माना जाना चाहिए कि एक नए रीसेट की शुरुआत यहां से हो सकती है। लेकिन फिर भी हम किसी भी बात का आकलन जो है या उसका मूल्यांकन हमेशा जमीन के फैसलों से करते हैं, उनके निर्णयों से करते हैं, और फिलहाल भारत ये जानना चाहता है कि एक दोस्त के तौर पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, और अगर वो खड़ा है तो फिर वो अमेरिका के एक्शंस में भी नजर आना चाहिए।
0: बिल्कुल, प्रशंसा और बड़ाई तो प्रदीप भंडारी जी पहले भी हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह की टैरिफ की चोट उन्होंने भारत पर की डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जिन देशों पर, ब्राजील और भारत उसमें था। ऐसे से यहां से इस बर्फ पिघलेगी, आगे कितना बढ़ेंगे, कई मुद्दों पर भारत की नजर है, कैसे समझाएंगे आप और कितनी उम्मीद रियलिस्टिकली इस बैठक से करनी चाहिए?
2: देखिए अंजना जी, भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो पैरामाउंट है वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट है। तो भले वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, रशिया हो, किसी भी मुल्क के साथ में हम अपने रिलेशंस को इसी प्रिंसिपल के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। यूएस और इंडिया दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन क्रॉस हो चुका है, हमारे एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं। पर जहां जहां भारत को लगता है कि उसको अपनी बात रखनी चाहिए, तो आपने देखा G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के अंदर सी फेयर्स की जान नहीं जानी चाहिए। हमने स्पष्ट कहा कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए और साथ में कहा कि आज ग्लोबली ट्रस्ट डेफिसिट जो है आज वो सभी नेशंस सफर कर रहे हैं उससे, और ये निक्सन का एक पुराना लेक्सिकन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट की बात है क्योंकि दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं और अभी तक का वातावरण काफी सही है, पर जैसे मैंने कहा कि हमको आउटकम्स का इंतजार करना चाहिए और आउटकम्स भारत हमेशा ये देखता है कि उसके हित में क्या है और दोनों नेशंस भारत के हित को आगे कैसे ले जा सके, और ये लाजमी है कि यूएस से देखेगा कि उसका हित कैसे है। परंतु ये हमें समझना चाहिए कि अगर भारत के रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में इज नॉट इन आइसोलेशन, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, और ग्लोबल सिनेरियो में भारत का जो परिप्रेक्ष्य है वो यूएस के साथ रिश्तों के हिसाब से नहीं शेप होता है। तो हम साथ में रशिया के साथ में भी हमारी एनर्जी डील करेंगे, हम साथ में अगर हमको फ्रांस के साथ में ग्लोबल इनोवेशन डायलॉग भी करना है वो भी करेंगे। तो इट यूएस एंड इंडिया बोथ आर लीडिंग पावर्स एंड इंडिया विल अप्रोच दिस डायलॉग विद अ सिमिलर अप्रोच।
0: ठीक है आलोक जी, विपक्ष के तौर पर आप कितनी उम्मीदें इससे लगाए बैठे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा हमने पहले भी इस बात को लेकर चर्चा की है कि भाई दोस्ती अगर है भी तो भारत को उससे क्या हासिल, और आज इस मोड़ पर ये भारत और अमेरिका का रिश्ता आ गया है जहां चैलेंज बहुत बड़ा है। हमारे साथ दो अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सुरेश गोयल जी जुड़ गए जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है एमईए के, और विभूति झा जी जो कि फॉर्मर रिपब्लिकन कैंडिडेट भी रह चुके हैं और इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट भी हैं, वहां से पत्रकार भी हैं, वो तमाम खबरें हम तक पहुंचाते हैं, तो उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले आलोक जी जल्दी से एक टिप्पणी आपसे।
3: देखिए मैं तो पहला शब्द यही कहूंगा कि काहे की दोस्ती है भाई, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी हमने देखा था, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक दिन में मोदी जी का कैरियर समाप्त कर सकता हूं, क्या ये बात कही थी कि नहीं कही थी? अगर वो अच्छा मानते हैं तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए? हमारे तीन नागरिक मार दिए और उसके बाद इनके जो सेक्रेटरी हैं रूबियो साहब वो और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि हमारी जो कानून है उसको मानना पड़ेगा, हमारे दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा। तो ऐसी काहे की दोस्ती है भाई कि हमारे नागरिकों को हथकड़ियों और बेड़ियां लगा के भेज दिया नमस्ते मोदी और नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के बाद, H-1B वीजा कम कर दिया, 500% टैरिफ लगाने की धमकी देता है अमेरिका कि अगर रशिया से तेल लोगे तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ का फर्रा हमारे हाथ में पकड़ा दिया, रशिया से तेल नहीं खरोगे देंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, ये काहे की दोस्ती है अंजना जी? ये फोटो ऑप नहीं होना चाहिए। मुझे तो आज बड़ाई की जगह ऐसा लग रहा है जैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी का कि भाई मैं आपका एक दिन में कैरियर समाप्त कर सकता हूं। हम तो उम्मीद करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 150 करोड़ लोगों को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अडानी को या एपस्टीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप दबिए मत, आप डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज बात हो रही है, पिछले 10 दिन का घटनाक्रम है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी ने जो अपनी ताकत दिखानी चाहिए हमारे देश की वो नहीं दिखाई है। मोदी जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं
0: छोटा सा रिएक्शन। ठीक है प्रदीप जी, तब छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास।
2: छोटा सा बटल जी, देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को हर चीज यही लगता है कि सरेंडर सरेंडर, क्योंकि 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर में उसने 12% ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया था, और कॉन्डोलिसा राइस के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी थी एज पर पी चिदम्बरम। तो उनको लगता है कि ये अमरीका के सामने या किसी भी मुल्क के सामने झुक गए तो हर व्यक्ति झुकेगा, ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेसी कोई सड़क के मोहल्ले की दोस्ती या मोहल्ले की दुश्मनी जैसे नहीं होती जैसे कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य आजकल हो गया है। डिप्लोमेसी मेच्योर होती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसमें डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हो गए, हम लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, उस हिसाब से चीजें तय होती है। और इसीलिए डिप्लोमेसी को एनालिसिस करने के लिए एक मैच्योर ब्रेन चाहिए रहता है, जो आज कांग्रेस का नहीं है। आप अगर किसी के कहने नहीं कहने से डिप्लोमेसी को सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो फिर आउटकम स्टेटमेंट्स के कोई मैटर नहीं करते। आज रियलिटी क्या है? आज रियलिटी यह है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से अपने पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी आगे लेके जा रहा है। रशिया के साथ में हमारे एनर्जी टाई सबसे हाईएस्ट थे, कांग्रेस ने तो इंपोर्ट तक नहीं किया था, 2022 से तो इंपोर्ट करना शुरू हुआ। साथ में यूएस के साथ भी हमारा $200 बिलियन ट्रेडर, जब हमारे भारतीय सेलर्स की बात आती है तो भले वो G7 हो गया या भले कोई भी दूसरा मंच हो गया, हम जाके कहते हैं कि जो गलत है वी रेज एज स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन एज पॉसिबल, पर ये सोचेंगे कि सड़क के गुंडे जैसे आ जाएंगे, दो लोग लड़ लेंगे, मोहल्ले के अंदर दोस्ती हो जाएगी, ऐसे नहीं होता डिप्लोमेसी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरेंडर किया है देश और हर
0: डिप्लोमेसी। छोटा सा कमेंट, क्योंकि फिर ये ना बीजेपी कांग्रेस की तूतू में बनकर रह जाएगी। ठीक है, अन्य मेहमानों को भी दिखा दीजिए, रोहित इसके बाद में आपके पास भी आ रहे हैं। छोटा सा कमेंट डालो, छोटा सा।
3: अंजना जी, ना तो मैंने बीजेपी का नाम लिया था, मैंने तो कहा आप मजबूती से बात रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये वही मोदी जी थे जो इटली के जो लोगों ने हमारे दो मछुआरे मार दिए थे तो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे। आज क्या हो गया? देवयानी खोबरागड़े के मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड था? हम तो मजबूती से खड़े थे, लेकिन तीन हमारे नागरिक मारे गए और उसके बाद ये सरकार मुंह पर पेट टेप लगाकर बैठी है तो विपक्ष का चुपचाप बैठेगा? आप विपक्ष से लड़ने के लिए बैठे हैं क्या? अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी आपने बिल्कुल सरेंडर कर रखी है। आप चार दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो दलाली कर रहा है, फिर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं हम भी करेंगे यही काम। अरे भाई, आपसे अच्छी तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चला रहा है अपनी। आज वो रशिया के भी नजदीक है, चाइना के भी नजदीक है, वो इसराइल के भी नजदीक है, वो यूएस के भी नजदीक है, और हम 50% का टैरिफ का फर्रा लेकर बैठे और फिर कह रहे हैं साहब विपक्ष में दिमाग नहीं है। अरे दिमाग तो सारा मोदी जी में है।
0: ये मेलोडी कमेंट ले लेते हैं। विभूति जी, आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले एक बार रोहित के पास चलते हैं। रोहित, आज सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि देखिए, एक डोमेस्टिक भी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो इस मुद्दे पर बहुत बड़ी हो गई है। वो उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि एक वक्त पर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की जो दोस्ती है वो इस तरह से प्रोजेक्ट हुई जैसा लगा कि बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ट्रंप 2.0 में ट्रंप का जो रवैया था, जो रुख था, वो पूरी तरह से बदला हुआ था। ऐसे में आज क्या आइस ब्रेक होता हुआ आप देख रहे हैं इससे, और जो रीसेट बटन रिश्तों की हो रही है, क्या ही जा रही है, क्या वो होगा?
4: देखिए, बिल्कुल अंजना, अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि रीसेट बटन जो है वो हिट किया जाए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। आप एक बात आप कह सकते हैं कि हम कितनी भी चीजें कहें, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जो है हमेशा प्रेस करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक कॉमेंट दिया है जिसमें उन्होंने प्रेस किया है। तो मुझे लगता है रीसेट बटन दबाने की पूरी कोशिश है अमेरिका की तरफ से। प्रधानमंत्री को एक न्यौता मिलेगा आज अमेरिका में आने का, G20 समिट में तो आने ही वाले, एक फुल बायलैटरल मीटिंग होने का, और साथ ही साथ आई थिंक एक मौका होगा कि जो भी मन मुटाव है उसको प्रधानमंत्री मोदी सामने रखेंगे इस छोटी सी मीटिंग में। अगेन, बहुत छोटी सी मीटिंग होने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी तीन हफ्ते पहले सेक्रेटरी रूबियो भारत में थे, उसके बाद ये बायलैटरल मीटिंग हो रही है, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से अमेरिका आएंगे, और रिश्तों में जो सुधार अमेरिका चाहता है, करने की कोशिश कर रहा है, उस पर अमेरिका पूरी तरह कमिटेड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखेंगे रिश्ते जो है फिर से पटरी पे आएंगे। अंजना,
0: चलिए इसी की उम्मीद है। विभूति जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको?
5: मैं इस तरह से देख रहा हूं अंजना जी कि देखिए, संबंध जो मोदी जी ने शब्द का प्रयोग किया था, संबंध, रिलेशनशिप,
0: विश्वास,
5: तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि हम संबंधी हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा सा है मेरे विचार से कि ये भारत और अमेरिका का जो सदियों से चर्चा चल रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेचुरल एलाइज, मैं उसको मजाकिया, मैं उसको एक शब्दों का प्रयोग देखता हूं, लेकिन दोनों ही देशों में कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट एंड कन्वर्जेंस ऑफ प्रोमिसेस एंड पर्पस इज ह्यूज, वो बहुत बड़ा है। तो हालांकि दोनों ही के पर्सनैलिटी अलग है, जो ट्रंप कहते हैं कि मैं मोदी जैसा नहीं हूं, उसी में एक बात आती है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ये दोनों एक दूसरे को लीडरशिप के नाम पे अगर आप देखें तो दुनिया में अगर किसी लीडर का बोलबाला है तो वो नरेंद्र मोदी जी का है उनके अपने गुणों के कारण, और ट्रंप का है अपने गुणों और अवगुणों दोनों के कारण। तो आप इस समस्या इस बात को मानिए कि ये जो है दोनों ही खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल, इन दोनों के दुश्मन वही है, दोनों की प्राथमिकता भी वही है। तो अगर इस बात को वो फिर से, मनमुटाव तो होता ही रहता है, कभी कभी हमारी चीजें बातें होती हैं तो जैसे कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में भी हमेशा 24 घंटे 7 दिन तक हमेशा हंसी नहीं चलती, मनमुटाव होता है, इसका मतलब है कि हम छोड़ के भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखा, दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, मतभेद होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। तो उस हिसाब से लेकिन हमारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट and convergence of promises and purposes is very huge and they cannot ignore that
0: सुरेश गोयल जी, उसके बाद मैं आप दोनों के पास फॉरन आ रही हूँ। सुरेश गोयल जी, देखिए उन्होंने एक फ्रेज यूज किया जो opposite poles attract, लेकिन यहाँ तो ट्रंप जी का अट्रैक्शन मुनीर के साथ भी हो जाता है। चैलेंज तो ये है ना उनकी, ये अनप्रडिक्टेबिलिटी।
6: अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर अपोजिट पोल्स की बात कर रहे हैं तो मेरे को शर्म आएगी अगर प्रधानमंत्री मोदी को मुनीर के बराबर में खड़ा किया जाए, बहुत शर्म आएगी। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि बड़े धीर है, बड़े स्टडी है एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कहा मैं सच में कहूं तो उसमें उनको एक मजाक की मेरे को बू आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, आप बेशक रहिए धीर, आप बड़े स्टेबल रहिए, लेकिन मैं जो मेरे मन में करूंगा तुम क्या करोगे बताओ मेरा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस बाय द स्टेटमेंट। दूसरी चीज, अभी अगर देखा जाए तो जो कल ही जो इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके दोबारा पैसिफिक कमांड कर दिया है, मेरी समझ में वो खाली यही नहीं है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, मेरी समझ में स्ट्रेटेजिकली एक पूरा रिव्यू किया गया है, क्योंकि सेंटकॉम जो इंडियन ओशन है अफ्रीका के बराबर में, सेंटकॉम उस एरिया को देखता है, पैसिफिक लुक्स आफ्टर आसियान, चाइना एंड जापान का एरिया, इंडो पैसिफिक करने के बाद में जो बे और बंगाल का एरिया था, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया वगैरह, वो फोकस में आए थे, वो फोकस मेरे ख्याल है अब निकल गया है और यूएसए के लिए उसकी अब कोई कीमत नहीं है।
0: आप कैसे देख रहे हैं सर? सर सेकंड राउंड में आऊंगी तो लंबी, क्योंकि दो तीन लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और वक्त जरा कम है। जी जी जनरल मेस्टन, आप कैसे देख रहे हैं, और जो उन्होंने इंडो पैसिफिक से पैसिफिक कर दिया है उसको लेकर भी बात, क्योंकि अब ये आज बातचीत होनी है और उसके पहले ऐसा डिसीजन।
7: देखिए, जहां तक रीनेमिंग ऑफ इंडो पैसिफिक से वापस पैसिफिक कमांड, मेरे को लगता है उसका कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। टोटल 36 कंट्रीज हैं इस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में और 52% ऑफ द अर्थ सरफेस है, सबसे बड़ी कमांड है पैसिफिक कमांड, तो उसको सिर्फ रीनेमिंग से, जैसे वॉर डिपार्टमेंट वो उन्होंने रीनेम कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस एक एग्रेसिवनेस दिखाई थी कि वॉर वर्ड कर दिया है, तो मेरे को लगता है उस पर कोई खास नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इंडो यूनाइटेड स्टेट्स जो रिलेशंस हैं उसमें हर लीडर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी। देखिए, वो एक डायरेक्शन और इम्पेटस देने की संभावना वहीं से होती है, अगर लीडरशिप चाहे तो वो सब शेप कर सकते हैं। तो आज एक इनिशियल ब्रेक थ्रू मैं बोलूंगा, या एक मैं बोलूंगा मिलिट्री भाषा में मेंटेन, ये मोमेंटम शुरू हो जाएगा, इसके बाद तो और भी कई मीटिंग्स होगी, G20 में हो सकती है, यूएन जनरल असेंबली में हो सकती है, फिर बायलेटरल मीटिंग भी हो सकती है।
0: जनरल दयाल, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। उन्होंने तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को भी गल्फ ऑफ अमेरिका बोला कि बोलेंगे, तो मागा वाला जो उनका है।
8: अंजना देखिए, लास्ट ईयर अमेरिका न्यू अपनी पॉलिसी लेके आया, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जिसको वो, और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और बाकी हमारा की इंटरेस्ट नहीं है। तो इस पे मत जाइए। एक बेसिक सी बात मैं कहूंगा, आज हम पुराने माइंडसेट से रिलेशंस को देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आज का दिन व्हाट्सएप और उसकी तरह है, और रिलेशंस भी ऐसे ही हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म
0: कंट्रीज इन्वॉल्व्ड है,
8: वो खत्म होगी
0: या यहां पे 50% टैरिफ लग जाने की संभावना है,
8: तो जैसे
0: बहुत हाई है।
8: देखिए, पुराने दिनों में जब अगर 50% लगाता
0: लॉटरी, यही से चर्चा आगे ले चलेंगे। फॉरन लॉटरी कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार देश के हीरो की पहली पसंद।
5: इसमें फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
6: इन एसोसिएशन विद
7: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
8: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
9: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
10: भाव भगवान है सुनने में बड़ा अच्छा लगा। लाइन पॉपुलर होगी भाई भगवान ही भगवान है। भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान।
11: ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था?
10: Y2K की तेजी में लगा था कि मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लट पड़ता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। देखिए बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा और बूढ़े हार्ड जो है ना बेयर मार्केट में कमाएगा।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक। देखते रहिए आज तक।

0: सिर्फ वक्त का इंतजार है। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: वो संख्या बल जिसका एक ट्रेलर पश्चिम बंगाल से नजर आ चुका है, जहां से 20 सांसद टीएमसी के बागी हो चुके हैं, एनडीए को समर्थन कर चुके हैं। वो संख्या बल जिसका दूसरा ट्रेलर महाराष्ट्र में दिखने लगा है, उद्धव ठाकरे के खेमे में बगावत की बू आने लगी है। वो संख्या बल जिसके दम पर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में अब महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल न सिर्फ सरकार पेश कर सकती है बल्कि पास भी करा सकती है। ये बात प्रधानमंत्री को तब कहनी पड़ी जब 3 दिन के विशेष सत्र में अप्रैल के महीने में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल और परिसीमन बिल पास नहीं करा पाई, क्योंकि तब विपक्ष एकजुट था। 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, विरोध में 230। मोदी सरकार को तब लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला था। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चलें तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां 2/3 बहुमत 360 होता है, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसदों तक पहुंचा, यानी 2/3 बहुमत से 62 सांसद कम।
2: दरअसल इस संशोधन को पारित करने के लिए भाजपा को 2/3 संख्या बल की जरूरत थी। जैसे ही ये संशोधन गिरा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि भले ही कल हमारे पास संख्या बल ना हो, लेकिन हमारा आत्मबल मजबूत है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब भाजपा की नजर आने वाले मानसून सत्र पर है और किसी भी तरीके से वो संख्या को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है।
1: वो जोर कलकत्ता से दिल्ली तक दिख रहा है, जब पर्यावरण मंत्री के घर बैठक से लोकसभा स्पीकर के पास तक ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद पहुंच गए, एनसीपीआई नाम की पार्टी में विलय दिखाया और एनडीए को समर्थन का ऐलान कर दिया। तो फिर 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए के 298 वाले समर्थन में 20 सांसद जुड़ जाने का मतलब है कि ये संख्या 318 हो जाती है। अब चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो सकते हैं। अभी उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन ना लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। उद्धव ठाकरे की बैठक में दावा है 5 सांसद मौजूद नहीं थे। अगर उद्धव के 6 सांसद बागी हुए तो एनडीए का नंबर 324 तक जा सकता है। उद्धव ठाकरे के सांसद टूटे तो भी 2/3 बहुमत से एनडीए लोकसभा में दूर दिखता है। और तब दावा है कि तमिलनाडु में जो राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर टीवीके से हाथ मिलाया, तो डीएमके से हाथ मिले न मिले साथ जरूर एनडीए पाना चाहता है, जो डीएमके संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की जगह मांग चुकी है। जिस डीएमके की नाराजगी का अंदाजा राहुल गांधी भांप चुके हैं, इंडिया ब्लॉक की बैठक में कह चुके हैं कि डीएमके को मनाया जाएगा, लेकिन क्या स्टालिन मानेंगे? जिन्हें बीजेपी ये बताना चाहेगी कि देखो, अगर आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो आबादी कंट्रोल करने वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु का नुकसान होगा, लेकिन 50% सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले से तमिलनाडु का शुभ लाभ है। और तब क्या 298 प्लस टीएमसी के बागी 20 प्लस उद्धव के अगर 6 बागी हुए और डीएमके के 22 सांसदों का साथ मिला तो ये नंबर एनडीए के लिए 346 तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी 540 की लोकसभा में 2/3 नंबर 360 से ये संख्या 14 कम है। दावा इसके बाद ये भी है कि जेएमएम के 3 समेत कुछ अन्य छोटे दल के सांसद या तो समर्थन दे सकते हैं या वोटिंग में गैर हाजिर रह सकते हैं, तो इस रणनीति से एनडीए 2/3 वाले नंबर तक पहुंच सकता है।
2: सत्ता पक्ष की ये कवायद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने प्रयासों में सफल हो जाती है और महिला संशोधन विधेयक वाकई में पारित होता है तो न सिर्फ इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में असर पड़ेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा भी इससे बदल सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

0: लगातार इस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्या किस तरह से, मतलब जो वहां पर सरकार है और जो सरकार में लोग हैं, आप लंबे वक्त से चुकी वहां पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं?
1: देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं अंजना, वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं भारत के साथ. दोनों पार्टी, आई थिंक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, पिछले करीब 25 सालों से इन्वेस्टेड है भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने को. ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं 12-14 महीने का जो समय रहा है पिछले 1.5 साल में, वो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो पॉइंट रहा है भारत और अमेरिका के रिश्तों में. लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो कोशिश पूरी की जा रही है. एम्बेसडर गौर ने काफी कोशिश की है, ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट हो चुकी है, ट्रेड डील हो सकती है जुलाई में हो जाए. साथ ही साथ सेक्रेटरी मार्को रूबियो भारत में थे, और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम है और जिस तरह का उनका डिमीनर रहा है, उस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जो है काफी करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी की. और तीसरी बड़ी बात इसमें यह है अंजना कि देखिए, ये एक एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द वे जाके की है, और मुझे कहना चाहिए यू नो आउट ऑफ द बॉक्स की है, जो शायद सही नहीं है. हम किसी भी यूरोपियन देश को देख ले, नेटो को देख ले, बाकी जो एलाइज है ट्रेडिशनल एलाइज, हम कनाडा यूके को देख ले, उनके साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप की बनी नहीं है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 2-2.5 साल है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वेट एंड वॉच है हर किसी के लिए. लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और अगर इसके बाद वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, मुझे लगता है कि वो उतना ही इन्वेस्टेड होगा भारत के साथ रिश्ते बनाने में जितने इसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन थे. वो उन सब के साथ मिलकर ही काम करने की उनकी भी कोशिश होगी अंजना.
0: बिल्कुल जनरल मैसन, टैरिफ से लेकर ट्रेड डील तक, अब देखिए अगर इमोशनली हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार कई बार ऐसा रहा है जिसमें टैरिफ इतना लगा देंगे, भारत के खिलाफ ये कर देंगे, इंडियंस जो वहां पर हैं, हेल होल जैसा शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो कि कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन जब वैश्विक नीतियों को तय किया जाता है, जब वैश्विक देशों के बीच का संतुलन होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे हित कितने महत्वपूर्ण है. आज ये नेटो के जितने देश हैं, मतलब आप सोचिए मैक्रॉन से लेकर किसके, आप तो नेतन्याहू के भी खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन सब वहां पर मेजबानी कर रहे हैं उनकी. तो एक अमेरिका की जो ताकत है इस विश्व में, भारतीय इतनी भारी तादाद में वहां पर रहते हैं, बहुत सारे इंडियन कंसर्न्स हैं जिसको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा.
2: बिल्कुल, आपने भारतीय का बोला. पहले बात तो यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ख्याल 4.5 मिलियन तो भारतीय हैं, ऑलमोस्ट 45 लाख. तो इससे क्या साबित होता है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया अंजना. देखिए, इसमें यह चीज देखनी है कि भारत जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. कारण यह है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपनी नीतियां अपनाई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेटो से आइसोलेट कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी कंडम कर दिया है, चीन के साथ, ये पुतिन के साथ, सबके साथ, तो अभी बचा कौन है? मेरे ख्याल उनको भी पता है, और उनकी कैबिनेट मेंबर्स ने उनको अभी बताया होगा कि भारत इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल यह है कि ये जितने भी, जैसे G7 हुआ है, जरूरी नहीं है बायलेटरल मीटिंग हो, ये की गई है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है. इसका मतलब अगर वो चाहते तो बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये मीटिंग नहीं करेंगे, तो ये हुई है. ये बहुत अच्छा संकेत जाता है, और ये संकेत ये है कि ये एक इनिशियल ब्रेक थ्रू रहेगा. और जैसे मैंने पहले भी बताया था, लीडर्स डिफाइन द पाथ. ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो डिफेंस के तौर पे भी 2035 तक रिन्यू हो चुकी है 10 इयर्स की. उस लिहाज से मेरे को लगता है ये एक फॉरवर्ड मोमेंटम रहेगा. और देखिए, सबको पता है कि हर देश के परमानेंट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं,
0: और वो उसी को आगे रखेंगे. हाँ, उसी को आगे रखेंगे. जल्दी से प्रदीप जी, अब आपके पास मैं आना चाहती हूँ. देखिए, दो बातें हैं. एक तो पिछली बैठक की आपने बात, इसके बाद आलोक जी आ रही हूँ. पिछली बैठक की आपने बात की तो मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त कैनेडा से प्रधानमंत्री इधर लौट रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही जाना पड़ा था. डोनाल्ड ट्रंप, ये जानकारी आई कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री अमेरिका उनसे मिलते हुए आए, और प्रधानमंत्री ने ओडिशा में इसका जिक्र किया बाकायदा कि भाई वो बुला रहे थे लेकिन मेरी आपसे मुलाकात तय थी तो मैं यहां आ गया. आज जब हम ये देख रहे हैं प्रशंसा की बातें, तो दो नजरिया है उसको देखने का. जैसे गोयल साहब को लग रहा है कि ये सार्कैज़म है जब वो कह रहे हैं शांत संयमित, और एक दूसरा नजरिया ये भी है कि जो लोग इसको मान रहे हैं, रोहित जैसा बता रहे हैं कि ये प्रशंसा उनको दिखाई दे रही है. एक ये भी तरीका है कि भाई अभी तक तो जो मैं बोलता रहा, उठपटांग बोलता रहा, तो कई बार मैं इतना शांत और संयमित नहीं हूं, उसको जस्टिफाई भी वो कर रहे हैं. आप मुझे जाहिर तौर पर इसको प्रशंसा की तरफ देखेंगे, लेकिन फिर बात वहीं पर आती है कि प्रशंसा से आगे क्या, ट्रेड डील को लेकर भारत को क्या, ये जो 3 नाविकों की हत्या की गई है इसको लेकर क्या, ये रियल कंसर्न्स हैं प्रदीप जी.

0: अंजना जी, ये रियल कंसर्न्स और रियल कंसर्न्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 में विद इन प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट उठाए, और इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी सेक्रेटरी रूबियो के साथ में कॉल में स्पष्ट किया है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को पूरी तरीके से बखूबी तरीके से रखा है। देखिए, एक चीज समझिए अंजना जी, पूरे G7 नेशंस के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन दी ओनली लीडर हु हैज बीन कॉन्स्टेंट। हर दूसरे नेशन के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है, इट इज आइदर सीन चेंजेस ट्वाइस, थ्राइस और फोर टाइम्स। सो अब हर G7 नेशन का जो इस वक्त प्रीमियर है वो जानता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, बी उनका एक टाइम टेस्टेड मेच्योर एक्सपीरियंस है ग्लोबल डिप्लोमेसी में हैंडल करने का, और आज ये सब नेशंस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत नो लॉन्गर कैन बी हाइफनेटेड विद पाकिस्तान। इट इज अ मेजर इकोनॉमी, इट्स अ 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसीलिए सब लोग भारत के साथ में या तो लॉन्ग टर्म डिफेंस डील करना चाहते हैं। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी भारत टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग नेशंस पे पहुंच चुका है। तो ये 2012
1: वेल थैंक यू वेरी मच, वी हैड सम ग्रेट मीटिंग्स इन फ्रांस, group of people used to be the G8, now it's G7. I don't know if that was a good deal or not, but it's a G7, and we have a G2 coming up, and then we have a G20 coming up. You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything, and Prime Minister's building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that, jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you.
2: Thank you.
3: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
4: मिस्टर प्रेसिडेंट, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू हियर इन एविया। वी हैड एन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग इन वॉशिंगटन लास्ट ईयर, एंड सिंस देन वी हैव गिवन न्यू स्पीड एंड न्यू एनर्जी टू आवर रिलेशंस, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ नंबर ऑफ एरियाज।
3: और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
4: And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year.
3: Excellency, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।
4: Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia.
3: आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है, और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी।
4: थैंक्स टू योर एफर्ट्स मिस्टर प्रेसिडेंट, न्यू होप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन हैज बीन रिकिंडल्ड, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस विल लीड टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग पीस इन द रीजन।
3: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
4: मिस्टर प्रेसिडेंट, यू एंड आई अग्री दैट कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन इज वाइटल फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी।
3: एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए, और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए।
4: India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that.
3: Excellency, aap jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sewayein de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain, aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai.
4: Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us.
3: Excellency, samjhote ke liye shanti ke prayason mein aapne bharpoor prayas kiya hai, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
4: Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement.
3: Excellency, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं.
4: Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia.
3: Thank you
1: very much.
3: Thank you.
1: Thank you. Good friends, thank you. Any questions?
2: Mr. President, we just heard the Prime Minister praise your efforts, the peace efforts in the Middle
1: thank
2: East.
1: You.
2: Do you think you can carry the momentum from the Iran deal over to securing an end to the war in Ukraine? And can you tell us about your conversations with President Zelensky here at the G7?
1: Well, I had very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and it makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin.
5: Will you let them build American missiles?
1: They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it. Steve,
6: how close are you to a U.S.-India trade deal?
1: Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say, he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember?
3: And
1: the stadium was full.
3: Namaste Trump.
1: Right, remember that?
7: He did Namaste Trump in
1: India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future.
8: President Trump, when will you go to India, and how do you see Quad as well? This is a grouping that was started under your first term, and this is a grouping that all the 4 countries are looking forward to.
1: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India.
8: Play any role in West Asia?
1: Say it.
8: Do you expect India to play any role in West Asia?
1: Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
8: You said many times that India has a great friend in the United States, yep, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India?
1: Well, I said it. As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. Tremendous.
9: Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus has once again been shifted to the Ukraine-Russia war?
1: We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too.
5: What is your president here from European or G7 leaders?
1: They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they cannot even believe that it happened quickly.
7: But it really didn't happen quickly. It happened. It's been happening for a long time. It's been happening from my first term, when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president. 47 years, Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon.
5: Are minesweepers? Do you want the Europeans to send minesweeper boats? Did you talk about
7: them? We don't need them, but if they want to send them, I think it's good.
10: Has anyone committed to?
7: Yes, all of them. All of them.
10: Which nations?
7: The ones that have that kind of equipment now. But every one of them have committed to being involved in some form.
10: And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine?
7: Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy.
11: Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict.
7: I like this guy. Who is he? Do you know who that is? Your reporters are much nicer than my
11: reporters. Go ahead. But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir?
7: Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time. But we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please.
6: How long do you expect Bill Pulte to be acting DNI?
7: Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act, and we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve Pfizer. And I said, but we want Pfizer approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship, no mail-in ballots, with exceptions, like for the military, sick, you're traveling, disabled. Very, you know, open and generous. We also want no men playing in women's sports, and we want no transgender mutilation of our children. None. Those are five things that are 99% to, I mean, that's all we want. It's not a lot. The Save America Act. And that can be passed any way they want to pass it, but I'm not going to sign Pfizer unless it's done. And this was like a rush act. And it was a rush act by the Democrats. All of a sudden they want to get. And why are they afraid of this guy? I mean, they're so afraid of him, they'll do anything not to have Pulte go in there. He's a very capable guy, and they're worried about that.
12: Mr. President,
7: yes, ma'am, please.
13: You said the Iran deal, the text is still being finalized. How confident are you that this Friday signing will happen?
7: You're talking about this one on the deal? You know, deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen. I've gone into deals that there was no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. You know, we hit them very hard. Don't forget, you know, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out, and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA. That's Barack Hussein Obama's horrible deal that gave them a nuclear weapon. And I terminated it, and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion, because it prevented them from having a nuclear weapon. And now we're going to do it again, and we're going to see how it works out. So this is a memorandum of understanding, but it's a very strong one. This isn't just like a two-paragraph. This is a long, you know, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We had the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no navy. They have no air force. All bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are so ready to make a deal. Yeah. But you know what?
12: President Trump, can you talk about the defense relationship between India and the United States? Sorry, I'm speeding. I won't.
7: That's okay.
12: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
7: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them.
5: And how are the trade negotiations?
7: How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. You saw that with Venezuela, which was 48 minutes. And now our relationship with Venezuela is great. We've paid for the cost of the war 40 times, taking millions of barrels out. Venezuela's benefiting. We're benefiting. Venezuela's benefiting. And then we go to Iran. And really, in the first week, militarily, we defeated Iran. Nobody thought that could be done. Yeah, please.
10: Mr. President, do you want Israel to halt its military campaign?
7: No, I want Israel to be able to protect himself. But I do want them to use good judgment.
8: Highly skilled Indian professional to be getting more opportunities in the United States under your presidency.
7: What does that mean?
8: What? Well,
14: highly skilled professionals to get more opportunities here in the U.S.
7: Oh, yeah, sure. I mean, always.
8: Yeah.
7: We've always had tremendous relationships in terms of employment with India. Very talented people.
10: European leaders interact very warmly with you at the summit. Do you think that they're coming around to your worldview?
7: Well, I think they think I was right. I'm sort of always right. You know, when you get right down to it, I think they think I was right. They feel good. Now all of a sudden they all want to be involved. There's no reason to have them because it's pretty much over. But they all want to be involved. He'd be involved if I wanted, but we don't want to waste his time for his people. No, the European leaders, the meeting we had today was you know, just the leaders. I don't even say the European. The leaders that we had met with, in addition to the seven, we had quite a few come in. They all were willing to get involved. Thank you. Thank you. We had a great meeting on AI. We had all the top people here, and it was a great meeting. And as you know, we're building tremendous numbers of plants, but AI, we're building the biggest in the world. We're number one in AI by a lot, and it was a very productive
5: meeting.
7: He was here. Going fine. I think it's going fine. I think it's
8: How do you see energy cooperation? India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States. I'm Siddharth Sibal from Beyond. How do you see India buying energy from you?
7: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much.
15: पश्चिम एशिया में शांति के लिए अभिनंदन के साथ शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हॉर्मुज का खुलना दुनिया के लिए बहुत जरूरी, तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है हॉर्मुज को लेकर और खास तौर पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, बहुत बड़ी है ये चुनौती, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री ने की। भारतीय नाविकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन इधर से डोनाल्ड ट्रंप तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसी बात सामने की जिसमें वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। ट्रेड डील के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम बहुत करीब हैं। नाविकों के मुद्दे पर कहा गया, तब उन्होंने भी ये कहा कि इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, ये भी संभाल लिया जाएगा। भारतीय बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये सब कुछ आज उन्होंने कहा है। द्विपक्षीय बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रेस ब्रीफिंग की गई। आइए आगे की खबरों के लिए आपके लिए चलते हैं श्वेता, और बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और नाविकों का मुद्दा भी इस मंच से उठा है,
16: लेकिन ठोस जवाब क्या रहा इसी का विश्लेषण हम करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजना। इस समय की सबसे बड़ी खबर फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G7 समिट के साइडलाइंस पर जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, उससे जुड़ी हुई है मुख्य बातें आज की। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ट्रंप लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते रहे। ट्रंप ने कहा कि भारत में पीएम मोदी के लिए बहुत सम्मान है। आज तक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ये सवाल रखा कि अमेरिका की कुछ नीतियों की वजह से भारतीय नागरिकों को दिक्कत हुई है, तो आज तक के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में भारत का सच्चा दोस्त बैठा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि जब तक व्हाइट हाउस में मैं बैठा हूं चिंता की जरूरत नहीं है।
3: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं।
7: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
16: तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सारी बातें स्पष्ट रखी गई, भारत की जो चिंताएं हैं उनका जिक्र किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें की गई हैं उनमें खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बार बार एक अच्छा व्यक्ति हो, यहां तक ये कह देना कि अगर उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की तरफ किसी ने हमला किया तो अमेरिका उनके साथ है, बाकियों के लिए मैं नहीं कह सकता, ये उन्होंने कहा। रोहित शर्मा हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, ट्रेडमार्क ट्रंप स्टाइल था ये, मतलब इसमें कितना ठोस और कितनी वही बातें जो हम लगातार सुनते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर हम समझेंगे बर्फ पिघल गई है जो अभी तक एक तरह से असमंजस की स्थिति होती थी टैरिफ को लेकर या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से।
17: देखिए, अगर हम बयान को देखें, जिस तरह की बातें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल की है, आई थिंक लगता तो यही है कि बर्फ पिघल गई है। सारे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे उन्होंने जवाब दिया, बार बार ये कहा कि उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, यहां तक कह जाना श्वेता कि हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है डिफेंस का, लेकिन अगर भारत के ऊपर कोई अटैक करता है तो हम वहां पे होंगे। आई थिंक ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट है किसी भी सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट का। और बात की जो बात कही, उन्होंने कहा कि ट्रेड पे लेके हम काफी क्लोज हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने अपोलोजाइज किया, कॉन्डोलेंसेज दिए जो सी फेरर्स है जिनकी जान चली गई उनको लेके। बहुत बड़ा इसका मुद्दा बन रहा था कि क्या इस तरह की कोई स्टेटमेंट अमेरिका से नहीं आया, तो उन्होंने खुद ने जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं कॉन्डोलेंसेज देता हूं उनको और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग हैं। बाकी जो बातें की ईरान को लेके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, पीस को लेके, भारत के रोल को लेके, उन्होंने ये कहा कि भारत का हर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट में एक रोल है और रहेगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी देश के नेता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम बार बार बात कर रहे थे श्वेता आज पूरे दिन लगातार की एक रीसेट ऑफ रिलेशनशिप होने की पूरी संभावना है, और वही हमें देखने को मिला। सारे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, फिर वो स्किल्ड वर्कर वीजा की बात हो जहां पर उन्होंने कहा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो भारत के हैं।
16: रोहित, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि कितना ठोस और कितना बस ट्रंप स्टाइल दिखा, क्योंकि वीजा को लेकर जो उनका रुख रहा है और अभी तक हालांकि वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है ये भी बात कही जाती है, लेकिन वहां पर पूरे डायस्पोरा को इसका असर पड़ता है। और अगर ट्रंप उस पूरे मुद्दे को स्पेसिफिक तौर पर एड्रेस करने की जगह केवल ये कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या हम समझें कि ये एक समाधान की बात वो कर रहे हैं या फिर एक पासिंग रिमार्क है उनका केवल?
17: देखिए, इसे फिलहाल तो एक रिमार्क के रूप में देखना चाहिए श्वेता, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है अमेरिका के लिए, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ भारतीयों के लिए कोई एग्जेम्पशन हो। ये बात सेक्रेटरी रूबियो भी कह चुके हैं कि ये इमिग्रेशन सिस्टम जो है इसे हमें इंप्रूव करना होगा, रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें बदलाव होंगे, और जब बदलाव होते हैं तो उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो ये गिवन बात है, लेकिन मैं इस बात से जरूर मुझे काफी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि टैलेंटेड लोग आते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव चला हुआ है मागा का अमेरिका में कि किस तरह से भारतीय जो है यहाँ पे चीप लेबर है और टैलेंटेड नहीं है, लेस टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि टैलेंटेड लोग और काफी स्किल्ड लोग अमेरिका में आते हैं, भारत से आते रहे हैं, आई थिंक ये मुझे लगता है बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने।
16: हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय कवर कर रहे हैं इस बैठक को। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल भी पूछा, हम आपको सुनाते हैं वो हिस्सा जहां पर प्रणय के सवाल के जवाब डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं।
18: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
7: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
16: रोहित, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रणय के सवाल के जवाब दे रहे हैं वो दरअसल वो बहुत डिफाइनिंग लाइन था जिस वजह से अमेरिका में बैठा जो पूरा भारतीय डायस्पोरा है वो सपोर्ट कर रहा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, इस बात के विरुद्ध भी जाते हुए कि कमला हैरिस की जड़ें भारत में थी, क्योंकि सबको लगा कि वाकई एक अच्छा दोस्त भारत को हमेशा मिलेगा, अपने उनके हितों के बारे में सोचने का व्यक्ति मिलेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो। आज अगर वो इस बात को दोहराते हैं तो इसे संजीदगी से लिया जाए?
17: देखिए, देखना होगा, आई थिंक एक्शंस देखने होंगे श्वेता, स्पेशली क्योंकि उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ही मागा फैक्शन के लोग हैं जिन्होंने एक एंटी इंडियन रेटरिक चला रखा है, एक एंटी इंडियन नैरेटिव चला रखा है अमेरिका में। तो देखना होगा कि क्या इस एक स्टेटमेंट से वो लाइन फॉल इन लाइन करते हैं नहीं करते हैं, वो हमें देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है प्रणय ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने रिलेशंस को लेके सवाल पूछा और भारतीयों के लिए जो भारत में है वो भी काफी नाराज है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जो भी एक्शंस रहे हैं। लेकिन आई थिंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, कहा कि ऐसे कोई एक्शन शायद नहीं और उन्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है, आई थिंक ये भी दर्शाता है कि जो पॉलिसी रन कर रहे हैं लोग शायद वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें डे टू डे बेसिस पे नहीं पता चल रहा कि उनकी जो रेटिंग्स है इंडिया में वो काफी ज्यादा नीचे गई हुई है। तो हो सकता है कि एक बहुत ही सिंपल सा आंसर उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हमारे संवाददाता प्रणय ने, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रीअश्योर कर रहे थे अपने आंसर से कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और रिस्पेक्ट करते हैं भारतीयों की।
16: अच्छा, एक और चीज, क्योंकि जब वो इससे पहले ठीक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले जब वो ईरान डील की बात कर रहे थे तो उनका रुख अलग था, लेकिन पीएम से बात करते हुए एक छोटे में आपसे रोहित इस पे जवाब लेना चाहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो वो एक ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक लगा।
17: थोड़ी देर पहले उन्होंने अलग बयान दिया, जी अलग बयान दिया, और अब उन्होंने कहा कि देखिए हो सकती है चीजें और हम बड़े बड़े कॉन्फिडेंट लगे, उन्होंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग एमओयू है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हम देखेंगे क्या होता है, तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेवलपिंग सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो एमओयू के टर्म्स डिस्क्लोज करने वाले हैं हर किसी को, तो आई थिंक उसके बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या स्थिति है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कन्वे करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब उन्होंने जवाब दिया तो काफी पॉजिटिव लगा उनका अप्रोच। श्वेता
16: ठीक है, प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय आप रहिए, क्योंकि पहले हम एक हिस्सा सुना देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। सुनते हैं।
7: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But.
16: प्रणय, हालांकि कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री साथ में बैठ के अपनी हंसी को रोक भी कैसे पाते हैं इन बातों पर, लेकिन उनके वो किस तरह के दिखते हैं उस पर टिप्पणी करते हुए कि वो एक एंजल की तरह दिख रहे हैं, बेहद शांत लेकिन बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे नेता की तरफ से ये बयान आना जो बार बार खुद को किंग ऑफ डील्स कहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की उन बातों के बारे में अगर जिक्र कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छी वार्ता करते हैं और कैसे अपने अपने मुद्दों पर अड़े रहते हैं, तो इसमें हम समझें कि बातचीत में कुछ ऐसी चीजें रही जहां पर प्रधानमंत्री सख्त रहे हैं आज।
18: निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप देखें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा शैली में, एक तो विशेषणों का इस्तेमाल वो बड़े खुले हाथ से करते हैं, मुक्त हस्त से करते हैं, और इसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार शायद वो सबसे ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं अगर आप विश्व राजनीति में देखें तो। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो एक चीज में वो कंसिस्टेंट नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो तारीफें उन्होंने, चाहे रिश्तों के अंदर कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए हों, लेकिन भाषा के अंदर उनकी ये जो एक सुर है वो लगातार आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कई बार कहा, इनफैक्ट जब कैमरे बंद हो गए, हम लोग कमरे से बाहर निकल रहे थे, तब भी उन्होंने इस चीज को दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी का मैं बड़ा फैन हूं, ये ही इज अ वेरी टफ गाय एंड आई रियली लाइक दिस गाय। तो ये बात उन्होंने कैमरों के सामने ही नहीं, कैमरों के बंद होने के बाद भी कही जब हम उस कमरे से बाहर निकल रहे थे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस चीज को दोहराया और उन्होंने व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के ऊपर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो जब तक ये शख्स जो मेरे करीब बैठा है, अगर ये भारत का नेता है और मैं व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद हूं, तब तक हम ये आश्वासन देना चाहेंगे कि भारत की मदद के लिए हम डटे हुए हैं और हम साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा एश्योरेंस कहा जा सकता है। साथ ही जो सी फेयरिंग कम्युनिटी को लेकर प्रधानमंत्री ने काफी आप कह सकते हैं कि काफी मुखर तरीके से इस न केवल इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की पश्चिम एशिया के लिए जो भी समाधान की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन उन्होंने इसके साथ कहा कि जो भी डील, जो भी फॉर्मूला हो रहा है, उस फॉर्मूले के अंदर कम से कम ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए श्वेता कि इसके अंदर जो भारतीयों वाली बड़ी आबादी है, जो कि सी फेयरिंग कम्युनिटी है, जो कि दुनिया के इस मैरिटाइम ट्रेड की एक रीढ़ है, उसकी सुरक्षा और उसका उसके जो हित हैं वो भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहमति जताई। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर भारत के अंदर बहुत नाराजगी थी, बहुत तल्खी थी, क्योंकि जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन किया था, तो उस तरफ से जो जवाब आया था वो कतई भारतीयों को पसंद नहीं आया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा,
16: नहीं, जो आपने सवाल पूछा है प्रणय, हम दर्शकों को वो हिस्सा फिर से सुनाते हैं, वो बहुत वाजिब, बहुत जरूरी सवाल रहा। और ये सवाल सीधे शब्दों में आपने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा। हम सुनाते हैं वो सवाल जवाब का हिस्सा, फिर आपसे सवाल करूंगी।
18: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
7: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
16: हालांकि ट्रंप भी जानते हैं कि दिक्कत कहां हुई, वो कह रहे हैं कि आई डोंट नो वेयर देयर वाज अ प्रॉब्लम, उनको भी मालूम है कि परेशानी कहां हुई, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ही जवाब देना चाहते थे इस मंच पर आपको लगा कि जो चीजें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक तरीके से दोनों देशों के बीच आ रही थी कुछ समय से, वो चीजें आयरन आउट हुई, उन सिलवटों को हटाया गया?
18: देखिए मुझे ऐसा लगता है अश्वेता, ये कोई पहला मौका नहीं है जब ने राष्ट्रपति ट्रंप को कवर किया है, इस तरीके से उनसे सवाल पूछा हो या उनके इंटरेक्शंस को देखा हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो पहलू हैं, एक तो वो इसी तरीके से जब भी जिस नेता से मिलते हैं तो काफी बेलौस तरीके से, काफी बेबाक अंदाज के अंदर वो इस तरीके की बातें करते हैं। वो ग्रेट नेगोशिएटर बहुत सारे लोगों को बता चुके हैं, इसके अलावा वो टफ मैन भी बहुत सारे लोगों को बता चुके हैं, ये उनकी भाषा शैली का हिस्सा है। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनकी भाषावली के अंदर एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, तमाम रिश्तों के उतार चढ़ाव के बावजूद, 16 महीनों में जो भी चीजें हुई उन चीजों के बावजूद भी। और आज भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न केवल उन्हें दोहराते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भारतीय पेशेवरों को ज्यादा मौके देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अवसर बढ़ाना चाहते हैं। ये बयान महत्व मायने रखता है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस मागा कम्युनिटी के लीडर हैं, उस मागा लॉट के लीडर हैं जो H1B वीजा को लेकर बहुत सारी आपत्तियां उठा रहा था, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो अमेरिका के अंदर घरेलू राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना लीडरशिप के लेवल पर जब इस तरीके के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से नीचे तक एक मैसेज।
19: जी प्रणय से हम फिर संपर्क करेंगे, उनका सोर्स फ्रीज हो गया है, लेकिन प्रणय वो जानकारियां दे रहे हैं जो अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई उनमें जो बातें कही गई। फ्रांस के एवियन में 52वां G7 समिट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, 16 महीनों तक आमना सामना बातचीत नहीं हुई थी, तो इसीलिए 16 महीने के बाद जो ये मुलाकात हुई उस पर सबकी नजरें थी। पिछले साल 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप मिले थे, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। इस रिश्ते को नए सिरे से पटरी पर लाने के लिए अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस मुलाकात को अमेरिका रिश्तों के रीसेट के रूप में ले रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऑपरेशन सिंदूर हो, टैरिफ हो, या फिर पाकिस्तान और चीन से बढ़ती अमेरिकी नजदीकी, भारत को लेकर अमेरिकी नीति बदलती दिख रही है। मोदी हाथ बढ़ाते ट्रंप की तरफ, मोदी का हाथ पकड़े ट्रंप और मोदी के लिए उठकर खड़े होते ट्रंप, ये तस्वीरों का एक ऐसा हिस्सा रहा जो इस बैठक से पहले कई संकेत दे गया। पर ट्रंप भले ही कह रहे हों कि अगर भारत पर हमला हुआ तो साथ देंगे, लेकिन इस मुलाकात से एन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा दिया। इससे पहले अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने मई के शांग्रीला डायलॉग में भाषण के दौरान इंडो शब्द से परहेज किया था, जिसके बाद ट्रंप ने चीन का दौरा किया और अब अमेरिकी सेना ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया। ट्रंप के तेवर लगातार दूसरे कार्यकाल में पहले से अलग दिखे, भारत को लेकर उनका रुख काफी विवादित रहा। ट्रंप ने भारत को लेकर कई कठोर बयान दिए और कई बार मर्यादा भी तोड़ते दिखे। अब भले ही ट्रंप की तरफ से तीखी बयानबाजी बंद हो गई हो, लेकिन उनकी सरकार ने क्वाड जैसे संगठनों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।
20: Take a permanent one between India and Pakistan. The Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both.
21: The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan.
22: डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका पर 146 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का भरोसा कम हुआ है। पाकिस्तान की तारीफ करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अब भारत के दुश्मन नंबर वन को लेकर सुर बदलते दिख रहे हैं।
23: मैं ये बात सभी से कहता हूं कि आप एक महान नेता हैं। कभी कभी लोगों को मेरा ये कहना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि यह सच है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं बेहतर होने वाले हैं।
22: पाकिस्तान के बाद क्या चीन को लेकर भी अमेरिकी रुख बदल गया है? ऐसा कहने की ताजा वजह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वो घोषणा है जिसमें उसकी तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। अब इस कमांड से इंडो शब्द हटा दिया गया है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अमेरिकी सेना की 11 कमांड है, वो जब चाहे जिसका नाम बदले। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में यूएस पैसिफिक कमांड में इंडो जोड़ा था, अब इन्होंने इसे हटा दिया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिकी सेना के इस फैसले में भारत के लिए खबरदार करने वाली बात देखते हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, तब वे दिखाना चाहते थे कि भारत उसकी एशिया रणनीति का अहम हिस्सा है और चीन का मुकाबला करने में भारत की अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की थी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर एक ही रणनीतिक क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब शायद ट्रंप की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इसकी पहली झलक ट्रंप के हालिया चीन दौरे में देखी गई, जहां हर किसी की बेइज्जती करने वाले ट्रंप जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ते देखे और सुने गए।
0: Had a very good relationship with President Xi and with President Putin. Talk about, you know, the larger powers. But I've always had a very good relationship with President Xi of China. He's an incredible man. What he's done is amazing. He's highly respected by everybody. And I do now. I mean, now I have good. It was very severely interrupted by COVID. I used to call it the China virus, but he said, do you think you could use a different name? And I decided to do that.
22: तो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द चीन को खुश करने के लिए हटाया है। इस सवाल पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूएस पैसिफिक कमांड नाम बहुत पुराना और ऐतिहासिक, इसे वापस लाने से सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। ये नाम कई बड़े युद्धों और महत्वपूर्ण मिशन से जुड़ा रहा है, इसीलिए इसे फिर से अपनाया गया। पेंटागन ने यह भी कहा कि कमांड का सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियों में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडो शब्द हटाने से यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर और भारत को पहले जितना प्रमुख महत्व नहीं दिखाना चाहता।
2: अमेरिका ने जो ये इंडो पैसिफिक कमांड का नाम वापस पैसिफिक कमांड कर दिया है, इसका रियलिटी में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के जो भी मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सारी चली रही है, परंतु हाँ इसका ऑप्टिक्स पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जब किस चीज का नाम बदल देते हैं, जो भी आप नामकरण करते हैं उसके जरिए आप पूरा ढांचा दिखाते हैं ना। जिस चीज को आप जिस नाम से एड्रेस करते हैं उसी विचार से आपके जहन में प्लानिंग बनती है।
4: अमेरिका के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया सामने आई कांग्रेस सांसद और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिकी आदेश की प्रति के साथ पोस्ट किया कि क्या ये क्वाड के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बीते कुछ वक्त के दौरान चीन को लेकर अमेरिका के रवैये में एक नरमी नजर आई, साथ ही ताइवान को हथियार देने की कोशिशों में भी अमेरिका की एक सुस्ती दिखाई दे रही है। ये फैसला अमेरिका का इसलिए भी चुकता है क्योंकि इसका ऐलान करीब 16 महीने बाद हो रही प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से एन पहले किया गया।
22: अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले गठबंधन क्वाड का आधार ही इंडो पैसिफिक को मिलाकर है। ऐसे में इंडो शब्द को हटा देने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत को क्वाड से बाहर निकल आना चाहिए?
9: कि इस चीज को ज्यादा अहमियत ना देके हमें इंडो यूएस जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, जो जो जो ट्रेड टैरिफ रिलेशनशिप है, हमारा ट्रेड बढ़ा है ना 2002 से 4 से लेके आज हम 20 times हमारा ट्रेड बढ़ा है। टैरिफ ट्रेड जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो सर्विसेज सेक्टर जो हमारा वहां से अर्न करता है, हमें इस पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ना कि ज्यादा डिफेंस और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। डिफेंस और स्ट्रैटेजी में इंडिया स्टैंड अलोन है, मेरा मानना यह है, और पाकिस्तान और चाइना इंडिया के कॉन्स्टेंट और परमानेंट डिफरेंसेज हैं, वो रहेंगे जब तक इंडिया बहुत स्ट्रांग होके और दोनों को एक साथ डील नहीं करेगा।
4: इंडो पैसिफिक की साझेदारी को मजबूत करने और क्वाड को बड़ा करने की शुरुआत दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में की। राजनीतिक तौर पर धुर विरोधी होने के बावजूद जो बाइडेन ने इसी काम को आगे बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल और जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान इंडो पैसिफिक की चर्चा भारत के साथ संबंधों को लेकर खूब की जाती थी, मगर राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद इस मुद्दे को लेकर उनका संकल्प हिलता नजर आया। ताजा बदलाव ने यह साफ कर दिया है कि चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की गाड़ी अब अपना गियर बदल चुकी है। ऐसे में भारत के सामने ये संकल्प और विकल्प दोनों ही साफ हो चुका है कि उसे चीन के साथ मुकाबले की लड़ाई अपने ही दम पर लड़नी होगी।
19: अब आपको उस राजनीति से खबरदार करते हैं जहां कुछ भी अभी डेफिनेट यानी निश्चित नहीं है, लेकिन अनिश्चितताओं और अटकलों के बीच ही राजनीति की सबसे बड़ी खबर छिपी है। क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? इस सवाल की वजह समझिए। अभी एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 313 तक पहुंची। इसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो संख्या 319 तक कल पहुंच सकती है। अब नई खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं, फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। अगर ध्यान दीजिए, वैसे तो अभी यह संभव नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो संख्या 344 पहुंच जाएगी, जिन्हें सदन में वाईएसआर के 4 सांसद का समर्थन पहले भी मिला है तो संख्या 348 होती है। इसके बाद अगर डीएमके के भी 22 सांसदों का साथ मिलता है तो समर्थन 370 तक पहुंच सकता है, जबकि 540 लोकसभा सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का साथ चाहिए। तो क्या अगर समाजवादी पार्टी में भी कोई टूट हो सकती है?
1: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
6: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
1: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
11: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे। सपा टूट के जा रही है।
1: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
6: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
1: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
11: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हश्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
6: तो पार्टियां टूट रही हैं, उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
13: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
24: ये बताओ केशव मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी देशम मौर्य आपको फिर हराएगी।
22: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, राम गोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
5: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े मुस्कुराए अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
8: क्या लिखा?
5: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है लोगों को बचाना है, और फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
22: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
5: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
10: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
5: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोग का नाम है।
12: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
14: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
22: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
5: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके राम गोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं, इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
22: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
6: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
22: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
19: यूं तो टीएमसी के सांसदों ने जब बगावत की तो ये देखा गया कि नए या पुराने सांसद या पार्टी से पुराने लगाव या नए जुड़ाव का कोई रिश्ता नहीं दिखा, यानी ममता की पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में रहे वो भी टूटे और जो पहली बार सांसद बने वो भी टूटे। ऐसे में एक बार समाजवादी पार्टी के 37 सांसद का हिसाब देख लीजिए, जिनमें पहली बार 27 लोग सांसद बने हैं, दूसरी बार 5 सांसद इनमें से बने हैं, तीसरी बार 2 लोग जिनमें दरोगा प्रसाद सरोज और अफजल अंसारी का नाम है ये सांसद बने, चौथी बार सांसद बनने वालों में केवल डिंपल और धर्मेंद्र यादव का नाम है, और पांचवी बार अकेले अखिलेश यादव सांसद बने। आज दिन भर दिल्ली में भी हलचल रही है, सबकी नजर कल उद्धव ठाकरे की संसदीय दल वाली बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद कल की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के अब शिंदे वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं?
25: ₹15-15 करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
26: तो ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
25: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
3: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
22: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
7: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला आधी गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
22: मंगलवार को राऊत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं कहीं नहीं।

0: में है आपके जो
1: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
2: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
3: बाळासाहेब ठाकरे ने आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, एकट मत करणार। हा हे लोक जो है बेमान लोक है, ये बेमान है और बेमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
2: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
4: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
5: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
2: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहेब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
6: हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
7: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
6: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
2: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा प्लीज, उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
3: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
8: क्या अपना पक्ष रखा?
9: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
2: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
10: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोचती है, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा।
2: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो यह संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी

0: हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन ना लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
1: 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए और तब विपक्षी दलों में हाल के दल बदल बगावत वाली खबरों के बीच खबरदार करता सवाल है कि 12 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ शुरू हुई बीजेपी की राजनीतिक यात्रा ऐसे मोड़ तक पहुंच गई है जहां क्षेत्रीय दलों का महत्व सिमटता जा रहा है। पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी 15 साल शासन करती हैं, मजबूत क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस रही है। आज टीएमसी टूट गई, 20 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 64 विधायक बागी हो चुके हैं। पार्टी पहचान सिंबल तक पर बागी आगे दावा करने वाले। उत्तर प्रदेश को देखिए जहां कांग्रेस की ताकत कम होने के साथ 1990 से क्षेत्रीय दलों की पहचान मजबूत होने लगी। पहले मुलायम सिंह की अगुवाई में समाजवादी पार्टी, फिर मायावती के नेतृत्व में बीएसपी, फिर अखिलेश यादव के साथ एसपी की सरकार बनी। लेकिन अब बीएसपी का एक भी सांसद नहीं, केवल एक विधायक यूपी में है। समाजवादी पार्टी लोकसभा में ताकतवर बनी, लेकिन 9 साल पहले पारिवारिक झंझावात जेल चुकी पार्टी में दावा है कि फिर कुछ हो सकता है, ऐसी अटकलें चलने लगी। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए जहां क्षेत्रीय ताकत के रूप में शिवसेना एनसीपी सत्ता में ताकतवर साझेदार रहे। शिवसेना 4 पहले टूटी, टूटकर शिंदे की शिवसेना अब सपोर्टिंग सियासत में आ चुकी है। उद्धव की बची हुई शिवसेना फिर टूट रही है। महाराष्ट्र में ही एनसीपी टूटी तो 2 गुट बने। अजित पवार की पार्टी एनडीए के साथ है। अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सत्ता में साझेदार है। शरद पवार की पार्टी का दायरा सीमित हुआ है। बिहार में जेडीयू अब छोटा भाई बन चुका है, मुख्यमंत्री बीजेपी के। आरजेडी की सियासी ताकत संख्या बल में सिमटी, एलजेपी, एचएएम, आरएलएम सब सत्ता के साथ हैं तो चल रही। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा वाले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अकाली दल सिमट रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल चुनावी पराजय और नवीन पटनायक की स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होने के बाद बहुत ताकतवर हालत में नहीं है। तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हालांकि अभी विधानसभा में विपक्ष की पार्टी वही है। लेकिन एक सच ये भी है कि तमिलनाडु जहां डीएमके और एआईएडीएमके सामने टीवीके के उदय के साथ नई क्षेत्रीय ताकत मजबूत हुई है, ऐसे में ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि क्षेत्रीय दलों की सियासत अभी संक्रमण काल से गुजर रही है। व्यक्तिवाद वंशवाद पर आधारित दलों के लिए चुनौती है, विचार पर जो है वो टिक सकते हैं। देश की शिक्षा नगरी कोटा इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बनी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के लाखों छात्रों और युवाओं के मुद्दों, विशेषकर नीट यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी पर छात्रों से बात कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि शिक्षा प्रणाली छात्रों का दमन करती है।
2: ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी, इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज है, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है और ये देश के लिए सही नहीं है।
1: तो इस मुद्दे को राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। नीट का जो रीटेस्ट है वो भी होने वाला है, छात्र अधिकांश इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और राहुल गांधी ऐसे में चाह रहे हैं कि उन छात्रों की आवाज बन सके, उन छात्रों की आवाज पहुंचा सके। क्या रिस्पॉन्स मौसमी इन राहुल गांधी के संबोधन का रहा है, क्या रिस्पॉन्स वहां पर आपको छात्रों के बीच दिखा है, क्या जेन जी के मन में चल रहा है?
3: तो ये श्वेता, हम लोग इस वक्त कोटा में हैं और अभी राहुल गांधी पीछे मंच पे अभी भी संबोधित कर रहे हैं, एक परिवार से मिल रहे हैं जिनकी बेटी जो है एग्जाम दे रही है। मैं पवन से बोलूंगी कि जरा एक 360 डिग्री व्यू आपको दिखा दे। ये जो दशहरा मैदान है कोटा का, जो कि कोचिंग कैपिटल कहलाया जाता है देश का, और वहां पे राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। यानी कि मान लीजिए कि बंद कमरों से अब राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पे छात्रों से मिल रहे थे, हमने देखा कि राहुल गांधी दिल्ली में मिल रहे थे, अब ये एक दूसरा चरण है जहाँ पे कोटा से प्रयागराज, प्रयागराज से पटना और पटना से दिल्ली राहुल गांधी, ये स्टूडेंट्स मूवमेंट लॉन्च उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें जो छात्रों की हताशा है, निराशा है, नाराजगी है, उसको टैप इन करने की कोशिश है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि राहुल गांधी ने बोला कि कोई सरकार की बात नहीं करेगा, कोई पार्टी का नाम नहीं लेगा, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और इस वक्त आप देखिए कि एक एक जिस तरीके से हमने देखा था वोट चोरी में राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी राहुल गांधी इसी कवायद में कि पूरा जो सिस्टम है उसमें क्या खामियां हैं उनके मुताबिक वो दिखाने की पूरी कोशिश में यहाँ पे तमाम छात्रों को कर रहे हैं। और ये जो छात्र हैं ये नीट के ही नहीं, तमाम बाकी परीक्षाओं के लिए भी बैठेंगे, कोटा और बूंदी से आए हैं और इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है पहले, उसके बाद उनको बुलाया गया है। इसीलिए कोई नेता आपको मंच पे नजर नहीं आएगा, अशोक गहलोत से लेके बाकी नेता अलग बैठे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में उनको ज्यादा अलाउ नहीं किया गया है।
1: मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी कोटा से हमें दे रही हैं। राहुल गांधी ने टेलीग्राम पर जो पाबंदी सरकार की तरफ से लगाई गई उसको लेकर भी अपनी टिप्पणी दी थी और कहा था कि इन सारी चीजों की जगह जो माफिया है उस पर उन्हें प्रहार करना चाहिए। बहरहाल अब आपको ऊंची सोसाइटी में रहने वाले अपराधियों से खबरदार करते हैं। नोएडा के सेक्टर 79 में महागुन मिराबेला सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिए। वहां तेज रफ्तार में कार चलाकर एक शख्स ने एक महिला और 5 साल की बच्ची को रौंद दिया। महिला की हालत गंभीर है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में सेक्टर 93 का ऑर्चर्ड एवेन्यू सोसाइटी में लिफ्ट अटकी तो मदद करने पहुंचे लिफ्ट ऑपरेटर गौरव को ही लिफ्ट में फंसे लोगों ने लाठी डंडे से इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये दो घटनाएं बताती हैं कि हमारे आपके आसपास चंद ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सोच में अपराध है, जिन्हें दूसरों को लेकर फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप खबरदार रहें, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
2: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
1: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
7: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
8: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस बात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की इतनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद हुई मुलाकात के बारे में बताएंगे। दो दोस्त मिल रहे थे मगर बचते बचते। इन 16 महीनों में दुनिया ने काफी उतार चढ़ाव देखा। भारत और अमेरिका के संबंध भी कूटनीतिक दांव पेच में उलझे रहे। कभी दूरियां दिखी, कभी सहजता भी नजर नहीं आई, कभी सहजता दिखने लगी। आज जब दोनों नेता एक ही मंच पर पहुंचे तो दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी थी कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ इस मुलाकात से पिघलेगी। कल G7 के मंच पर फोटो सेशन से लेकर आउटरीच सेशन तक सबकी नजरें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर टिकी थी। दुनिया चर्चा कर रही थी कि दोनों नेताओं के बीच कितनी सहजता है, कितनी गर्मजोशी है और क्या रिश्तों की बुनियाद उतनी ही मजबूत है या नहीं। खैर, आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे तो सवाल, शिकायत, संबंध कूटनीति की तराजू में तौले गए और सिर्फ एक ही नतीजा निकला कि आगे दोस्ती पक्की लेकिन फायदा अपना अपना। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बहुत सकारात्मक और सार्थक बताया। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो दिखने में शांत लेकिन बहुत सख्त वार्ताकार हैं। ट्रंप ने भारत के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि अगर कोई हमला होता है तो जब तक मोदी हैं तब तक अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप ने भारत के नाविकों की मौत पर भी दुख जताया। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के हितों से जुड़े आज तक के सीधे सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या देश में राजनीतिक पार्टियां यूं ही टूटेंगी। टीएमसी में बेशुमार टूट और ऐसी टूट जिसकी बड़ी चर्चा है। अब टीएमसी में बेशुमार टूट के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सियासी ईंटें दरकने की खबरें आने लगी हैं। दावा है कि 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। अब जब तक इस खबर की पुष्टि हो पाती तब तक खबर आ गई उत्तर प्रदेश से। खबर आई कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। इस दावे की हकीकत बताने के साथ ही आपको बताएंगे कि क्षेत्रीय दल अपनी टूट, अपनी बगावत को आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे, और अगर ये सांसद विधायक जा रहे हैं तो फिर इनकी वजह क्या है। और आखिर में आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सबसे ताजा तस्वीर दिखाएंगे जहां आप कब्जे की जमीन पाकिस्तान के हाथ से खुद ब खुद फिसलती दिख रही है। आप में से कई लोगों का यह सपना होगा कि पीओके वापस भारत में शामिल हो। तो देखिए, पीओके की जनता अब पाकिस्तान से अपनी आजादी की सीधी जंग लड़ रही है। आज आपको बताएंगे कि क्या अब पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 489 दिन बाद 489 दिन बाद हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक में कौन से बड़े ऐलान हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रेड डील का, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बहुत करीब है और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड डील पर चर्चा तो हुई लेकिन अभी यह डील पूरी तरह फाइनल नहीं है। हालांकि यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ निगोशिएटर बताया है, यानी ऐसा वार्ताकार जो अपनी शर्तों को लेकर बहुत कड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शब्दशः कहा, ही इज एज टफ एज अ किलर। सुनिए।
1: And we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything. And Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship. And it's great to be with you. Thank you very much. Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise.
0: तो ये अंदाज था आज डोनाल्ड ट्रंप का जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। और दूसरा मुद्दा क्या था? ईरान युद्ध, हॉर्मुज और हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों का। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील कर रहा है उसमें नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो भारतीय नाविक दुनिया भर के समुद्री मार्गों में काम करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में जरूर काम होना चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या वो हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों के लिए शोक जताएंगे, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। हर इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा भी उठाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है और अमेरिका को यह देखना चाहिए कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित ना हो, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सहमति जताई। सुनिए।
2: एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: Also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families?
1: Yeah, I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बहुत जल्द भारत जाएंगे और भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2020 के बाद ये राष्ट्रपति ट्रंप का पहला भारत दौरा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका को G2 बताया, यानी दो देशों का वो समूह जो सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कभी भारत पर कोई खतरा आया तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल भी पूछा कि वो भारत को अपना मजबूत साझेदार बताते हैं लेकिन फिर भी उनके फैसलों ने भारत को असहज किया है, चिंता में डाला है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि उनके फैसलों से भारत को कोई परेशानी हुई है और वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुनिए।
4: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
1: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल ईरान यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। इसराइल के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि अब इसराइल को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, यानी राष्ट्रपति ट्रंप अब इसराइल से पूरी तरह खुद को अलग कर रहे हैं। तो चलिए, दो फ्रंट पर, एक तरफ युद्ध से अगर अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, हम सब पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, हॉर्मुज के खुलने की बात को लेकर कैसे पेट्रोल डीजल का असर होगा, पॉजिटिव ही होगा और ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जब राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या वो हॉर्मुज से सी माइंस हटाने के लिए अमेरिकी माइंस स्वीपर्स भेजेंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत नहीं लेकिन अगर ईरान चाहेगा तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। ईरान के साथ डील को लेकर ये कहा कि ईरान डील करने को बेताब है, इस डील पर बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ईरान का डील पसंद नहीं आया तो वापस बम बरसाएंगे। बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वो रशिया के तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही तेल की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी रशिया के तेल पर फिर से प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रशिया से सबसे ज्यादा 35% कच्चे तेल का आयात कर रहा है। उनसे व्लादिमीर पुतिन पर भी एक सवाल पूछा गया। पुतिन के खिलाफ सीधा डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलते हैं लेकिन तेल, इन तमाम बातों पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए।
2: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए।
0: इस द्विपक्षीय मुलाकात का सार यह है कि भारत और अमेरिका दोनों बचते बचते आगे बढ़ रहे हैं। दो दोस्त मिल रहे हैं मगर बचते बचते। दोनों देश ट्रेड डील को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी मुद्दा पहले G7 देशों की बैठक में उठाया और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी इस पर अपनी बात रखी। यानी आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच का तनाव कम हो सकता है और ट्रेड डील होने से इन रिश्तों में एक नया संतुलन आ सकता है। एशियाई देशों में प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा बार द्विपक्षीय मुलाकात की है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कुल 8 मुलाकातें हुई हैं। इनमें भी आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी और उस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों से बहुत अलग थे। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड में भारत की भूमिका इतनी अहम थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 24 दिन बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। ये वो मुलाकात थी जिसे दुनिया भर के विश्लेषक भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया चैप्टर मान रहे थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे ये रिश्ता काफी हद तक बदल गया। इस मुलाकात के सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर पहले 25% का टैरिफ, फिर बाद में 50% टैरिफ लगाया। जब इस पर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हुई तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किए जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा किया, कहा मैंने युद्ध रुकवाया, जबकि भारत ने इससे साफ इनकार किया। भारत और चाइना जैसे देशों के लिए हेल होल शब्द बोला, भारत के लिए हेल होल, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे शब्दों को बढ़ावा दिया जिनका मतलब होता है नर्क जैसी जगह। बाकी देशों की तरह भारत के अवैध शरणार्थियों को हथकड़ी लगाकर हमारे देश में सेना के विमान से डिपोर्ट किया। और ये घटनाएं यही नहीं रुकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार दबाव बनाया कि भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद करे। और ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमला किया जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पिछली मुलाकात के बाद से दोनों देशों के रिश्तों ने अपना वो स्वरूप खोया जो पहले हुआ करता था। भारत के इन बातों को याद भी रखा है भारत ने। और आपको याद ही होगा कैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ को, लंच पर बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके कई मंचों पर प्रशंसा की। मुनीर से बढ़ती नजदीकियां और भारत से बढ़ती दूरियां एक बड़ी चिंता बनी। कल जब G7 देशों का आउटरीच सेशन हुआ तब उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि समुद्री व्यापार के जरिए दुनिया को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदार सबकी है। ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। ईरान युद्ध के दौरान 108 दिनों में 14 देशों के 46 जहाजों पर हमला हुआ, लेकिन अब तक ये मुद्दा किसी भी देश ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में उठाया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया। उन्होंने एक ऐसी बात भी कही जिसका विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी पार्टनरशिप कैसे सफल होती है, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी संबंध तब सफल होता है जब वो भरोसे पर टिका हो। और उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि आज दुनिया में भरोसे की कमी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह सलाह इस हॉल में मौजूद सभी नेताओं के लिए थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसका जोर राष्ट्रपति ट्रंप पर ज्यादा था। याद कीजिए पिछले साल सितंबर का महीना जब चाइना में SCO समिट का आयोजन हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर साथ नजर आए, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि शायद उन्होंने भारत को अमेरिका के खेमे में खो दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान उस वक्त भरोसे की कमी को ही उजागर कर रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपना अच्छा दोस्त, एक महान नेता तो बता रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने भारत के साथ अपना विश्वास दिखाया। आज जब फ्रांस के अवियान शहर में इन रिश्तों का फिर से रीसेट बटन दबाने की कोशिश की गई तो प्रधानमंत्री मोदी ये याद दिलाना नहीं भूले कि भरोसे के बिना कोई भी संबंध, कोई भी पार्टनरशिप सफल नहीं हो सकती। और ये बात तो अमेरिका को लेकर आज शायद कई देश कहना चाहेंगे, इनमें इसराइल जरूर शामिल होगा, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप बड़े प्यार से पहले बीबी पुकारते थे, लेकिन अब वही बीबी उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। इसराइल के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के अब तक अच्छे संबंध रहे, लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से डील करने के लिए इसी इसराइल को भला बुरा कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल छोड़िए, आज राष्ट्रपति ट्रंप ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में यह कहा कि अगर उन्हें ईरान के साथ डील की शर्तें पसंद नहीं आई तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। सुनिए।
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: अब सोचिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की बातें कहेंगे तो ईरान भी कैसे उन पर भरोसा करेगा या बाकी देश कैसे उन पर भरोसा करेंगे? इस बात को आप एक और खबर से समझ सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, उससे सिर्फ कुछ घंटे पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने फैसला किया कि अब से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल दिया जाएगा, इंडो शब्द हटा दिया जाएगा और यूएस पैसिफिक कमांड किया जा रहा है उसका नाम। ये वही नाम है जो 2018 से पहले हुआ करता था और जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने बदला था। ये कहते हुए बदला था कि अब हिंद महासागर की घटनाएं प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हैं और इसीलिए अमेरिका की आर्मी कमांड भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में काम करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलने वाले थे तब उसे कुछ घंटे पहले इसका नाम बदल दिया गया। और ना सिर्फ नाम बदला गया बल्कि इस अमेरिकी कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा भी दिखाया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का कहना है कि यह नाम इस कमांड की पुरानी और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखने के लिए बदला गया है और बाकी इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि दोनों देशों का जो रोल है इस कमांड में वो नहीं बदलेगा, ना अमेरिका का ना भारत का। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर इस कमांड की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आए तो फिर नाम बदलने का फैसला आज ही क्यों लिया गया? अगर इस कमांड के नाम की ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखना था तो फिर इसका नाम राष्ट्रपति ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में बदला क्यों गया था? यहां बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी है कि अगर अमेरिका के साथ रिश्तों में भरोसे की कमी है तो फिर भारत उसके साथ ट्रेड डील क्यों करना चाहता है? तो उसका जवाब यह है कि ट्रेड डील का मुद्दा हमारे आर्थिक हितों और लोगों से जुड़ा है। जिन 10 देशों के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें 8 देशों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इन देशों के साथ हम जो व्यापार करते हैं उनमें हमें घाटा होता है, हम उनसे सामान ज्यादा खरीदते हैं और उनको बेचते कम है, इन देशों को फायदा होता है। इन 10 देशों में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ हम मुनाफा में रहते हैं, इनमें पहला है अमेरिका और दूसरा है नीदरलैंड। इनमें भी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार मुनाफा 2,97,000 करोड़ रुपए का है और टैरिफ लगने से पहले साल 2024-25 में यही व्यापार मुनाफा 3,47,000 करोड़ रुपए होता था। यानी टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए से कुड़ गया, जिससे हमारे कई सेक्टर्स प्रभावित हुए। अब अगर सोचिए भारत अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करेगा तो हमें उससे जो व्यापार मुनाफा होता आया है वो और सिकुड़ सकता है और कई क्षेत्र में हमारे व्यापार को, हमारे उद्योगों को ये प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा ना हो, भारतीय सामानों को अमेरिका के बाजारों में आसान पहुंच मिले, इसीलिए हम अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर ये ट्रेड डील कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट के क्षेत्र में लगभग 30% यानी 29.4% 29.4% का निर्यात हम अकेले अमेरिका को करते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों, मेडिकल उपकरणों में लगभग 10% सीधा अमेरिका को। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर मशीनरी 8.24%। रत्न और आभूषण लगभग 6%, 5.85%। मिनरल फ्यूल्स और मिनरल ऑयल्स में भारत का 4% निर्यात यानी एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को जाता है। अब अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हैं तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा, हमारे सामानों की अमेरिका में पहुंच आसान हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। दुनिया के 20 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के साथ इसी तरह की ट्रेड डील्स की है और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया है, बहरेन है, कनाडा है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, ओमान है, ये सभी देश शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया है। दुनिया का कोई देश कभी ये नहीं चाहेगा कि जिस देश के साथ व्यापार करने में उसे मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा कम हो, जाहिर सी बात है। और हम भी इसी को सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि हम जिन देशों के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं उनकी गिनती पहले ही बहुत सीमित है और इनमें भी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा है, जिसके कारण भारत के लिए ये ट्रेड अहम है, ये ट्रेड डील बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड डील अचानक से हो रही है। साल 2010 से लगातार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील या ट्रेड अग्रीमेंट करने की कई बार कोशिशें हुई। भारत अमेरिका के सामानों पर जो ज्यादा टैरिफ लगाता है उस पर भी हमेशा से एक विवाद रहा। यानी संक्षेप में कहें तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना हमारे आर्थिक हित में है और हम जानते हैं कि इससे भारत में भी अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा। उदाहरण के लिए मई 2025 में अमेरिका ने भारत को $3,802 मिलियन का निर्यात किया था, जो इस साल मई 2026 में बढ़कर $5,872 मिलियन हो गया और इसमें लगभग 54.4% की वृद्धि है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का निर्यात ही बढ़ रहा है। कई मई महीने में देखिए अमेरिका को भारत ने $45.2 बिलियन का निर्यात किया, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा था। इससे तो यह पता चलता है कि हम अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए इस ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए,

0: Be careful.
1: अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए रक्षा सौदों पर ज्यादा जोर देते आया है, जबकि मौजूदा सरकार में अमेरिका को इसमें बहुत सफलता नहीं मिली। आप आंकड़े देखिए, 2021 से 2025 के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत था, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश अमेरिका। अब इसी स्थिति में अमेरिका यह चाहेगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा हथियार खरीदें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में अकेले 42% हथियार बेचे, तब अमेरिका भारत को हथियार बेचने वाले देशों की सूची से गायब रहा। जब सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने बेचे, हमने साल 2021 से 2025 के बीच रशिया से 40%, फ्रांस से 29%, इसराइल से 15% हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका इस सूची से बाहर रहा और राष्ट्रपति ट्रंप को इससे भी परेशानी हुई। हालांकि यहां अमेरिका ने इस बात को नहीं समझा कि भारत लगभग सभी देशों से अमेरिका जो है वो रक्षा आयात को कम कर रहा है और अब हमारा पूरा फोकस मेड इन इंडिया हथियार बनाने पर है। तो भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अन्य देशों से जो हम हथियार खरीदते हैं उसको कम करें, मेक इन इंडिया को बढ़ाए। आज ही नए आंकड़ों में ये सामने आया कि साल 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन, जानते हैं, 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2013-14 में सिर्फ 43,746 करोड़ रुपए था। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम अपने देश के मेड इन इंडिया हथियार, गोला बारूद, कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहे हैं। और यही नहीं, पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आज हम हथियारों को बेच भी रहे हैं। 2013-14 में हमारा रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2025-26 में ये 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और 12 सालों में इसमें 5,500% की वृद्धि हुई और आज हम 80 देशों को मेड इन इंडिया हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। आप भी जब 28 मई की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हुई उस सैन्य परेड की है जिसमें भारत के कई आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति रडार सिस्टम सब शामिल थे। और सोचिए, आर्मेनिया ने ये हथियार हमसे खरीदे हैं और इन्हें अपनी सैन्य परेड में दिखाया और ये इस बात का भी प्रमाण है कि अब हम रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में भी बड़ा बदलाव ला रहे हैं। देखिए,

0: ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के रिश्तों का स्वरूप सिर्फ भारत के साथ बदला है। आज यूरोपीय देशों और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव है, और जिस मिडल ईस्ट में खाड़ी देशों को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता था, वो खाड़ी देश भी अमेरिका को लेकर अपनी नीति बदल रहे हैं। और यही वजह है कि बढ़ते तनाव और आलोचनाओं के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो सिर्फ इस साल में राष्ट्रपति ट्रंप चाइना, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, नेटो देश, इजिप्ट और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं। और पिछले 1.5 सालों में पूरी दुनिया की राष्ट्रपति ट्रंप से यही शिकायत रही है कि वो खुद दुनिया का बॉस दिखाना चाहते हैं खुद को। और G7 देशों की बैठक में भी राष्ट्रपति ट्रंप एंट्री मार रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने मजाक में सबसे पहले यही कहा, आई एम द बॉस। सुनिए।
1: Hello,
2: I'm the boss.
1: How are you?
2: Good, thank you.
1: Okay. Thank you, dear colleague.
2: Would you like to stay for the meeting?
3: Yes.
4: Yes.
2: It's okay with me.
4: Thank you very much. Very good. Thank you very much.
0: जब भी इस तरह के बड़े समिट्स होते हैं तो आम लोग यही सोचते हैं कि इनमें व्यापार, सुरक्षा, युद्ध, टेक्नोलॉजी, गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन हॉट माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होने वाली बातचीत से ये पता चलता है कि वैश्विक चर्चा के बीच ये नेता अक्सर जब ऐसे मिलते हैं, फोटो ऑप के लिए पहुंचते हैं, तो निजी विषयों पर भी बात करते हैं। जैसे इस बार जो G7 समिट हुआ उसमें कई बड़े नेताओं को सिगरेट, फुटबॉल, वर्ल्ड कप, तोहफों जैसी बातों पर हल्के फुल्के मजाक करते हुए सुना गया। इनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को हॉट माइक पर यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने 1 महीने से सिगरेट नहीं पी है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने उनसे ये पूछा कि अगर उन्होंने 3 कप कॉफी पी है तो सिगरेट कितनी पी है। जब वहां मौजूद बड़े बड़े नेताओं को यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है तो वो उन्हें बधाई देने लगते हैं। ये हॉट माइक मोमेंट यहीं खत्म नहीं होता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ये कहते हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में काबो वर्डे के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हैं, जिसने स्पेन को ड्रॉ पर रोक दिया। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हॉट माइक में एक जगह राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपियन काउंसिल के चीफ एंटोनियो कोस्टा से ग्रीनलैंड कहते हुए सुनाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये समिट सिर्फ गंभीर मुद्दों पर चर्चा तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनमें वैश्विक नेता एक दूसरे से निजी मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। और जब ये बातचीत बाहर आती है तो दुनिया इसे हॉट माइक मोमेंट भी कहती है।
1: Yeah. Good. Well, today.
5: Yeah, yeah, yeah, raise the standard. So you can consider me a fighter now.
1: Yes. No, just a lazy.
5: Yeah.
1: No, no.
5: Yes, yeah. I had to take 3 cups. Yes.
6: This morning?
5: Yes.
6: In the wake up.
1: And a cigarette.
5: No.
6: You started.
1: No. Hey, Georgia.
2: When?
1: No. Last night. 1 month.
5: Good.
1: And I don't
2: know if the same. You were weeks ago.
1: When did you stop?
2: I stopped talking.
1: Doesn't change.
2: And that's it. Never got back.
1: Never.
2: I stopped it.
1: 20 years ago.
2: Now it's just with teenage children.
1: Yeah. You tried. You tasted.
2: Well, so far so good.
5: So you've been smoking one of your last cigarettes with me.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह बातचीत भी काफी वायरल हो रही है। आपको याद होगा पिछले साल जब चाइना में एससीओ समिट के बाद विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब उसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से 150 साल तक जीवित रहने की बात कह रहे थे और तब इस पर भी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई थी। 150 साल जीवित रहने की बात ये तीनों कर रहे थे। सुनिए, अब इस तरह की हल्की फुल्की बातचीत ये भी याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के औपचारिक और गंभीर माहौल के पीछे व्यक्तिगत रिश्ते, अनौपचारिक संवाद, मानवीय जुड़ाव भी कूटनीति का हिस्सा है। खैर, G7 देशों के समिट के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपना 100वां विदेशी दौरा भी पूरा कर रहे हैं। साल 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 15 और 16 जून को भूटान की विदेश यात्रा पर गए थे और उसके बाद से लेकर आज तक वो कुल 78 देशों की 100 विदेश यात्राओं पर जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 49 विदेशी यात्राएं उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, 27 विदेशी यात्राओं पर अपने दूसरे कार्यकाल में वो गए और 24 विदेशी यात्राएं वो अब तक के अपने तीसरे कार्यकाल में पूरी करने वाले हैं। अगर यूपीए सरकार की बात करें तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 73 विदेशी यात्राएं की थी, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर साल औसतन 7.3 विदेश यात्राएं की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल औसतन 8.3 विदेशी यात्राएं की और इनमें दोनों आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनमें भी G7 समिट में अब तक भारत कुल 13 बार शामिल हो चुका है, जिनमें पिछली बार 7 बार से प्रधानमंत्री मोदी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की चर्चा के बीच देश की राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है। एक खबर शिवसेना उद्धव ठाकरे, जी हां, शिवसेना यूपीटी के सांसदों की बगावत से जुड़ी है और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के उस दावे से जुड़ी और फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान से जुड़ी जिसमें उन्होंने शिवसेना यूपीटी के बाद अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है बता दिया है। टीएमसी में हुई बगावत और शिवसेना यूपीटी में बगावत की अटकलों

0: उनके इस बयान को उसी का हिस्सा माना गया। उन्होंने राम गोपाल यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए पत्र का जो दावा किया है उसको लेकर लोगों में संदेह है, क्योंकि पत्र दिए जाने का एक वीडियो वायरल जरूर है, लेकिन ये वीडियो बहुत पुराना है, पिछले साल मार्च के महीने का है। अब ओपी राजभर का दूसरा दावा साल 2016 के बालू खनन घोटाले और पीएम मोदी के सदन में दिए गए एक बयान को लेकर है। बालू खनन घोटाले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप लगे थे, जो गैंगरेप के एक मामले में फिलहाल जेल में है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और ओपी राजभर का ये दावा है कि सीबीआई की वजह से ही समाजवादी पार्टी समय समय पर केंद्र को समर्थन देती है और इसके संकेत पीएम ने दिए हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को दोस्त बताते हुए उनसे समय समय पर मदद मिलने की बात कही थी। सुनिए।
1: धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं।
0: यूपी से समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उसमें बगावत होती है तो लोकसभा में कम से कम 25 सदस्यों को, राज्यसभा में कम से कम 3 सदस्यों को बगावत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दल बदल विरोधी जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आज यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी में बगावत की बात कह दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 26 सांसद बगावत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल उनको तोड़ नहीं रही है। सुनिए।
2: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती।
0: समाजवादी पार्टी में बगावत की अटकलों के अलावा शिवसेना यूबीटी में दिख रही बगावत ने भी तूफान मचाया हुआ है। इसका असर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की भाषा में दिखने लगा है। अपने सांसदों की बगावत की खबरों से गुस्साए हुए संजय राउत ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने अपशब्द कहने के बाद पत्रकारों से यह भी कहा कि उनके बयान को एडिट ना करें, मतलब गाली गलौज जाने दें, पूरा दिखाएं। हम आपको संजय राउत के मुंह से निकले वो अपशब्द तो नहीं सुनवाएंगे, लेकिन बयान पूरा सुनवाते हैं।
3: पीछे लोग कौन जाता है, कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा।
0: संजय राउत की भाषा को लेकर उनका खूब विरोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जून का महीना है, शिवसेना के लिए फिर बगावत का मौसम आया है। आपको याद होगा पिछली बार जून का ही महीना था, जून 2022 में ही शिवसेना विधायकों ने बगावत की थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया था और इस साल जून में ही शिवसेना के सांसदों के बगावत की खबरें आने लगी हैं। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसदों में से 6 सांसदों के बागी हो जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे नाइक, संजय जाधव और भाऊ साहब वाकचौरे का नाम शामिल है। संख्या 6 है, इसीलिए बगावत की आधिकारिक घोषणा होने पर इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। यही वजह है कि संजय राउत परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। उन्हें पता है कि अगर इन 6 सांसदों ने बगावत कर दी तो उन्हें रोक नहीं पाएंगे और कानूनी कार्रवाई से उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। संजय राउत का कहना है कि जिन सांसदों के बगावत की खबरें आई हैं उन्हें 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें भी केवल 3 सांसद अनिल देसाई, राजा भाव वाजे और अरविंद सावंत ही मौजूद है, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने बाकी सांसदों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा भेजा हो, क्योंकि संजय राउत ने बाकी सांसदों से मीडिया में अटकलों का खंडन करने की अपील की है।

0: पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, संसदीय दल की बैठक। इसके अलावा सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, जिसमें बागी सांसदों के पत्र को संज्ञान में ना लेने की अपील की गई। शिवसेना यूबीटी के सांसदों को चेतावनी मिली है कि कल होने वाली बैठक में जो भी सांसद शामिल नहीं होगा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
1: ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी और बालासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है, और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे। पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े।
0: शिवसेना यूबीटी में जो खलबली मची है वो यूं ही नहीं है। दरअसल सूत्रों से खबर है कि बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी चिट्ठी पहले ही सौंप दी है। माना जा रहा है कि ये बागी सांसद गुट अलग गुट बनाना चाहता है, फिर कुछ समय बाद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एक खबर यह भी है कि लोकसभा स्पीकर बागी सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे। ये वैसा ही है जैसे टीएमसी के सांसदों से भी लोकसभा स्पीकर ने व्यक्तिगत मुलाकात की थी, उसके बाद ही उनका पत्र स्वीकार किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी का मौजूदा जो राजनीतिक संकट है वो साल 2022 जैसा आ गया है। उस वक्त शिवसेना के दो हिस्से नहीं हुए थे, लेकिन बगावत की अटकलें लगने लगी थी। बगावत की खबरों के बीच व्हिप जारी करके विधायकों को बुलाया गया, तब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक पार्टी से अलग हो गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम की दो अलग अलग पार्टियां ही बन गई। अब एक बार फिर से उद्धव की शिवसेना में बगावत की खबरें हैं और बहुत बड़ा संकट। क्या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक सुलगती विद्रोह की आग क्या पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करा देगी? पहले ये सुनिए।
2: क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे होगी। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी, तुम रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है।
0: खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पीओके में भड़की बगावत ने इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीओके वाकई पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा? जवाब है काफी हद तक हाँ, और इसके आसार बहुत मजबूत हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। कागजों पर पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, दिखावे के लिए यहां पर संसद है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लेकिन हकीकत में इस कठपुतली सरकार का रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है, मुनीर के हाथों में है। इतिहास गवाह है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कानूनी तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। ठीक वैसे ही जैसे देश की बाकी 560 रियायतें जो रियासतें हैं वो मिली थी। लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में अपनी फौज भेजकर धोखे से भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया, और वो भी अवैध कब्जा। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड समझिए, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 1 में देश के 4 प्रांत है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। इस लिस्ट में पीओके का नाम तक नहीं है। पाकिस्तान की संसद में पीओके का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पीओके को चलाया जाता है अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत। यहाँ की 14 सदस्य कश्मीर काउंसिल का असली बॉस खुद पाकिस्तान का पीएम होता है, शाहबाज शरीफ। पाखंड की हद देखिए, पीओके में चुनाव लड़ने के लिए एक हलफनामे पर दस्तखत करने होते हैं, जिसमें लिखा होता है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की विचारधारा के प्रति वफादार रहेगा, यानी जो सच बोलेगा वो सिस्टम से बाहर। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि यह जमीन भारत का अटूट हिस्सा है। आज से 32 साल पहले 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान को हमारा वो हिस्सा खाली करना ही होगा। आज जब पीओके की आवाम आटे दाल के लिए तरस रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सच साबित होता हुआ दिख रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
3: पीओके में डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं यह कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है।
0: अत्याचार और धोखे के दम पर कब्जा ज्यादा दिन नहीं टिकता। पीओके की जनता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। देखना यह है कि इस्लामाबाद इस कड़वे सच को कब स्वीकार करता है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते रहिए।

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाए।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
5: संजय जी, आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई, वैसी शिवसेना के साथ, यूपीडी के साथ,
6: हम पहले जा चुके हैं, वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब, और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मराठी सियासत के समंदर में पश्चिमी विक्षोभ ऐसा लो प्रेशर बना रहा है कि उद्धव के नेताओं की जुबान और मिजाज का मौसम बिगड़ने लगा।
1: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का
0: उद्धव की पार्टी परेशान है क्योंकि 4 साल पहले इसी जून में पार्टी टूटी और वही जून सांसद तोड़ने की बुरी खबर लेकर आ रहा है। खबर है कि उद्धव की पार्टी से 6 सांसद शिंदे कैंप में जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में गली चौक चौराहे पर पोस्टर लग गया कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, क्योंकि 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस आ रहा है। उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों की मोहभंग की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओमराजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाव साहब वागचौरे का नाम शामिल है। बागी गुट के सांसद दिल्ली में और संजय राउत का आरोप कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर इन सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। सूत्र कहते हैं कि इन नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, हालांकि एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को दे दी गई और 4 पन्ने की इस चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान न लेने की अपील की गई। और खबर ये भी कि पाला बदलने वाले हर सांसद से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने 18 जून का व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा, जिसमें गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है। अब उद्धव की पार्टी को कल की बैठक का इंतजार है, जिसमें तस्वीर और साफ होगी कि बागियों के खिलाफ उद्धव क्या कदम उठाते हैं। उससे पहले इस बगावत को लेकर कांग्रेस भी बयान युद्ध में उतर गई। बस चंद घंटों का इंतजार और तब महाराष्ट्र समेत पूरे देश को पता लगेगा कि बाला साहेब वाली शिवसेना के झंडे पर टंगा टाइगर किस नेता की शागिर्दी अब कबूल करेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और हर खेल किस्मत नहीं खेलती, कई बार इंसान भी खेल जाते हैं इंसानों के साथ।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: फ्रांस में ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे। मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर दिया जोर। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा स्टूडेंट्स का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली। राहुल बोले, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले समाजवादी पार्टी में 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल का पलटवार, इन्हें हम फिर हराएंगे। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बाकी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र। उद्धव ने कल बुलाई है संसदीय दल की बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में खड़गे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बीजेपी की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के जिम्मे जांच, राज्यसभा सभापति को सौंपेगी कमेटी रिपोर्ट।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
0: Namaskar, aap dekh rahe hain aaj tak, aapke saath main hoon Saeed Ansari. Swagat hai aapka, raat ke 10 baj rahe hain aaj tak, par aap dekh rahe hain 10 tak. 16 महीने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की। करीब 19 मिनट की प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी की वर्किंग स्टाइल, मोदी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री, रिश्तों की पूरी हिस्ट्री समझाई। ट्रंप का संदेश यही है कि मोदी के साथ उनकी दोस्ती पक्की है, क्योंकि ट्रंप मोदी के मुरीद हैं।
3: सोलह महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं, कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
4: I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
3: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
4: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
3: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
5: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
4: That's okay.
5: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
4: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now...
3: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
4: Steve, how close are you to a US-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough traitor.
3: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा.
4: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
3: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं. ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है.
4: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो थी वो आमने सामने आए 16 महीने बाद. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई थी. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों के नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में खड़ा हुआ बहुत बड़ा तेल संकट. आइए हम आपको सुनवाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से क्या क्या कहा.
3: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले. तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी. ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
6: राष्ट्रपति जी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं.
3: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
6: एक्सेलेंसी आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
3: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
6: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
3: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे.
6: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
3: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रो और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: जब 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड मिले तो हमारी संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने भी राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, तो आइए आज तक के सवाल के जवाब में ट्रंप ने क्या कहा सुनिए।
7: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
4: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
0: प्रणय उपाध्याय, सीधे हम आपको लिए चलते हैं। और जब ये मुलाकात हो रही थी, प्रणय वहाँ पर मौजूद थे, उनका सवाल आपने सुना। ओवरऑल कैसी रही मुलाकात और जो हमारे मन में शंकाएं थी, प्रणय, क्या उनका समाधान होता हुआ दिखा आपको?
7: देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो 16 महीने बाद मुलाकात हुई, उसने निश्चित रूप से जो 16 महीनों के दौरान हुआ जो तलखी, जो उलझन, जो परेशानी थी, उसे अपने कम से कम बयानों से दूर करने की कोशिश थी। ये आश्वासन देने की कोशिश थी कि हम रिश्तों को लेकर न केवल संकल्पित हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, हम उसे मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कई बार उनकी प्रशंसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने ये आश्वासन देने की कोशिश की कि भारत के साथ वो अपनी इस रिश्ते को, इस दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम केवल बयानों के आधार पर मूल्यांकन करें, आकलन करें, तो ये बहुत ही अच्छी बातों वाली मुलाकात थी। लेकिन रिश्तों का जो असली आकलन, उसका जो असली मूल्यांकन होता है, वो सही वो जमीन पर उतरने वाले फैसलों के आधार पर होता है। तो निश्चित रूप से भारत की अपेक्षा होगी कि अगर इतनी अच्छी बातें कही गई हैं, तो वो बातें और वो जो मंशाएं हैं, वो कम से कम जमीन पर भी उतरें, चाहे वो भारत के लिए टैरिफ का मुद्दा हो, या भारतीयों के लिए के हितों से जुड़ा हुआ मामला हो, या भारत की जो संवेदनशीलताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला।
0: बिल्कुल ठीक है प्रणय, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ट्रेड डील की बात हुई है, हम अभी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि वो ट्रेड डील में हमें बहुत फायदा होगा और वो ट्रेड डील बहुत जल्द मूर्त रूप लेगी?
7: बिल्कुल सही, मैं ये कह सकता हूँ आज की मुलाकात को देखने के बाद कि जहां तक ट्रेड डील का मामला है, देखिए अमेरिका भी चाहता है इस ट्रेड डील को करना। और भारत का अगर आप ट्रेड स्पेक्ट्रम देखें, तो भारत करीब 12,000 टैरिफ लाइंस के ऊपर ट्रेड करता है, और उसमें से 11,000 टैरिफ लाइंस जो हैं, वो इस यूएस के साथ होने वाली ट्रेड डील का हिस्सा होगी, यानी एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल होगा। लेकिन भारत की चिंताएं इस समय जो सेक्शन 2301 और सेक्शन 232 के तहत अमेरिका के अंदर जो जांच शुरू की गई है, उनको लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके नाम पर बैकडोर से फिर से एक नया टैरिफ जो है वो ला दिया जाए। तो वो चिंताएं स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ से हैं, जिसको लेकर बातचीत हो रही है। और अगले हफ्ते जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को भारत आना है, उसके उनके और साथ होने वाली बातचीत में भी इस विषय के ऊपर चर्चा होगी। और उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि जो अभी तक का काम हुआ है बीते कुछ महीनों के दौरान, जिसके अंदर रफ्तार भी आई सहित, कि जुलाई महीने तक यानी अगले कुछ हफ्तों के दौरान ये जो ट्रेड डील है, इसकी कम से कम इसकी जो प्रारंभिक डील है वो हो जाएगी।
0: चढ़े हैं आप वहां पर क्योंकि मौजूद थे और केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं. हम आते हैं दोबारा आपके पास. रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं. रोहित, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं और भारत अमेरिका के रिश्तों में इसका क्या असर पड़ेगा?
8: एक बहुत समय से जो हमारे रिश्ते जिसको बहुत हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक था, आई थिंक उसे ठीक करने की कोशिश की गई है. आई थिंक सेक्रेटरी रूबियो पिछले महीने भारत आए थे, उन्होंने 4 दिन भारत में बिताए, एक रीसेट करने की कोशिश की. और ये जो बायोलैटरल मीटिंग हुई है, हालांकि बहुत छोटी सी मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें अगर हम 2-3 चीजों को उसमें हटा भी दें कि चलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्रधानमंत्री मोदी ने हग नहीं किया, गले नहीं लगाया एक दूसरे को, लेकिन उसके बावजूद जो बातें कही हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आई थिंक काफी इंडिकेटिव है कि वो सचमुच प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करते हैं, वो वैल्यू करते हैं भारत के साथ रिलेशनशिप को. सेंट्रल फिगर बनाया है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के साथ रिश्तों को लेकर. उन्होंने बहुत बार कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी भारत के नेता है, वो भारत के साथ सब कुछ करने को तैयार है, डिफेंड करने को भी तैयार है अगर कोई भारत दूसरा देश भारत पर अटैक करता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रीसेट किया गया है रिलेशनशिप को. इसके आगे जो पड़ाव है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ट्रेड डील होने वाली है और जब वो ट्रेड डील हो जाएगी तो मुझे लगता है ये रिश्ते अपने आप वापस से पटरी पे आ जाएंगे. लेकिन मुझे लगता है इन ऑल फेयरनेस टू बोथ द लीडर्स, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट और होंगे इस रिलेशनशिप पे.
0: बहुत धन्यवाद रोहित आपका. प्रणय उपाध्याय, रोहित शर्मा हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ थे. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया. तो आइए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा.
9: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई, तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है. इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है. सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें. आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए. मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेवेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं. दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई. हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पथनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए. पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया. दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया. तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे. ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए. 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है. भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस पर तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया. आज तक ब्यूरो.
0: आइए वॉशिंगटन हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं. G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस वैश्विक आर्थिक संकट के बीच उनकी मुलाकात का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर और अमेरिका भारत के रिश्तों के सुधरने पर कितना असर पड़ेगा रोहित?
8: देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर ओपन हो जाता है, जिसकी कयास लगाया जा रहा है कि इस फ्राइडे को जब एमओयू साइन होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो जाएगा, हालांकि समय लगेगा उसमें भी। सही, जैसे कि आप जानते हैं कि इतनी जल्दी तो चीजें नॉर्मल नहीं होगी। तो आई थिंक आर्थिक व्यवस्था की जो आप बात करें, जो भी प्रेशर है, प्रेशर पॉइंट स्पेशली एनर्जी को लेकर, उस पर इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आई थिंक इस मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, मुझे लगता है ये जो मीटिंग है जो 16 महीने बाद हुई है, इवेंचुअली अब एक तरीके से फिर से रीसेट रिलेशनशिप होने के बाद फ्रैंक कॉन्वर्सेशंस दोनों लीडर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब यहां से चीजें ठीक होगी। ट्रेड डील के लिए यूएसटीआर जेम्स ग्रेयर भारत आ रहे हैं, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो सेक्रेटरी रूबियो ने हमें जो इंटरव्यू दिया था उसमें हमें बताया था कि क्वाड लीडरशिप मीटिंग की बात होगी, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो भारत आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली हमारी जो रिलेशनशिप है वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। सही,
0: बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान अमेरिका डील पर अगले 48 घंटे बहुत भारी। आप देखते रहिए दस्तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
11: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हम राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई। अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है। बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी। टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है। SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण एस और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे। इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। SIT तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

जिस अयोध्या में राम नाम की गूंज थी, वहीं अब सवाल गूंज रहा है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई, क्या राम के दान की लूट हुई, क्या चढ़ावे के वारे न्यारे हुए। करीब दो हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान में गड़बड़ी हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मसले को हवा दे दी, फिर तो राम मंदिर में चोरी का शोर लखनऊ से दिल्ली तक जा पहुंचा। मामला यही नहीं रुका, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी सवाल खड़े कर दिए और एक कार सेवक तहरीर के साथ थाने पहुंच गया। इस तहरीर में वो तीन बड़े नाम हैं जिन पर राम मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि जब भक्तों ने श्रद्धा से दान दिया तो उसकी एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। संत समाज भी चाहता है कि सच सबके सामने आए। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार आरोपों को नकारता रहा, लेकिन इसके बाद एक शिकायत पीएम तक पहुंची और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। मामला राम मंदिर का है तो सवाल विपक्ष से हैं। मसलन, उनका क्या राम मंदिर से लेना, उनका क्या राम से लेना, राम तो सिर्फ सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष कहाँ है। सियासत अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह, लेकिन भगवान के दान में चोरी लूट के आरोप बेहद गंभीर हैं। ये ना सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ है बल्कि उन करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ बेईमानी है, चोरी है। संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

सच्ची दोस्ती क्या होती है ये स्लोवाकिया ने कई देशों को सिखाया है। रिश्तों की मजबूत बुनियाद पर कैसे भरोसे की इमारत बुलंद होती है ये स्लोवाकिया ने बताया है। पीएम मोदी के दौरे पर स्लोवाकिया ने ऐलान किया है कि वो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। स्लोवाकियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया और भारत का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे तो उनका वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। फिर कुछ ही घंटों में दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की किताब में नया पन्ना जुड़ा। 1993 में स्लोवाकिया आजाद हुआ था, तब से अब तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। स्लोवाकिया और भारत ने जोर दिया कि वर्तमान हालात में यूएन और यूएनएससी जैसे वैश्विक संगठन में व्यापक सुधार जरूरी है। पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। शानदार स्वागत के साथ इस दौरे का आगाज हुआ और वापसी से पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम फिको ने पीएम मोदी के लगातार 12 सालों के नेतृत्व को असाधारण उपलब्धि बताया और भारत में राजनीतिक स्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। रॉबर्ट फिको के साथ पीएम मोदी ने एक अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पहले पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीईओ के साथ मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका, आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। शांति समझौते की शर्तों पर आगे की वार्ता शुरू करने की पूरी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन 19 जून से पहले लेबनान को लेकर ईरान और इसराइल आमने सामने हैं। ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों को लेकर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, मतलब एक बार फिर से ईरान और इसराइल में युद्ध छिड़ सकता है। ईरान ने ऐलान किया है कि लेबनान शांति समझौते का हिस्सा है, इसलिए लेबनान पर इसराइली हमले समझौते का उल्लंघन है। ईरान का आरोप है कि बीते 48 घंटों में लेबनान ने 84 बार लेबनान पर इसराइल ने हमला किया, युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो क्या लेबनान पर इसराइली हमलों के कारण से अमेरिका ईरान डील अटक सकती है? लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर हम डील नहीं करते तो हॉर्मुज नहीं खुलता। ट्रंप ने हॉर्मुज खुलने का क्रेडिट खुद को दिया है। दुनिया में आर्थिक तबाही मैं नहीं देखना चाहता था, इसलिए डील की और हॉर्मुज खुला, और हॉर्मुज अगर नहीं खुलता तो डील अगर हम नहीं करते तो बिल्कुल नहीं खुलता, और जो दुनिया परेशान है वो आर्थिक तबाही दुनिया में जारी रहती, मैं वो नहीं देखना चाहता था।

0: would say that's about 99.9% of what I wanted.
1: 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं। लेकिन 19 जून से चंद घंटे पहले ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ईरान का आरोप है कि पीस डील पर सहमति बनने के बाद भी लेबनान में इजरायल ने 84 बार युद्ध विराम का खुला उल्लंघन किया है। ईरानी सेना ने इसराइल को धमकी दी है, अगर हमले जारी रहे तो आने वाले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की समाप्ति की घोषणा के बाद पिछले दो दिनों में इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। अगर बच्चों की हत्या करने वाली इसराइल सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी आक्रामकता नहीं रोकती है तो उसे ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी लेबनान पर इसराइल के हमलों को लेकर पीस डील पर सवाल उठाए हैं। दावा किया है कि सिर्फ ईरान के साथ संघर्ष का रोकना संपूर्ण युद्ध विराम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांति समझौते पर दस्तखत से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर इसराइल लेबनान से नहीं हटा तो समझौते में दिक्कत होगी। जब तक इजरायली सेना उन इलाकों से नहीं हटती जिन पर उसने इस युद्ध के दौरान कब्जा किया है तब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के आरोपों को इसराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसराइल का दावा है कि 84 बार युद्ध विराम तोड़ने का आरोप झूठा है। अमेरिका में इसराइल के राजदूत गेचिएल लेटर ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के मामलों में ईरान की बात पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे मुर्गियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोमड़ी को दे दी जाए। उल्टा इसराइल ने हिजबुल्ला पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इजरायली राजदूत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। दावा यही है कि बीते दिन दक्षिणी लेबनान में हथियारों का एक जखीरा बरामद किया गया। ये वही हथियार है जिससे लेबनान की धरती से इसराइल पर हमले किए जा रहे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति यही मानते हैं कि नेतन्याहू पीस डील को पटरी से उतारना चाहते हैं। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर हमले बोलते हुए कहा, नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं। लेबनान कभी एक देश था, अब वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। इसराइल ने जिस तरह से स्थिति संभाली है उससे वो खुश नहीं है। हर बार किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को गिराने की जरूरत नहीं होती। उन इमारतों में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सभी हिजबुल्ला के मेंबर नहीं होते। ट्रंप यही नहीं रुके, नेतन्याहू को आड़े हाथों लेते हुए एक और बड़ा दावा किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बराक ओबामा के आगे समझौता न करने के लिए गिड़गिड़ाए थे लेकिन ओबामा ने उनकी बात नहीं मानी। अगर ओबामा वाली डील जारी रहती तो अब तक ईरान परमाणु हथियार तक पहुंच चुका होता। लेकिन ये डील ईरान के परमाणु हथियार तक पहुंचने के रास्ते को रोकने वाली दीवार है। शांति समझौते को लेकर ट्रंप को बड़ी उम्मीदें हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों के बावजूद ट्रंप मानते हैं कि ईरान के साथ अब बात बिगड़ने का चांस बहुत कम है। अगले कुछ घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
0: Doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open.
2: Mr. President, when will the text of the MOU be released?
0: I think pretty soon. I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already.
1: वहीं इजरायली मीडिया का दावा है कि पीस डील को लेकर इजरायल और अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से शांति समझौते से जुड़ी जानकारी इसराइल के साथ साझा नहीं की गई। अमेरिका ने इस डर से ईरान समझौते की डिटेल के बारे में इसराइल को जानकारी देने से इनकार कर दिया है, ये कहकर कि इससे समझौते की शर्तें लीक हो सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की पीस डील से इसराइल को दूर रखना नेतन्याहू के गले नहीं उतर रहा है।
3: טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית אני ראש ממשלה.

0: ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם.
1: शांति समझौते को लेकर इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को ताक पर रखकर नेतन्याहू ना तो लेबनन पर हमले रोकने को तैयार हैं और न ही लेबनन की उस जमीन से पीछे हटने को राजी हैं जो युद्ध के दौरान उनके कब्जे में है।
0: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
1: भले ही ट्रंप और नेतन्याहू के लहजे में तनाव झलक रहा है, लेकिन इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने हिजबुल्ला और हमास को लेकर ईरान को चुभने वाला बयान दिया है। ईरान मांग कर रहा है कि इजराइल हिजबुल्ला के खिलाफ अपनी सीमा की रक्षा करना बंद कर दे, जबकि गाजा शांति योजना हमास के निशस्त्रीकरण पर निर्भर थी। हिजबुल्ला और हमास के हर सदस्य को ईरान में मुख्य केंद्र भेज दिया जाए, नतीजा ईरान के आतंकी गुर्गों से लेबनन और इजराइल मुक्त हो जाएंगे। शांति को एक मौका दीजिए। इजराइल को लेकर ट्रंप का दावा कुछ और है, जबकि अमेरिकी राजदूत का कुछ और। अब सवाल यही है कि शांति समझौते पर बनरा रहा खतरा टल जाएगा या फिर लेबनन पर इजरायली हमले के विरोध में ईरान पीस डील से पीछे हट जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं ईरान और अमेरिका के बीच डील साइन होने में अब बस चंद घंटे बाकी, लेकिन इस काउंटडाउन के बीच पीस डील को लेकर कई चौंकाने वाले और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने दावा किया है कि युद्ध के बाद ईरान और शक्तिशाली हो गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ये दावा किस आधार पर कर रही हैं, जबकि G7 देश इस डील का समर्थन कर रहे हैं तो अमेरिका के अंदर ही पीस डील पर मतभेद भी है। आइए आपको दिखाएं अगले 48 घंटों में क्या होगा और 48 घंटों के बाद क्या होगा।

0: 48 घंटे बाद क्या होगा? क्या आसानी से डील होगी सील? क्यों जेडी वैंस बोले ईरान को अमेरिका का एक डॉलर भी नहीं मिलेगा? क्यों अमेरिका के अंदर ही पीस डील की मुखालफत हो रही है? कहीं आखिरी वक्त पर पीस डील में कोई बड़ा खेल तो नहीं होगा? क्यों अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा ईरान और ज्यादा ताकतवर हो गया? 19 जून यानी शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में पीस डील साइन होने जा रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस होंगे तो ईरान की तरफ से बाघेर गालिबाफ डील साइन करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो अगले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान समझौते के पूरे दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे और जरूरत पड़ी तो समझौते को शब्द दर शब्द पढ़कर भी सुनाएंगे ताकि दुनिया के सामने डील की सही जानकारी सामने आ सके। अभी तक सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मैरीटाइम एनालिसिस फर्म विंडबर्ड ने बताया कि मंगलवार को 14 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जो इस महीने का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े से पता चलता है कि शिपिंग कंपनियों का भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। हालांकि मौजूदा ट्रैफिक अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक संघर्ष शुरू होने से पहले इस हॉर्मुज से औसतन करीब 130 जहाज रोजाना गुजरते थे, जबकि समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान का तीसरा तेल टैंकर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को पार कर गया। नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का टैंकर सोनिया 1 करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर निकला था। इससे पहले एनआईटीसी के दो टैंकर डायोना और हीरो 2 ने भी अमेरिकी नाकेबंदी पार की थी। इन दोनों जहाजों में कुल 38 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ था। इस डील में ईरान अपनी जीत मानकर चल रहा है।
1: 24 ساعت گذشته با تحولات
2: پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے کئی اہم گھٹنا کرم دیکھے ہیں۔ लेबनन समेत सभी मोर्चों पर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर युद्ध थोप रखा है। इस जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ये दो मनमानी करने वाली ताकतों के हमले और अपराधों के खिलाफ ईरानी लोगों की दृढ़ता और जबरदस्त प्रतिरोध का नतीजा था।
0: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने क्लियर कहा है कि समझौते का आधार तीन जरूरी सिद्धांतों पर रखा गया है। पहली शर्त, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। तीसरी शर्त, समझौते का पालन करने के बाद ईरान को आर्थिक लाभ मिलेगा। एक तरफ जेडी वैंस कहते हैं कि अगर ईरान का बर्ताव सही रहा तो उसे कई आर्थिक लाभ मिलेंगे और इसमें पहले ईरान को पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख 38 हजार करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताया और अब जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि समझौते के आलोचक वही गलती कर रहे हैं जो ईरान समर्थक प्रचार करने वाले लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ईरान को क्या फायदा मिल सकता है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसके बदले ईरान को क्या क्या शर्तें माननी होंगी। किसी भी स्थिति में अमेरिका का एक भी डॉलर ईरान को नहीं दिया जाएगा। अगर ईरान अमेरिका की सभी शर्तों का पालन करता है तभी अमेरिका दूसरे देशों को ईरान में निवेश करने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच डील के 14 पॉइंट वाले दस्तावेज में युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू करने, ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, तेल निर्यात जारी रखने की अनुमति, जमे हुए ईरानी फंड जारी करने और ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए बड़े निवेश की व्यवस्था जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि अब इस बात की 99.99% संभावना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत में कहा कि अब इस बात की 99.99% संभावना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बाद बाजारों में जबरदस्त तेजी आई है और तेल की कीमतें नीचे आई हैं। बाजार बहुत खुश है, यही सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन डील को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने नई चेतावनी दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बाद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि अब ईरान जब चाहे हुर्मुज को बंद कर सकता है। युद्ध के बाद ईरान के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक और नई ताकतवर क्षमता आ गई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो परमाणु बम से ज्यादा असरदार है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर परमाणु बातचीत टूटती है तो यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट पे भी संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े समुद्री व्यापार मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं, जबकि ईरान अमेरिका डील से ट्रंप सरकार के भीतर भी मतभेद पैदा हो गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ को शक है कि ईरान समझौते में किए गए सभी वादे निभाएगा या नहीं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी मानना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जिनकी अमेरिका उम्मीद कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी समझौते को लेकर चिंता जताई थी, जबकि उपराष्ट्रपति JD वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।
3: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
12: Sokudo.
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की कितनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे चिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे हैं, पाठक हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब चार महीना रह गया चुनाव को,
3: है ना? अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता? हाँ,
2: क्या लिखा?
3: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे।
2: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या?
3: क्या लिखे बतावे राम गोपाल जी बतावे कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो, आई जो तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो, योगी जी के इनकी जान बचौले रहा मंचवा पर।
2: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
3: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है, जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। आ रहा है बिल ना, महिला बिल पास होना है ना, समझ में आ रहा है बात ना?
4: एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट पर जोरों की चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव के सांसदों में सेंध लगने का दावा है। खुद उद्धव ठाकरे पार्टी की बैठक में ये कहते सुने गए हैं कि जिसे जाना हो खुशी से जाए, आज भले मेरा नहीं कल जरूर मेरा होगा, तब तक धीरज रखना होगा, सहना होगा। जो बाला साहेब की शिवसेना छोड़कर गए वो आखिर में पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का ये बयान रविवार को मुंबई में मातोश्री की बैठक में उनके सांसदों के रवैये के बीच आया। 9 में से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल मातोश्री पहुंचे थे। परभणी से संजय जाधव, शिरडी सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और सांसद ओम राजे निम्बालकर उद्धव की बुलाई बैठक में नहीं आए, जबकि दावों के मुताबिक संजय देशमुख और नागेश पाटिल ऑनलाइन बैठक में जुड़े थे। नागेश पाटिल का उद्धव से फोन पर बात करते हुए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सांसदों की गैर मौजूदगी से उद्धव की चिंता उजागर हो रही है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि ऑपरेशन टाइगर का जवाब ऑपरेशन वुल्फ है, और आज कह रहे हैं कि सांसदों ने कहीं नहीं जाने की कसमें खाई है। मातोश्री पर रविवार की बैठक में जो 5 सांसद खुद मौजूद नहीं थे, वही 5 सांसद शनिवार यानी 13 जून को आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में भी मौजूद नहीं थे। इन्हीं सांसदों में से एक संजय देशमुख ने शिंदे की शिवसेना के कोटे से केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। वैसे तो संजय देशमुख की सफाई आई है, लेकिन प्रताप राव जाधव अब उद्धव के सांसदों की तुलना टीएमसी के बागियों से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे इस मसले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
5: टाइगर चल रहा है, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
4: एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर न सिर्फ महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिराई थी, बल्कि शिवसेना की वो टूट आज महाराष्ट्र की राजनीति को बदल चुकी है। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों पर शुरू हुई चर्चा राजनीति का नया चैप्टर है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

फ्रांस में ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे। मुलाकात के बाद बोले, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। पीएम ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर दिया जोर। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा स्टूडेंट्स का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, उद्धव ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के जिम्मे जांच, राज्यसभा सभापति को सौंपेगी रिपोर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में परियों की कहानी न सुनी हो, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उत्तराखंड में परियों का एक पूरा देश है। ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि खुद उत्तराखंड सरकार भी इसे मानती है और इसीलिए उस जगह पर बाकायदा सरकारी बोर्ड लगे हैं। 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे, जो पिछले 20 दिनों से गायब है, अब उसकी गुमशुदगी को स्थानीय लोग इन्हीं रहस्यमय परियों से जोड़ रहे हैं।
1: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 144 किलोमीटर दूर यह है दयारा बुग्याल, ट्रैकिंग के दीवानों की पसंदीदा जगहों में से एक। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस दयारा बुग्याल तक पहुंचने के तीन सबसे अहम रास्ते हैं। ये तीनों रास्ते तीन गांव से होकर गुजरते हैं, बरसू, रैथा और नटरीन। ये रैथल गांव है। 29 मई को 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे अपने दो दोस्तों हरवरपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ इसी रैथल गांव के रास्ते दयारा बुग्याल पहुंची थी। ट्रैकिंग का पहला दिन था, रात होने से पहले तीनों एक टेंट में रुके, लेकिन 12:30 बजे के बाद बबीता अचानक गायब हो गई। ऐसा गायब हुई कि आज 20 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर बबीता गायब हो गई है तो गुम होने के सुराग क्यों नहीं मिल रहे? अगर बबीता को किडनैप किया गया है तो किडनैपिंग के सबूत क्यों नहीं मिल रहे? अगर बबीता को जानवर उठा ले गए तो जानवरों के उठाने के कोई निशान क्यों नहीं मिले? अगर बबीता का कत्ल कर दिया गया तो उसकी मौत के भी कोई सुराग और सबूत क्यों नहीं मिले? यानी पिछले 20 दिनों में न बबीता के जिंदा होने के सबूत मिले, न मुर्दा होने के। तो फिर सवाल है कि बबीता को पहाड़ खा गया या जंगल निगल गई? और बस यही वो चीज है जिसके बाद अब दबी जुबान में लोग बबीता की गुमशुदगी को परियों से जोड़ने लगे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि बबीता अब कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि उसे परियां ले गई हैं। उत्तराखंड में रहने वाले लोग परियों का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। ये बबीता के भाई हर्षित पांडे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब बहन का कोई सुराग नहीं मिला तो रिश्तेदारों और दोस्तों के कहने पर ये भी गांव के लोक देवता के पास पहुंचे। हर्षित ने आज तक को फोन पर बताया कि लोक देवता ने उन्हें यही बताया कि बबीता को परियां ले गई। बकौल हर्षित, लोक देवता का कहना था कि जो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं या अकेले होते हैं उन्हें परियां अपने साथ ले जाती हैं। पर क्या वाकई ये सच है? हमने इस सिलसिले में जब उत्तराखंड पुलिस से बात तो उनका कहना था कि कानून इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ लोकल लोग परियों की कहानी को सच मानते हैं।
2: बड़े बड़े बुजुर्ग जब हम ज्ञानसू में रहते थे तो कहते थे कि सब अंदर छुप जाओ क्योंकि ऊपर से परियों के रथ चल रहे हैं, और हम प्रत्येक दर्शी हैं, हमारे कानों में आवाज आती थी रथ चलने की और बिल्कुल घंटियों की आवाज आती थी, जो कि 10 साल बाद भोजवासा में भी सुनाई देती थी, और वो केवल गंगा स्नान के लिए आती थी।
3: जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है, आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता।
1: अब सवाल यह है कि इन परियों का सच है क्या? दयारा बुग्याल में 29 मई को जिस कैंप में बबीता रुकी थी, क्या वहाँ भी परियों का बसेरा था? वैसे आपको मजाक लगे, लेकिन ये सच है कि खुद उत्तराखंड सरकार ने टिहरी के खैंड पर्वत और आसपास के इलाकों को परियों का देश घोषित कर रखा है, वो भी लिखित। ये बोर्ड उसी उत्तराखंड प्रशासन का है, देखिए इस पर क्या लिखा है। ये बोर्ड बाकायदा जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की तरफ से यहाँ लगाया गया है। हालांकि जिस दयारा बुग्याल में बबीता आखिरी बार देखी गई थी, वहां से उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषित परियों के इस देश यानी खैंड पर्वत की दूरी 167 किलोमीटर है। लोक कथाओं को सच मानने वालों का कहना है कि परियां सिर्फ उन लोगों को उठाकर ले जाती हैं जो इन पर्वतों पर शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, चटकीले कपड़े पहनते हैं या यहां आकर गंदगी फैलाते हैं। पहाड़ी जुबान में परियों को आचरी और आचरी भी कहा जाता है।
4: इतिहास की जो धार्मिक और धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज भी यहाँ पर परियां वास करती है, ये परियों का देश इसीलिए कहा जाता है इसको। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरी ग्राम पंचायत चौनाड़ा में जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवी देवताओं का मंडाण लगाया जाता है, तो इसमें आज भी हम और हमारे गांववासी हमारे गांव से खैट पर्वत में परियां विचरण करते हुए दिखाई देती हैं, नाचते हुए दिखाई देती हैं सफ़ेद वस्त्र में। साथियों वहां पर वास्तव में आज भी परियां वास करती है।
5: ऐसी कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है, हमने किताबों में भी पढ़ा है, हमारी दादी हमारी नानियों ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां सुनाई है। और बिल्कुल ये चीजें हमने भाई जी जब हम वहाँ पे खैट पर्वत पे गए हैं तो हमने भगवती ने हमें जो वहाँ पर जो आचरी है उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए है, क्योंकि हमने वहाँ पर बिना देखे तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि सचमुच है कि नहीं है। वो भगवती ने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई है या फिर हमने वहाँ पे देखा है छोटी छोटी चीजें, वो हमने सचमुच महसूस की है भाई जी वहाँ पे।
1: यूं तो पूरे उत्तराखंड में परियों की कहानी आम है, लेकिन लोगों का मानना है कि परियों का असली निवास यानी परियों का देश टिहरी गढ़वाल के इस खैंट पर्वत पर है। खैंट पर्वत की लोक कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में स्थानीय राजा आशा रावत की 9 बेटियां थी जिनके पास दिव्य शक्ति थी। बाद में यही 9 बेटियां यानी 9 बहनें परियां बन गई। आज भी इसी खैंट पर्वत की 9 चोटियों पर रहकर गाँव वालों की हिफाजत करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि परियों को शोर शराबा तेज संगीत और चटकीले कपड़े पसंद नहीं, और जो भी इन पर्वतों पर इन नियमों को तोड़ता है वो उसे उठा कर ले जाती है या आने वाले को बाकायदा ये बातें पहले से बताई जाती है।
6: प्रताप नगर विधानसभा के खैट पर्वत की, जो कि परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध वह तीर्थ स्थल है। और जो जो साथी यहाँ पर गए हैं, जो जो जिन्होंने यहाँ पर जाने का प्रयास किया है, तो वो जब मंदिर ऊपर जा पहुँचे हैं तो उन्हें एहसास है, उन्हें अनुभव है, वह एक एहसास होता है कि एक वाइब्स आध्यात्म की एक ऐसी वाइब्स वहाँ से निकलती है कि लगता है कि वाकई हम माँ भगवती की गोद में हैं। आचरी मांत्री जिनका वो स्थान है उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये आचरी और मांत्री जिनको आज परियों के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी एक अलग इतिहास है। बाल्य अवस्था में ही इनको हर लिया गया था, बहने थी आपस में सभी।
1: जिस जगह से बबीता गायब हुई और जो चश्मदीद है जिन्होंने आखिरी बार बबीता को देखा, उनका कहना था कि रात 12 से 12:30 बजे के दरमियान बबीता अकेली कैंप के बाहर बैठ कर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। गाने की आवाज काफी तेज थी, जिस पर कैंप में मौजूद स्कूली बच्चों के टीचर ने बबीता को टोका भी और उसे कहा कि रात ज्यादा हो रही है, वो जाकर सो जाए। अब गांव वालों ने इसी बात को पकड़कर ये कहना शुरू कर दिया कि बबीता ने परियों के नियम तोड़े और इसीलिए उसे परियां उठा ले गए। लेकिन जहां तक कानून और पुलिस की बात है तो वो अब भी बबीता की तलाश में लगातार अपनी मुहिम चला रहे। जिस मलेरी थाने में बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, उस थाने के इंचार्ज दीपक नौटियाल ने आज तक को बताया कि बबीता की तलाश के लिए अब नई टीमों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां बबीता के होने की उम्मीद हो सकती है। दीपक नौटियाल के मुताबिक पिछले 20 दिनों में खासतौर पर तयारा बुग्याल के करीब के 3 बड़े गांव रैथल नटिया और बरसू और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ और जंगलों के चप्पे चप्पे को छाना गया। अब तक 40 से 50 किलोमीटर दायरे के अंदर पहाड़ जंगल सभी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तमाम गांव के लोग भी बबीता की तलाश में तमाम एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि बकराल यानी वो लोग जो गाय भैंस बकरी चराने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उनकी मदद भी ली जा रही है। इस पहलू से भी मामले की जाँच की जा रही है कि कोई जानवर तो बबीता को उठा कर नहीं ले गया, लेकिन अब तक उसके भी सबूत नहीं मिले। अगर ऐसा होता तो कम से कम जंगल या पहाड़ में ऐसी कोई भी निशानी जिनमें बबीता के कपड़े चप्पल मोबाइल या खून की बूंदे नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पहाड़ और जंगलों के अलावा पुलिस दयारा बुग्याल को जाने वाले तमाम रास्ते जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी बस्तियों बाजारों हाईवे लॉज गेस्ट हाउस होटल की भी पड़ताल कर रही है ताकि पता लगाया जा सके
0: कि बबीता खुद ही उस कैंप से निकलकर कहीं और तो नहीं चली गई। इन इलाकों के अलावा नैनीताल और उन दूसरी जगहों पर भी पुलिस की टीम बबीता को तलाश कर रही है, जहां उसके परिवार या दोस्त रहते हैं। लेकिन सैकड़ों सीसीटीवी खंगाल डालने के बाद भी बबीता किसी कैमरे में कैद नहीं हुई।
7: जैसा कि सभी को पता है कि बबीता पांडे 29 तारीख को रात 11:30 बजे से जैसे रिपोर्टिंग हुई मिसिंग है, तो उसमें जितने भी हमारे एफर्ट्स थे, चाहे पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फॉरेस्ट की टीम, एनआईएम की टीम और जितनी भी यहाँ पे लोकल यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम, तो जितने भी एफर्ट्स हो सकते थे सर्च के, तो हमने लगातार वो चलाया, लगातार चलाया और अभी भी जो है थाना स्तर पे और जनपद पुलिस स्तर पे लगातार जो है दयारा ट्रैक की और ऊपर गोई क्षेत्र जहाँ से मिसिंग हुई थी उसकी निगरानी हम लगातार कर रहे हैं। इधर से जो है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा पार्ट है, चाहे वो मोबाइल सर्विलांस हो या सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो, तो जितने भी दयारा रैथल से लेकर और तेखला पुल और ये उत्तरकाशी तक के सारे भी हमारे जो सीसीटीवी अपने भी सरकारी भी और जो प्राइवेट भी लगे हुए, तो एक अलग से टीम जो है उनके वो अवलोकन के लिए लगी थी।
0: अब तक बबीता का मोबाइल फोन भी बरामद नहीं किया जा सका है। बबीता के पास आईफोन था। आईफोन से फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस ने इस सिलसिले में एप्पल से भी मदद मांगी है, ताकि ये पता किया जा सके कि बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन कहाँ थी। बबीता के दोस्तों के मुताबिक 29 मई की रात जब वो लोग कैंप में पहुंचे थे, तो बबीता ने फोटो खींचने के लिए पहले से ही अपना मोबाइल 100% चार्ज कर रखा था। जब वो कैंप के बाहर रात को निकली, तब भी 55% बैटरी बची हुई थी। पुलिस के मुताबिक बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए उसके दोनों दोस्तों से लगातार पूछताछ की गई और अभी भी की जा रही है, लेकिन उनसे भी ऐसा कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे शक हो कि बबीता की गुमशुदगी में इन दोनों के हाथ हैं। दोनों की बातों को कई बार क्रॉस चेक भी किया गया, पर उनकी हर बात सही साबित हुई, इसीलिए दोनों को अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। उधर बबीता के भाई हर्षित के मुताबिक उन्हें बबीता के गायब होने की खबर 30 मई की शाम 5 बजे मिली थी। बबीता के दो दोस्तों में से एक हरमनपाल ने फोन कर पहली बार उन्हें बबीता के गायब होने की जानकारी दी। हर्षित के मुताबिक वो हरमनपाल और हरमनप्रीत से कई बार बात कर चुके हैं। उन दोनों ने जो बताया उसके मुताबिक 29 मई की रात 11 बजे वो कैंप में थे। बबीता कैंप के बाहर टहलने चली गई, फिर दोनों सो गए। सुबह देखा तो बबीता गायब। तीनों कार से रैथल गांव तक आए थे और कार गांव में ही छोड़ दी थी। तीनों के बाकी बैग और सामान कार में ही थे। बबीता का बैग भी अगले दिन उसी कार में ही मिला। हर्षित ने बताया कि पुलिस उसके परिवार को लगातार बबीता के सर्च ऑपरेशन की जानकारी दे रही है। पुलिस की एक टीम रामनगर और नैनीताल में भी बबीता को तलाशने जाने वाली है। दरअसल बबीता ने नैनीताल की ही डीएवी स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद वो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी, साथ ही कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में जॉब भी कर रही थी। घनसाली से पंकज भट्ट और नैनीताल से लीला सिंह बिस्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। बबीता पांडे 29 मई को अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी और उसी रात गायब हो गई। खुद लोकल पुलिस हैरान है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब तक बबीता का कोई सुराग क्यों नहीं मिला। हालांकि इस दौरान लगातार कई टीमें और एजेंसियां बबीता को तलाश रही हैं।
8: उत्तराखंड की वादियों में बसा ये है ट्रैक दयारा बुग्या। तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के बीसियों पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। रामनगर की रहने वाली 24 साल की एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे ने भी अपने दो दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक तक पहुंची थी। तारीख थी 29 मई, लेकिन अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है। बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग, जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी और ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो 28 मई को दिन में उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में बबीता अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है। बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है। सवाल है, आखिर उसके साथ क्या हुआ? वो कहां चली गई? आखिरी बार उसे कब और किसने देखा? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है? बबीता की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है और उसकी तलाश कहां तक पहुंची, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए उसके ट्रैकिंग के लिए घर से निकलने से लेकर गायब होने तक की इस पूरी कहानी को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बबीता 25 मई को उधम सिंह नगर से अपने दो दोस्तों के साथ निकली थी। इसके बाद वो अलग अलग जगहों से घूमती हुई 28 मई को रैथल गांव पहुंची। ट्रैकिंग पर जाने से पहले बबीता ने घर वालों को बताया था कि वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। चूंकि बबीता पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी, घर वालों ने उसकी इस ट्रिप पर कोई भी एतराज नहीं किया। मगर सच्चाई कुछ और थी। बबीता लड़कियों के साथ नहीं बल्कि दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी और उसका सबूत उसकी गुमशुदगी के पहले के ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज हैं। इनमें वो एक होटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई और कहीं जाती हुई नजर आ रही है। यहां बबीता के साथ दो लड़के भी देखे जा सकते हैं। असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रेथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है, लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है। वो टेंट में नहीं थी, हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी 30 मई की रात को मिली। चूंकि यह इलाका जंगली है और यहाँ जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है, पुलिस ने लड़की को अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ उसकी गुमशुदगी के बारे में वन विभाग को भी सूचित किया और तलाशी अभियान में कई और महकमों की मदद ली। यहाँ तक कि पुलिस ने बबीता के पोस्टर वगैरह बनाकर भी आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो वो पुलिस को बताएं। लेकिन पुलिस की इस कोशिश का भी कोई असरदार नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बबीता के साथ आखिरी बार मौजूद दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है, मगर नतीजा सिफर है। अब सवाल यह है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजहें हो सकती हैं? तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। अव्वल तो यही है कि बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा ये कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा ये कि वो टेंट के बाहर निकली हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। और चौथा ये कि वो या तो जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोगों का लवाजमा बबीता को ढूंढने में लगा है। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओजी, आईटीबीपी, वन विभाग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सर्चिंग टीम और यहां तक कि गोताखोर भी बबीता की तलाश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की 7 दिनों से गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं। फिलहाल बबीता के घर वाले इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में बबीता का कोई पता चले और ये इंतजार खत्म हो। बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन है और घर वाले उसकी गुमशुदगी से सदमे में हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। भगवंत मान पर गुरुद्वारे के दान पात्र को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। दरअसल ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक होता है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष वीडियो को लेकर झूठ बोला। उनका कहना है कि पांच सिंह साहिबानों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है।
1: पहला तो इन्होंने पंजाब नाल गद्दारी की, हुण इन्होंने पंथ नाल भी गद्दारी की। मैं तो कहना भी तुरंत प्रधान मुख्यमंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।
2: ये वीडियो असली है, AI दे नाल नहीं बनाई हुई। ये रिपोर्ट ये किथे कहंदी है कि उस वीडियो दे विच कौन व्यक्ति है?
0: आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस वीडियो को लेकर विवाद है उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति भगवंत सिंह मान है या कोई और, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो को लेकर अपनी बात साबित करने के लिए भगवंत मान से सबूत मांगे गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब इस मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

में ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे। मुलाकात के बाद बोले, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्या का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बाकी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, उद्धव ने कल बुलाई संसदीय दल की बैठक। और पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद पर फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, बोले साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग।

0: 85 लाख की केबल बरामद। यशराज बैनर तले बनी फिल्म अल्फा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, दमदार डायलॉग्स, खतरनाक एक्शन ने बढ़ाई उत्सुकता। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर लॉन्च, इस फिल्म में सूरज, अंकिता वाणी, दीपिका चकलिया, पंकज बेरी, मेघना की मुख्य भूमिका। बडवारा 1947 के मेकर्स ने फिल्म के कैरेक्टर्स पोस्टर जारी किए, सनी निभा रहे हैं मुस्लिम किरदार। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की हो रही है वापसी, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। दर्शकों को हंसाने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर फिर से आ रही हैं शेक फियोना और डंकी, अगले वर्ष 30 जून को रिलीज होने जा रही है ये सीरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक तूफान आया हुआ है। शिंदे सेना के ऑपरेशन टाइगर के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरों को करीब करीब सच माना जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर है कि शिवसेना उद्धव के बाकी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पहले ही पत्र भी सौंप दिया है। उद्धव की पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके सांसदों को 60-60 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, जिसके लिए 15-15 करोड़ एडवांस भी दे दिए गए। इस पूरे मामले में शिवसेना यूबीडी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत से हमारी सहयोगी मारिया शकील ने बातचीत की।
1: लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
2: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और बोलेंगे 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
1: बोल रहे हैं, वो फॉल्स सिग्नेचर्स है।
2: देखिए, हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूं, यहां चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
1: उन्होंने आशंका जताई थी।
2: हाँ, हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
1: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
2: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
1: तो रियल टेस्ट
2: कल है,
1: कल है,
2: यस।
1: अभी तक लोकसभा स्पीकर ने जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिल करके गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उन्होंने उनको आपने क्या कहा?
2: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने, हमने सुना है,
1: ये बोला आपने?
2: हाँ, ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है।
1: अपना सपना मनी मनी है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
2: दे दिया पैसा
1: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
2: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे, हमारे सांसद ले,
1: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
2: आप पूरे ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
1: महाराष्ट्र
2: महाराष्ट्र के कुछ एमपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
1: आज दिया जाएगा, बोल
2: कल रात को,
1: अच्छा,
2: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल,
1: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप।
2: और ये मैंने चार्टर फ्लाइट का फोटो भी आज दिया है, और ये 3 चार्टर फ्लाइट कल दिल्ली में उतर भी गए, एक पुणे से है, एक नांदेड़ से।

0: से है, एक नागपुर से है, ये तीन चार्टर फ्लाइट है
1: और इसमें महाराष्ट्र के एमपी आए,
0: महाराष्ट्र के एमपी आ गए। पैसा
1: तो वो उद्धव ठाकरे पैसा फैक्शन के हैं जो आपके साथ थे,
0: पता चलेगा किसके है, पता चलेगा। लेकिन पैसा मिला सांसदों को 15-15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है, और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए।
1: 19th इज योर फाउंडेशन डे,
0: 60 साल
1: होगा पार्टी को, उस दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा,
0: होने दो।
1: आपकी पार्टी के अभी 20 एमएलए हैं असेंबली में, एक आप राज्यसभा में, 9 लोकसभा में, लेकिन वो भी है कि संभावना है कि वो कुछ और एक फैक्शन बन सकता है जो चर्चा चल रही है। ये लेगेसी की भी लड़ाई है सर,
0: लेगेसी की लड़ाई शिंदे के पास जाएगी क्या? उद्धव ठाकरे को जन्म दिया बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी को, बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को उस वक्त पार्टी का चीफ बनाया, तो हम भी फॉलो करेंगे, पार्टी तो ऐसे ही चलेगी हमारी। इतना शिंदे फैशन किया, ये तो अमित शाह साहब की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी, अमित शाह साहब की पार्टी है, अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, मोदी जी ने ये दो पार्टी बनाई महाराष्ट्र में।
1: लेकिन जनता ने उनको फिर से जिताया है, मैंडेट दिया है।
0: हम उसको मैंडेट नहीं मानते भाई, मैंडेट ये नहीं होता है ना, इस तरह से आप लोकसभा में मैंडेट दिया हमको और 3 महीने में मैंडेट दिया ये लोगों को, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 3 महीने में।
2: 19 जून को बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है और शायद शिंदे कैंप को उसी दिन का इंतजार है। मुंबई में बाकायदा ऑपरेशन टाइगर के पोस्टर बैनर लग गए हैं, जिससे में थोड़ा इंतजार करने को कहा जा रहा है, क्योंकि असली ऑपरेशन तो दिल्ली में चल रहा है। उद्धव की पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा के सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं।

0: मराठी सियासत के समंदर में पश्चिमी विक्षोभ ऐसा लो प्रेशर बना रहा है कि उद्धव के नेता की जुबान और मिजाज का मौसम बिगड़ने लगा है।
1: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का,
0: उद्धव की पार्टी परेशान है क्योंकि चार साल पहले इसी जून में पार्टी टूटी और वही जून सांसद तोड़ने की बुरी खबर लेकर आया है। खबर है कि उद्धव की पार्टी से 6 सांसद शिंदे कैंप में जाना चाहते हैं।
2: ऑपरेशन टाइगर के अटकलों के बीच में उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो शिवसेना की पार्टी है उसमें एक खलबली सी मची हुई है। कोशिश इनकी यही है कि एक बार फिर से उनका कुनबा न टूटे और यही वजह है कि एक व्हिप जारी करके सभी सांसदों को दिल्ली में बुलाया गया है। जहां दिल्ली में संजय राउत ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं मातोश्री के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है।
0: महाराष्ट्र में गली चौक चौराहों पर पोस्टर लगने लगा है कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, क्योंकि 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस आ रहा है।
1: 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है, और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने।
0: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के मोहभंग की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल आष्टीकर, धाराशिव के ओमराजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिडी के भाऊ साहेब वाकचौरे का नाम शामिल है। बागी गुट के सांसद दिल्ली में, और संजय राउत का आरोप है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड प्लेन भेजकर इन सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी है। हालांकि एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को सौंपी गई है और 4 पन्ने की इस चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान में नहीं लेने की अपील की गई है।
1: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
0: हालांकि खबर है कि स्पीकर ने सबकी बातों का संज्ञान लिया है और पाला बदलने वाले हर सांसद से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने 18 जून को व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा है, जिसमें गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है।
3: जो व्हिप रहता है वो संसद के अंतर्गत के कामकाज के बारे में जो व्हिप रहता है, विधेयक पे मतदान, विश्वास दर्शक अविश्वास दर्शक ठराव, अर्थसंकल्प का जो कुछ ठराव रहते हैं, इसके ऊपर जो पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं वो अंतर्गत जो संसद के अंदर विधिमंडल के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए व्हिप लागू होता है। संसद के बाहर जो कामकाज होता है, पार्टी की मीटिंग होते उसके लिए व्हिप लागू नहीं होता।
0: अब उद्धव की पार्टी को कल की बैठक का इंतजार है, जिसमें तस्वीर साफ होगी कि बागियों के खिलाफ उद्धव क्या कदम उठाते हैं। उससे पहले इस बगावत को लेकर कांग्रेस भी बयान युद्ध में उतर चुकी है।
4: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
5: ऑपरेशन टाइगर ने, ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए, इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, यहां तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
0: बस चंद घंटों का फासला है और तब महाराष्ट्र समेत पूरे देश को पता चल जाएगा कि बाला साहब वाली शिवसेना के झंडे पर टंगा टाइगर किस नेता की शागिर्दी कबूल करेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
6: आज उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंपकर लौटे तो उन्होंने आज तक से बातचीत की। अब दोनों की ओर से दी गई चिट्ठियों पर स्पीकर को निर्णय लेना है कि बगावत दल बदल कानून के दायरे में मानी जाए या नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो चिट्ठी दी है उसमें विभिन्न अदालती निर्णयों और संविधान संशोधनों से लेकर 10वीं अनुसूची वाले दल बदल कानून का हवाला भी दिया गया है।
7: अरविंद सावंत बात करने के लिए, अरविंद जी आज आपने जो है स्पीकर से मुलाकात की है और क्या अपना पक्ष रखा?
8: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं तो कानून मजबूरी सामने अगर तो नहीं कह रहा तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है उसी पे गुट को किसी को मान्यता नहीं दे सकते।
7: और आपको लगता है कि उनको मर्जर करना पड़ेगा अंत में? अरविंद जी उनको आपको लगता है कि उनको मर्जर करना पड़ेगा?
8: कैसे कर सकते हैं
7: कानून के? अरविंद जी बस लास्ट सवाल है, कल क्या आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है अपनी? कल कितने बजे?
8: सभी को बुलाया।
7: अनिल देसाई, अनिल जी आज आपने स्पीकर से मुलाकात की है, किस विषय को रखा है?
9: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरटीआई संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पूछता है तो हमसे पहले
7: आपसे बात करें। लेकिन ये आपको शक हो रहा है कि क्या जो है आपकी पार्टी के 6 MP जो हैं वो टूट कर एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जा सकते हैं?
9: नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है हमारे एमपी हमारे साथ में, लेकिन अगर कोई बात ऐसे बनती है और मजबूरन उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है तो हमने उसी लिए उनके पास
7: एक अंतिम सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है वो शिवसेना के स्थापना दिवस के 7 साल हो रहे हैं, ऐसे में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है एकनाथ शिंदे की तरफ से? पहले भी एक आपको झटका लगा था, आपको मालूम है,
9: इसीलिए हमने सावधानी रखने के लिए इनके पास में पहले से ये दिया हुआ।
6: उधर शिवसेना कोटे से मोदी सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे के करीबी केंद्रीय और राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने ऑपरेशन टाइगर का ठीकरा संजय राउत पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने बयान दिया था कि सभी क्षेत्रीय दलों को अब कांग्रेस में विलय करने की जरूरत है। इस बयान से उद्धव सेना के सांसद नाराज थे और इसीलिए उन्होंने उद्धव सेना से अलग होने का कदम उठाया।
10: संजय राउत तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि एडवांस में 15 करोड़ रुपए कल रात को दिए गए हैं, चार्टर्ड प्लेन भेजे गए इन सांसदों को दिल्ली ले जाने के लिए।
11: ये देखो, ये सब होते हुए मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अगर खुश कोई होगा तो संजय राउत होगा, क्योंकि संजय राउत ने ही ये बिड़ा उठाया था कि मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म करके ही रहूंगा, और मुझे लगता है कि अभी उसमें बहुत सारे सक्सेस वो हो गए, संजय राउत हो गए है, लगभग 90% 99% तो शिवसेना उन्होंने खत्म कर डाली। और तुमने वो भी देखा होगा कि 4 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा।
10: और वो ऐसा सोचने के पवार को दी थी कि एनसीपी पार्टी की,
11: इनकी भी तो छोटी पार्टी है, एनसीपी से इतनी छोटी पार्टी, इनकी भी उतनी छोटी पार्टी है,
10: तो आपको लगता है कि जो देखो
11: अभी अभी जब जो आदमी दूसरे को सलाह देता है तो वो विचार उसके भी दिल में होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम हमारा नाम नहीं लेते, हम दूसरे का नाम लेके वो बात बोलते हैं, तो ये संजय राउत की सोचती है। और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा।
10: ये बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना मर्ज होने की बात से कुछ सांसद अगर नाराज होंगे और वो ये कदम उठा रहे होंगे तो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले संजय देशमुख आपसे मिले, कई सारे सांसद उद्धव ठाकरे के आपसे मिलते रहते हैं, आपके साथ खाना खाते रहते हैं, कभी उन्होंने अपने दिल की बात ये मंशा बताई आपके सामने प्रकट की?
11: नहीं, देखो ये उद्धव ठाकरे के भी सांसद विधायक हो या हमारे सांसद विधायक हो, हमने कई साल एक पार्टी में हमने काम किया और हमारे संबंध भी अच्छे है, हमारे दोस्ताना भी है और हम पहले भी मिलते रहते थे, अभी भी हमारा मिलना जुलना शुरू रहता था। लेकिन मेरे एक दिन आगा कि वो लोग अगर हमको आके मिलते हैं तो उन पर शक किया जाता है कि भाई तुम शिवसेना के सांसदों से बात मत करो, उनके घर पर अगर कभी खाने का गेट टुगेदर होता है या खाने का न्योता आता है तो वहां खाना खाने में मत जाइए, उनके तरफ नजर मिलाकर भी ना देखिए, तो ये इससे भी वो लोग हो सकता है तंग आ गए होंगे। उनको बार बार शक किया जाता था, बार बार बुलाया जाता था, बार बार शपथें दिलाई जाती थी, तो ये ज्यादा स्वाभिमानी लोग ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते।
6: छोटा सा ब्रेक और खबरों के साथ दोबारा होंगे उपस्थित, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
14: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
1: बट टेलीग्राम हैज बीन अ चैनल व्हिच हैज बीन मिसयूज्ड अब्यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेवरल फैक्टर्स।
0: एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाई गई रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि एनटीए के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
2: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है। टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम।
0: सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बीच नासिक से शिवसेना UBT सांसद राजाभाव वाजे भी दिल्ली पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो एकनाथ शिंदे से मिलने दिल्ली नहीं आए हैं, बल्कि कमेटी मीटिंग के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं और हमेशा उद्धव के साथ ही रहूंगा।
5: सांसदों को कहा गया दिल्ली पहुंचने के लिए, आप भी आज दिल्ली आ?
6: नहीं, मैं आज इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग है
5: जी।
6: इसलिए मैं वही मीटिंग के लिए आया था। अभी ये सब घटना घट रही है वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मैं आ गया हूँ।
5: लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है,
6: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हूँ।
5: 9 में से 6 सांसद कहा जा रहे हैं कि उधर जाने के
6: नहीं है, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ।
5: अच्छा, आपको कहीं कॉल, कोई फोन, किसी ने कुछ नहीं कहा? कोई अप्रोच
6: किसी ने
5: कहा कि आप दिल्ली आइए, मुलाकात करिए? कुछ
6: किसी ने कहा नहीं मुझे। मैं आज इंडस्ट्री कमेटी के मीटिंग के लिए आया हूं। अगर ये सब गड़बड़ मालूम होती तो मैं आता ही नहीं था ये मीटिंग।
5: अच्छा, आप इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते?
6: नहीं, कुछ मालूम।
5: कल मीटिंग है लेकिन सभी सांसदों की बुलाई गई है पार्लियामेंट।
6: आज हमको बताया गया है कि कल मीटिंग है। कल मैं मीटिंग जाऊंगा और शाम को घर निकल जाऊंगा। मैं राजधानी एक्सप्रेस से आया हूँ, रात को राजधानी एक्सप्रेस से कल निकल जाऊंगा।
5: क्या और भी सांसद आपके साथ ही आए?
6: नहीं, मैं अकेला, नासिक से तो मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला आया हूँ।
5: अच्छा, आपकी बातचीत सिर्फ संजय राउत अरविंद सावंत जी से हुई है, बाकी आपके?
6: नहीं, किसी से बात नहीं।
5: किसी आपके अपने सांसदों से भी किसी से
6: नहीं? नहीं, किसी से बात हुई नहीं। एक 2-3 दिन से 14 को जब उद्धव जी ने बुलाया था तब हम जो साथ थे तब बातचीत हुई थी, बाकी तब उसके बाद कुछ बातचीत नहीं हुई।
4: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: लुकिंग टू ट्रेड इन योर करंट व्हीकल? वी'ल गेट यू द मोस्ट फॉर योर ट्रेड। At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
8: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
7: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
9: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
10: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ट्रंप ने मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घूट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। गुट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। ट्रंप ने पीएम की जमकर तारीफ की, कहा देखने में शांत लेकिन सख्त व्यक्ति हैं मोदी। साथ ही बोले हम ट्रेड डील के बेहद करीब। मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा, बोले ट्रंप। पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर दिया जोर, बोले ईरान डील में नाविकों की सुरक्षा शामिल हो। ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ बैठक में ईरान युद्ध पर बातचीत की, बोले ईरान के पास एटम बॉम्ब नहीं होना चाहिए। राजस्थान के कोटा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों का मंच कार्यक्रम में शामिल हुए। छात्रों से मिले राहुल गांधी, सरकार को कहा स्टूडेंट्स का गला घूट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। राहुल बोले ये राजनीति नहीं, युवाओं की आवाज का मंच है। अभिभावकों ने चिंता व्यक्त की, बोले बच्चों के तनाव से हर समय डर लगता है। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के अस्थाई बैन पर भड़के राहुल, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करनी चाहिए कार्रवाई। टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सीईओ बोले पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को क्यों सजा दी। कांग्रेस अध्यक्ष पर पीएम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी मामले में बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के जिम्मे जांच, राज्यसभा सभापति को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। साइबर ठगी पर केंद्र का एक्शन, गृहमंत्री ने 1930 साइबर हेल्पलाइन की समीक्षा की, अपग्रेड करने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन को AI एनेबल और मल्टी लिंगुअल बनाने के आदेश, बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर फोकस। कर्नाटक में विधान परिषद के साथ खाली सीटों के लिए सीएम DK शिवकुमार ने ड्रॉज कराई मॉक वोटिंग, आज मतदान। DK शिवकुमार ने कर्नाटक मॉडल की तारीफ की, बोली जन कल्याण और आर्थिक विकास साथ साथ। शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, सूत्रों की खबर। उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली में बुलाई है संसदीय दल की बैठक, महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति व्हिप जारी। संजय राउत का आरोप, ऑपरेशन टाइगर के नाम पर UBT सांसदों को तोड़ने की साजिश। शिवसेना UBT में राजनीतिक घमासान, राउत ने सांसदों के विरुद्ध सख्त रूप अपनाया, कहा दगा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मुंबई में राजनीतिक घमासान, राउत के बयान पर संजय शिरसाट बोले इस तरह की भाषा उचित नहीं। 19 जून यानी अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी, रुदौली में 72 परियोजनाओं का लोकार्पण, 51 का शिलान्यास। सीएम योगी अयोध्या में भी विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल, 101 जैन प्रतिमाओं के उद्घाटन समेत कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी की ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने वाले कर्मचारियों की सख्त चेतावनी, घोर अनुशासनहीनता बताया, इससे बिना वजह सिस्टम पर उठती उंगलियां। लखनऊ में शामिल हुए सीएम योगी, 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की, बैठक के में निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। यूपी चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारियां तेज, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, TMC से बुरा हाल होने वाला है, समाजवादी पार्टी का 25 से 26 सांसद टूट रहे हैं। अखिलेश यादव का केशव पर पलटवार, बोले बीजेपी से मुकाबले के लिए बहादुर टीम चाहिए, जो डर जाएगा वो दल छोड़कर जाएगा। लखनऊ में PC में अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कटाक्ष किया, बीजेपी के लिए धर्म का मतलब सिर्फ धन। अखिलेश ने अयोध्या में CCTV गायब होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा, बोले CCTV से खुलेगा CC का राज, CC से अखिलेश का मतलब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी। देवरिया पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण सम्मेलन को, बोले ये मौलाना लोगों की पार्टी है। अखिलेश यादव के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप पर बरसे ब्रजेश पाठक और बाबरी मस्जिद की दिलाई याद, बोले बाबरी का चंदा कहां गया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की जांच के बीच मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के चढ़ावे की CBI जांच की मांग तेज, दिनेश पलाहरी ने CM को खून से लिखा पत्र। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT जांच पर UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सवाल, हाईकोर्ट की जज से जांच की मांग।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक आएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, इसी सत्र में पारित होगा बिल, दिवाली तक पूरी तरह से हम लागू करेंगे। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मेयर घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, झाड़ू लगाई। स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू लगाई, लोगों को किया पटना में जागरूक। दिल्ली में गृह मंत्री ने राजेंद्र नगर नारायणा फायर एंड सर्विस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, बुनियादी ढांचे क्षमताओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 को गिरफ्तार किया, कुल अब तक 12 गिरफ्तार। भारतीय नौसेना की शक्ति में बढ़ोतरी, 3 युद्धपोत INS दूनागिरी अग्रे संशोधक 21 जून को होंगे कमीशन। फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले SP ने धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक की, ताजिया जुलूस को लेकर दिशा निर्देश दिए। फिरोजाबाद में ताजिया जुलूस को लेकर सख्त गाइडलाइंस, 10 फीट से ऊंचा ताजिया, बिना अनुमति साउंड पर रोक, ऑनलाइन गतिविधियों पर विशेष ध्यान। यूपी के अमेठी बेसिक शिक्षा विभाग में 6 करोड़ रुपए का एरियर घोटाला, मामले जांचती CBI की 8 टीमों ने मारे छापे। संभल में भागीरथी तीर्थ से अवैध कब्जा हटा, नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर खाली कराई जमीन। जामनगर नगर निगम को बॉम्ब से धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों का सघन सर्च ऑपरेशन। हरिद्वार के श्री साईं शिव गंगा धाम में विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन की पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, भारी संख्या में लोग मौजूद। देवभूमि में धूमधाम से चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। कठुआ में अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कठुआ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में कल से शुरू माता खीर भवानी मेला, जोर शोर से तैयारियां। अयोध्या की रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होंगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां, करीब 1768 ईस्वी की है ये पांडुलिपि। दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग का दावा, बिहार झारखंड की ओर बढ़ रहा है मॉनसून। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की, दक्षिणी यूपी मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु पुडुचेरी कर्नाटक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी रह सकती है बारिश। दिल्ली में 19 जून तक बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में 22 जून तक होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मॉनसून कमजोर रहेगा, देश के 40% हिस्से में बारिश की होगी कमी। महाराष्ट्र के अकोला में रिलायंस इंडस्ट्रीज के गैस प्लांट परिसर में भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का होबार। बुलढाणा में किसान आंदोलन उग्र, कर्ज माफी की मांग को लेकर बस में लगा दी आग, कार्यालय को जलाने का प्रयास। गुरुग्राम में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे युवकों ने खोया आपा, लिफ्ट ऑपरेटर की फोड़ी आंख को डंडे से पीटा। बिजनौर में तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटी, 6 यात्री घायल। जामनगर में आवारा सांडों की भिड़ंत से दहशत, बाजार में मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र भीड़ में स्कॉर्पियो पिकअप वैन के आमने सामने टक्कर, 20-25 फीट दूर खाई में जाकर गिरी, 3 घायल। पालघर में करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसी महिला, दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। नागपुर में अंतर्राज्यीय केबल चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, 85 लाख के केबल बरामद। वडोदरा में लग्जरी बस ट्रक से टकराई, 5 यात्रियों की मौत, 26 घायल। द्वारका में गोमती नदी में नहाने गए 2 श्रद्धालु अचानक तेज बहाव में बहे, लोगों ने बचाया। यूपी के गोंडा में पुलिसकर्मियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, 1 सिपाही ने पकड़ा, दूसरे ने डंडे से पीटा। मेरठ में मां से प्रेम संबंध में बाधक बना 7 साल का बेटा, प्रेमी ने घर के बाहर उठाकर नहर में फेंका। उज्जैन महाकाल मंदिर में हंगामा, माथे पर त्रिपुंड लगाए लाइन में मुस्लिम युवक खड़ा दिखा, बजरंग दल ने पीट दिया। यूपी के गोंडा में पुलिसकर्मियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, 1 ने पकड़ा, दूसरे ने डंडे चलाए। मेरठ में मां से प्रेम संबंध में बाधक बना 7 साल का बेटा, प्रेमी ने घर के बाहर उठाकर नहर में फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उज्जैन महाकाल मंदिर में हंगामा, माथे पर त्रिपुंड लगाकर लाइन में खड़ा था मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने जमकर पीटा। धनबाद के मैथन डैम में बड़ा हादसा टला, पत्थर से टकराकर डूबी नाव, नाविक ने सूझबूझ से 14 पर्यटकों की जान बचाई। बिहार के आरा में पुलिस पर पिस्टल तानने वाले युवक की मौत, पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी थी इसको गोली।
उत्तराखंड के कोटद्वार में दिन दहाड़े बीच बाजार घुसा हाथी, विशालकाय हाथी को देख मची अफरा तफरी, इलाके में दहशत। मथुरा में इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक दूसरे पर पथराव, फायरिंग, चार घायल। मध्य प्रदेश के श्रद्धालु युवक की वृंदावन में करंट लगने से मौत, इस्कॉन मंदिर के बाहर कूलर से लगा करंट। मुजफ्फरनगर में बेकाबू तेज रफ्तार कार ने सवार को मारी टक्कर, बाल बाल बचे दो राहगीर। पटना में तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने सरकारी बोर्ड लगी गाड़ी में तोड़फोड़ की, पिता पुत्र की जमकर पिटाई की। लखनऊ वनडे में भारत ने 170 रनों के भारी अंतर से अफगानिस्तान को हराया, लगातार दूसरा वनडे जीतकर अजय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप और गुरनूर ने तीन तीन विकेट लिए, प्रिंस को दो, वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया रनों की सुनामी इंडिया ने लाई, 50 ओवर में खड़ा किया 402 रनों का विशालकाय पहाड़। जवाब में 45 ओवर में 232 पर अफगान टीम धराशायी। कप्तान गिल ने खेली 154 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 110 गेंदों में जड़े 22 चौके 2 छक्के। ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 125 रन बनाए, 7 छक्के 14 चौके लगाए। यशराज की फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज, दमदार डायलॉग्स, खतरनाक एक्शन ने लोगों की बढ़ाई उत्सुकता। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिकलिया, टोपी वाला, पंकज बेरी और मेघना निभा रहे हैं किरदार। बंटवारा 1947 के मेकर्स ने फिल्म के कैरेक्टर्स के पोस्टर्स जारी किए, सनी देओल मुस्लिम किरदार में। स्टैंड अप कॉमेडियन समन रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट की हो रही है नेटफ्लिक्स पर दोबारा जल्द वापसी, दर्शकों को हंसाने के सिल्वर स्क्रीन पर आ रही है एक बार फिर से थ्रेक, फियोना और डंकी, 30 जून को होगी रिलीज। दुनिया के 76 केंद्रीय बैंक्स के सर्वे में शामिल 89% ने एक वर्ष में गोल्ड रिजर्व बढ़ने का विश्वास व्यक्त किया, अनुमान है डॉलर के मुकाबले गोल्ड पर बढ़ता विश्वास इसके दामों में बढ़ोतरी करेगा। 2026 में अब तक केवल 23 कंपनियों ने आईपीओ से 27,000 करोड़ रुपए जुटाए। पश्चिम एशिया में शांति आने के बाद उम्मीद आईपीओ बाजार में फिर से तेजी आएगी। 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, इसके पिछले वर्ष के मुकाबले 15.5% था। 10 वर्षों में राज्यों का कुल कर्ज 31,00,000 करोड़ से बढ़कर 190% बढ़कर 90,00,000 करोड़ हुआ। सीएजी के अनुसार 28 राज्यों में से 18 ने जीएसडीपी के 3% के राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन को पीछे छोड़कर स्पेसएक्स बनी दुनिया की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी, शेयर में जबरदस्त उछाल, स्पेसएक्स का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर के पार। ईरान समझौते पर ट्रंप ने फिर दिया विस्फोटक बयान, ईरान के साथ एमओयू फाइनल नहीं, इस समझौता मुझे पसंद नहीं आया तो फिर से होगा हमला। ट्रंप बोले ईरान समझौते में 300 अरब डॉलर फंड की खबर गलत, कोई भी देश ईरान में कर सकता है निवेश, हम इसे रोकेंगे नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमांड यूएस से इंडो स्पेसिफिक कमांड के नाम से इंडो शब्द हटाया। G7 सम्मेलन के तहत पीएम मोदी ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले हटाया। दक्षिण लेबनान पर इसराइल का बड़ा हमला, ईरान की चेतावनी, लेबनान पर हमले रहे जारी तो हम देंगे कड़ा जवाब। G7 देशों ने लेबनान में युद्ध विराम की मांग की, वॉशिंगटन में इसराइल लेबनान के नेताओं के बीच होगी मुलाकात।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद हुई मुलाकात के बारे में बताएंगे। दो दोस्त मिल रहे थे मगर बचते बचते। इन 16 महीनों में दुनिया ने काफी उतार चढ़ाव देखा। भारत और अमेरिका के संबंध भी कूटनीतिक दांव पेच में उलझे रहे। कभी दूरियां दिखी, कभी सहजता भी नजर नहीं आई, कभी सहजता दिखने लगी। आज जब दोनों नेता एक ही मंच पर पहुंचे तो दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी थी कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ इस मुलाकात से पिघलेगी। कल G7 के मंच पर फोटो सेशन से लेकर आउटरीच सेशन तक सबकी नजरें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर टिकी थी। दुनिया चर्चा कर रही थी कि दोनों नेताओं के बीच कितनी सहजता है, कितनी गर्मजोशी है और क्या रिश्तों की बुनियाद उतनी ही मजबूत है या नहीं। खैर, आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे तो सवाल, शिकायत, संबंध कूटनीति की तराजू में तौले गए और सिर्फ एक ही नतीजा निकला कि आगे दोस्ती पक्की लेकिन फायदा अपना अपना। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बहुत सकारात्मक और सार्थक बताया। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो दिखने में शांत लेकिन बहुत सख्त वार्ताकार हैं। ट्रंप ने भारत के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि अगर कोई हमला होता है तो जब तक मोदी हैं तब तक अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप ने भारत के नाविकों की मौत पर भी दुख जताया। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के हितों से जुड़े आज तक के सीधे सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या देश में राजनीतिक पार्टियां यूं ही टूटेंगी। टीएमसी में बेशुमार टूट और ऐसी टूट जिसकी बड़ी चर्चा है। अब टीएमसी में बेशुमार टूट के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सियासी ईंटें दरकने की खबरें आने लगी हैं। दावा है कि 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। अब जब तक इस खबर की पुष्टि हो पाती तब तक खबर आ गई उत्तर प्रदेश से। खबर आई कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। इस दावे की हकीकत बताने के साथ ही आपको बताएंगे कि क्षेत्रीय दल अपनी टूट, अपनी बगावत को आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे और अगर ये सांसद विधायक जा रहे हैं तो फिर इनकी वजह क्या है। और आखिर में आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सबसे ताजा तस्वीर दिखाएंगे जहां अब कब्जे की जमीन पाकिस्तान के हाथ से खुद ब खुद फिसलती दिख रही है। आप में से कई लोगों का यह सपना होगा कि पीओके वापस भारत में शामिल हो। तो देखिए, पीओके की जनता अब पाकिस्तान से अपनी आजादी की सीधी जंग लड़ रही है। आज आपको बताएंगे कि क्या अब पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 489 दिन बाद 489 दिन बाद हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक में कौन से बड़े ऐलान हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रेड डील का, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बहुत करीब है और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड डील पर चर्चा तो हुई लेकिन अभी यह डील पूरी तरह फाइनल नहीं है। हालांकि यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ निगोशिएटर बताया है, यानी ऐसा वार्ताकार जो अपनी शर्तों को लेकर बहुत कड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शब्दशः कहा, ही इज एज टफ एज अ किलर। सुनिए।
1: And we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything. And Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship. And it's great to be with you. Thank you very much. Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise.
0: तो ये अंदाज था आज डोनाल्ड ट्रंप का जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। और दूसरा मुद्दा क्या था? ईरान युद्ध हॉर्मुज और हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों का। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील कर रहा है उसमें नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो भारतीय नाविक दुनिया भर के समुद्री मार्गों में काम करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में जरूर काम होना चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या वो हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों के लिए शोक जताएंगे, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। हर इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा भी उठाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है और अमेरिका को यह देखना चाहिए कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित ना हो, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सहमति जताई। सुनिए।
2: एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: Also, tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families?
1: Yeah, I did. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बहुत जल्द भारत जाएंगे और भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2020 के बाद ये राष्ट्रपति ट्रंप का पहला भारत दौरा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका को G2 बताया, यानी दो देशों का वो समूह जो सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कभी भारत पर कोई खतरा आया तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये सवाल भी पूछा कि वो भारत को अपना मजबूत साझेदार बताते हैं लेकिन फिर भी उनके फैसलों ने भारत को असहज किया है, चिंता में डाला है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि उनके फैसलों से भारत को कोई परेशानी हुई है और वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुनिए।
4: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
1: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल ईरान यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। इसराइल के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि अब इसराइल को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, यानी राष्ट्रपति ट्रंप अब इसराइल से पूरी तरह खुद को अलग कर रहे हैं। तो चलिए, दो फ्रंट पर, एक तरफ युद्ध से अगर अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, हम सब पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, हॉर्मुज के खुलने की बात को लेकर कैसे पेट्रोल डीजल का असर होगा, पॉजिटिव ही होगा और ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जब राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या वो हॉर्मुज से सी माइंस हटाने के लिए अमेरिकी माइन स्वीपर्स भेजेंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत नहीं लेकिन अगर ईरान चाहेगा तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। ईरान के साथ डील को लेकर ये कहा कि ईरान डील करने को बेताब है, इस डील पर बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ईरान का डील पसंद नहीं आया तो वापस बम बरसाएंगे। बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वो रशिया के तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही तेल की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी रशिया के तेल पर फिर से प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रशिया से सबसे ज्यादा 35% कच्चे तेल का आयात कर रहा है। उनसे व्लादिमीर पुतिन पर भी एक सवाल पूछा गया। पुतिन के खिलाफ सीधा डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलते हैं लेकिन तेल, इन तमाम बातों पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए।
2: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए।
0: इस द्विपक्षीय मुलाकात का सार यह है कि भारत और अमेरिका दोनों बचते बचते आगे बढ़ रहे हैं। दो दोस्त मिल रहे हैं मगर बचते बचते। दोनों देश ट्रेड डील को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी मुद्दा पहले G7 देशों की बैठक में उठाया और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी इस पर अपनी बात रखी। यानी आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच का तनाव कम हो सकता है और ट्रेड डील होने से इन रिश्तों में एक नया संतुलन आ सकता है। एशियाई देशों में प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा बार द्विपक्षीय मुलाकात की है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कुल 8 मुलाकातें हुई हैं। इनमें भी आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी और उस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों से बहुत अलग थे। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड में भारत की भूमिका इतनी अहम थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 24 दिन बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। ये वो मुलाकात थी जिसे दुनिया भर के विश्लेषक भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया चैप्टर मान रहे थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे ये रिश्ता काफी हद तक बदल गया। इस मुलाकात के सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर पहले 25% का टैरिफ, फिर बाद में 50% टैरिफ लगाया। जब इस पर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हुई तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किए जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा किया, कहा मैंने युद्ध रुकवाया, जबकि भारत ने इससे साफ इनकार किया। भारत और चाइना जैसे देशों के लिए हेल होल शब्द बोला, भारत के लिए हेल होल, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे शब्दों को बढ़ावा दिया जिनका मतलब होता है नर्क जैसी जगह। बाकी देशों की तरह भारत के अवैध शरणार्थियों को हथकड़ी लगाकर हमारे देश में सेना के विमान से डिपोर्ट किया। और ये घटनाएं यही नहीं रुकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार दबाव बनाया कि भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद करे। और ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमला किया जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पिछली मुलाकात के बाद से दोनों देशों के रिश्तों ने अपना वो स्वरूप खोया जो पहले हुआ करता था। भारत के इन बातों को याद भी रखा है भारत ने। और आपको याद ही होगा कैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ को, लंच पर बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके कई मंचों पर प्रशंसा की। मुनीर से बढ़ती नजदीकियां और भारत से बढ़ती दूरियां एक बड़ी चिंता बनी। कल जब G7 देशों का आउटरीच सेशन हुआ तब उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि समुद्री व्यापार के जरिए दुनिया को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदार सबकी है। ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। ईरान युद्ध के दौरान 108 दिनों में 14 देशों के 46 जहाजों पर हमला हुआ, लेकिन अब तक ये मुद्दा किसी भी देश ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में उठाया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया। उन्होंने एक ऐसी बात भी कही जिसका विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी पार्टनरशिप कैसे सफल होती है, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी संबंध तब सफल होता है जब वो भरोसे पर टिका हो। और उन्होंने यह भी कहा कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि आज दुनिया में भरोसे की कमी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह सलाह इस हॉल में मौजूद सभी नेताओं के लिए थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसका जोर राष्ट्रपति ट्रंप पर ज्यादा था। याद कीजिए पिछले साल सितंबर का महीना जब चाइना में SCO समिट का आयोजन हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर साथ नजर आए, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि शायद उन्होंने भारत को अमेरिका के खेमे में खो दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान उस वक्त भरोसे की कमी को ही उजागर कर रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपना अच्छा दोस्त, एक महान नेता तो बता रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने भारत के साथ अपना विश्वास दिखाया। आज जब फ्रांस के अवियान शहर में इन रिश्तों का फिर से रीसेट बटन दबाने की कोशिश की गई तो प्रधानमंत्री मोदी ये याद दिलाना नहीं भूले कि भरोसे के बिना कोई भी संबंध, कोई भी पार्टनरशिप सफल नहीं हो सकती। और यह बात तो अमेरिका को लेकर आज शायद कई देश कहना चाहेंगे, इनमें इसराइल जरूर शामिल होगा, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप बड़े प्यार से पहले बीबी पुकारते थे, लेकिन अब वही बीबी उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। इसराइल के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के अब तक अच्छे संबंध रहे, लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से डील करने के लिए इसी इसराइल को भला बुरा कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल छोड़िए, आज राष्ट्रपति ट्रंप ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में यह कहा कि अगर उन्हें ईरान के साथ डील की शर्तें पसंद नहीं आई तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। सुनिए।
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: अब सोचिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की बातें कहेंगे तो ईरान भी कैसे उन पर भरोसा करेगा या बाकी देश कैसे उन पर भरोसा करेंगे? इस बात को आप एक और खबर से समझ सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, उससे सिर्फ कुछ घंटे पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक बड़ा फैसला किया।

देशों का जो रोल है इस कमांड में वो नहीं बदलेगा, ना अमेरिका का ना भारत का। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर इस कमांड की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आए तो फिर नाम बदलने का फैसला आज ही क्यों लिया गया? अगर इस कमांड के नाम की ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखना था तो फिर इसका नाम राष्ट्रपति ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में बदला क्यों गया था? यहां बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी है कि अगर अमेरिका के साथ रिश्तों में भरोसे की कमी है तो फिर भारत उसके साथ ट्रेड डील क्यों करना चाहता है? तो उसका जवाब यह है कि ट्रेड डील का मुद्दा हमारे आर्थिक हितों और लोगों से जुड़ा है। जिन 10 देशों के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें 8 देशों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इन देशों के साथ हम जो व्यापार करते हैं उनमें हमें घाटा होता है, हम उनसे सामान ज्यादा खरीदते हैं और उनको बेचते कम है, इन देशों को फायदा होता है। इन 10 देशों में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ हम मुनाफा में रहते हैं। इनमें पहला है अमेरिका और दूसरा है नीदरलैंड। इनमें भी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार मुनाफा 2,97,000 करोड़ रुपए का है और टैरिफ लगने से पहले साल 2024-25 में यही व्यापार मुनाफा 3,47,000 करोड़ रुपए होता था। यानी टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए से सिकुड़ गया, जिससे हमारे कई सेक्टर्स प्रभावित हुए। अब अगर सोचिए भारत अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करेगा तो हमें उससे जो व्यापार मुनाफा होता आया है वो और सिकुड़ सकता है और कई क्षेत्र में हमारे व्यापार को, हमारे उद्योगों को ये प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा ना हो, भारतीय सामानों को अमेरिका के बाजारों में आसान पहुंच मिले, इसीलिए हम अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर ये ट्रेड डील कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट के क्षेत्र में लगभग 30% यानी 29.4% का निर्यात हम अकेले अमेरिका को करते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों, मेडिकल उपकरणों में लगभग 10% सीधा अमेरिका को। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर मशीनरी 8.24%। रत्न और आभूषण लगभग 6%, 5.85%। मिनरल फ्यूल्स और मिनरल ऑयल्स में भारत का 4% निर्यात यानी एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को जाता है। अब अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हैं तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा, हमारे सामानों की अमेरिका में पहुंच आसान हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। दुनिया के 20 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के साथ इसी तरह की ट्रेड डील्स की है और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया है, बहरेन है, कनाडा है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, ओमान है, ये सभी देश शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया है। दुनिया का कोई देश कभी ये नहीं चाहेगा कि जिस देश के साथ व्यापार करने में उसे मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा कम हो, जाहिर सी बात है। और हम भी इसी को सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि हम जिन देशों के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं उनकी गिनती पहले ही बहुत सीमित है और इनमें भी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा है, जिसके कारण भारत के लिए ये ट्रेड अहम है, ये ट्रेड डील बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड डील अचानक से हो रही है, साल 2010 से लगातार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील या ट्रेड अग्रीमेंट करने की कई बार कोशिशें हुई। भारत अमेरिका के सामानों पर जो ज्यादा टैरिफ लगाता है उस पर भी हमेशा से एक विवाद रहा। यानी संक्षेप में कहें तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना हमारे आर्थिक हित में है और हम जानते हैं कि इससे भारत में भी अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा। उदाहरण के लिए मई 2025 में अमेरिका ने भारत को $3,802 मिलियन का निर्यात किया था, जो इस साल मई 2026 में बढ़कर $5,872 मिलियन हो गया और इसमें लगभग 54% की वृद्धि है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का निर्यात ही बढ़ रहा है, कई मई महीने में देखिए अमेरिका को भारत ने $45.2 बिलियन का निर्यात किया, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा था। इससे तो यह पता चलता है कि हम अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए इस ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए,

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए रक्षा सौदों पर ज्यादा जोर देते आया है, जबकि मौजूदा सरकार में अमेरिका को इसमें बहुत सफलता नहीं मिली। आप आंकड़े देखिए, 2021 से 2025 के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत था, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश अमेरिका। अब इसी स्थिति में अमेरिका ये चाहेगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा हथियार खरीदें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में अकेले 42% हथियार बेचे, तब अमेरिका भारत को हथियार बेचने वाले देशों की सूची से गायब रहा। जब सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने बेचे, हमने साल 2021 से 2025 के बीच रशिया से 40%, फ्रांस से 29%, इसराइल से 15% हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका इस सूची से बाहर रहा और राष्ट्रपति ट्रंप को इससे भी परेशानी हुई। हालांकि यहां अमेरिका ने इस बात को नहीं समझा कि भारत लगभग सभी देशों से अमेरिका जो है वो रक्षा आयात को कम कर रहा है और अब हमारा पूरा फोकस मेड इन इंडिया हथियार बनाने पर है। तो भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अन्य देशों से जो हम हथियार खरीदते हैं उसको कम करें, मेक इन इंडिया को बढ़ाए। आज ही नए आंकड़ों में ये सामने आया कि साल 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन, जानते हैं, 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2013-14 में सिर्फ 43,746 करोड़ रुपए था। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम अपने देश के मेड इन इंडिया हथियार, गोला बारूद, कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहे हैं। और यही नहीं, पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आज हम हथियारों को बेच भी रहे हैं। 2013-14 में हमारा रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और 12 सालों में इसमें 5,500% की वृद्धि हुई। और आज हम 80 देशों को मेड इन इंडिया हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। आप भी जब 28 मई की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हुई उस सैन्य परेड की है जिसमें भारत के कई आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति रडार सिस्टम सब शामिल थे। और सोचिए, आर्मेनिया ने यह हथियार हमसे खरीदे हैं और इन्हें अपनी सैन्य परेड में दिखाया, और ये इस बात का भी प्रमाण है कि अब हम रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में भी बड़ा बदलाव ला रहे हैं। देखिए,

0: ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के रिश्तों का स्वरूप सिर्फ भारत के साथ बदला है। आज यूरोपीय देशों और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव है, और जिस मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता था, वो खाड़ी देश भी अमेरिका को लेकर अपनी नीति बदल रहे हैं। और यही वजह है कि बढ़ते तनाव और आलोचनाओं के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो सिर्फ इस साल में राष्ट्रपति ट्रंप चाइना, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, नेटो देश, इजिप्ट और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं। और पिछले 1.5 सालों में पूरी दुनिया की राष्ट्रपति ट्रंप से यही शिकायत रही है कि वो खुद दुनिया का बॉस दिखाना चाहते हैं खुद को। और G7 देशों की बैठक में भी राष्ट्रपति ट्रंप एंट्री मार रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने मजाक में सबसे पहले यही कहा, I am the boss. सुनिए।
1: Hello, I'm the boss. How are you?
2: Good, thank you.
1: Okay. Thank you, dear colleague.
2: Would you like to stay for the meeting?
3: Yes.
2: It's okay with me.
0: जब भी इस तरह के बड़े समिट्स होते हैं तो आम लोग यही सोचते हैं कि इनमें व्यापार, सुरक्षा, युद्ध, टेक्नोलॉजी, गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन हॉट माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होने वाली बातचीत से ये पता चलता है कि वैश्विक चर्चा के बीच ये नेता अक्सर जब ऐसे मिलते हैं, फोटो ऑप के लिए पहुंचते हैं, तो निजी विषयों पर भी बात करते हैं। जैसे इस बार जो G7 समिट हुआ उसमें कई बड़े नेताओं को सिगरेट, फुटबॉल, वर्ल्ड कप, तोहफों जैसी बातों पर हल्के फुल्के मजाक करते हुए सुना गया। इनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को हॉट माइक पर यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने 1 महीने से सिगरेट नहीं पी है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने उनसे ये पूछा कि अगर उन्होंने 3 कप कॉफी पी है तो सिगरेट कितनी पी है। जब वहां मौजूद बड़े बड़े नेताओं को यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है तो वो उन्हें बधाई देने लगते हैं। ये हॉट माइक मोमेंट यहीं खत्म नहीं होता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ये कहते हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में काबो वर्डे के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हैं जिसने स्पेन को ड्रॉ पर रोक दिया। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हॉट माइक में एक जगह राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपियन काउंसिल के चीफ एंटोनियो कोस्टा से ग्रीनलैंड कहते हुए सुनाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये समिट सिर्फ गंभीर मुद्दों पर चर्चा तक सीमित नहीं होते बल्कि इनमें वैश्विक नेता एक दूसरे से निजी मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। और जब ये बातचीत बाहर आती है तो दुनिया इसे हॉट माइक मोमेंट भी कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह बातचीत भी काफी वायरल हो रही है। आपको याद होगा पिछले साल जब चाइना में एससीओ समिट के बाद विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब उसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से 150 साल तक जीवित रहने की बात कह रहे थे और तब इस पर भी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई थी। 150 साल जीवित रहने की बात ये तीनों कर रहे थे, सुनिए। अब इस तरह की हल्की फुल्की बातचीत ये भी याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के औपचारिक और गंभीर माहौल के पीछे व्यक्तिगत रिश्ते, अनौपचारिक संवाद, मानवीय जुड़ाव भी कूटनीति का हिस्सा है। खैर, G7 देशों के समिट के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपना 100वां विदेशी दौरा भी पूरा कर रहे हैं। साल 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 15 और 16 जून को भूटान की विदेश यात्रा पर गए थे और उसके बाद से लेकर आज तक वो कुल 78 देशों की 100 विदेश यात्राओं पर जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 49 विदेशी यात्राएं उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, 27 विदेशी यात्राओं पर अपने दूसरे कार्यकाल में वो गए और 24 विदेशी यात्राएं वो अब तक के अपने तीसरे कार्यकाल में पूरी करने वाले हैं। अगर यूपीए सरकार की बात करें तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 73 विदेशी यात्राएं की थी, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर साल औसतन 7.3 विदेश यात्राएं की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल औसतन 8.3 विदेशी यात्राएं की और इनमें दोनों आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनमें भी G7 समिट में अब तक भारत कुल 13 बार शामिल हो चुका है, जिनमें पिछली बार 7 बार से प्रधानमंत्री मोदी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की चर्चा के बीच देश की राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है। एक खबर शिवसेना उद्धव ठाकरे, जी हाँ, शिवसेना यूपीटी के सांसदों की बगावत से जुड़ी है और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के उस दावे से जुड़ी और फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान से जुड़ी जिसमें उन्होंने शिवसेना यूपीटी के बाद अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है बता दिया है। टीएमसी में हुई बगावत और शिवसेना यूपीटी में बगावत की अटकलों के बीच ओपी राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बगावत करने वाले हैं। ओपी राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें एक पत्र दिया है। उनके मुताबिक इस पत्र में उन सपा सांसदों के नाम हैं जो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। पहले सुनिए।
3: आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है, बाहरी घूमत हुआ गायत्री प्रजापति जेल में है कोई मामले में, और गोमती रिवर फंड में कोई गैल जेल में, बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं, वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे।
0: पिछले कुछ महीनों से ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ काफी आक्रामक रहे हैं, उनके इस बयान को उसी का हिस्सा माना गया। उन्होंने राम गोपाल यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए पत्र का जो दावा किया है उसको लेकर लोगों में संदेह है, क्योंकि पत्र दिए जाने का एक वीडियो वायरल जरूर है लेकिन ये वीडियो बहुत पुराना है, पिछले साल मार्च के महीने का है। अब ओपी राजभर का दूसरा दावा साल 2016 के बालू खनन घोटाले और पीएम मोदी के सदन में दिए गए एक बयान को लेकर है। बालू खनन घोटाले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप लगे थे जो गैंगरेप के एक मामले में फिलहाल जेल में है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और ओपी राजभर का यह दावा है कि सीबीआई की वजह से ही समाजवादी पार्टी समय समय पर केंद्र को समर्थन देती है और इसके संकेत पीएम ने दिए हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को दोस्त बताते हुए उनसे समय समय पर मदद मिलने की बात कही थी। सुनिए।
4: धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं।
0: यूपी से समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उसमें बगावत होती है तो लोकसभा में कम से कम 25 सदस्यों को, राज्यसभा में कम से कम 3 सदस्यों को बगावत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दल बदल विरोधी जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आज यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी में बगावत की बात कह दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 26 सांसद बगावत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल उनको तोड़ नहीं रही है। सुनिए।
5: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती।
0: समाजवादी पार्टी में बगावत की अटकलों के अलावा शिवसेना यूबीटी में दिख रही बगावत ने भी तूफान मचाया हुआ है। इसका असर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की भाषा में दिखने लगा है। अपने सांसदों की बगावत की खबरों से गुस्साए हुए संजय राउत ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने अपशब्द कहने के बाद पत्रकारों से यह भी कहा कि उनके बयान को एडिट ना करें, मतलब गाली गलौज जाने दें, पूरा दिखाएं। हम आपको संजय राउत के मुंह से निकले वो अपशब्द तो नहीं सुनवाएंगे लेकिन बयान पूरा सुनवाते हैं।
6: पीछे लोग कौन जाता है थे? नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा।
0: संजय राउत की भाषा को लेकर उनका खूब विरोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि जून का महीना है, शिवसेना के लिए फिर बगावत का मौसम आया है। आपको याद होगा पिछली बार जून का ही महीना था, जून 2022 में ही शिवसेना विधायकों ने बगावत की थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया था और इस साल जून में ही शिवसेना के सांसदों के बगावत की खबरें आने लगी हैं। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसदों में से 6 सांसदों के बागी हो जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे नाइक, संजय जाधव और भाऊ साहब वाकचौरे का नाम शामिल है। संख्या 6 है, इसीलिए बगावत की आधिकारिक घोषणा होने पर इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। यही वजह है कि संजय राउत परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। उन्हें पता है कि अगर इन 6 सांसदों ने बगावत कर दी तो उन्हें रोक नहीं पाएंगे और कानूनी कार्रवाई से उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। संजय राउत का कहना है कि जिन सांसदों के बगावत की खबरें आई हैं उन्हें 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें भी केवल 3 सांसद, अनिल देसाई, राजा भाव वाजे और अरविंद सावंत ही मौजूद है, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने बाकी सांसदों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा भेजा हो क्योंकि संजय राउत ने बाकी सांसदों से मीडिया में अटकलों का खंडन करने की अपील की है। कल पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, संसदीय दल की बैठक। इसके अलावा सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है जिसमें बागी सांसदों के पत्र को संज्ञान में ना लेने की अपील की गई। शिवसेना यूबीटी के सांसदों को चेतावनी मिली है कि कल होने वाली बैठक में जो भी सांसद शामिल नहीं होगा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
6: ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी और बाला साहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको होट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है, और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया नांदेड़ से, पुणे से, तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े।
0: शिवसेना यूबीटी में जो खलबली मची है वो यूं ही नहीं है। दरअसल सूत्रों से खबर है कि बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी चिट्ठी पहले ही सौंप दी है। माना जा रहा है कि ये बागी सांसद गुट अलग गुट बनाना चाहता है, फिर कुछ समय बाद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एक खबर यह भी है कि लोकसभा स्पीकर बागी सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे। ये वैसा ही है जैसे टीएमसी के सांसदों से भी लोकसभा स्पीकर ने व्यक्तिगत मुलाकात की थी, उसके बाद ही उनका पत्र स्वीकार किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी का मौजूदा जो राजनीतिक संकट है वो साल 2022 जैसा आ गया है। उस वक्त शिवसेना के दो हिस्से नहीं हुए थे, लेकिन बगावत की अटकलें लगने लगी थी। बगावत की खबरों के बीच व्हिप जारी करके विधायकों को बुलाया गया। तब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक पार्टी से अलग हो गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की दो अलग अलग पार्टियां ही बन गई। अब एक बार फिर से उद्धव की शिवसेना में बगावत की खबरें हैं और बहुत बड़ा संकट। क्या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक सुलगती विद्रोह की आग क्या पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करा देगी? पहले ये सुनिए।
7: क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे होगी। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पर सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी, तुम रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है।
0: खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पीओके में भड़की बगावत ने इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीओके वाकई पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा? जवाब है काफी हद तक हाँ, और इसके आसार बहुत मजबूत हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। कागजों पर पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, दिखावे के लिए यहां पर संसद है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लेकिन हकीकत में इस कठपुतली सरकार का रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है, मुनीर के हाथों में है। इतिहास गवाह है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कानूनी तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। ठीक वैसे ही जैसे देश की बाकी 560 रियायतें जो रियासतें हैं वो मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में अपनी फौज भेजकर धोखे से भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया, और वो भी अवैध कब्जा। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड समझिए, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 1 में देश के 4 प्रांत है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। इस लिस्ट में पीओके का नाम तक नहीं है। पाकिस्तान की संसद में पीओके का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। पीओके को चलाया जाता है अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत। यहाँ की 14 सदस्य कश्मीर काउंसिल का असली बॉस खुद पाकिस्तान का पीएम होता है, शाहबाज शरीफ। पाखंड की हद देखिए, पीओके में चुनाव लड़ने के लिए एक हलफनामे पर दस्तखत करने होते हैं जिसमें लिखा होता है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की विचारधारा के प्रति वफादार रहेगा, यानी जो सच बोलेगा वो सिस्टम से बाहर। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि ये जमीन भारत का अटूट हिस्सा है। आज से 32 साल पहले 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान को हमारा वो हिस्सा खाली करना ही होगा। आज जब पीओके की आवाम आटे दाल के लिए तरस रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सच साबित होता हुआ दिख रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
8: पीओके में डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है।
0: अत्याचार और धोखे के दम पर कब्जा ज्यादा दिन नहीं टिकता। पीओके की जनता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। देखना यह है कि इस्लामाबाद इस कड़वे सच को कब स्वीकार करता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और हर खेल किस्मत नहीं खेलती, कई बार इंसान भी खेल जाते हैं इंसानों के साथ.

0: 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं, कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
2: It's great to be with you. Thank you very much.
1: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader.
1: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली। दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी। फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो।
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात। फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप। मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हुर्मुज संकट पर सीधी बात। G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
4: राष्ट्रपति जी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
4: एक्सेलेंस, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
4: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
4: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया। आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
5: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
2: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने क्या कहा।
1: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं। दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पतनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस पर तीखी बात भी हुई, और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया। आज तक ब्यूरो।
0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
6: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
7: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
6: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
8: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। सपा टूट के जा रही है।
6: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
9: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
8: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
7: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
10: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
11: ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
6: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शिगुफा छेड़ दिया।
8: रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में काली खल हो पता है
12: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
6: ओम प्रकाश राजभर वो नेता हैं जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं। जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
8: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
12: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
8: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोगों नाम है।
13: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
14: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
6: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
8: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
6: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
9: कई तो आपके 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।
15: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी FIR करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया। और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
9: आखिर आवेदन में क्या है कि FIR नहीं हो रहा है?
15: जो सच्ची बात है, जो सच्ची बातें हैं, वही FIR में है।
9: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
15: फैजल खान ने जो किया है, फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है। प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी FIR दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है। और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है। इसके लिए हम पटना पुलिस को धन्यवाद
9: आपके खिलाफ FIR तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है। लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
15: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है। इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब FIR लॉज हुआ, FIR लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
0: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
16: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है, और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है, गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूं, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, 2-4 डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए, और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहां नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप ने मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घूट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। टूट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोलह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
2: It's great to be with you. Thank you very much.
1: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sir. Sorry, I'm speeding. I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now.
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough traitor.
1: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले?

0: G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
1: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
0: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
1: एक्सेलेंस, आप जानते हैं कि मैरिटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
1: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
1: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
0: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रो और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
2: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
3: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
4: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
2: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी

0: पे टूट तय है।
1: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
2: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
1: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
3: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गए, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे। सपा टूट के जा रही है।
1: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
4: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
1: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है। तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
3: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना। अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
4: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
5: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
6: ये बताओ केशव मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
1: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
3: रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
7: क्या लिखा?
3: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
1: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
3: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
7: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है।
3: अपन जान बचाओ बदे, गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोग का नाम है।
8: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
9: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
1: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है। दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
3: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
1: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
4: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
1: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
10: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
11: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
12: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
11: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
13: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
1: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
11: अच्छा आमी ऑपरेशन वुल्फ करू ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, ते शक्य नाही आमच्याकडे।
1: मंगलवार को राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं कहीं नहीं जाएंगे।
14: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
11: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
1: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
11: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे, नाही डोंट कट, एक कट मत करना, हा हे लोक जो है बेईमान लोक है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
1: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
15: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
16: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
1: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं, उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
17: हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
18: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया है।
17: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
1: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा, प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
17: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
19: क्या अपना पक्ष रखा?
20: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
1: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
21: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोच थी, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष हो।
1: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो ये संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
10: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
22: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी एफआईआर करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया, और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
23: आखिर आवेदन में क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है?
22: जो सच्ची बात है, जो सच्ची बात है, जो सच्ची बातें हैं, वही एफआईआर में है।
0: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
22: फैजल खान ने जो किया है, फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है। प्रशासन को भ्रमित किया, प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है। और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है, इसके लिए हम पटना पुलिस को धन्यवाद देते हैं।
0: आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
22: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है, इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
10: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
2: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूं, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहाँ नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ।
10: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: ٹرمپ نے مودی کی تعریف میں پڑے قصیدے ملاقات کے بعد کہا، ہم ٹریڈ ڈیل کے بہت قریب، اگر بھارت پر حملہ ہوا تو ہم کریں گے مدد۔ پردھان منتری مودی نے بھارتی ناوکوں کی سرکشا کا مدعا اٹھایا۔ کوٹا میں چھاتروں سے مل کر راہل گاندھی نے سرکار کو گھیرا، بولے اسٹوڈینٹس کا گلا گھونٹ رہی ہے بھارت کی شکشا پرنالی، یہ دیش ہت میں نہیں۔ او پی راج بھر کے بعد اب ڈپٹی سی ایم کیشو موریا کا بڑا بیان، سماجوادی پارٹی میں 25-26 سانسد ٹوٹنے کو تیار، شیوپال بولے انہیں پھر ہرائیں گے۔ ٹوٹ کی خبر سے شیو سینا ادھو گٹ میں کھلبلی، سوتروں کی مانے تو 6 باغی سانسدوں نے اسپیکر کو سونپا اپنا پتر، ادھو نے آج بلائی سنسدی دل کی بیٹھک۔ پٹنہ میں ضمانت پر رہا کوچنگ ٹیچر روشن آنند کا فیصل خان اور خان سر پر گمبھیر آروپ، کہا سازش کے تحت میرے بھائی کی ہتیا کرائی، جے ڈی یو نیتا سنجے جھا سے ملاقات میں ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی۔ سولہ مہینے بعد پردھان منتری نریندر مودی اور امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کے بیچ 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ٹریڈ ڈیل سے لے کر رکشا سے لے کر سرکشا پر بات چیت ہوئی۔ دوپکشی وارتا کے بعد جب ٹرمپ اور مودی میڈیا کے سامنے مخاطب ہوئے تو امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے پی ایم مودی کے ساتھ اپنی دوستی کی سمپورن ویاکھیا کی۔
1: 16 مہینے کے بعد جب پردھان منتری نریندر مودی سے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو رشتوں پر تناؤ کی برف کچھ یوں پگھلتی ہوئی نظر آئی۔ ایک بار نہیں کئی بار دونوں کی پرسنل کیمسٹری کیمرے میں قید ہوئی۔ بھلے ہی لمبے وقت کے بعد مودی اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی، لیکن جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے ٹرمپ آئے تو مودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مودی سے دوستی سے لے کر بھارت سے رشتوں کو لے کر اپنے دل کی بات دل سے کہی۔
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: بات دوستی سے شروع ہوئی اور دونوں ملکوں کے رشتوں تک پہنچی۔ ٹرمپ نے دل کھول کر تعریف کی۔
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو ٹرمپ نے پی ایم مودی سے اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑا۔ دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ مودی کے بھارت پر کبھی سنکٹ آیا تو ڈھال بن کر امریکہ کھڑا رہے گا۔
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: پردھان منتری مودی کو لے کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے راشٹرادھیکش نے اپنے دل کی بات بتائی۔ ٹرمپ نے مودی کی ورکنگ سٹائل کی سمپورن ویاکھیا کی۔
2: Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say, he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
1: جب پترکاروں نے ٹرمپ سے دنیا میں بھارت کے دبدبے کو لے کر سوال پوچھا تو ٹرمپ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ مودی کے نیتروتو میں بھارت آسمان کی اونچائیوں کو چھوئے گا۔
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: پی ایم مودی کی میزبانی کو آج تک ٹرمپ نہیں بھولے ہیں۔ ٹرمپ نے یہی کہا کہ پی ایم مودی کی میزبانی میں ہوئی مہمان نوازی آج بھی یاد ہے۔
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं.
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
4: एक्सेलेंस से आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
4: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे.
4: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की. आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए. एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे. G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए. G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी. मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया. दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई. G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले. ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे. पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी. इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई. G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए. इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं. आज तक ब्यूरो.
0: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
5: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
2: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
6: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के दो नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री, पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
7: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त्र।
6: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
8: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर के सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे, टूट के जा रही है।
6: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
9: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
8: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है, वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
9: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
10: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच देकर के, डरा करके, वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
11: ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
6: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
8: रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े मुस्कुराए अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
12: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
6: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
8: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
12: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
8: अपन जान बचाओ बते। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
13: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
14: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
6: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
8: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं, इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
6: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
15: ₹15 करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
16: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
15: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
17: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
6: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
15: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसा करना तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हारा हाथ लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला आधी गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
6: मंगलवार को वो राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
18: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं? आपके जो
19: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
6: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
15: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे चे लोक कोण जात आहे हे? नाही दोन कट, एक कट मत करना। हा ये लोक जो है बेईमान लोक है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
6: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
20: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धनबल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
21: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
6: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत ये है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
15: हमारे एक सांसद है हिंगोली से नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
22: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
15: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
6: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
15: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान, 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
18: क्या अपना पक्ष रखा?
23: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
6: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
24: उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोचती है और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष हो।
6: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो यह संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
0: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
1: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी एफआईआर करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया। और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
2: आखिर आवेदन में क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है?
1: जो सच्ची बातें हैं वही एफआईआर में है।
2: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
1: फैजल खान ने जो किया है, फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है। प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है। और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है, इसके लिए हम पटना पुलिस को धन्यवाद।
2: आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
1: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है, इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
0: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
3: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है, और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है, गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए जो फायरिंग हुआ है। और दूसरे तरफ जो बड़ी घटना घट गई, तो उनके परिवार के सदस्य, छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूं, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए, और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहां नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
1: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
0: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
1: एक्सेलेंस, से आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
1: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
1: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
0: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
2: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
3: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
4: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
2: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?

0: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
1: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त्र।
0: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
2: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। सपा टूट के जा रही है।
0: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
3: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
0: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है। तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
2: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है, वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना। अब देखिएगा, अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
3: जो पार्टियां टूट रही हैं, उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
4: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
5: ये बताओ केशव मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? और जो फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य आपको फिर हराएगी।
0: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, राम गोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
2: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
6: क्या लिखा?
2: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का, हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
0: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं। जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
2: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
6: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है।
2: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
7: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
8: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
0: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है। दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
9: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
0: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
3: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। कई हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
0: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
10: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
11: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
12: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
11: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
13: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
0: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
11: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला आधी गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, ते शक्य नाही आमच्याकडे।
0: मंगलवार को राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
14: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं? आपकी जो
11: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साई बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
0: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
11: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे चे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, कट मत करना। हा ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
0: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
15: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
16: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
0: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं, उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब बागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
4: हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
17: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया है।
4: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
0: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा, प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
4: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान, 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
18: क्या अपना पक्ष रखा?
19: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
0: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
20: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोच थी। और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष हो।
0: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो ये संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन ना लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
10: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजतक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
21: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी एफआईआर करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया। और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
22: आखिर आवेदन में क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है?
21: जो सच्ची बात है, जो सच्ची बातें हैं वही एफआईआर में है।
22: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
21: फैजल खान ने जो किया है
22: फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है। प्रशासन को भ्रमित किया, प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है। और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है, इसके लिए हम पटना पुलिस को धन्यवाद।
1: आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
22: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है, इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
5: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
18: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरे तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूं, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहाँ नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप ने मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। गुट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोलह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही। बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sorry, I'm screaming, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader.
1: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हुर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी, और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं.
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
4: एक्सेलेंस, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
4: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हुर्मुज खुला रहे.
4: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हुर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की. आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए. एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे. G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए. G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी. मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया. दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई. G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले. ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे. पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी. इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई. G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए. इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं. आज तक ब्यूरो.
0: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
5: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
2: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
6: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के दो नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
7: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
6: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
8: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भरी के सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। टूट के जा रही है।
6: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
8: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना। अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
7: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
9: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
10: ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
6: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
8: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
11: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
6: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
8: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
12: पार्टी अपने ही सांसद तोड़ने को तैयार है,
8: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानते हैं ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
13: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
14: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
6: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
8: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं, इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
6: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
15: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
16: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
15: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
17: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
6: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
15: अच्छा आम्ही ऑपरेशन वुल्फ करू ना, ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
6: मंगलवार को राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
11: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
18: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
6: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
15: बाळासाहेब ठाकरे ने आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, हे कट मत करणार। हा हे लोक जो है बेईमान लोक है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
6: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
19: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
20: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
6: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहेब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
15: हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई तो उसने
21: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
15: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
6: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
15: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
11: क्या अपना पक्ष रखा?
22: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
6: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
23: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट है। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोचती है और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा।
6: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो यह संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
0: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
1: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी एफआईआर करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया। और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
3: आखिर आवेदन में क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है?
1: जो सच्ची बात है, जो सच्ची बातें हैं वही एफआईआर में है।
3: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
1: फैजल खान ने जो किया है, फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है। प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है। और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है, इसके लिए हम पटना पुलिस का धन्यवाद।
3: आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
1: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है, इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
0: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
4: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है, और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है, गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है, नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, 2-4 डायलॉग बोल करके। फर्जी टीचर से बचना चाहिए, और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहां नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: हिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
1: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
0: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
1: एक्सेलेंस, आप जानते हैं कि मैरिटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
1: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
1: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
0: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रो और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
2: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया। आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
3: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
4: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
2: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?

0: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के दो नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
1: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
0: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
2: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे, टूट के जा रही है।
0: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से दो तिहाई सांसद टूट सकते हैं?
3: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
0: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, दो तिहाई नंबर इसका 25 सांसद का होता है। तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
2: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
3: तो पार्टियां टूट रही हैं, उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
4: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके, वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
5: बताओ देखिए सब मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी जैसा मौर्य को फिर हराएगी।
0: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शिगुफा छेड़ दिया।
2: रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
6: क्या लिखा?
2: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
0: ओम प्रकाश राजभर वो नेता हैं जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
2: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
6: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है।
2: अपन जान बचाओ अवधि, गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, सुपाल जी का नाम है, जानते हैं ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
7: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
8: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
0: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है। दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
9: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
0: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
3: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
0: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
10: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
11: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
12: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर।
11: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
13: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
0: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
11: अच्छा आम्ही ऑपरेशन वुल्फ करू ना, ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
0: मंगलवार को राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
14: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
11: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
0: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
11: बाळासाहेब ठाकरे आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहे हे? नाही डोंट कट, एक कट मत करणार। हा हे लोक जो है बेईमान लोक है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
0: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
15: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
16: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
0: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं, उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
17: हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
18: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
17: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
0: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा, प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
17: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
19: क्या अपना पक्ष रखा?
20: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता नहीं दे सकते।
0: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
21: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोचती है, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा।
0: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो यह संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
10: पटना में जमानत पर रिहा ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश के तहत की गई। रोशन आनंद ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के बाद फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
22: देखिए, एक तो पहली बात हम आपको ये बताएं, हम पे झूठी एफआईआर करवा करके हमको 4 घंटा के भीतर पटना पुलिस अरेस्ट करके हमको जेल भेजवा दिया, और एक सही घटना, इसमें सही घटना का जिक्र है, और पिछले 5 घंटा से ज्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब पटना पुलिस दे।
23: आखिर आवेदन में क्या है कि एफआईआर नहीं हो रहा है?
22: जो सच्ची बात है, जो सच्ची बातें हैं वही एफआईआर में है।
23: फैजल खान के खिलाफ क्या लिखा है आपने?
22: फैजल खान ने जो किया है
23: फैजल खान ने पहला क्या किया है, फैजल खान ने गोली चलवाया और आरोप रोशन आनंद पर लगवाया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है, प्रशासन को भ्रमित किया, प्रशासन को भ्रमित किया और हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाया। और दूसरी बात, लेकिन पटना प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पटना प्रशासन ने ही, पटना पुलिस ने ही, बिहार सरकार की पुलिस ने ही इस बात का उजागर किया कि नहीं, फायर जो है फैजल खान ने करवाया है और फिर पटना पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है। इसके लिए हम पटना पुलिस का धन्यवाद।
1: आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाता है, आपको रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन जब फैजल खान का वीडियो सामने आता है, जब उनके द्वारा गोली चलवाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाती
23: है। यही तो हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है, इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ, मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की।
10: इस बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने फैजल खान को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा।
4: सर खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहां की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूं, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सबको चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है लोगों को, सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहाँ नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ।
10: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप ने मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घूट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। गुट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोलह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
1: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं.
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
4: एक्सलेंस, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
4: एक्सलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे.
4: एक्सलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की. आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए. एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे. G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए. G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी. मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया. दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई. G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले. ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे. पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी. इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई. G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए. इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं. आज तक ब्यूरो.
0: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
5: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
2: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने क्या कहा।
1: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई, तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं। दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पतनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये 3 हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस पर तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया। आज तक ब्यूरो।
0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद ये संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
6: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
7: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
6: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
8: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे, सपा टूट के जा रही है।
6: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से दो तिहाई सांसद टूट सकते हैं?
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, दो तिहाई नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
8: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
7: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
9: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
10: ये बताओ केशव मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जो फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
6: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, रामगोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शिगुफा छेड़ दिया।
8: रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए रामगोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा है पता है?
11: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का, हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
6: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
8: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
11: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
8: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानते हैं ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
12: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
13: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
6: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
14: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
6: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे की संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
15: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
16: तो ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
15: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
17: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
6: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
15: अच्छा आमी ऑपरेशन वुल्फ करू ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसा करना तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हारा हाथ लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला आधी गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
6: मंगलवार को राउत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
18: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
15: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
6: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
15: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, कट मत करना, हा हे लोक जो है बेईमान लोक है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
6: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
19: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज़ किसानों के लिए की जाती गरीबों के लिए की जाती।
20: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
6: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं, उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब बागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत ये है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
21: हमारे एक सांसद है हिंगोली से नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
22: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
21: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
6: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा, प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
21: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
6: क्या अपना पक्ष रखा?
23: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
6: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
24: उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट था। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोचती है, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष हो।
6: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो ये संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। गुट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोलह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं, कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली। दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी। फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो।
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात। फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप, मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात। G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं।
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
4: एक्सेलेंस से आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
4: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते

0: जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
1: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
0: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए। G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
2: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया। आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
3: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
4: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
2: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने क्या कहा।
0: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं। दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पतनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस

0: पर तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही होर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया। आज तक ब्यूरो।
1: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद ये संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
2: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी CM को सुनिए।
3: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त TMC का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
2: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
4: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे ही इधर से टूट के अब जाएंगे। सपा टूट के जा रही है।
2: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
5: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
2: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
4: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ TMC का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
5: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
6: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, MLC, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर BJP से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
7: ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी TRP बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के सब मौर्य आपको फिर हराएंगे।
2: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, राम गोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शिगुफा छेड़ दिया।
4: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े मुस्कुराए अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
8: क्या लिखा?
4: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
2: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
4: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
9: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
4: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोग का नाम है।
10: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
11: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
2: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है? दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
4: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके राम गोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं, इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
2: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
5: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
2: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
1: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
12: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
13: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
12: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
14: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
2: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
12: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसा करना तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे.
2: मंगलवार को राऊत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे.
8: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं? आपकी जो
12: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए.
2: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना.
12: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे जे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, हे कट मत करणार. हा हे लोक जो है बेमान लोक है, ये बेमान है और बेमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है.
2: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है. 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई.
15: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया. ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता. आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की. एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते. धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती.
16: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की.
2: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहेब वागचौरे का नाम शामिल है. उद्धव गुट की हालत यह है, दावा है कि 2 बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा.
12: हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है. दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
17: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया है.
12: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ. अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है.
2: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया. संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया. सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा.
12: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान, 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए.
18: क्या अपना पक्ष रखा?
19: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे.
2: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं.
20: उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट. हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोच थी और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा.
2: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो यह संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: ٹرمپ نے مودی کی تعریف میں پڑے قصیدے ملاقات کے بعد کہا، ہم ٹریڈ ڈیل کے بہت قریب، اگر بھارت پر حملہ ہوا تو ہم کریں گے مدد. پردھان منتری مودی نے بھارتی ناوکوں کی سرکشا کا مدعا اٹھایا. کوٹا میں چھاتروں سے مل کر راہل گاندھی نے سرکار کو گھیرا، بولے اسٹوڈینٹس کا گلا گھونٹ رہی ہے بھارت کی شکشا پرنالی، یہ دیش ہت میں نہیں. او پی راج بھر کے بعد اب ڈپٹی سی ایم کیشو موریا کا بڑا بیان، سماجوادی پارٹی میں 25-26 سانسد ٹوٹنے کو تیار، شیوپال بولے انہیں پھر ہرائیں گے. ٹوٹ کی خبر سے شیو سینا ادھو گٹ میں کھلبلی، سوتروں کی مانے تو 6 باغی سانسدوں نے اسپیکر کو سونپا اپنا پتر، ادھو نے آج بلائی سنسدی دل کی بیٹھک. پٹنہ میں ضمانت پر رہا کوچنگ ٹیچر روشن آنند کا فیصل خان عرف خان سر پر گمبھیر آروپ، کہا سازش کے تحت میرے بھائی کی ہتیا کرائی. جے ڈی یو نیتا سنجے جھا سے ملاقات میں ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی. سولہ مہینے بعد پردھان منتری نریندر مودی اور امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کے بیچ 1-to-1 ملاقات ہوئی. ملاقات میں ٹریڈ ڈیل سے لے کر رکشا سے لے کر سرکشا پر بات چیت ہوئی. دوپکشی وارتا کے بعد جب ٹرمپ اور مودی میڈیا کے سامنے مخاطب ہوئے تو امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے پی ایم مودی کے ساتھ اپنی دوستی کی سمپورن ویاکھیا کی.
1: 16 مہینے کے بعد جب پردھان منتری نریندر مودی سے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو رشتوں پر تناؤ کی برف کچھ یوں پگھلتی ہوئی نظر آئی. ایک بار نہیں کئی بار دونوں کی پرسنل کیمسٹری کیمرے میں قید ہوئی. بھلے ہی لمبے وقت کے بعد مودی اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی، لیکن جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے ٹرمپ آئے تو مودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. مودی سے دوستی سے لے کر بھارت سے رشتوں کو لے کر اپنے دل کی بات دل سے کہی.
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: بات دوستی سے شروع ہوئی اور دونوں ملکوں کے رشتوں تک پہنچی. ٹرمپ نے دل کھول کر تعریف کی.
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو ٹرمپ نے پی ایم مودی سے اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑا. دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ مودی کے بھارت پر کبھی سنکٹ آیا تو ڈھال بن کر امریکہ کھڑا رہے گا.
3: And the United States, sir, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: پردھان منتری مودی کو لے کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے راشٹرادھیکش نے اپنے دل کی بات بتائی. ٹرمپ نے مودی کی ورکنگ سٹائل کی سمپورن ویاکھیا کی.
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say, he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
1: جب پترکاروں نے ٹرمپ سے دنیا میں بھارت کے دبدبے کو لے کر سوال پوچھا تو ٹرمپ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ مودی کے نیتروتو میں بھارت آسمان کی اونچائیوں کو چھوئے گا.
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: پی ایم مودی کی میزبانی کو آج تک ٹرمپ نہیں بھولے ہیں. ٹرمپ نے یہی کہا کہ پی ایم مودی کی میزبانی میں ہوئی مہمان نوازی آج بھی یاد ہے.
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं.
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
4: एक्सेलेंस से आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
4: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे.
4: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की. आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए. एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े रहे. G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 12 देशों के नेता शामिल हुए. G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में हुई थी. मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया. दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई. G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले. ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे. पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रों और ट्रंप के ठीक बाद थी. इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई. G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए. इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं. आज तक ब्यूरो.
0: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
5: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
2: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने क्या कहा।
1: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं। दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पथनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस पर तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया। आज तक ब्यूरो।
0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद ये संख्या 303 तक पहुंची जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
6: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के 2 नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
7: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए जो हस्त्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त्र।
6: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
8: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे, सपा टूट के जा रही है।
6: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से दो तिहाई सांसद टूट सकते हैं?
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, दो तिहाई नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
8: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हस्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
7: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
9: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच देकर के डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
10: ये बताओ कि केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जो फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के सम्मान आपको फिर हराएंगे।
6: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, राम गोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
8: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
11: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
6: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
8: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
11: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
8: अपन जान बचाओ। बदे गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानते हैं ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
12: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
13: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
6: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है। दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
14: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
6: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
7: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
6: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे की संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
15: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
16: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
15: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
17: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
6: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
15: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसा करना तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला आधी गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, ते शक्य नाही आमच्याकडे।
6: मंगलवार को राऊत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
18: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में है आपके? जो
15: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साई बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
6: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
15: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, एक कट मत करना। हा ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
6: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
19: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती गरीबों के लिए की जाती।
20: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
6: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत ये है, दावा है कि दो बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
21: हमारे एक सांसद है हिंगोली से नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
22: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया है।
21: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
6: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
21: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
23: क्या अपना पक्ष रखा?
24: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अब तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दें।
6: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
25: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोच थी, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष हो।
6: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो ये संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

के नाम में भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या आपका नाम आपके भाग्य पर असर डाल देता है? क्या नाम रखने में सावधानी का पालन करना चाहिए? क्या है नाम का रहस्य और क्या है नाम रखने के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: ट्रंप ने मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे मुलाकात के बाद कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोटा में छात्रों से मिलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले स्टूडेंट्स का गला घूट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। ओपी राजभर के बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी में 25-26 सांसद टूटने को तैयार, शिवपाल बोले इन्हें फिर हराएंगे। गुट की खबर से शिवसेना उद्धव गुट में खलबली, सूत्रों की माने तो 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा अपना पत्र, उद्धव ने आज बुलाई संसदीय दल की बैठक। पटना में जमानत पर रिहा कोचिंग टीचर रोशन आनंद का फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई, जेडीयू नेता संजय झा से मुलाकात में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोलह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
1: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही।
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having...